भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। किसी न किसी स्वरूप में भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर आता हूँ। शास्त्रों में ईश्वर के जितने भी स्वरूपों का वर्णन मिलता है उसमें श्री कृष्ण ही लीलाधारी हैं।

तभी तो कुरुक्षेत्र में बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों की विजय सुनिश्चित कर देते हैं। अद्भुत है गिरधारी का स्वरूप। जब देवराज इंद्र ने शक्ति और अहंकार दिखाया, तब मुरलीधर ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा की। द्वापर युग में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब श्री कृष्ण

0: अपने लीलाओं से नटवर ने धरावासियों को कर्मपथ दिखाया है। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको श्री कृष्ण के धारण किए हुए उनके प्रिय अलंकारों की महिमा बताएंगे, जिनमें छिपी है मानव के लिए सीख। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि द्वारकाधीश संकटों का समाधान करने वाले हैं, और माधव की मनमोहिनी सूरत और व्यक्तित्व में ही समस्त दुश्वारियों का उपाय छिपा है। आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण क्यों कहे जाते हैं श्री हरि के सबसे दिव्य अवतार।
1: कृष्ण को हमारे यहाँ शास्त्रों में पूर्णावतार बताया गया, तो जो पूर्णावतार होता है ईश्वर के अंश के रूप में, तो उसकी उपासना के लिए हमें हमारे यहाँ जो बताया गया कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, और या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस पूरे महीने जप करके श्री कृष्ण की उपासना को हम सार्थक कर सकते हैं।
0: श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री हरि के सभी अवतारों में यही संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न थे। श्री कृष्ण को अलौकिक देव कहते हैं। श्री कृष्ण ने हर समय अपने भगवान होने का परिचय दिया है। श्री कृष्ण के मुख्य रूप से 3 स्वरूप हैं, ब्रज के कृष्ण, राजा कृष्ण और पार्थ सारथी कृष्ण। हर रूप में श्री कृष्ण अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। हर रूप में वो भक्तों की कष्ट हर लेते हैं और उन्हें मुक्ति मोक्ष का वरदान देते हैं। माना जाता है कि भाद्रपद का ये महीना कृष्ण भक्ति के लिए सबसे खास है। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का सही उच्चारण करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद माह से ही श्री कृष्ण का गहरा संबंध है, क्योंकि इसी माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतार।
1: तो हमारे यहाँ कहा गया, जब जब होइ धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब मनुष्यों का आवश्यकता होती है ईश्वर की, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आता है। और कहा भी गया है, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
0: माना जाता है कि यह संसार श्री कृष्ण के अधीन है। धर्म ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप से दुनिया को ज्ञान दिया। माना जाता है कि श्री कृष्ण इस जगत की वो शक्ति हैं जो संसार में व्याप्त 16 कलाओं के मालिक हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण के ध्यान और उपासना का फल अमोघ यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है। आज हम आपको श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की महिमा बता रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि माधव के श्याम वर्ण स्वरूप पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: श्याम वर्ण का रहस्य है कि समुद्र को हम श्याम वर्ण कहते हैं और गगन को भी श्याम वर्ण कहते हैं, इसलिए मेघ श्यामम जो कहा गया, मेघ रूपी श्याम है भगवान। देखने में तो बादल का सदृश है, लेकिन उनके अंदर जल भरा हुआ है। वह कृपा की दृष्टि का जो जल भरा हुआ है, यह भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है।
0: भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर धारी भी कहा जाता है, क्योंकि वो पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं। पीताम्बर अर्थात पीले रंग का वस्त्र। माना जाता है कि पीला रंग शुद्धता, ज्ञान और स्पर्शता का प्रतीक है। ये हमें अपने विचारों और कर्मों में सात्विकता बनाए रखने की शिक्षा देता है। चलिए आपको बताते हैं केशव के पीताम्बरी वस्त्रों की महिमा।
1: पीताम्बर इसलिए है कि पीताम्बर सत्यता का प्रतीक है। तो जो भगवान का यह स्वरूप है, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, यह जो बाल मुकुंद का जो यह स्वरूप है, कृष्ण का यह जो स्वरूप है, यह परमार्थ चिंतन के लिए बहुत ही लाभदायक। और पीला वस्त्र पहनते हमारे अंदर यह भगवान की दिव्य छवि बन जाती है, जो पीताम्बरधारी भगवान है।
0: संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप

0: जानते हैं कि संसार में प्रेम और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया है? श्री कृष्ण के बहुत से अस्त्र हैं जिनसे उन्होंने लीलाएं की हैं। उनके 3 अस्त्र विशेष प्रभावशाली हैं, सुदर्शन चक्र, बांसुरी और सम्मोहन। इन 3 का सही समय पर सटीक प्रयोग करके उन्होंने पापियों को दंड दिया और धर्म की स्थापना की। ये 3 ही अस्त्र हमारे जीवन में भी जाने अनजाने प्रयुक्त होते रहते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण के अलंकारों में मोर पंख सर्वोपरि है, क्योंकि वे इसे अपने मुकुट में धारण करते हैं। मोर पंख को विनम्रता, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मोर आकर्षक होता है, लेकिन उसमें जरा भी अहंकार नहीं होता। यही भाव इंसानों को याद दिलाता है कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मानव को सदैव सरल बना रहना चाहिए।
1: मयूर पंख धारण करने का मतलब है सांसारिक जिन वस्तुओं को मयूर त्याग देता है। मेरे समान कोई नहीं, एको हम बहुधा नास्ति, मैं एक हूँ दूसरा नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं भक्तों के लिए अपने उसी प्रकार अनुग्रह करने वाला हूँ जैसा मेरा नाम है।
0: तो देखा अपने कान्हा के आभूषण कितने चमत्कारी हैं। कहते हैं कान्हा के भक्तों को न सुख की चिंता सताती है, न दुख परेशान कर पाते हैं, क्योंकि जिस मन में कान्हा का वास होता है वहाँ किसी अन्य सुख की आवश्यकता ही नहीं होती। आगे हम आपको लीलाधारी कृष्ण के और भी आभूषणों से आपको अवगत करवाएंगे। तब तक कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि के सब अवतारों में केवल कृष्ण को ही संपूर्ण अवतार माना गया है। श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए तो श्री कृष्ण ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया और माना जाता है कि वासुदेव कृष्ण के अस्त्रों का संबंध कहीं ना कहीं आपके जीवन के सत्य से भी जुड़ा है। गौर से देखिए।
1: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: जिनकी प्रेम लीलाओं में डूबा है संसार।
1: हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
2: श्री कृष्ण के दिव्य अस्त्र करेंगे चमत्कार।
1: ते सब की राज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूरन कीजे काज।
2: चमत्कारी है गिरधारी का सुदर्शन। मनोहारी है मुरलीधर की मुरली, श्री कृष्ण है श्री हरि के सबसे मनमोहक अवतार। जानकार बताते हैं कि कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारे सृष्टि को आकर्षित किया। लेकिन जब जब टूटा स्वयं भगवान कृष्ण के धैर्य का बांध, तब तब उठा सुदर्शन चक्र। माना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र। तो क्या है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की महिमा और क्यों माना जाता है ये सबसे शक्तिशाली? चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है जो बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। श्री हरि के चक्र का नाम कांता चक्र है और शिव जी के चक्र है भवरेन्दु। सबसे शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र है जिसे केवल श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शिव जी ने किया था। श्री हरि के प्रतीक के रूप में चक्र की पूजा भी की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाई जाए तो व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहता है।
3: भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। ये भगवान विष्णु के अनुसार अवतार हैं। आपने देखा होगा कि 100 गाली देने के बाद शिशु का पाल का भगवान ने चक्र से वध किया। जब गज ने पुकारा समुद्र में तो भगवान वहां भी पहुंच गए और उसकी रक्षा किया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र इसीलिए बनाया गया, वहां पर भगवान ने चक्र चलाया है। तो भगवान का मुरली मधुर तान के लिए है और धर्म की रक्षा और संस्थापन के लिए भगवान चक्र का धारण करते हैं।
2: जहां एक ओर धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन रूपी अस्त्र उठाया, वहीं प्रेम की स्थापना के लिए बांसुरी थामी। माना जाता है कि श्री कृष्ण का सबसे दिव्य अस्त्र है बांसुरी। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी में स्वयं मां सरस्वती का वास था और उनकी वंशी की धुन सबको मतवाला बना देती थी। तो देखिए कान्हा के इस दिव्य अलंकार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी हैं। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे। बांसुरी के छिद्र ये बताते हैं कि कृष्ण के कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का बुरा असर समाप्त हो जाता है।
3: हमारे यहाँ कहा गया, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्रमहम न जाने। जब भगवान के अधरामृत पर, होठों पर वह जब बांस की बांसुरी लगती है और भगवान श्री कृष्ण जब उसमें हवा देते हैं तो संसारे संसार को, केवल गोपियों को ही नहीं, सारे संसार को आह्लादित और आनंदित करती है।
2: मान्यता तो यहाँ तक है कि कान्हा को बांसुरी महादेव ने भेंट स्वरूप दी थी। जब वे पहली बार कान्हा को देखने आए थे, बांसुरी से हमेशा मीठी और शांत धुन निकलती है। ये संदेश देती है कि हमें हमेशा ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरे के मन को शांति दे और कड़वाहट को दूर करे। माना जाता है कि मुरली के प्रयोग से आप जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, लेकिन कान्हा के सुदर्शन चक्र और मुरली से भी कहीं ताकतवर है उनका आकर्षण यानी सम्मोहन शक्ति, जो हर किसी को मोहित कर देती है। सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन शक्ति थी और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम आसानी से कर डाले थे। जयद्रथ का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
3: कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षित करना, यो आकर्षते यदि सह कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण अपने नयनों से, अपनी वाणी से, अपनी मधुर बोली से, अपनी बंसी के द्वारा सारे संसार को सम्मोहित करते हैं। राम के नाम में आराम है, लेकिन कृष्ण के नाम में आकर्षण है, सबको आकर्षित करना।
2: श्री कृष्ण ने जो भी धारण किया वह कारण नहीं था, उनके पीछे प्रेम, शांति, समर्पण, संहार और संकटों का निवारण छिपा है। तो अगर आप भी सच्चे मन से कान्हा की भक्ति करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि कान्हा के भक्तों में कान्हा का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आप भी श्री कृष्ण के इन अलंकार रूपी अस्त्रों और उनसे जुड़ी सीख को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के कुछ और चमत्कारी अलंकार, साथ ही जानेंगे श्री कृष्ण के पूजन में किन सावधानियों का रखे ध्यान।
0: हमने आपको श्री कृष्ण के उन दिव्य आभूषणों की महिमा के बारे में बताया है जिनका मानव जीवन से गहरा संबंध है। चलिए अब हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण की उपासना के नियम और सावधानियां क्या हैं, क्योंकि भादों का महीना नारायण की उपासना के लिए विशेष होता है।
2: परम फलदायी है श्री कृष्ण का ध्यान, श्री कृष्ण की उपासना से मिलेगा वरदान। भाद्रपद में कीजिए माधव का गुणगान, जीवन में आएगी समृद्धि, मिलेगा सम्मान। आज हम श्री कृष्ण के दिव्यास्त्रों और उनके आभूषणों की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए माधव के कुछ और प्रमुख अस्त्रों की महिमा आपको बताते हैं। कौमुद की गदा धारण करते हैं माधव। मान्यता है कि ये गदा न सिर्फ शारीरिक विकार मिटाती है बल्कि जीवन से अंधकार का भी नाश करती है। मान्यता है कि ये गदा श्री कृष्ण को वरुण देव ने दी थी। ये गदा शक्ति, बुद्धि, नीति, स्थायित्व और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। श्री कृष्ण का धनुष सारंग असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था। माना जाता है कि इस दिव्य धनुष को भगवान विष्णु, परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण ने धारण किया। ये सिखाता है कि बल का प्रयोग सिर्फ अन्याय और अधर्म को मिटाने के लिए किया जाना चाहिए। ये तो श्री कृष्ण के संहारक अस्त्र थे। चलिए आपको बताते हैं श्री कृष्ण के एक और अलंकार वैजयंती माला की महिमा। मान्यता है कि इस माला को राधा ने कान्हा को भेंट किया था जब माधव ने पहली बार राधा संग रास रचाया था।
3: वैजयंती को हमारे यहाँ जंगल वृक्ष की संज्ञा दी गई है। यह जंगल का वृक्ष उपेक्षित है, तो भगवान कहते हैं जो जो वस्तुएं उपेक्षित हैं वो मुझे दे दो। मैं सर्वग्राही जनार्दन, मैं तो जनार्दन हूँ, सर्वग्राही हूँ। यह सांसारिक जिन चीजों का तुम त्याग करते हो ईश्वर उसे अपना अलंकार, अपना श्रृंगार बना लेता है।
2: श्री कृष्ण के जीवन से ही जुड़ा है रास, जिसमें कोप और गोपियों संग श्री कृष्ण लीला दिखाते हैं, जिसे भक्ति और प्रेम रस की पराकाष्ठा माना जाता है। माना जाता है कि रास लीला में श्री कृष्ण को परमात्मा और गोपियों को जीवात्मा माना गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब जीव अपने अहंकार और संसारिक बंधनों को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है तब उसका मिलन ईश्वर से हो जाता है।
3: गोपियां कौन है? सभी जितनी गोपियां आई हैं मृत्यु लोक में उस समय भगवान के श्री कृष्ण के समय, वह सब देवता हैं। तो भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए और रास करते हैं। रास का मतलब कोई विकार नहीं है, रास का मतलब सबको साथ लेकर के चलने का जो परिमाप है उसे हमारे यहाँ रास। रास में कृष्ण केंद्र हैं और गोपियां पूर्ण समर्पित उनकी परिधि हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं।
2: तो देखा आपने श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अस्त्र और अलंकार कैसे आपके जीवन को गति और दिशा दे सकते हैं। मान्यता है कि नारायण की महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो अब आपको बताते हैं भगवान कृष्ण की उपासना में किन बातों का ध्यान रखें। इनकी उपासना प्रातः काल या संध्या काल में करें। पूजा में चंदन, तुलसी दल और शंख का प्रयोग जरूर करें। पंचामृत या अन्य वस्तुएं जब भी अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें। मंत्रों का जप तुलसी या चंदन की माला से ही करें। पीले वस्त्र और पीले आसन का प्रयोग विशेष लाभकारी होगा। जब जब संसार में पाप ने अपनी चरम सीमा लांघी है, तब तब नारायण ने पाप का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कृष्ण का ध्यान पूजन करके आप भी उनके दिव्य स्वरूप से बहुत कुछ सीख सकते हैं, धर्म का मर्म समझ सकते हैं, जीवन जीने की शैली को आत्मसात कर सकते हैं।
0: और इसी के साथ इस खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: गुजरात में गणेश उत्सव में रौनक बिखरे हुए हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह कई गणेश मंडल हैं जो अपने अपने गणपति की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव मनाते आए हैं। तो आज गुजरात के दो ऐसे गणेश मंडलों का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं जिन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बप्पा की बेहद खूबसूरत और भव्य प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन दो इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को तो आपने दिखाएंगे ही आपको, साथ ही सूरत में गणेश उत्सव के लिए ही तैयार की जा रही कुछ और डिजाइनर गणेश मूर्तियों की मनमोहक तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहे हैं।

0: आ रहे हैं गणपति बाप्पा, जिनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन गणेशोत्सव की रौनक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात में भी खूब बिखरी हुई है। सूरत में 17 फीट ऊंचे बप्पा की ये आभा बता रही है कि गणेशोत्सव यहाँ भव्य ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होगा।
1: ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, सूरत के सिटी लाइट इलाके की तस्वीरें, यहाँ पर भी भगवान गणेश की एक विशाल आकार की जो मूर्ति है यहाँ पर लाई गई है और गणेश जो पंडाल है वो बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू की जा रही है।
0: आस्था के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये गणेश प्रतिमा दरअसल टिश्यू से बनाई गई है, जिसमें 350 किलो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हुआ है। शहर के सिटी लाइट इलाके में इस अनोखी गणेश प्रतिमा को बनाने वाला एक ग्रुप है, जिसका नाम है सरकार गणेश उत्सव।
2: तरीका है और ये एक्चुअली 2 से 2.5 महीना, और इसमें हम मुंबई से कारीगर आए हैं, ये स्पेशल राजेश महिकर जी करके हैं, वो जो मुंबई हमारे आर्टिस्ट है, वो इसमें टिश्यू पेपर के इनको एक कला है और वो कला ऐसी है कि आप ये इसकी वजन भी 550 किलो है, ज्यादा भी नहीं है, भले 17 फुट की है लेकिन 550 किलो इसका वेट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टिश्यू पेपर का यूज किया गया है जो मेल्ट हो जाए इजीली और रिसाइकल कर सके हम।
0: बप्पा की प्रतिमा बनाने के लिए विशेष तौर पर मुंबई से कुशल मूर्तिकारों की टीम को सूरत बुलाया गया। कुशल कलाकारों ने करीब 2 महीने का वक्त लेते हुए लगातार मेहनत की और गणेश की मूर्ति को आकार दिया। टिश्यू पेपर जैसे हल्के और अलग तरह के माध्यम से इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार करना हालांकि काफी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। बप्पा की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने भव्य स्वरूप लिया। हालांकि इसे रंगने के लिए पीओपी और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल से बचने का प्रयास किया गया ताकि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। फिर जब विघ्नहर्ता की ये भव्य प्रतिमा तैयार हुई तो सरकार गणेश उत्सव ने ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के बीच उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बप्पा की स्वागत यात्रा में हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद दिया, जिनमें सरकार गणेश उत्सव के परिचित रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी गणपति महाराज के वर्चुअली दर्शन कर धन्य हुए।
3: बार जब हमारी मूर्ति लोगों ने देखी और यहाँ आके बहुत लोगों ने चेक किया और टिश्यू पेपर की मूर्ति देख के पूरा शहर स्तब्ध था। इस बार भी वही चीजें देखने के लिए राम चौक पे हजारों लोग आए, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, सारे लोग।
0: फिलहाल तो गणेश उत्सव के दौरान सूरत के टिश्यू वाले गणेश जी की तरह ही वडोदरा के इको फ्रेंडली बापा की भी खूब चर्चा होती रही है, जिन्हें आकार देने वाला 20 से 25 युवाओं का श्री गणेश युवक मंडल है। युवाओं की ये टीम नाना छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करता रहा है। युवाओं की ये टीम नाड़ा छड़ी यानी कलावा या रक्षा सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसी अनोखी इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करती रही है।
4: इस साल हम विसर्जन नहीं करेंगे, हम लोग इस अगले साल यही मूर्ति को वापस इस्तेमाल करके इसके ऊपर कुछ नया इको फ्रेंडली वे में वापस मूर्ति बनाएंगे। और हम सबको, बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इको फ्रेंडली गणपति बनाएं ताकि हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।
0: शहर के कारेली बाग स्थित वल्लभ नगर सोसाइटी का श्री गणेश युवक मंडल दरअसल इस साल अपने गणेशोत्सव का 11वां साल बना रहा है। पिछले 10 सालों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार इन युवाओं ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत लगाई और फिर 80 से 82 किलो कलावे का उपयोग कर ये बेहद अनोखे इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार किए, जिसको बनाने में 16,700 रुपए का खर्च आया। हालांकि सूरत में पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने भी गणेशोत्सव से पहले डिजाइनर गणेश मूर्तियां बनाकर लोगों का खूब ध्यान खींचा हुआ है। पारंपरिक रंगों में घुली और बारीक नक्काशी के लिए बप्पा की ये डिजाइनर प्रतिमाएं एक नजर में ही किसी का भी मन मोह लें। भाई बप्पा की ये खूबसूरत मूर्तियां हैं ही ऐसी कि एक पल में ही दिल को लुभा ले। लेकिन ये भी 100% सच है कि आज का दौर आस्था के साथ पर्यावरण को बचाकर रखना है, इसलिए निश्चित तौर पर इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा नदी, तालाब या समंदर में विसर्जन के वक्त पर्यावरण सुरक्षा की एक सराहनीय पहल है। जिससे भक्ति आस्था के साथ त्योहार का रंग भी बना रहे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: क्या भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र विशेष है? क्या भगवान कृष्ण बांसुरी से भी चमत्कार करते थे? क्या भगवान कृष्ण के पास सम्मोहन की शक्ति भी थी? कौन सी हैं भगवान कृष्ण की शक्तियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
15: देश भर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव, मथुरा से लेकर दिल्ली तक जय कन्हैया लाल की गूंज, कान्हा की आस्था और भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु। आज दही हांडी उत्सव की धूम देखने को मिली, ह्यूमन पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ेंगे माखन की गोविंदा, नारी शक्ति का भी दिखेगा दम, गोविंदा आला रे की लगेंगे जयकारे। महाराष्ट्र के अकोला में 20,000 स्कूली बच्चों ने मिट्टी से बनाए गणपति की मूर्ति, उत्सव के साथ पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। सूरत के वेसू में भव्य गणेशोत्सव का शुभारंभ, 40,000 वर्ग में तैयार हो रहा है विशाल पंडाल, इस बार 22 फीट ऊंचे गणपति बप्पा विराजेंगे। टीचर्स डे पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश भर के 48 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। महिला एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान आमने सामने, रात 8 बजे से शुरू होगा महा मुकाबला, पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है भारत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
16: मेरे पागल भक्त के 3 लक्षण हैं हमारी, हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के तीन लक्षण।
17: उसके बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है, ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना, सूत्र है। आप भक्त हुए या नहीं इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर तीन गुण होते हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अभाव है, भरोसा है और भोलापन है, समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये तीनों तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान।

होती नहीं बिना नहाए खिला दे, क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी, बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती, अरे बाबरी शर्म नहीं आती, पाप पड़ेगा पाप, नर्क जाएगी नर्क। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने जा कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगाजल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया, पर्दा लगाया और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी जी, तो जगन्नाथ जी से पूछा ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे गए, उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला, इधर जल्दी आने की जल्द थी जिद थी तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्माबाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बना दी थी वैसे ही बनाया करना, हमको तो वही प्रिय। मेरे पागलो, भाव का अर्थ है कर्माबाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता। सच बोले ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं, जैसे ही साधना करने आए तो तीन दिन तो हमने भी नहीं नहाया, महाराज जी को ये बात पता है और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने ये भी सुना कि जिसको कह दो जो जो सुन ले तो पाप उसमें बट जाते हैं। हाँ। और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे, इनके सामने कहेंगे तो शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ सच बता रहे, तीन दिन ठंडी बहुत थी, बर्फ भयंकर थी और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती, उनके चेले के चेले हैं तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। तीन दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को छू लिया, मतलब हमने नहा लिया। पर स्नान के मामले में बद्रीनाथ वाले महाराज जी आगे हैं, 3:30 बजे ही ये नहा लेते, तो हम सुबह सुबह इनको ही दंडवत तीन दिन ठोके। राम भगवान बता भी दिया कि वैसे आप लोग यहां तप्त कुंड में स्नान करते हो, महत्व यहां अलकनंदा में स्नान करने का है। ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा है, अलकनंदा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। और कोई और ये करते थे यहां? हाँ महाराज जी ने बहुत वर्षों तक किया। एक यहां अवधूत महात्मा रहे, क्या नाम था उनका बाबा? पूज्य परमानंद अवधूत जी। आह क्या अद्भुत महात्मा, अवधूत महात्मा पूज्य श्री परमानंद बाबा एक लंगोट में रहते थे, यहां महाराज जी का खाक चौक है, उसके सामने में उनकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में रहते थे। सुबह सुबह उठते थे, बहुत कम बोलते थे, बैठे रहते थे, भारी पेट, अवधूत थे। ऐसे कोई आए भी, बड़े से बड़े चेला आते थे उनके पास, ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए, अच्छा जा रहे बाबा, इशारे, बहुत कम, कभी कभी बोलते थे। और बोलते भी कब थे, कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो,

0: बस अध्याय चैन इतना बोलते थे। सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी, तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना, तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा करके, कल हवेली पे आ जाना। तो महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो। महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे। अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे, 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम है भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता, पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए। और भरोसा कैसा हो, एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, भरोसा तब टूटना चाहिए जब पृथ्वी फट जाए और आकाश फट जाए, तब टूटना चाहिए। भक्त का भरोसा तब तक पक्का रहना चाहिए जब तक पृथ्वी फट ना जाए और आकाश भी फट ना जाए। जब पृथ्वी में भूकंप आ जाए और आकाश फट जाए तब भरोसा तोड़ना के भगवान नहीं है, वरना तब तक भरोसा मत तोड़ना। वो है, समय की देर है, वो समय आएगा, एक झटके में सब हो जाएगा, एक झटके में सब हो जाएगा। भरोसा को, वृंदावन में एक महात्मा हुए, भरोसा पर हम आपको कथा सुनाएं। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था कदंब खंडी जी महाराज, बड़े सिद्ध महात्मा। उनकी महाराज जटाएं बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी। एक दिन मस्ती में रहते थे, अब महात्मा तो मस्ती में ही रहते हैं, मस्ती में चले जा रहे थे, जटाएं बड़ी बड़ी थी, तो वृंदावन की लता पताओं में धोखे से अचानक से एक घटना हुई कि उनकी जो जटाएं थी वो जटाएं लताओं में उलझ गई, और जैसे ही उलझी तो वहीं बैठ के भजन करने लगे, सुलझाई नहीं, बैठ गए भजन करने लगे। तो कुछ ब्रजवासी बालक आए, छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा काहे गो काहे गो, ब्रजवासी निकले, बाबा तेरी जटाएं सुलझा दूं? ना ना ना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो कोई पूछे कि किसने उलझाई, बोले हम तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, इस बंसी वाले ने ही उलझाई। तो बोले सुलझाएगा कौन, बोले वही सुलझाएगा। बाबा पागल हो, बेपिजुली में मर जाओगे, रात बहुत होती है, भूखे मर जाओगे, काहे को बेपिजुली में पागल बन रहे, चलो मैं हूं सुलझा दे हूं। ना ना ना, जाओ जाओ, और सुनो छू ना लेना, पाप पड़ेगा पाप। सबको भगा दिया और वहीं पर बैठकर राधा कीर्तन गाने लगे, कृष्ण कीर्तन गाने लगे। एक दो रात नहीं, कई महीने बीत गए, बाबा ने जटाए नहीं उलझाए। ध्यान रखना, जिनका भरोसा जल्दी टूटता, ध्यान से सुनना मेरे पागलो, कई महीने बीत गए लेकिन उन्होंने जटाएं नहीं सुलझाई, बोले जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। ठाकुर जी ने देखा कहीं ये मर ना जाए बाबरा, तो हमारे गोविंद छोटा सा बालक का रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया बन करके आ गए, और बड़ी तोतली वाणी में, बड़ी प्यारी वाणी में, बाबा ला मैं तोरी जटाएं सुलझा दूं। तू कौन है भैया? बाबा मुंह को ना पहचानो, मैं हूं तो ब्रज को छोरा, नंद को छोरा हूं, मैं ही तो कृष्ण कन्हैया हूं, जाको तू कीर्तन गा रहा। बाबा बोले छूना लइए दारी के, छूना लेना, क्यों बेपिचूली की बातें बतावे, हम जानते हैं का जानते हो, तू अकेलो नहीं ब्रज में डोले, जब तक किशोरी जू ना रहे तू अकेलो डोले ही ना, हमको उल्लू बनाने के चक्कर में तू आयो है बहाने बनाने, हम ना मानेंगे, हम कैसे माने कि तू ठाकुर है, हम कैसे मानेंगे कृष्ण कन्हैया? भगवान जी बोले हमका आधार कार्ड दिखाएगा। कैसे मानोगे कि हम ठाकुर जी हैं? बाबा बोले अब तुम्हारी पहचान को तो एक ही उपाय है, साथ में किशोरी जू आ जाएं और वो कह दें यही ठाकुर जी हैं, तो हम मान लेंगे तुम ठाकुर जी। ठाकुर जी बरसाने गए, किशोरी जी विराजमान थी, सखियां अष्ट सखियां ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में विराजमान थी। दोपहरी का समय था, सभी सखियां बैठ करके श्री किशोरी जी को मधुर मधुर वार्तालाप सुनाई रही थी, पान को बीड़ा खिलाई रही थी। बाई समय पर ठाकुर जी तपती दोपहरी में जून के महीने में पहुंच गए। अरे ओ देवी, तो किशोरी जी ने देखा, अरे आप? ठाकुर जी ने कहा किशोरी जी जल्दी चलो नहीं तो वो बाबा निपट जाएगा। कौन बाबा? पूरी घटना बताई। एक बाबा है, बाकी जटाएं लताओं में उलझ गई कीर्तन करते करते। अब वो कह रहे हो तभी सुलझाएंगे जब ठाकुर जी सुलझाने आएंगे। तो किशोरी जी बोली हमको क्यों ले जा रहे हो? बोले हम गए थे, वो मान ही नहीं रहे कि हम ठाकुर जी। तो बोले मानेंगे कैसे? बोले वो कह रहे हैं जब तक तो किशोरी जी ना आएंगी राधा जी तब तक हम ना मानेंगे तुम ठाकुर जी हो। बाबा बोले इसलिए तो हमारी प्रमाण पत्र के लिए साथ में चलो। ठकुरानी बोली गजब है। और ठाकुरानी जी ने कहा ऐसा भगत है तब तो हमें भी देखना है। तो ठाकुरानी भी गई, और जैसे ही गई तो ठाकुर जी बोले ले बाबा इनते पूछ लो हम हैं ठाकुर जी के नहीं। तो जैसे ही किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा यही ठाकुर जी है बाबा। मस्ती में झूम गए। ठाकुर जी ने एक एक जटाएं लता से सुलझाई, और जब सुलझाई दोनों के चरणों में डूब गए। उनका नाम महात्मा कदम खंडी हुआ। मेरे पागलो, कलयुग में भी ठाकुर उलझे जीवन को सुलझाने आ सकता, बस भरोसा ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा इतना दृढ़ भरोसा होगा, तुम इतनी दृढ़ता के साथ हमारे ठाकुर जी पर भरोसा करोगे तो भगवान आएगा, भगवान सुलझाएगा। और भगवान तो वो उलझे हुए लोगों को ही सुलझाते हैं, भगवान का काम। और मेरे पागलों, हम लोग तो उलझे ही हैं, वो तो सुलझाने का काम। तो भक्त के तीन लक्षण हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा, और तीसरा भोलापन। भोलापन कैसा हो? बच्चों की तरह, बच्चों की तरह भोलापन होना चाहिए, नामदेव की तरह होना चाहिए। नामदेव जी के घर पर भगवान स्वान बन करके, कुत्ता बन करके आते। नामदेव जी भोजन बना करके, टिक्कर बना करके, रोटियां बना करके रखते, और बाहर जाते जल लेने के लिए जलाशय जाते। तब तक कोई ना कोई रोज आकर के रोटी खा जाता। एक दिन नामदेव जी ने देखा कि कोई रोटी रोज खा जाता, आज चुपके से देखना है कौन खा जाता। देखा एक कुत्ता आया, रोटी मुंह में दबाई भागने लगा। नामदेव जी ने घी का डब्बा लिया, पीछे पीछे भागने लगे। अरे गोविंद, हे विट्ठलनाथ, हे ठाकुर, सूखी रोटी मत खा, कम से कम घी तो लगा ले, घी तो लगा, घी तो लगा, घी तो लगा के खा, घी तो लगा के खा। सूखी खाएगा गले में अटक जाएगी, दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, गिर के फिर उठे, डब्बा उठाया और फिर पीछे पीछे भागे। लंबी दूर तक श्वास फूल गई, जब श्वास फूली तो भगवान से भी नहीं रहा गया, और कुत्ते के बीच ही गोविंद प्रकट हो गए। कुत्ते के बीच में भगवान प्रकट, ऐसा भोलापन। स्वान में भी भगवान देख, ऐसा भोलापन। भक्त के तीन लक्षण, भाव, भरोसा और भोलापन। और तुम्हारे अंदर ये तीनों घटित हो।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: क्या भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र विशेष है? क्या भगवान कृष्ण बांसुरी से भी चमत्कार करते थे? क्या भगवान कृष्ण के पास सम्मोहन की शक्ति भी थी? कौन सी हैं भगवान कृष्ण की शक्तियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: जब पृथ्वी में भूकंप आ जाए और आकाश फट जाए तब भरोसा तोड़ना के भगवान नहीं है, वरना तब तक भरोसा मत तोड़ना। वो है समय की देर है, वो समय आएगा, एक झटके में सब हो जाएगा, एक झटके में सब हो जाएगा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: देश भर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा से लेकर दिल्ली तक जय कन्हैया लाल की गूंज सुनने को मिली। कान्हा की आस्था और भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु। आज दही हांडी उत्सव की धूम देखने को मिली। ह्यूमन पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ेंगे माखन के गोविंदा। नारी शक्ति का दिखेगा दम, गोविंदा आला रे के लगेंगे जयकारे। महाराष्ट्र के अकोला में 20,000 स्कूली बच्चों ने मिट्टी से बनाए गणपति की मूर्ति। उत्सव के साथ पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। सूरत के व्यसो में भव्य गणेशोत्सव का शुभारंभ। 40,000 वर्ग में तैयार हो रहा है विशाल पंडाल। इस बार 22 फीट ऊंचे गणपति बप्पा विराजेंगे। टीचर्स डे पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश भर के 48 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। महिला एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान आमने सामने। रात 8 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है भारत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
10: देश भर में धूमधाम से मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का 5,253 जन्मोत्सव। जन्माष्टमी पर मथुरा से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में भव्य रौनक देखने को मिली। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मना कान्हा का जन्मोत्सव। जय कन्हैया लाल की से गूंजा जन्मस्थान। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कृष्ण जन्मोत्सव में भक्ति का भव्य नजारा देखने को मिला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्मस्थान में दिव्य अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कामधेनु गाय के दूध से हुआ कान्हा का दुग्ध अभिषेक। कृष्ण प्राकट्य के बाद हुआ पवित्र अभिषेक। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। नंद के आनंद भयो के गूंजे जयकारे। जन्माष्टमी पर पहली बार मथुरा में भव्य ड्रोन शो का आयोजन। रात में 500 ड्रोन से जगमग हुआ आसमान। ड्रोन शो के जरिए शानदार आकृतियां बनाई गई। आसमान में दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन। धूमधाम से मनाया गया जन्मोत्सव। सीएम रेखा गुप्ता ने पूजा की। दिल्ली में जन्माष्टमी पर सजा कान्हा का दरबार। पंजाबी बाग के इस्कॉन टेंपल में कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु। कान्हा के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेशन दिल्ली के द्वारका में स्थित इस्कॉन मंदिर में बड़े केक के साथ मनाया गया कान्हा का जन्मोत्सव। गाजियाबाद के इस्कॉन मंदिर में भव्य कृष्ण जन्मोत्सव। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भजन कीर्तन से गूंजा मंदिर परिसर। चंडीगढ़ में धूमधाम से मना कृष्ण जन्मोत्सव। इस्कॉन मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु। अजमेर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर महाआरती में शामिल हुए श्रद्धालु। जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं ने की भव्य आरती। राजस्थान के राजसमंद में कृष्ण जन्मोत्सव का अद्भुत नजारा। श्रीनाथ जी को दी गई 21 तोपों की सलामी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के 108 लड्डू गोपाल मंदिर में सजा कान्हा का दरबार। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। कान्हा के अवतार में नजर आया नन्हा बालक। भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष अभिषेक का अनुष्ठान। पंचामृत से हुआ कान्हा का अभिषेक। दूध की धार से नहाए लड्डू गोपाल। कान्हा की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। जय कन्हैया लाल की से गूंजा मंदिर परिसर। कोलकाता के इस्कॉन टेंपल में भव्य कृष्ण जन्मोत्सव। भक्तों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति में डूबा पूरा सूरत, इस्कॉन मंदिर में हजारों भक्तों ने मनाया कान्हा का जन्मोत्सव। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोरखनाथ मंदिर में की कान्हा की पूजा अर्चना। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मनाई जन्माष्टमी, पत्नी के साथ विधि विधान से कान्हा की पूजा अर्चना की। गांधीनगर में धूमधाम से मना कृष्ण जन्मोत्सव, सीएम भूपेंद्र पटेल ने कान्हा की आरती की। जयपुर में कृष्ण भक्ति में डूबे सीएम भजनलाल शर्मा, राधा सरल बिहारी मंदिर और इस्कॉन टेंपल में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भोपाल में कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आए शिवराज दंपति, अपने घर पर पूजा अर्चना की, कान्हा को झूला झुलाया और मटकी भी फोड़ी। जन्माष्टमी पर केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ के इस्कॉन मंदिर में लगाई हाजिरी, पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए। आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा दही हांडी का उत्सव, गोविंदा पथक आज फोड़ेंगे माखन की मटकी। दही हांडी पर मुंबई में उमड़ेगी भारी भीड़, ढोल ताशों के बीच बनेंगे मानव पिरामिड, गोविंदा आला रे से गूंजेगा शहर। दही हांडी में दिखेगा रोमांचक मुकाबला, दही हांडी पर इनामों की भी बरसात, मटकी तक पहुंचने की होगी जोरदार जंग। दही हांडी उत्सव में नारी शक्ति का भी दिखेगा दमखम, कई जगहों पर महिला गोविंदा भी मटकी फोड़ती हुई नजर आएंगी। जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है दही हांडी उत्सव, ढोल के थाप पर बनेगी मानव श्रृंखला, माखन की मटकी के लिए होगा महासंग्राम। महाराष्ट्र के अकोला में 20,000 स्कूली बच्चों ने शाडू मिट्टी से गणपति बनाए, बच्चों ने उत्सव के साथ पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। अकोला में बच्चों ने खुद अपने हाथों से गणपति की प्रतिमाएं तैयार की, मकसद है आस्था के साथ प्रकृति को भी बचाना। बच्चों ने तय किया है कि 10 दिन पूजा के बाद गणपति का विसर्जन घर में ही करेंगे और इससे नदियों और तालाबों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। अकोला की इस मुहिम में इस बार 20,000 बच्चे जुड़े हैं, पिछले साल करीब 10,000 बच्चों ने पर्यावरण फ्रेंडली गणपति बनाए थे। अकोला में बच्चों की इस नेक पहल का साफ संदेश है, गणपति उत्सव की परंपरा भी निभे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। सूरत के वेसू में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी शुरू हो गई है, यहां 40,000 वर्ग गज में महल जैसा विशाल पंडाल तैयार हो रहा है। इस बार सूरत में 22 फीट ऊंचे गणपति बप्पा विराजेंगे, खास बात है कि मूर्ति 700 किलो टिश्यू पेपर से बनाई जा रही है। गणेश उत्सव में रोज करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, भीड़ को देखते हुए दर्शन और आने जाने की खास व्यवस्था की जा रही है। गणेश उत्सव में पूजा के साथ समाज सेवा का भी संदेश दिया जाएगा, वृद्धाश्रम और शेल्टर होम के लोगों का सम्मान और हेल्थ चेकअप होगा। गणेश उत्सव के 11 दिनों में भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसाद की व्यवस्था होगी, हेल्थ चेकअप में बीमारी मिलने पर जरूरतमंदों के इलाज में भी समिति मदद करेगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षकों को मिलेगा सम्मान, 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए उत्कृष्ट शिक्षक। शिक्षकों के योगदान को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, विज्ञान भवन में जुटेंगे देश भर के शिक्षक। शिक्षकों की मेहनत और समर्पण को सम्मान, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 138वीं जयंती। हापुड़ के शिक्षक अमित शर्मा का बड़ा सम्मान, राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए चयन किया गया, आज गोरखपुर में मिलेगा सम्मान। हापुड़ को पहली बार मिला ये गौरव, अमित शर्मा जिले के पहले माध्यमिक शिक्षक जिन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मोतिहारी में बापूधाम महोत्सव का भव्य समापन हुआ। डीएसपी अभिषेक कुमार ने बांसुरी की धुन से ऐसा समा बांधा कि पूरा गांधी मैदान तालियों से गूंज उठा। बापूधाम महोत्सव के समापन पर मोतिहारी के डीएसपी अभिषेक कुमार ने शानदार बांसुरी बजाई। छठी मैया की धुन सुनकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। 3 दिन चले बापूधाम महोत्सव में नामचीन कलाकारों के बीच डीएसपी अभिषेक कुमार की बांसुरी ने महफिल लूट ली। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली। कई इलाकों में तेज गरज के साथ झमाझम बारिश। मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ दिल्ली एयरपोर्ट। हालांकि कुछ घंटों में स्थिति सामान्य हुई। बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के कई इलाकों के साथ साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बारिश हुई। लगातार बारिश से दिल्ली की सड़कों पर यातायात की थमी रफ्तार। कई जगहों पर लंबा जाम लगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों से आई जल जमाव की तस्वीरें। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। महिला एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान आमने सामने आएंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। भारत की नजर जीत की हैट्रिक पर। थाईलैंड और हांगकांग को दे चुका है मात। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बढ़ा रोमांच। टीम इंडिया के पास जीत के साथ ग्रुप स्टेज खत्म करने का मौका है। कैप्टन हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। भारत पहले ही एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। लगातार 2 जीत से अंक तालिका में 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है टीम इंडिया। भारत पाकिस्तान मैच पर टिकी क्रिकेट फैंस की नजर। चाइना के सिचुआन में सदियों पुरानी लालटेन कला आज बन गई है बड़ा कारोबार। जेगोंग की रंगीन लालटेन अब दुनिया के 19 देशों में शहरों को रोशन कर रही है। दवाइयों की बोतल, चीनी मिट्टी के टुकड़े और पुरानी सीडी से शानदार लालटेन बनाई जा रही है। यानी बेकार चीजों को कलाकार अपनी कल्पना से चमकदार कला में बदल रहे हैं। साल 2025 में जिगोंग की लालटेन 85 शहरों की 112 बड़ी प्रदर्शनियों में पहुंची। इससे चाइना की 8 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निर्यात कारोबार मिला है। 22 मीटर ऊंची ट्री ऑफ लाइफ लालटेन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लेजर, धुंध और विशाल आकार ने इसे ऐसा बनाया जैसे लोग सपनों के जंगल में पहुंच गए हों। कलाकार अब लालटेन में एआई और मशीनों का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। भविष्य में लालटेन आंखें झपकाएंगी, हिलेंगी और सांस लेने जैसा एहसास भी देंगी। चोंगकिंग के एनिमल पार्क में 4 शेर के बच्चे और 1 बाघ का बच्चा स्कूल पहुंचे। सबने घास पर खेला, दौड़े और फिर दूध मांस की दावत उड़ाई। स्कूल के पहले दिन शावकों ने खूब मस्ती की। पार्क का मकसद इन्हें स्वस्थ रखना और इनके अंदर के जंगली गुण को मजबूत करना है। लॉन पर शेर और बाघ की शावक एक दूसरे के पीछे भागते हुए दिखे। कभी दौड़े, कभी लौटे और धूप में आराम भी किया। खेल खत्म होते ही बच्चों के लिए ताजा दूध और मांस परोसा गया। भूखे नन्हे शेर और बाघों ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। पार्क में इन बच्चों को खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे वे बड़े होकर अपने प्राकृतिक शिकार वाली आदतें नहीं भूलेंगे। किर्गिस्तान में वर्ल्ड नोमैड गेम्स का रोमांच देखने को मिल रहा है। 104 देशों के खिलाड़ी घुड़सवारी और तीरंदाजी जैसे खेलों में दिखा रहे हैं अपना दम। घोड़े पर सवार तीरंदाजों ने हवा की रफ्तार से निशाना साधा। दौड़ते घोड़े से तीर चलाने का यह खेल सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। किर्गिस्तान में कोक बोरू खेल ने भी खूब रोमांच बढ़ाया। घुड़सवार टीमों ने बकरी की नकली खाल की गोल में डालने के लिए जोर लगाया। नोमैड गेम्स में ताकत का मुकाबला भी देखने को मिला। कई देशों की टीमों ने रस्साकशी में पूरी ताकत झोंक दी। इस खेल महोत्सव में पुरानी परंपराएं भी दिखाई गईं। कई सुनहरे बाज से शिकार हुआ तो कहीं जानवरों की हड्डी तोड़ने का मुकाबला हुआ।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है।
4: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए जीवन में अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए, तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। लेकिन सबको जीवन में अच्छे मित्र मिलें, अच्छे दोस्त मिलें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके कोई अच्छे मित्र नहीं हैं, तो भगवान कृष्ण से कैसे मित्रता बनाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि जीवन में कोई हो या ना हो, आपके सबसे अच्छे मित्र, आपके सखा भगवान कृष्ण बन सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण की महिमा जान लेते हैं। देखिए भगवान कृष्ण को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने इस अवतार में 16 कला संपन्न थे। ये भगवान विष्णु का संपूर्ण अवतार माना जाता है। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षयते इति कृष्णः, जो आपको आकर्षित करे, जो सृष्टि को आकर्षित करे वो कृष्ण है। और नाम के अनुरूप भगवान कृष्ण ने अपने इस अवतार में सारी सृष्टि को आकर्षित किया था। ये अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के निकट गए और उनकी मनोकामनाएं उन्होंने पूर्ण की। और अलग अलग संबंध अपने भक्तों के साथ उन्होंने बनाए। इन सब स्वरूपों में उनका मित्र का स्वरूप सबसे ज्यादा निकट माना जाता है, सबसे ज्यादा निकट समझा जाता है। भगवान कृष्ण और मित्रता पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। भगवान कृष्ण मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में, पति के रूप में, गुरु के रूप में, हर रूप में विलक्षण हैं। मित्रता के संबंध में भगवान कृष्ण की मित्रता का महत्व क्या रहा है? देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ, उद्धव के साथ और सुदामा के साथ मित्र का संबंध रखा था। उद्धव के साथ जो उनकी मित्रता हुई, उन्होंने उद्धव को जो ज्ञान दिया वो ज्ञान दरअसल जीवन का दर्शन है। तो उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जीवन का दर्शन मिला। सुदामा को उन्होंने मित्रता में ही संपन्नता दे दी, सुदामा के दरिद्रता के प्रारब्ध को हर लिया। और अर्जुन के साथ मित्रता के वजह से सारी दुनिया को गीता का ज्ञान मिला। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया वो ज्ञान आज तक प्रासंगिक है और आज तक वो ज्ञान चला आ रहा है। श्री कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध न केवल भक्ति का कारण बना बल्कि ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बना। आप महाभारत के समय को देखिए, भगवान कृष्ण को ज्यादा लोग पहचान नहीं पाए। विदुर, भीष्म पितामह, इन्होंने उनके ईश्वरीय स्वरूप को पहचाना। अर्जुन ने उनको एक अलौकिक मित्र समझा और जब उन्होंने विराट विश्वरूप के दर्शन कराए तब अर्जुन को पता चला कि ये स्वयं महासंभूति हैं, स्वयं भगवान हैं। तो भगवान कृष्ण का जिससे भी संबंध बना उसको भगवान कृष्ण ने भक्ति तो दी ही, उसको ज्ञान भी दिया और उसको मुक्ति भी प्रदान की। भगवान कृष्ण से मित्रता स्थापित कैसे करेंगे, इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर आप भगवान कृष्ण के साथ अपनी मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मित्रता के लिए ईमानदारी बड़ी आवश्यक है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अतः भगवान कृष्ण को मित्र बनाने के लिए जीवन में अपने कार्यों में ईमानदार बनिए। अपनी सारी समस्याएं, अपने दुख, अपने सुख, अपनी गलतियां उनसे मित्र की तरह कहिए। आपको कुछ समय बाद अंतर आत्मा में, आपके मन में उसका समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। और अंतर आत्मा में जो भी समाधान मिले उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण से आपकी मित्रता हो गई है तो अपनी मित्रता का दुरुपयोग मत करिए। भगवान कृष्ण से उल्टी सीधी चीजों की प्रार्थना मत करिए, मित्रता का दुरुपयोग मत करिए और मित्रता में ईमानदारी और प्रेम बनाए रखिए। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपका टूटता हुआ रिश्ता बच जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र विशेष है? क्या भगवान कृष्ण बांसुरी से भी चमत्कार करते थे? क्या भगवान कृष्ण के पास सम्मोहन की शक्ति भी थी? कौन सी हैं भगवान कृष्ण की शक्तियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: देशभर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव, मथुरा से लेकर दिल्ली तक जय कन्हैया लाल की गूंज, कान्हा की आस्था और भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु। आज दही हांडी उत्सव की धूम देखने को मिली, ह्यूमन पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ेंगे माखन की गोविंदा, नारी शक्ति का भी दिखेगा दम, गोविंदा आला रे की लगेंगे जयकारे। महाराष्ट्र के अकोला में 20,000 स्कूली बच्चों ने मिट्टी से बनाई गणपति की मूर्ति, उत्सव के साथ पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। सूरत के वेसु में भव्य गणेशोत्सव का शुभारंभ, 40,000 वर्ग में तैयार हो रहा विशाल पंडाल, इस बार 22 फीट ऊंचे गणपति बप्पा विराजेंगे। टीचर्स डे पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए देशभर के 48 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। महिला एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे, रात 8 बजे से शुरू होगा महामुकाबला, पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है भारत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर
5: नमस्कार। गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडित जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
5: तो चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय है कृष्ण भगवान के अस्त्र। कृष्ण भगवान ने अपने अस्त्रों के साथ बहुत सारी लीलाएं की हैं, इन लीलाओं के बारे में आपको बताएंगे। कृष्ण भगवान के अस्त्र क्यों खास हैं, इसके बारे में भी विस्तार से पंडित जी आपको जानकारी देंगे। आगे जाकर आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी पंडित जी देंगे, महा उपाय के बारे में भी बताएंगे, राशियों का हाल भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: भगवान कृष्ण की उपासना सामान्य जीवन में नियमित रूप से पीले फूलों से करना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो इससे संतान से संबंधित सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी।
5: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं 5 सितंबर 2026 शनिवार के पंचांग के बारे में।
0: दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रात के 9:53 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 9:30 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:18 तक। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान के अस्त्रों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम प्रश्न उठता है वो ये है कि कृष्ण की महिमा क्या है। कई लोगों को इसके

0: का रहस्य क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि भगवान कृष्ण की महिमा क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के बड़े सारे अवतार हैं, लेकिन श्री हरि के अवतारों में यही संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण को अलौकिक देव कहते हैं, और आप पूरी कृष्ण लीला पढ़िए, श्रीमद् भागवत में, हरिवंश पुराण में, गर्ग संहिता में, महाभारत में, हर समय इन्होंने अपने भगवान होने का परिचय दिया है। हर रूप में श्री कृष्ण अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए उन्हें कृष्ण कहा जाता है। कर्षयते इति कृष्णः, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे वो कृष्ण है। हर रूप में वो भक्तों की समस्याओं को हर लेते हैं और उन्हें मुक्ति मोक्ष का वरदान देते हैं। सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम ब्रजह अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण का आश्वासन है कि जो भक्त सब कुछ त्याग करके उनकी शरण में जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण की लीलाओं में उनके बड़े सारे अस्त्र हैं, जिनसे उन्होंने अपनी लीलाएं की हैं, परंतु उनके तीन अस्त्र विशेष प्रभावशाली हैं, सुदर्शन चक्र, बांसुरी और सम्मोहन। इन तीनों का सही समय पर सटीक प्रयोग करके उन्होंने पापियों को दंड दिया और धर्म की स्थापना की। सुदर्शन चक्र से, बांसुरी से और सम्मोहन से उन्होंने अपनी बड़ी सारी लीलाएं की हैं।
1: चलिए, इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न पंडित जी से आगे जाकर पूछेंगे। आते हैं राशिफल पर, और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी आपको बताएंगे कैसा रहने वाला है। बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों के, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की रुकावट दूर होगी, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना।

0: मिथुन राशि धन लाभ के योग हैं, नौकरी में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल आपसे ये है कि जैसे बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट हमें भी ये जानकारी है, बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या है, इसकी महिमा क्या है, क्यों खास होता है ये सुदर्शन चक्र, ये विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे।
0: सबसे पहले बात करते हैं सुदर्शन चक्र की। क्या है ये चक्र? जो है भगवान कृष्ण का एक विशेष तरह का घातक हथियार है और चक्र बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। विष्णु जी के चक्र का नाम है कांता चक्र, शिव जी के चक्र का नाम है भवरेंदु, लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली चक्र है सुदर्शन चक्र, जिसको केवल भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शिव जी ने किया था और बहुत सारी मान्यताएं कहती हैं कि सूर्य के तेज को कम करके, काट करके चक्र बनाया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक तरह का बूम रैंग है जो प्रहार करने के बाद वापस लौट आता है। भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में भी चक्र की पूजा की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख की और चक्र की आकृति लगाई जाए तो घर में रहने वाले लोग हर तरह की दुर्घटना से बचे रहते हैं। दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि श्री हरि के, नारायण के जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों में प्रतीक के रूप में द्वार पर एक तरफ चक्र और एक तरफ शंख की आकृति बनाई जाती है।
1: चलिए इसी के साथ राशिफल पर वापस आते हुए बारी आ गई है कर्क सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है, पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे।
0: कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

काम पूरे होंगे, करियर के मामले में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए दर्शकों के सवालों का वक्त हो चला है, इससे पहले पहले प्रश्न की तरफ बढ़ें। आपको बताएंगे कौन सा है पहला सवाल। उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आप भी बहुत सारे प्रश्न जो पूछना चाहते हैं पंडित जी से, अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। ईमेल के जरिए आप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए, और इसी ईमेल आईडी पर आपको अपने सवाल इस शो में भेजने हैं। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है?
0: जी, आज का पहला प्रश्न योगेश मिश्रा जी ने कानपुर से लिखा है। 15 जनवरी 1980 का जन्म है, 1:19 AM कानपुर। ये कह रहे हैं कि डिवोर्स का मेरा मुकदमा काफी लंबे समय से चल रहा है, कब तक छुटकारा मिलेगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? योगेश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा राहु की चल रही है। देखिए, डिवोर्स का मुकदमा आपके पक्ष में आएगा साल 2027 के अप्रैल के बाद। ये मुकदमा आपके पक्ष में हल होगा और आपको इस मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। आने वाला समय आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। फिलहाल एक ओपल बनवा करके पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनिए। रोज सुबह 108 बार ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः बृहस्पति मंत्र का जप करिए, और हर बृहस्पति वार को अगर आप केले का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पंडित जी ही आपको जानकारी देंगे कि दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का है। पंडित जी,
0: जी अगला प्रश्न सोनू कुमार भगत ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। 12 नवंबर 1983 का जन्म है, 3:35 शाम को कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर में मुश्किलें चल रही हैं, मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है, तो आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में भी मुझे दिक्कतें होती हैं और मैं बेंगलोर में सेटल होना चाहता हूं, क्या वहां कोई मकान खरीद कर मैं सेटल हो पाऊंगा? सोनू, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मकर राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, जो आपका समय चल रहा है, इस समय में जहां ट्रांसफर होता है, जहां जाना पड़ता है वहां जाइए। इस समय करियर में रिस्क लेना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। 1 साल तक आपको बेंगलोर से दूर रहना पड़ेगा, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे, लेकिन इस समय रिस्क लेना ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिए, नसों की हड्डियों की समस्या आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। जहां तक भविष्य की बात है, बेंगलोर में आप सेटल हो सकते हैं और संभवतः साल 2028 में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहनिए, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आपने माणिक्य पहना है तो बाएं हाथ की अनामिका उंगली में एक 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में मंगलवार को सवेरे धारण करिएगा, ओपल निकाल दीजिएगा, दाहिने हाथ में माणिक्य और बाएं हाथ में मूंगा पहनिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: देखिए, कृष्ण भगवान की बांसुरी के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन विस्तार से जानकारी शायद बहुत कम लोगों को होती है। तो पंडित जी, सवाल यही है कि क्या है बांसुरी और इसकी महिमा क्या है?
0: अब जानते हैं कि बांसुरी का क्या महत्व है और भगवान कृष्ण ने बांसुरी का प्रयोग किया कैसे। देखिए, श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी हैं। भगवान कृष्ण की कुंडली देखिए, तृतीय भाव का स्वामी लग्न में बैठा है चंद्रमा, तो स्वाभाविक बात है कि कला का गुण है उनके अंदर। संगीत के ज्ञाता होने की वजह से उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया है। ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे, हवा के सहारे मीठी ध्वनि, मीठी आवाज पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे और बांसुरी में जो 7 छिद्र होते हैं वो ये बताते हैं कि कृष्ण जी की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। भगवान कृष्ण मोहन विज्ञान का प्रयोग करते थे तो बांसुरी की ध्वनि से न केवल व्यक्तियों को, लोगों को, पेड़ पौधों को, नदियों को, हवाओं को, पशु पक्षियों को, सबको अपनी तरफ खींचते थे मोहन विज्ञान का प्रयोग करके। तंत्र में बड़े सारे गुण होते हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, उसमें एक विज्ञान है मोहन विज्ञान, यानी दूसरे को अपनी शक्ति से, अपनी तरंगों से आकर्षित करना, और ये तरंग वो क्रिएट करते थे बांसुरी से। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित की जाती है, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन जन्माष्टमी पर अगर बांसुरी अर्पित करें तो संतान का वरदान मिलता है और घर में जो बीम है छत की, उसके नीचे बैठना, बीम के नीचे काम करना बेवजह का तनाव देता है, तो घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का जो बुरा प्रभाव उसके नीचे बैठने वालों के ऊपर पड़ता है वो बुरा असर समाप्त हो जाता है।
1: चलिए, राशिफल की वापस बारी आ गई है और अब बारी है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: तुला राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ विवाद से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी बताइए कि हमने सुना है कि कृष्ण भगवान के पास सम्मोहन की कला थी, तो सम्मोहन की एक कला क्या है और इसकी महिमा क्या है?
0: अब जानते हैं सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म के बारे में। सम्मोहन कैसी विद्या है और भगवान कृष्ण ने इसका कैसे प्रयोग किया? देखिए, सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन को और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। जो आप जादू का खेल देखते हैं और बहुत सारी बीमारियों के मामले में सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है। विदेश में खास तौर से मानसिक बीमारियों के इलाज में सम्मोहन का बहुत प्रयोग होता है। भगवान कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन था और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम बड़ी आसानी से कर डाले। जयद्रथ का जो वध किया गया था महाभारत में, अर्जुन ने किया था, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जयद्रथ वध में क्या हुआ? कहा गया कि अगर सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध अर्जुन ने नहीं किया तो अर्जुन समाधि ले लेंगे, अग्नि में चले जाएंगे। तो क्या हुआ, एक समय दिखाई दिया कि सूर्य जो था वो छिप गया। जब जयद्रथ सामने आया तो सूर्य फिर से निकल आया, अर्जुन ने उसका वध कर दिया। अब देखिए, सूर्य को छिपाना और उगाना ये सामान्यतः परम पुरुष नहीं करते, प्रकृति के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि जब मन किया सूर्य को डुबा दिया और जब मन किया सूर्य को उदित कर दिया। नहीं, यहां पर भगवान कृष्ण ने जिस शक्ति का प्रयोग किया था उसको कहते हैं मास हिप्नोटिज्म। एक साथ बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखा कि सूर्य अस्त हो गया है, वास्तव में सूर्य जहां था वहीं था, वो अस्त नहीं हुआ था, लेकिन हिप्नोटिज्म से लोगों को ऐसा दिखा। और सम्मोहन का प्रयोग करके भगवान कृष्ण ने जयद्रथ का वध करवा दिया। जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं ना, जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके अंदर सम्मोहन का गुण अपने आप आने लगता है। जो भगवान कृष्ण के जबरदस्त भक्त होते हैं, ईमानदार भक्त होते हैं, उनके अंदर भी भगवान कृष्ण की सम्मोहिनी शक्ति आ जाती है, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर सम्मोहन की शक्ति आ जाए और आप इसका दुरुपयोग करने लगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।
1: और चलिए राशिफल के अंत की तरफ पहुंच गए हैं और बारी है मकर कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है, पंडित जी आपको बताएंगे।
0: मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं, विवाह तय हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, परिवार में विवादों से बचें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए दर्शकों के सवालों का फिर से वक्त हो चला है और पंडित जी से ही जानते हैं कि अगला प्रश्न इस शो में कौन से दर्शक ने भेजा है। पंडित जी
0: जी, अगला प्रश्न मकसूदन यादव जी ने हमें लिखा है बिहार से। अपने बेटे के लिए जानना चाहते हैं। बेटे की जन्म तारीख है 5 मार्च 2009, 4:50 शाम को, बेतिया बिहार। ये कह रहे हैं कि बार बार मेरे बेटे को चोट लगती रहती है। 2024 में उसके नाक की सर्जरी भी कराई थी, डॉक्टर फिर से सर्जरी कराने को कह रहे हैं, तो क्या आगे सर्जरी होगी दोबारा? और बेटे को बार बार चोट ना लगे, बार बार दुर्घटना ना हो, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? मकसूदन जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। इनकी कुंडली में जो मंगल केतु शनि का संबंध बना हुआ है, वो बार बार की दुर्घटनाएं, चोट चपेट, ऑपरेशन, ये सब दिखा रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि आपके बेटे के नाक की सर्जरी दोबारा होगी, लेकिन कोई बहुत चिंता जैसी बात दिखाई नहीं दे रही है। अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती बनवा करके पहनाएं और इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं, जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 5 सितंबर को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है पंडित जी, आपको बताएंगे।

0: जन्मदिन 5 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर में कोई बड़ा जोखिम मत लीजिए, धन की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी। इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो श्री कृष्ण की पूजा से गुरु की प्राप्ति कैसे होगी? इसके लिए श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनकी पूजा करिएगा। नियमित रूप से भगवान कृष्ण का ध्यान करके रोज जितना संभव हो भगवत गीता का पाठ करिएगा और भगवान कृष्ण से गुरु मिलने की प्रार्थना करिएगा, आपकी कामना पूरी होगी।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं 5 सितंबर 2026 शनिवार के शुभपहर के बारे में।
0: दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से करियर की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 5 सितंबर शनिवार शाम के 7:30 से रात के 9 के बीच में।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु सबसे ज्यादा उत्तम है। आज की गुडलक राशि है मिथुन राशि। जीवन में सफलता के लिए आपको कांसा यानी ब्रॉन्ज धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि बेहतर होगी, सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे।
1: चलिए तमाम उपायों के बारे में आज के शो से जुड़े हुए तमाम सवाल हमने पंडित जी से पूछ लिए हैं। पंडित जी ने आपको जानकारियां विस्तार से दे दी हैं, आपकी राशियों के बारे में भी बता दिया है। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जानने की। तो आज का महा उपाय इस शो से जुड़ा हुआ कौन सा है, पंडित जी से जानते हैं
0: जी।

0: मन में आकर्षण बढ़े, लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, प्रभावित हों, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके पूजा करिए और भगवान कृष्ण को चंदन का तिलक लगाइए और फिर स्वयं को भी वही तिलक अपने माथे या कंठ पर लगाइएगा। हर समय खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण नाम का कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण इस नाम का जप करते रहिएगा, आपकी आकर्षण की क्षमता में सुधार होगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस विशेष एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
0: क्या आप भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब खबर अयोध्या से, जहां पर श्री राम मंदिर में नए सीईओ की नियुक्ति हो गई है। जितेंद्र मिश्रा के सामने राम मंदिर परिसर से जुड़े प्रशासनिक और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। आपको बताते हैं जितेंद्र मिश्रा कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है, और उनके आने के बाद श्री राम मंदिर में क्या बदलाव होने वाला है।

0: अयोध्या के नए श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक और ऐतिहासिक पल आया है। देश के प्रमुख मंदिरों की ही तरह अब श्री राम मंदिर में भी CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। पहले रणक्षेत्र में देश की सेवा कर चुके भारतीय वायु सेना के पूर्व आला अधिकारी जितेंद्र मिश्र अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले CEO के रूप में धर्म क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं।
1: ये चयन समिति का धन्यवाद है, ट्रस्ट का धन्यवाद है और प्रभु श्री राम की कृपा है, उसके विषय में कुछ उससे ज्यादा कहना नहीं चाहिए।
0: जितेंद्र मिश्र उत्तर प्रदेश के ही देवरिया के रहने वाले हैं। वो भारतीय वायु सेना के रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। उन्होंने जनवरी 2025 में वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाली थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने S-400 को निशाना बनाने की पाकिस्तान की चाल को नाकाम कर दिया था। जितेंद्र मिश्र ने करीब 40 साल भारतीय वायु सेना में बिताए और अलग अलग जिम्मेदारियाँ संभाली। माना जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रणनीतियां बनाने में उनका खासा योगदान था। पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी 13 मई 2025 को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, तो उस समय पश्चिमी एयर कमान का नेतृत्व कर रहे जितेंद्र मिश्र ने ही उनका स्वागत किया था। जितेंद्र मिश्र को 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल, 2024 में अति विशिष्ट सेवा मेडल, 2013 में विशिष्ट सेवा मेडल और शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अनुशासन, सख्त फैसले लेने की क्षमता और देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के प्रति निष्ठा को देखते हुए 5500 उम्मीदवारों में से जितेंद्र मिश्र को अब अयोध्या में राम मंदिर का प्रबंधन संभालने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
1: My heart is full of gratitude and I consider myself the most fortunate person today to have been given this responsibility twice in my life. एक बार राष्ट्र सेवा के लिए और अभी श्री राम के मंदिर की और श्री राम भक्तों के लिए मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के।
0: जितेंद्र मिश्र के नेतृत्व में मंदिर की व्यवस्था में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के बाद पहली बार राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र मिश्र के कार्यभार संभालने के बाद मंदिर में कामकाज का पुराना सिस्टम बदल जाएगा। CEO के रूप में जितेंद्र मिश्र के कंधे पर कई अहम जिम्मेदारियां होंगी। सूत्रों के मुताबिक CEO मंदिर में दर्शन और वहां होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था देखेंगे। वो श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाओं, वित्तीय मामले और लेने देने, खरीद और टेंट की व्यवस्था देखेंगे। वो दान और चढ़ावे की व्यवस्था देखेंगे। पूजा पद्धति, धार्मिक परंपरा, अनुष्ठान और आध्यात्मिक विषय टेंट की धार्मिक समिति देखेगी। वहीं कर्मचारियों की तैनाती, सुविधाओं का संचालन, रोजमर्रा की प्रशासनिक व्यवस्था CEO के अधीन रहेगी। CEO सुरक्षा संबंधी तालमेल, IT और डिजिटल निगरानी के मामले देखेंगे। वो मंदिर से जुड़ी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे, निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी नजर रखेंगे। माना जा रहा है कि CEO की नियुक्ति से श्री राम मंदिर के संचालन का पूरा मॉडल बदल जाएगा। अब तक ट्रस्ट पदाधिकारी, समितियां और अलग अलग अधिकारी मिलकर मंदिर की व्यवस्थाएं संभालते रहे हैं। CEO के आने के बाद नीतिगत मामलों और कामकाज के संचालन की व्यवस्था अलग अलग होगी। अब सभी कार्यों के लिए नए सिरे से जवाबदेही तय की जाएगी। इसके लिए अब मंदिर में एक केंद्रीयकृत कार्यकारी व्यवस्था बनाई जाने की संभावना है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात करते हैं नन्हे से बाल गोपाल की। गोकुल की गलियों में मस्ती करते माखन चुराते, गोकुल की गलियों में माखन चुराते बालकृष्ण की कहानियां आज भी बेहद श्रद्धा से सुनी और सुनाई जाती हैं। दही हांडी का पर्व माखन चोर कन्हैया की उन्हीं कहानियों से जुड़ा है। देश में इस पर्व को लेकर युवाओं के बीच जबरदस्त उत्साह रहता है। खासतौर पर महाराष्ट्र में इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी दही हांडी प्रतियोगिताओं की तैयारियां काफी समय पहले से शुरू हो गई थी। चलिए आपको दिखाते हैं जन्माष्टमी से पहले मुंबई में दही हांडी को लेकर कैसा उत्साह है।

5000 साल पहले द्वापर युग में गोकुल के घर गलियों से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। माखन की मटकी फूट रही है, कान्हा माखन चुरा रहे हैं, बाल सखा के साथ मनमोहन मन भर कर माखन खा रहे हैं। सनातन धर्म की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को माखन, दही और दूध बेहद पसंद था। उन्हें माखन इतना पसंद था कि अपने सखाओं के साथ मिलकर पूरे गांव का माखन चोरी करके खाते थे। कान्हा की भक्ति में लीन संसार आज भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाता और त्योहार की तरह मनाता आ रहा है। द्वापर काल में ब्रज की महिलाओं ने कान्हा की शरारतों से तंग आकर मथे हुए माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू किया था ताकि श्री कृष्ण का हाथ वहां तक पहुंचे ना। लेकिन नटखट कान्हा की समझदारी के आगे उनकी सारी योजनाएं बेकार हो जाती थी। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन चुरा लेते थे। इसी पौराणिक कहानी से प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ।

बरसों से जन्माष्टमी के त्योहार पर देश के कई इलाकों में दही हांडी के आयोजन होते हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाले इन आयोजनों की ख्याति सारी दुनिया में फैली। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के कई दिनों पहले से इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तैयारियों की ऊर्जा से भरी ये तस्वीरें मुंबई से आई हैं, जहां गोविंदा जोर शोर से मटकी फोड़ने की तैयारी में जुटे हैं। वैसे तो जन्माष्टमी पर देश के कई इलाकों में दही हांडी उत्सव की रौनक दिखाई देती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का रंग कुछ और ही नजर आता है।

इस उत्सव के दौरान लड़कों का ग्रुप मैदान, सड़क या कंपाउंड में इकट्ठा होता है, जहां लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई पर मिट्टी की मटकी को दही, घी, बादाम और सूखे मेवे से भरकर लटकाया जाता है। ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए 9 लेयर का पिरामिड बनाया जाता है। जो लड़का पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा होता है उसे गोविंदा कहा जाता है। ग्रुप के दूसरे लड़कों को हांडी या मंडल कहकर पुकारा जाता है। हांडी को तोड़ने के लिए 3 मौके मिलते हैं। दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को इनाम दिया जाता है। पूरे दही हांडी उत्सव के दौरान लोग लोकगीतों और भजनों पर नाचते गाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन जोर शोर से होने लगा था, लेकिन राज्य में इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा साल 2022 में दिया गया। महाराष्ट्र में इस उत्सव की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया और इससे जुड़े कई नियम भी बना दिए। इन तमाम नियमों का ध्यान रखते हुए आज भी जन्माष्टमी से पहले शहर भर में गोविंदा दही हांडी की प्रैक्टिस में जुट जाते हैं। अब के साल दही हांडी उत्सव में महिला गोविंदाओं का भी धमाल है। मुंबई में टी शर्ट और शॉर्ट्स के बजाय लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने ये महिला गोविंदा इंसानी पिरामिड बनाने का अभ्यास कर रही है। जन्माष्टमी से पहले दही हांडी के लिए नारी शक्ति पूरी तरह तैयार दिख रही है।

0: कर करके ऊपर जाके जो शंकर भगवान ऊपर जाके मतलब थर रचने वाले हैं, एंड उससे पहले हम लोग डांस भी इनको करवाते ताकि जो समाज के लिए जो पारंपरिक पद्धति का जो दहेंडी होना चाहिए वैसा हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा थर न लगाते हुए 20 फुट का जो रूल है वैसे करके एक हमारा संदेश है कि सेफ्टी लेके ये सब करना ज़रूरी है।
1: के जश्न में सराबोर ये लड़कियां निर्भया महिला गोविंदा पथक की सदस्य हैं, जो इस बार लक्ष्मी रूप लेकर सुरक्षा साधनों के साथ ऊंचाई पर बांधी गई हांडी फोड़ने के लिए पिरामिड बनाने की कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं।

0: हम लोग को प्रैक्टिस करके एक महीना हो गया, हम लोग की पूरी गर्ल्स टीम है और हम लोग ने लक्ष्मी का लुक किया है। हम लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है, पूरा सेफ्टी रखा जाता है, हम लोग चार थोर लगाते हैं। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, मुझे 5-6 साल हुआ ये दहीहंडी में।
1: पिछले 2 महीनों से यहाँ मौजूद छोटी बड़ी लगभग 60 प्रतिभागी पूरे सुरक्षा साधनों के साथ बैलेंस और आपसी तालमेल पर फोकस कर प्रैक्टिस कर रही है।

0: अभी जो सेफ्टी है वो एकदम प्रॉपरली वो हैंडल करते हैं जैसे भी है चीज़ें. और फिर जैसे हमें ये बेल्ट दिया, ये टॉवल दिया है हमको अच्छे से बांध के, सो दैट हमको वहाँ पे पकड़ने के लिए प्रोटेक्ट कर सके हम एक दूसरे को. उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा है कैसे करना है, कहाँ पे पैर रखना है, कैसे बेल्ट पकड़ना है, ये सब वो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सर हम लोग को गाइड करते हैं.
1: जन्माष्टमी से पहले मुंबई में गली गली दही हांडी के रंग बिखरे हैं. उत्सव की उमंग और रौनक से सारी मुंबई सराबोर है. गली मोहल्लों चौक चौराहों पर गोविंदाओं की टोलियां निकल पड़ी हैं दही हांडी फोड़ने के लिए. कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाना शुरू किया गया था, मगर वक्त के साथ इस पर्व की आस्था और परंपरा का कलेवर बदला. उत्सव में जोश और रोमांच का रंग और गहरा हुआ, जिनके रंगों में आज केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश रंगा नजर आता है. मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: आज देश भर में दही हांडी उत्सव की धूम देखने को मिलेगी। मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने की परंपरा, नारी शक्ति का भी दिखेगा दम। गोविंदा आलारे की लगेंगे जयकारे। दिल्ली NCR में मौसम हुआ सुहावना, घने बादलों ने आसमान में डाला डेरा, कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई। महाराष्ट्र के अकोला में 20,000 स्कूली बच्चों ने मिट्टी से बनाए गणपति की मूर्ति, उत्सव के साथ पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। टीचर्स डे पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश भर के 48 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। महिला एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान आमने सामने, रात 8 बजे से शुरू होगा महामुकाबला, पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है भारत।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश भर में धूमधाम से मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का

जन्मोत्सव जय कन्हैया लाल की से गूंजा जन्मस्थान। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, कृष्ण जन्मोत्सव में भक्ति का भव्य नजारा देखने को मिला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्मस्थान में दिव्य अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कामधेनु गाय के दूध से हुआ कान्हा का दुग्ध अभिषेक। कृष्ण प्राकट्य के बाद हुआ पवित्र अभिषेक, आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु, नंद के आनंद भयो के गूंजे जयकारे। जन्माष्टमी पर पहली बार मथुरा में भव्य ड्रोन शो का आयोजन, रात में 500 ड्रोन से जगमग हुआ आसमान। ड्रोन शो के जरिए शानदार आकृतियां बनाई गई, आसमान में दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव सीएम रेखा गुप्ता ने पूजा की। दिल्ली में जन्माष्टमी पर सजा कान्हा का दरबार, पंजाबी बाग के इस्कॉन टेंपल में कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु, कान्हा के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेशन दिल्ली के द्वारका में स्थित इस्कॉन मंदिर में बड़े केक के साथ मनाया गया कान्हा का जन्मोत्सव। गाजियाबाद के इस्कॉन मंदिर में भव्य कृष्ण जन्मोत्सव, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, भजन कीर्तन से गूंजा मंदिर परिसर। चंडीगढ़ में धूमधाम से मना कृष्ण जन्मोत्सव, इस्कॉन मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु। अजमेर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर महाआरती में शामिल हुए श्रद्धालु, जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं ने की भव्य आरती। राजस्थान के राजसमंद में कृष्ण जन्मोत्सव का अद्भुत नजारा, श्रीनाथ जी को दी गई 21 तोपों की सलामी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के 108 लड्डू गोपाल मंदिर में सजा कान्हा का दरबार, दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, कान्हा के अवतार में नजर आया नन्हा बालक। भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष अभिषेक का अनुष्ठान, पंचामृत से हुआ कान्हा का अभिषेक। दूध की धार से नहाए लड्डू गोपाल, कान्हा की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, जय कन्हैया लाल की से गूंजा मंदिर परिसर। कोलकाता के इस्कॉन टेंपल में भव्य कृष्ण जन्मोत्सव, भक्तों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया, श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति में डूबा पूरा सूरत, इस्कॉन मंदिर में हजारों भक्तों ने मनाया कान्हा का जन्मोत्सव। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोरखनाथ मंदिर में की कान्हा की पूजा अर्चना। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मनाई जन्माष्टमी, पत्नी के साथ विधि विधान से कान्हा की पूजा अर्चना की। गांधीनगर में धूमधाम से मना कृष्ण जन्मोत्सव, सीएम भूपेंद्र पटेल ने कान्हा की आरती की। जयपुर में कृष्ण भक्ति में डूबे सीएम भजनलाल शर्मा, राधा सरल बिहारी मंदिर और इस्कॉन टेंपल में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भोपाल में कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आए शिवराज दंपति, अपने घर पर पूजा अर्चना की, कान्हा को झूला झुलाया और मटकी भी फोड़ी। जन्माष्टमी पर केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ के इस्कॉन मंदिर में लगाई हाजिरी, पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए। आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा दही हांडी का उत्सव, गोविंदा पथक आज फोड़ेंगे माखन की मटकी। दही हांडी पर मुंबई में उमड़ेगी भारी भीड़, ढोल ताशों के बीच बनेंगे मानव पिरामिड, गोविंदा आला रे से गूंजेगा शहर। दही हांडी में दिखेगा रोमांचक मुकाबला, दही हांडी पर इनामों की भी बरसात, मटकी तक पहुंचने की होगी जोरदार जंग। दही हांडी उत्सव में नारी शक्ति का भी दिखेगा दमखम, कई जगहों पर महिला गोविंदा भी मटकी फोड़ती हुई नजर आएंगी। जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है दही हांडी उत्सव, ढोल की थाप पर बनेगी मानव श्रृंखला, माखन की मटकी के लिए होगा महासंग्राम। महाराष्ट्र के अकोला में 20,000 स्कूली बच्चों ने शाडू मिट्टी से गणपति बनाए, बच्चों ने उत्सव के साथ पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया।
अकोला में बच्चों ने खुद अपने हाथों से

0: पति की प्रतिमाएं तैयार की, मकसद है आस्था के साथ प्रकृति को भी बचाना। बच्चों ने तय किया है कि 10 दिन पूजा के बाद गणपति का विसर्जन घर में ही करेंगे और इससे नदियों और तालाबों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। अकोला की इस मुहिम में इस बार 20,000 बच्चे जुड़े हैं। पिछले साल करीब 10,000 बच्चों ने पर्यावरण फ्रेंडली गणपति बनाए थे। अकोला में बच्चों की इस नेक पहल का साफ संदेश है, गणपति उत्सव की परंपरा भी निभे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। सूरत के वेसू में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी शुरू हो गई है। यहां 40,000 वर्ग गज में महल जैसा विशाल पंडाल तैयार हो रहा है। इस बार सूरत में 22 मीटर ऊंचे गणपति बप्पा विराजेंगे। खास बात है कि मूर्ति 700 किलो टिश्यू पेपर से बनाई जा रही है। गणेश उत्सव में रोज करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। भीड़ को देखते हुए दर्शन और आने जाने की खास व्यवस्था की जा रही है। गणेश उत्सव में पूजा के साथ समाज सेवा का भी संदेश दिया जाएगा। वृद्धाश्रम और शेल्टर होम के लोगों का सम्मान और हेल्थ चेकअप होगा। गणेश उत्सव के 11 दिनों में भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसाद की व्यवस्था होगी। हेल्थ चेकअप में बीमारी मिलने पर जरूरतमंदों के इलाज में भी समिति मदद करेगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षकों को मिलेगा सम्मान। 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए उत्कृष्ट शिक्षक। शिक्षकों के योगदान को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। विज्ञान भवन में जुटेंगे देश भर के शिक्षक। शिक्षकों की मेहनत और समर्पण को सम्मान। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की 138वीं जयंती। हापुड़ के शिक्षक अमित शर्मा का बड़ा सम्मान। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए चयन किया गया। आज गोरखपुर में मिलेगा सम्मान। हापुड़ को पहली बार मिला ये गौरव। अमित शर्मा जिले के पहले माध्यमिक शिक्षक जिन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मोतिहारी में बापूधाम महोत्सव का भव्य समापन हुआ। डीएसपी अभिषेक कुमार ने बांसुरी की धुन से ऐसा समा बांधा कि पूरा गांधी मैदान तालियों से गूंज उठा। बापूधाम महोत्सव के समापन पर मोतिहारी के डीएसपी अभिषेक कुमार ने शानदार बांसुरी बजाई। छठी मैया की धुन सुनकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। 3 दिन चले बापूधाम महोत्सव में नामचीन कलाकारों के बीच डीएसपी अभिषेक कुमार की बांसुरी ने महफिल लूट ली। जन्माष्टमी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। कैदियों को सजा में मिलेगी 1 महीने की छूट। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सीएम शिवेंदु अधिकारी ने मुलाकात की। आध्यात्मिक गुरु का अभिवादन किया। भारत का पुस्तक प्रकाशन बाजार 2030 से 31 तक 2,00,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। इंडिया बुक मार्केट रिपोर्ट 2026-30 में सामने आया आकलन। नेपाल बाढ़ त्रासदी में अब तक प्रभावित इलाकों से 13,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन। युद्ध स्तर पर जारी है खोज और बचाव अभियान। भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक भेजी करीब 95 टन राहत सामग्री। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली। कई इलाकों में तेज गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ दिल्ली एयरपोर्ट। हालांकि कुछ घंटों में स्थिति हुई सामान्य। बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के कई इलाकों के साथ साथ ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश हुई। लगातार बारिश दिल्ली की सड़कों पर यातायात की थमी रफ्तार। कई जगहों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली और आसपास के इलाकों से आई जलजमाव की तस्वीरें, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। महिला एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान आमने सामने। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। भारत की नजर जीत की हैट्रिक पर। थाईलैंड और हांगकांग को दे चुका है मात। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बढ़ा रोमांच, टीम इंडिया के पास जीत के साथ ग्रुप स्टेज खत्म करने का मौका। कैप्टन हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भारत पहले ही एशिया कप की सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। लगातार दो जीत से अंक तालिका में 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है टीम इंडिया, भारत पाकिस्तान मैच पर टिकी क्रिकेट फैंस की नजर। चाइना में बनाई गई बुजुर्गों को गिरने से होने वाली चोटों से बचाने के लिए एंटी फॉल एयरबैग जैकेट, बीजिंग में केयर एंड रिहैबिलिटेशन एक्सपो चाइना 2026 में प्रदर्शित की गई। इस जैकेट में शरीर की गतिविधियों और मुद्राओं को ट्रैक करने के लिए लगे हैं 2 सेंसर, जो 0.15 सेकेंड में एयरबैग खोल देता है, जिससे गिरने पर कुशन जैसा बचाव मिलता है। ब्राजील में ओजी ऑसबोर्न प्रिंस ऑफ डार्कनेस भूल भुलैया लॉन्च हुई, तो वहीं यूनिवर्सल स्टूडियोज के हैलोवीन हॉरर नाइट्स अनुभव का हिस्सा है ये भूल भुलैया। भूल भुलैया के अलावा यहां टेरर ट्राम राइड और स्टंट शो द पर्ज डेंजर वाटर्स भी आकर्षण का केंद्र बना, 1 नवंबर तक चलेगा यह भूल भुलैया। वेनेजुएला में लोगों ने पिज्जा बनाने के हुनर का प्रदर्शन किया, जीतने वाले को वर्ल्ड पिज्जा चैंपियनशिप 2027 में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाएगा इटली। चाइना के सिचुआन में सदियों पुरानी लालटेन कला आज बन गई है बड़ी कारोबार, तो वहीं जेगोंग की रंगीन लालटेन अब दुनिया के 19 देशों में शहरों को रोशन कर रही है। दवाइयों की बोतल, चीनी मिट्टी के टुकड़े और पुरानी सीडी से शानदार लालटेन बनाई जा रही है, यानी बेकार चीजों को कलाकार अपनी कल्पना से चमकदार कला में बदल रहे हैं। साल 2025 में जिगोंग की लालटेन 85 शहरों की 112 बड़ी प्रदर्शनियों में पहुंची, इससे चाइना को $8 करोड़ से ज्यादा का निर्यात कारोबार मिला। 22 मीटर ऊंची ट्री ऑफ लाइफ लालटेन ने इंटरनेट पर मचा दिया तहलका, लेजर धुंध और विशाल आकार ने इसे ऐसा बनाया जैसे लोग सपनों के जंगल में पहुंच चुके हों। कलाकार अब लालटेन में एआई और मशीनों का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं, भविष्य में लालटेन आंखें झपकाएंगी, हिलेंगी और सांस लेने जैसा एहसास भी देंगी। चोंगकिंग की एनिमल पार्क में 4 शेरों के बच्चे और 1 बाघ का बच्चा स्कूल पहुंचे, सबने घास पर खेला, दौड़ लगाई और फिर दूध मांस की दावत उड़ाई। स्कूल के पहले दिन शावकों ने खूब मस्ती की, पार्क का मकसद इन्हें स्वस्थ रखना और इनके अंदर के जंगली गुण मजबूत करना है। लॉन पर शेर और बाघ के शावक एक दूसरे के पीछे भागते हुए दिखे, कभी दौड़े कभी लोटे और धूप में आराम भी किया। खेल खत्म होते ही बच्चों के लिए ताजा दूध और मांस परोसा गया, भूखे नन्हे शेर और बाघों ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। पार्क में इन बच्चों को खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इससे वे बड़े होकर अपनी प्राकृतिक शिकार वाली आदतों को नहीं भूलेंगे। किर्गिस्तान में वर्ल्ड नोमैड गेम्स का रोमांच देखने को मिल रहा है, 104 देशों के खिलाड़ी घुड़सवारी और तीरंदाजी जैसे खेलों में दम दिखा रहे हैं। घोड़े पर सवार तीरंदाजों ने हवा की रफ्तार से निशाना साधा, दौड़े घोड़े से तीर चलाने का यह खेल सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। किर्गिस्तान में कोक बोरो खेल ने भी खूब रोमांच दिखाया, घुड़सवार टीमों ने बकरी की नकली खाल को गोल में डालने के लिए जोर लगाया। नोमैड गेम्स में ताकत का मुकाबला भी देखने को मिला, कई देशों की टीमों ने रस्साकशी में पूरी ताकत झोंक दी। इस गोल महोत्सव में पुरानी परंपराएं भी दिखाई गईं, कहीं सुनहरे बाज से शिकार हुआ तो कहीं जानवर की हड्डी तोड़ने का मुकाबला। अमेरिका के ऑस्टिन में टेस्ला ने बिना स्टेयरिंग और पैडल वाली साइबर कैब चलाना शुरू किया, कभी इसे शहर के कुछ इलाकों में ही चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसी ने टेस्ला की नई साइबर कैब पर नजर रखनी शुरू कर दी है, एजेंसी दिख रही है कि कार सुरक्षा नियमों पर खरी उतरती है या नहीं। इलॉन मस्क साइबर कैब को टेस्ला के भविष्य की बड़ी गाड़ी मानते हैं, उनका लक्ष्य ऐसी कारों का बड़ा नेटवर्क बनाना है जो बिना ड्राइवर के चलेंगे। टेस्ला ने जून 2025 में ऑस्टिन से रोबो टैक्सी सेवा शुरू की थी, अब ये सेवा टेक्सास और फ्लोरिडा के कुछ और शहरों तक पहुंच गई है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों को दुनिया भर में कड़ी टक्कर मिल रही है, खासकर चाइना की कंपनियों से, ऐसे में कंपनी को बिना ड्राइवर वाली कारों से भविष्य की बड़ी उम्मीद है। हंगरी में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, अगस्त अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। औसत तापमान 24.9 डिग्री पहुंचा और सूखे ने भी हालात बिगाड़ दिए। हंगरी में अगस्त के दौरान सिर्फ 15.6 मिलीमीटर बारिश हुई, 1901 के बाद से चौथा सबसे सूखा अगस्त रहा। 2026 की गर्मी फ्रांस के इतिहास की सबसे भीषण गर्मी घोषित हुई, मौसम विभाग ने रिकॉर्ड तापमान की पुष्टि की है। जलवायु संकट पर फ्रांस की चिंता बढ़ी, सरकार और बढ़ती गर्मी से निपटने की तैयारी कर रही है, इसके लिए लंबे समय की योजना और निवेश पर जोर दिया जाएगा। यूरोप में बढ़ती गर्मी का असर, हंगरी का सूखा और फ्रांस के रिकॉर्ड तोड़ गर्मी खतरे की घंटी बनी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बदलता मौसम बड़ी चुनौती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक भी कर जाएंगे।
3: तरक्की की दौड़ में आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि कई बार अपनों के लिए वक्त निकालना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन माँ बाप के लिए प्यार और सम्मान की ये तस्वीर दिल छू लेती है। बांके बिहारी मंदिर से सामने आए वीडियो में एक बेटा अपनी माँ को बड़े से बर्तन में बैठाकर दर्शन कराने ले जा रहा है। माँ के प्रति बेटे का ये समर्पण देखकर लोग भावुक हैं और सोशल मीडिया पर इस बेटे की जमकर तारीफ कर रहे हैं। भक्ति और मासूमियत का ऐसा संगम जिसे देखकर नजरें ठहर जाए। यह नन्ना सा बच्चा कृष्ण के रूप में सजा है। वासुदेव जी की तस्वीर को अपने शरीर पर लगाकर और माथे पर नाग की आकृति सजाकर बाल गोपाल का रूप धारण किया है। बच्चे की मासूम अदाएं और चेहरे की प्यारी मुस्कान हर किसी का दिल जीत रही है। वीडियो सामने आने के बाद लोग से नन्हा कान्हा कह रहे हैं और इसकी क्यूटनेस की खूब तारीफ कर रहे हैं। क्यूटनेस की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इस वीडियो में एक लड़की और पांडा साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि लड़की के पैर में चोट लगी है और वो जिस तरह कदम बढ़ा रही है, पांडा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उसके साथ कदम मिलाता नजर आ रहा है। पांडा की ये मासूम हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और इस प्यारी बॉन्डिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। कद छोटा हो सकता है लेकिन हिम्मत और दिमाग की कोई सीमा नहीं होती। अब इस छोटी सी बच्ची को ही देख लीजिए। बाइक पर बैठने के लिए बच्ची ने ऐसा तरीका निकाला कि देखने वाले भी हैरान रह गए। बाइक पर सीधे चढ़ने के बजाय बच्ची पीछे की तरफ से पैर रखकर सीट पर बैठ जाती है। उसका ये तरीका देखकर लोग उसकी समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्ची का वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है। ये छोटे छोटे हाथ आज अपने लिए नहीं नेपाल के लिए दुआ कर रहे हैं। त्रासदी के बाद मासूम बच्चों ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर सबकी सलामती की प्रार्थना की। चेहरों पर मासूमियत है, आंखों में उम्मीद है और दिल में भरोसा कि भगवान उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। एक साथ खड़े इन बच्चों की तस्वीर हर किसी को भावुक कर रही है। मुश्किल वक्त में मासूम दिलों से निकली ये प्रार्थना इंसानियत और उम्मीद की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रही है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: क्या आप भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: आज देश भर में दही हांडी उत्सव की धूम, मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने की परंपरा, नारी शक्ति का भी दिखेगा दम, गोविंदा आला रे के लगेंगे जयकारे। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहावना, घने बादलों ने आसमान में डाला डेरा, कई इलाकों में रिमझिम बारिश। महाराष्ट्र के अकोला में 20,000 स्कूली बच्चों ने मिट्टी से बनाए गणपति की मूर्ति, उत्सव के साथ पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। टीचर्स डे पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश भर के 48 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। महिला एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान आमने सामने रात 8 बजे से शुरू होगा महामुकाबला, पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है भारत।

नमस्कार, जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। देश भर में मुरली मनोहर नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा चुका है और अब अवसर आया है माखन चोर मुरारी की लीलाओं से जुड़े उत्सव का। आज महाराष्ट्र सहित देश के तमाम इलाकों में दही हांडी उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, मुंबई की गली गली में इसके रंग देखने को मिल रहे हैं और जोर शोर से इसे आज मनाया जाने वाला है। दोपहर से रात तक उत्सव और जोर पकड़ेगा, जब जगह जगह पर गोविंदाओं की टोलियां माखन की मटकी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाएंगी और अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगी। नागपुर में तो बीती रात ही उस उत्सव के रंग देखने को मिले। नागपुर का बडकस चौक दही हांडी के रंग में रंगा हुआ नजर आया। डीजे और ढोल ताशों की गूंज और गोविंदा पथकों के जोश से पूरा इलाका उत्साह से भर गया। वहीं गोविंदा पथकों के इस जोश और जज्बे को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बडकस चौक पहुंचे। मुंबई में भी आज तमाम जगहों पर नेता हों, अभिनेता हों और सेलिब्रिटीज इस उत्सव में शामिल होकर गोविंदाओं का जोश बढ़ाने वाले हैं। हरियाणा के करनाल तक दही हांडी उत्सव का उल्लास देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, करनाल में स्थित सेवा भारती आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में किशोरों ने दही हांडी उत्सव में हिस्सा लिया और हांडी फोड़ी, लेकिन अभी इस उत्सव का असली रंग बाकी है। मुंबई में आज दिन भर बल्कि दिन से रात तक इस उत्सव के रंग दिखेंगे और हम भी आपको जीएनटी पर इसकी तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे।

0: मुंबई के कोने कोने में दही हांडी की तैयारियां चल रही हैं। मुंबई के कई इलाकों में दही हांडी कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी ने, सुनवाते हैं आपको।
1: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज दही हांडी का उत्सव जो है बड़े ही जोर शोर से मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मुंबई के दादर विभाग में है, जहाँ पर दही हांडी की पूरी जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो आकर दही हांडी फोड़ती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होगी, लड़कियां दही हांडी फोड़ेंगी। हमारे साथ कुछ ऐसी महिला मंडल है जो दही हांडी यहाँ पर फोड़ेगी। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे, उत्साह है दही हांडी को लेकर?
2: बहुत ज्यादा हम लोग एक्साइटेड है। ये श्री साई दत्त मित्रा मंडल के यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं। ये माना ची हंडी फोड़ा है, हम लोग ये हंडी फोड़ने के लिए हर साल आते हैं यहाँ पे। और देख सकते हो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और हम लोग हर साल मतलब ये दिन के लिए बहुत वेट करते हैं।
1: क्या कैसे लग रहा है?
2: बहुत अच्छी है, हर साल होती है, हर साल एंजॉय करते हैं हम लोग।
1: आपको डर लगता है दही
3: हांडी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उतने ही मतलब स्ट्रांग है, जिद्दी है, और बहुत मतलब वेट करते हैं आज के दिन के लिए। जो भी हम हमारे पता की लड़कियां है, और जो भी हमारी तरह जो भी प्लेयर है मतलब हमारे महाराष्ट्र में, वो मतलब हम हमारी संस्कृति परंपरा चलाते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं आज का दिन, बहुत एंजॉय करते हैं।
1: बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डर नहीं लगता, एक प्रेरणा है जो इनको मिलती है, और इसी वजह से इतनी ऊंची हंडी लगाकर ये जो है दही हांडी फोड़ते हैं। और इस हर साल और इस साल भी ऐसा ही कुछ नजारा यहाँ पर थोड़ी ही देर में देखने को मिलेगा। कैमरामैन मंदार चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।
0: देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, किस तरह से दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह से यहाँ पर महिलाएं हों, यहाँ पर बच्चे हों, पुरुष हों, हर कोई तैयार है, उत्साहित नजर आ रहा है दही हांडी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। महिला पिरामिड बन रहे हैं यहाँ पर, दूसरी ओर पुरुषों के पिरामिड्स बन रहे हैं, मानव पिरामिड्स में यहाँ दही हांडी कार्यक्रम में यहाँ पर दही हांडी फोड़ी जाएगी। और इसके लिए हर किसी में खासा जोश, उत्साह, उल्लास देखने को मिल रहा है। मुंबई में हर बार की तरह कुछ इस तरह की तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर महिलाओं ने मानव पिरामिड बनाया और दही हांडी का कार्यक्रम यहां पर हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, झूमते गाते हुए नाचते हुए लोग यहां पर आपको दिखाई देंगे। हर ओर यहां पर तमाम गलियां पटी हुई हैं दही हांडी कार्यक्रम में, लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। आला रे गोविंदा आला के यहाँ पर जयकारों के साथ हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है, हर कोई झूमता हुआ गीतों की धुन पर यहाँ पर झूमता हुआ नजर आ रहा है। जन्माष्टमी का पर्व कल मनाया गया और आज दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और कई ऐसी तस्वीरें मुंबई के कोने कोने से निकल कर सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। दही हांडी फोड़ने के लिए लोग यहाँ पर कितने उत्साहित हैं, इसकी झलक पाने के लिए लोग किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, वो तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर जो तमाम गलियाँ हैं वो पटी हुई हैं लोगों से। देश भर के तमाम हिस्सों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपेश मुंबई से जुड़ चुके हैं। दीपेश, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह से हर बार की तरह मुंबई में मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें दही हांडी कार्यक्रम के सामने आती हैं, इस बार की क्या तस्वीरें दिखाई है?
1: मुंबई में हांडी फोड़ने की शुरुआत होती है, और पहली हांडी जो है वो लड़कियों द्वारा तोड़ दी गई है, अब दूसरी हांडी लगाई जा रही है, जिसे अब जो लड़कियों का दूसरा दल है तेजस्विनी महिला मंडल, उनके द्वारा इस हांडी को फोड़ा जाएगा। और इसके बाद से यहां से मुंबई में हांडी फोड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। पिछले 53 सालों से जो है ये प्रथा इसी तरीके से निभाई जा रही है। यहाँ पे हर साल लड़कियां आती हैं, उनका दल आता है और हांडी फोड़ते हैं। आप देख सकते हैं पूरी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर रहते हैं, ताकि किसी को कोई चोट न लगे। और सबसे अहम बात जो इस हांडी की यह है कि जो उत्साह है वो इतने सालों से वही है, वो कम नहीं हुआ है। कुछ लड़कियों से हम बात करेंगे, कैसा लगता है, क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी?
5: बहुत अच्छा, नहीं डर तो नहीं लग रहा है।
1: कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पे?
5: हम लोग पिछले 10 सालों से तो आ ही रहे हैं।
1: क्या फीलिंग्स है?
6: कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हर साल हम लोग यही करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज की तो फीलिंग ही अलग होती है, जैसे कि कृष्ण जी का जन्म हुआ है तो ऐसा भावना रहती है कि अरे अभी तो हंडी फोड़नी है यहाँ आके।
1: क्या चीज आपको मोटिवेट करती है, क्या चीज आपको?
6: मतलब ये लड़की लोग का जो जोश है वही हम लोग को मोटिवेट करता है बहुत।
1: बिल्कुल, तो जैसे कि देख सकते हैं उत्साह जो है वो हर साल बढ़ते जाता है। मोटिवेट ये लड़कियां अपने आप से होती रहती है, और सिर्फ अपने आप से नहीं होती, दूसरों को भी करती रहती है, और यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पर जो पहली हंडी थी वो जॉली स्पोर्ट्स क्लब की जो महिलाएं थी उनके द्वारा फोड़ी गई, अब दूसरी हंडी जो है वो तेजस्विनी महिला मंडल इनके द्वारा तोड़ी जाएगी। और खूब भरपूर जोश इन लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं सारे, आप लोग की उम्र कितनी है और आप पढ़ाई करते हैं?
6: हो गया पढ़ाई 25।
7: हम जॉब करते हैं अभी।
4: मेरी 19 है, मैं पढ़ाई करती हूं अभी।
6: जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, मैं कॉलेज स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर।
7: हमारे यहाँ पे गर्ल्स है, वुमन्स है, सब है, मतलब जॉब करते हैं सब, छोटे बच्चे।
1: बिल्कुल, तो देख सकते हैं हर उम्र के तबके के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, हर एक के इसमें वो जोश जो है, वो जज्बा जो है, वो वही कायम है, ना डर है।
0: बिल्कुल दीपेश, और आपके साथ यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं, जरा उनसे ये भी जानिएगा कि किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की बातों का ध्यान रखना होता है। जब मानव पिरामिड बनाया जाता है तो लड़कियों को किस तरह की चीजों का ध्यान रखना होता है?
1: जी बिल्कुल, जब आप पिरामिड बनाते हैं तो सुरक्षा का ध्यान कैसे रखते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं आपकी तरफ से?
7: नहीं, हमारा एम ही यही रहता है कि एक भी लड़की नीचे नहीं आनी चाहिए, तो हमारा सब पूरा क्राउड है ना वही सेफ रहता है।
6: और 14 इयर्स के नीचे की लड़की लोग ऊपर नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग बहुत ये करते हैं, सेफ्टी यूज करते हैं।
1: तो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनकी तरफ से कोई ध्यान रखा जाता है?
6: हाँ, रखा जाता है, वो हेलमेट देते हैं, सब देते हैं।
1: बिल्कुल, तो जो सुरक्षा का ध्यान है वो पूरा रखा जाता है। और जैसे आपने सुरक्षा की बात की तो मैं आपको दिखाऊं, ये जो मैट है ये यहाँ पर बिछाया गया, आप देख सकती हैं, ताकि अगर कोई ऊपर से गिरता है तो फिर उसे चोट ना लगे। ये मैट जो है वो यहाँ पर बिछाया गया है, और साथ ही जो ऊपर के पिरामिड पर चढ़ते हैं उन्हें एक सेफ्टी बेल्ट दिया जाता है, हेलमेट दिया जाता है, और इस तरह की प्रिकॉशन रखी जाती है। और जब ये लड़कियां ऊपर चढ़ती हैं तो नीचे अगल बगल में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, ताकि अगर ऊपर से कोई गिरे तो उन्हें पकड़ सके, किसी को चोट ना लगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से दोबारा जो दूसरी हंडी फोड़ने की तैयारी जो है वो इन लड़कियों द्वारा शुरू कर दी गई है। यहाँ पर दूसरी हंडी लगी है, इसे इन लड़कियों द्वारा फोड़ा जाएगा, उसका प्रयास किया जाएगा। और जैसा कि हमने कहा कि उत्साह यहाँ पर चरम पर है, हर साल ये उत्साह जो है इसी तरह
0: बिल्कुल
1: दो गुना तीन गुना।
0: और आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए और साथ साथ बताते रहिए, जिस तरह से यहाँ पर नारी शक्ति का परिचय भी दिया जा रहा है, यहाँ पर महिलाएं पहुंच रही हैं। क्या ये कोई प्रतियोगिता होती है, अलग अलग महिला मंडली यहाँ पर पहुंचती हैं? और मुंबई के और किन किन हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है?
1: जी, मैं अपने कैमरामैन मंदार से कहूंगा, वो आपको तस्वीरें दिखाएं। और जैसा कि आपने कहा कि क्या कोई प्रतियोगिता होती है, तो देखिए यहाँ पर जो महिला मंडल है मुंबई से और मुंबई के आसपास के इलाकों से, वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आता रहता है, वो यहाँ पर दहीहंडी फोड़ने के लिए आता है। और जैसा कि हमने कहा कि 53 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत भी, इसकी जो शुरुआत की कहानी है, शुरू होने की कहानी है, वो भी काफी अपने आप में रोचक है। हम उन्हीं से जानेंगे जो यहाँ पर आयोजक है, उनसे जानेंगे। सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी हंडी की, और महिलाएं हंडी फोड़े, लड़कियां हंडी फोड़े, ये कैसे शुरू हुआ?
8: एक्चुअली इसकी शुरुआत जो हुई 35 साल पहले, हमारे मंडल के जो अध्यक्ष है कैलाशवासी श्री प्रवीण भाई गांवकर जी, वो कुरला में गए थे, वो एक्चुअली समाज सेवक थे, वो कुरला में जो गए थे तो वहां पे कुरला में एक लोकल जिम्नेशियम के उद्घाटन में वो गए थे, और वहां पे एक महिला गोविंदा पथक था जो कि प्रैक्टिस कर रहा था। वो टाइम पे महिला गोविंदा पथक होते नहीं थे, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे थे नए कहीं जाने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो तो बाहर क्यों नहीं आते कहीं? तो उन्होंने बोला कि महिलाओं को सुरक्षा कौन देगा और उन्हें को चांस कौन देगा? तब भाई ने बोला कि हमारे यहाँ पे हंडी होता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपकी सुरक्षा और आपको चांस हम लोग देंगे। और 35 सालों से यहाँ पे महिला गोविंदा पदक होता है। और मैं ये मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि मुंबई की सबसे पहली हंडी, मतलब जो शुरू होती है वो यहाँ पे होती है। सबसे पहली मुंबई की हंडी यहाँ पे फोड़ी जाती है। जैसे कि आपने पहले देखा यहाँ पे एक जॉली फोटो स्टूडियो जॉली क्लब आए थे, जॉली स्पोर्ट्स क्लब, वो महिलाओं की हंडी फोड़ के चले गए। ये दूसरा महिला गोविंदा पदक है। उसके बाजू में जो है अपने वो पुरुष की है। तो यहाँ पे 35 सालों से महिला गोविंदा पदक आके हंडी फोड़ता है और ये हमें बताने में बहुत खुशी होती है सर।
1: सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से होता था कि किसी को चोट ना लगे, कोई इंजरी ना हो?
8: सुरक्षा के हिसाब से जो भी नॉर्म्स हमारे गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट है, यहाँ पे उपलब्ध किया गया है। आप स्टेज के राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, हम फॉर्म फिल करवा के लेते हैं। फॉर्म में भी हमारा एक ये होता है कि आपका जो सबसे ऊपर जाने वाला जो भी महिला या फिर पुरुष गोविंदा है, छोटे बच्चे है, उनका वह आयु 14 वर्ष के आगे होना चाहिए। 14 वर्ष के अगर नीचे होता है तो हम लोग उनको अलाउड नहीं करते। उनके बाद उन्हें सेफ्टी हेलमेट पहनना जरूरी होता है, उनका जैकेट पहनना जरूरी होता है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और सुरक्षा की अगर बात की जाए महिला सुरक्षा के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला सुरक्षा रक्षक, मतलब प्राइवेटली जिसको हम लोग बाउंसर कहते हैं, वो भी यहाँ पे तैनात है कि ताकि किसी को कुछ दिक्कत ना हो या फिर कोई मतलब दुखापत ना हो इसके वजह से।
1: हर साल किस तरीके से जोश होता है कि हर साल महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है, महिलाओं मंडल जो है, दल जो है, वो हंडी फोड़ने के लिए ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, इसमें किस तरीके का ट्रेंड है?
8: देखिए, आजकल हम सबको पता है कि महिलाएं कोई भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। मतलब अगर खाना रसोई से लेके हम लोग अगर एस्ट्रोनॉट तक भी देखें तो हर जगह पे महिलाएं सब ये जगह पे जा रही है, तो ये क्षेत्र क्यों पीछे रहेगा? तो इसी वजह से महिला, और अगर आपको सुरक्षा इतनी खास मिल रही है, आपको सब चीजें आपको ध्यान में दिखे गई आपके, तो क्यों नहीं आगे आए? तो यही हमारा मोटिव है। एक्चुअली अगर मैं बताने जाऊँ कि जिनका मैंने अभी नाम लिया, हमारे प्रवीण भाई गांवकर, ये अध्यक्ष थे हमारे, लेकिन अभी वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। लेकिन ये जो मंडल अभी चलाते हैं, वो भी खुद एक महिला है, उनकी बेटी है गौरी गांवकर, वो अभी ये मंडल चलाती है। तो वो भी हमें एक ये है कि मतलब हमारे लिए गौरव की बात है कि महिला ही है जो ये मंडल चलाती है और ये महिला दही हंडी का आयोजन करती है।
1: बिल्कुल, तो देख सकते हैं लड़कियां जो हैं अब तैयारी कर रही हैं हंडी फोड़ने के लिए। अब यहाँ पर पिरामिड बनाया जाएगा, जो हंडी है वो फोड़ी जाएगी। 5 पिरामिड का ये जो है ये हाइट है। इसके पहले भी इसी हाइट पर जो पहले लड़कियों का मंडल आया था उन्होंने फोड़ी थी, और अब ये दूसरा जो मंडल है लड़कियों का, दूसरा जो दल है, वो ये हंडी फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और लड़कियों से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें? जैसा कि आपने कहा कि जो लड़कियों और आदमियों के बीच की समानता है, उसका एक उत्तम उदाहरण यहाँ पर
8: जरूर
1: मिलता है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे?
8: मैसेज यही रहेगा कि महिला सक्षमीकरण जो हो रहा है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, या पुड़े है तुम्हें, सो लेडीज ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हो या फिर मतलब महिला या लड़कियां हो, वो अपने आप की अंदर के हुनर को पहचाने, अपने आप को आगे लेके जाए और साथ ही अपने समाज को और अपने देश को आगे लेके जाए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आसपास में एक घेरा बना दिया गया है जहां पर लोग खड़े हैं ताकि अगर कोई गिरता है तो उसे पकड़ा जा सके। और ये 5वें पिरामिड पर जो है वो लड़की चढ़ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं हेलमेट पहन चुका है। और अब ये दूसरी हंडी जो है वो फोड़ने जा रही है। तेजस्विनी महिला मंडल द्वारा ये हंडी फोड़ी जा रही है, और इसके पहले उन्होंने एक सलामी दी थी, और ये जो दूसरी हंडी है वो इस मंडल द्वारा फोड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं
0: जी, बिल्कुल, बहुत उत्तम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दीपेश,
1: महिलाओं की फूट चुकी है मुंबई के दादर इलाके में। जी
0: जी, आप दिखाते रहिए तस्वीरें, और बहुत उत्तम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर मानव पिरामिड कितनी शानदार तरीके से बनाया गया है बिना किसी चूक के, और एक बार में यहाँ पर दही हांडी फोड़ी गई है। तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लोग भी अगर आसपास मौजूद हैं उनके रिएक्शंस भी लेते रहिए। देखिए दीपेश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
1: जी जी बिल्कुल, देखिए दूसरी हांडी जो है वो फोड़ने में महिलाएं जो हैं, ये लड़कियां जो हैं, वो कामयाब रही हैं, और ये दूसरी महिला दल हंडी है, जो महिला दल द्वारा हंडी फोड़ी जा चुकी है। यहाँ पर जो है नारे लगाए जा रहे हैं, भगवान का जय जयकार किया जा रहा है, और अब समय है झूमने का, अब समय है नाचने गाने का। यहाँ पर उत्साह में आपके कोई कमी नहीं होगी। पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है, सुरक्षा से लेकर उत्साह बढ़ाने तक के इंतजाम है यहाँ पर। और ये पिछले 2 से 3 महीनों की मेहनत होती है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के दिन हांडी है तो आज आई है और ये हांडी इन्होंने फोड़ी है। ये लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार 2 महीने 3 महीने जन्माष्टमी के पहले से इसकी प्रैक्टिस शुरू होती है। और काम अपने काम पर से आने के बाद या अपने पढ़ाई से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद जो है वो प्रैक्टिस करती हैं रोज शाम को अपने अपनी जगहों पर, और इसके बाद ही पूरी सुरक्षा के साथ इतनी सटीकता के साथ जो है ये पिरामिड लगाने में इनको कामयाबी मिलती है। और देख सकती हैं किस तरीके से जोश है यहाँ पर, कंधे पर लेकर जो है एक दूसरे को यहाँ पर डांस किया जा रहा है। जोश है वो, उत्साह है वो मनाया जा रहा है। और यहाँ पर यहाँ
0: जी बिल्कुल
1: आप देख सकते हैं लड़कियों में कितना उत्साह है, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो प्रैक्टिस थी वो कहीं ना कहीं सफल हुई है, वो आज कामयाब हुई है। और अब यहाँ से जैसे कहते हैं कि लड़कियां जो हैं या औरतें जो हैं वो घर लक्ष्मी होती हैं, और यहाँ पर हंडी फोड़ने के बाद अब मुंबई में अन्य जगहों पर हंडी जो है वो फोड़ी जाएगी, वो वहाँ पर हंडी फोड़ने के लिए जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं
0: इस बारे में भी बताइएगा कि कुल मिलाकर यहाँ पर
1: लगातार मुंबईकरों का उत्साह
0: जी, कितनी मंडलियां यहाँ पर पहुँचती हैं और कब तक ये कार्यक्रम जारी रहता है?
1: बिल्कुल, ये कार्यक्रम जो है सुबह से शुरू हो जाता है, सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत होती है और 9 बजे से ये कार्यक्रम जो है, 9 बजे से ये कार्यक्रम जो शुरू होता है, महिलाएं मंडल जो है वो यहाँ पर आती हैं। इस जगह की विशेषता ये है कि यही एक ऐसा विभाग है जहाँ पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए विशेष तरीके से दही हांडी का आयोजन किया जाता है। जैसे कि दही हांडी की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम होती है ताकि लड़कियां वहां तक पहुंच सके बिना किसी इंजरी के। जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर पुख्ता होते हैं, मैट बिछाए जाते हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनको यहाँ पर तैनात किया जाता है। लोगों को काफी उत्साह रहता है इस उत्सव का। और हमारे साथ
9: गौरी गावकर
1: जी जो आयोजक थे, प्रवीण गावकर, जिन्होंने मुंबई में लेडीज दही हांडी शुरू की थी, उनकी बेटी है गौरी गावकर। मैम, आपके पिताजी ने एक दही हांडी नहीं शुरू की, एक लेगेसी शुरू की एक तरीके से, कैसा लगता है आपको, क्या फीलिंग आता है?
10: उनका ड्रीम ही था ये कि लड़कियों को आगे लेके जाना है। वो एक ओपनिंग के लिए गए थे जिमनास्टिक्स के, जहाँ पे ये लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही, वो देख के उन्होंने पिरामिड बना रहे थे, सिंगल हैंडेड पिरामिड। तभी उनके दिमाग में ये थॉट आया, क्यों नहीं ये भी हड्डी लगा सकती है, इतनी अच्छी तरह पिरामिड्स बना रहे हैं तो ये भी इनसे हो जाएगा। तो उनको 3 महीने का टाइम था, 3 महीने बाद हंडी थी, तो उनको बोला गया था कि आप प्रैक्टिस करो, आपको फोड़ने का चांस मैं दूंगा। और तब से ये ऐसे चालू है, अभी 35 ईयर्स हो गए इसको।
1: आपने भी ये लेगेसी कायम रखी है, कितनी मुश्किलें आती है?
10: मुश्किलें तो इतनी नहीं आती है, बिकॉज जो पॉलिसीज है, जो हम लोग को गाइडलाइन फॉलो करने बोले, वो सब गाइडलाइन फॉलो करके ही हम सब करते हैं, तो इतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आता है। पुलिस वाले भी सपोर्टिव है, सब कुछ
0: बिल्कुल,
10: पीएमसी बीएमसी सब अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं
0: जी। दीपेश,
10: मेरी टीम भी बहुत
0: और बहुत सुंदर तस्वीरें, बहुत शानदार तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पर लड़कियां जश्न भी मना रही हैं और महीनों की उनकी जो मेहनत थी उसको अब कामयाबी मिल चुकी है। दीपेश, बहुत शानदार तस्वीरें आपने हमें दिखाई हैं और नारी सशक्तिकरण का एक प्रतीक आपने इन तस्वीरों के जरिए हमें दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।

0: आप भगवान कृष्ण को अपना मित्र बनाना चाहते हैं? क्या आप भगवान कृष्ण की भक्ति को मित्रता में बदलना चाहते हैं? कैसे बने भगवान कृष्ण आपके मित्र, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: आज देश भर में दही हांडी उत्सव की धूम, गोविंदा आला रे की लग रहे जयकारे, नारी शक्ति भी दिखा रही दम। दिल्ली NCR में मौसम हुआ सुहावना, घने बादलों ने आसमान में डेरा डाला, कई इलाकों में रिमझिम बारिश। महाराष्ट्र के अकोला में 20,000 स्कूली बच्चों ने मिट्टी से बनाए गणपति की मूर्ति, उत्सव के साथ पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। टीचर्स डे पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश भर के 48 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। महिला एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान आमने सामने रात 8 बजे से शुरू होगा मैच, पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है भारत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन में अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। लेकिन सबको जीवन में अच्छे मित्र मिलें, अच्छे दोस्त मिलें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके कोई अच्छे मित्र नहीं हैं तो भगवान कृष्ण से कैसे मित्रता बनाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रात के 9:53 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 9:30 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:18 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि जीवन में कोई हो या ना हो, आपके सबसे अच्छे मित्र, आपके सखा भगवान कृष्ण बन सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण की महिमा जान लेते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने इस अवतार में 16 कला संपन्न थे। ये भगवान विष्णु का संपूर्ण अवतार माना जाता है। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षयते इति कृष्णः, जो आपको आकर्षित करे, जो सृष्टि को आकर्षित करे वो कृष्ण है। और

और अलग अलग संबंध अपने भक्तों के साथ उन्होंने बनाए। इन सब स्वरूपों में उनका मित्र का स्वरूप सबसे ज्यादा निकट माना जाता है, सबसे ज्यादा निकट समझा जाता है। भगवान कृष्ण और मित्रता पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की रुकावट दूर होगी, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। भगवान कृष्ण मित्र के रूप में, प्रेमी के रूप में, पति के रूप में, गुरु के रूप में, हर रूप में विलक्षण हैं। मित्रता के संबंध में भगवान कृष्ण की मित्रता का महत्व क्या रहा है? देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ, उद्धव के साथ और सुदामा के साथ मित्र का संबंध रखा था। उद्धव के साथ जो उनकी मित्रता हुई, उन्होंने उद्धव को जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान दरअसल जीवन का दर्शन है। तो उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जीवन का दर्शन मिला। सुदामा को उन्होंने मित्रता में ही संपन्नता दे दी, सुदामा के दरिद्रता के प्रारब्ध को हर लिया। और अर्जुन के साथ मित्रता के वजह से सारी दुनिया को गीता का ज्ञान मिला। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वो ज्ञान आज तक प्रासंगिक है और आज तक वो ज्ञान चला आ रहा है। श्री कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध न केवल भक्ति का कारण बना, बल्कि ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बना। आप महाभारत के समय को देखिए, भगवान कृष्ण को ज्यादा लोग पहचान नहीं पाए।

विदुर, भीष्म पितामह, इन्होंने उनके ईश्वरीय स्वरूप को पहचाना। अर्जुन ने उनको एक अलौकिक मित्र समझा और जब उन्होंने विराट विश्वरूप के दर्शन कराए तब अर्जुन को पता चला कि ये स्वयं महासंभूति हैं, स्वयं भगवान हैं। तो भगवान कृष्ण का जिससे भी संबंध बना उसको भगवान कृष्ण ने भक्ति तो दी ही, उसको ज्ञान भी दिया और उसको मुक्ति भी प्रदान की। भगवान कृष्ण से मित्रता स्थापित कैसे करेंगे इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर के मामले में आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी से विवाद से बचें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आप भगवान कृष्ण के साथ अपनी मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मित्रता के लिए ईमानदारी बड़ी आवश्यक है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अतः भगवान कृष्ण को मित्र बनाने के लिए जीवन में अपने कार्यों में ईमानदार बनिए। अपनी सारी समस्याएं, अपने दुख, अपने सुख, अपनी गलतियां उनसे मित्र की तरह कहिए। आपको कुछ समय बाद अंतर आत्मा में, आपके मन में उसका समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। और अंतर आत्मा में जो भी समाधान मिले उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण से आपकी मित्रता हो गई है तो अपनी मित्रता का दुरुपयोग मत करिए। भगवान कृष्ण से उल्टी सीधी चीजों की प्रार्थना मत करिए। मित्रता का दुरुपयोग मत करिए और मित्रता में ईमानदारी और प्रेम बनाए रखिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में
और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में लाभ के योग हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं, विवाह तय हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, परिवार में विवादों से बचें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपका टूटता हुआ रिश्ता बच जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: कौन से लग्न वाले लोग केवल भावनाओं से चलते हैं? कौन से लग्न वाले लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं, और किस लग्न वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? क्या है आपके लग्न की विशेषता और कौन सी पूजा से करें समस्या दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: और मेरे पागल भक्त के 3 लक्षण हैं। हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के 3 लक्षण। उसके बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है, ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना। सूत्र है, आप भक्त हुए या नहीं इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर 3 गुण होते हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अभाव है, भरोसा है और भोलापन है, समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये 3 तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा और भरोसा और भाव और भोलापन तीनों पर यदि विस्तार करे तो भाव हो तो कर्मा बाई जैसा। कर्मा बाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्मा बाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती। क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी। बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती, अरे बाबरी शर्म नहीं आती, पाप पड़ेगा पाप, नरक जाएगी नरक। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने जा कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगाजल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया, पर्दा लगाया और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी जी, तो जगन्नाथ जी से पूछा ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे गए, उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला। इधर जल्दी आने की जल्द थी, जिद थी, तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्माबाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बना दी थी वैसे ही बनाया करना। हमें तो वही प्रिय, हमको तो वही प्रिय। मेरे पागलो, भाव का अर्थ है कर्माबाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता। सच बोले ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं, जैसे ही साधना करने आए तो तीन दिन तो हमने भी नहीं नहाया। महाराज जी को यह बात पता है और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने ये भी सुना कि जिसको कह दो जो जो सुन ले तो पाप उसमें बट जाता है। हाँ। और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे, इनके सामने कहेंगे तो शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ सच बता रहे, तीन दिन ठंडी बहुत थी और बर्फ भयंकर थी और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती, उनके चेले के चेले हैं तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। तीन दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को छू लिया, मतलब हमने नहा लिया। स्नान के मामले में बद्रीनाथ वाले महाराज जी आगे हैं, 3:30 बजे ही ये नहा लेते, तो हम सुबह सुबह इनको ही दंडवत तीन दिन ठोके। राम भगवान बता भी दिया कि वैसे आप लोग यहां तप्त कुंड में स्नान करते हो, महत्व तो यहां अलकनंदा में स्नान करने का है। ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा है, अलकनंदा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। और कोई और ये करते थे यहां? हाँ, महाराज जी ने बहुत वर्षों तक किया। एक यहां अवधूत महात्मा रहे, क्या नाम था उनका बाबा? पूज्य परमानंद अवधूत जी। आह क्या अद्भुत महात्मा, अवधूत महात्मा पूज्य श्री परमानंद बाबा एक लंगोट में रहते थे। महाराज जी का खाप चौक है, उसके सामने में उनकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में रहते थे। सुबह सुबह उठते थे, बहुत कम बोलते थे, बैठे रहते थे। भारी पेट, अवधूत थे। ऐसे कोई आए भी, बड़े से बड़े चेला आते थे उनके पास, ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए। अच्छा जा रहे बाबा, इशारे बहुत कम, कभी कभी बोलते थे, और बोलते भी कब थे, कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो, बस अध्याय चेंज, इतना बोलते थे। सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी, तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना, तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते, कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा कर, कल हवेली पे आ जाना। महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो। महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे। अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे, 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम हैं भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता, पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए। और भरोसा कैसा हो, एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, भरोसा तब टूटना चाहिए जब पृथ्वी फट जाए और आकाश फट जाए, तब टूटना चाहिए। भक्त का भरोसा तब तक पक्का रहना चाहिए जब तक पृथ्वी फट ना जाए और आकाश भी फट ना जाए। जब पृथ्वी में भूकंप आ जाए और आकाश फट जाए तब भरोसा तोड़ना के भगवान नहीं है, वरना तब तक भरोसा मत तोड़ना। वो है, समय की देर है, वो समय आएगा, एक झटके में सब हो जाएगा, एक झटके में सब हो जाएगा। भरोसा को, वृंदावन में एक महात्मा हुए, भरोसा पर हम आपको कथा सुनाएं। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था कदम्ब खंडी जी महाराज, बड़े सिद्ध महात्मा। उनकी महाराज जटाएं बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी। एक दिन मस्ती में रहते थे, अब महात्मा तो मस्ती में ही रहते हैं, मस्ती में चले जा रहे थे, जटाएं बड़ी बड़ी थी, तो वृंदावन की लता पताओं में धोखे से अचानक से एक घटना हुई कि उनकी जो जटाएं थी वो जटाएं लताओं में उलझ गई, और जैसे ही उलझी तो वहीं बैठ के भजन करने लगे, सुलझाई नहीं, बैठ गए भजन करने लगे। तो कुछ ब्रजवासी बालक आए, छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा काहे गो काहे गो, ब्रजवासी निकले, बाबा तेरी जटाएं सुलझा दूं? ना ना ना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो कोई पूछे कि किसने उलझाई, बोले हम तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, इस बंसी वाले ने ही उलझाई। तो बोले सुलझाएगा कौन, बोले वही सुलझाएगा। बाबा पागल हो, बेपिजुली में मर जाओगे, रात बहुत होती है, भूखे मर जाओगे, काहे को बेपिजुली में पागल बन रहे, चलो मैं हूं सुलझा दे हूं। ना ना ना, जाओ जाओ, और सुनो छू ना लेना, पाप पड़ेगा पाप। सबको भगा दिया और वहीं पर बैठकर राधा कीर्तन गाने लगे, कृष्ण कीर्तन गाने लगे। एक दो रात नहीं, कई महीने बीत गए, बाबा ने जटाएं नहीं उलझाई। ध्यान रखना, जिनका भरोसा जल्दी टूटता, ध्यान से सुनना मेरे पागलो, कई महीने बीत गए लेकिन उन्होंने जटाएं नहीं सुलझाई। बोले जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। ठाकुर जी ने देखा कहीं ये मर ना जाए बाबरा, तो हमारे गोविंद छोटा सा बालक का रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया बन करके आ गए। बड़ी तोतली वाणी में, बड़ी प्यारी वाणी, बाबा ला मैं तोरी जटाएं सुलझा दूं, तू कौन है भैया? बाबा मुंह को ना पहचानो, मैं हूं तो ब्रज को छोरा, नंद को छोरा हूं, मैं ही तो कृष्ण कन्हैया हूं, जाको तू कीर्तन गा रहा। बाबा बोले छूना लइए दारी के, छूना लेना क्यों, बेफिजूली की बातें बतावे, हम जानते हैं का जानते हो, तू अकेलो नहीं ब्रज में डोले, जब तक किशोरी जू ना रहे तू अकेलो डोले ही ना, हमको उल्लू बनाने के चक्कर में तू आयो है बहाने बनाने, हम ना मानेंगे, हम कैसे माने कि तू ठाकुर है, हम कैसे माने कि कृष्ण कन्हैया है। भगवान जी बोले हमका आधार कार्ड दिखाएं का? कैसे मानोगे कि हम ठाकुर जी हैं? बाबा बोले अब तुम्हारी पहचान को तो एक ही उपाय है, साथ में किशोरी जू आ जाए और वो कह दें यही ठाकुर जी हैं, तो हम मान लेंगे तुम ठाकुर जी। ठाकुर जी बरसाने गए, किशोरी जी विराजमान थी, सखियां अष्ट सखियां ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में विराजमान थी, दोपहरी का समय था, सभी सखियां बैठ करके श्री किशोरी जी को मधुर मधुर वार्तालाप सुनाई रही थी, पान को बीड़ा खिलाई रही थी। बाई समय पर ठाकुर जी तपती दोपहरी में जून के महीने में पहुंच गए। अरे ओ देवी, तो किशोरी जी ने देखा, अरे आप? ठाकुर जी ने कहा किशोरी जू जल्दी चलो नहीं तो वो बाबा निपट जाएगा। कौन बाबा? पूरी घटना बताई। एक बाबा है, बाकी जटाएं लताओं में उलझ गई कीर्तन करते करते, अब वो कह रहे तभी सुलझाएंगे जब ठाकुर जी सुलझाने आएंगे। तो किशोरी जी बोली हमको क्यों ले जा रहे हो? बोले हम गए थे, वो मान ही नहीं रहे कि हम ठाकुर जी हैं। तो बोले मानेंगे कैसे? बोले वो कह रहे जब तक तो किशोरी जी ना आएंगी राधा जी, तब तक हम ना मानेंगे तुम ठाकुर जी हो। बाबा बोले इसलिए तो हमारी प्रमाण पत्र के लिए साथ में चलो। ठाकुरानी बोली गजब है। और ठाकुरानी जी ने कहा ऐसा भगत है तब तो हमें भी देखना है। तो ठाकुरानी भी गई, और जैसे ही गई तो ठाकुर जी बोले लो बाबा इनते पूछ लो हम हैं ठाकुर जी के नहीं। तो जैसे ही किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा यही ठाकुर जी है। बाबा मस्ती में झूम गए। ठाकुर जी ने एक एक जटाएं लता से सुलझाई, और जब सुलझाई दोनों के चरणों में डूब गए। उनका नाम महात्मा कदम खंडी हुआ। मेरे पागलों, कलयुग में भी ठाकुर उलझे जीवन को सुलझाने आ सकता, बस भरोसा ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा इतना दृढ़ भरोसा होगा, तुम इतनी दृढ़ता के साथ हमारे ठाकुर जी पर भरोसा करोगे तो भगवान आएगा, भगवान सुलझाएगा। और भगवान तो उलझे हुए लोगों को ही सुलझाते हैं, भगवान का काम। और मेरे पागलों, हम लोग तो उलझे ही, वो तो सुलझाने का काम। तो भक्त के तीन लक्षण हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा, और तीसरा भोलापन। भोलापन कैसा हो? बच्चों की तरह, बच्चों की तरह भोलापन होना चाहिए, नामदेव की तरह होना चाहिए। के घर पर भगवान स्वान बन करके, कुत्ता बन करके आते, नामदेव जी भोजन बना करके, टिक्कर बना करके, रोटियां बना करके रखते, और बाहर जाते जल लेने के लिए जलाशय जाते, तब तक कोई ना कोई रोज आकर के रोटी खा जाता। एक दिन नामदेव जी ने देखा कि कोई रोटी रोज खा जाता, आज चुपके से देखना है कौन खा जाता। देखा एक कुत्ता आया, रोटी मुंह में दबाई भागने लगा। नामदेव जी ने घी का डब्बा लिया, पीछे पीछे भागने लगे। अरे गोविंद, हे विट्ठलनाथ, हे ठाकुर, सूखी रोटी मत खा, कम से कम घी तो लगा ले, घी तो लगा, घी तो लगा, घी तो लगा के खा, घी तो लगा के खा। सूखी खाएगा गले में अटक जाएगी, दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, गिर के फिर उठे, डब्बा उठाया और फिर पीछे पीछे भागे। लंबी दूर तक श्वास फूल गई, जब श्वास फूली तो भगवान से भी नहीं रहा गया, और कुत्ते के बीच ही गोविंद प्रकट हो गए, कुत्ते के बीच में भगवान प्रकट। ऐसा भोलापन, स्वान में भी भगवान देख, ऐसा भोलापन। भक्त के तीन लक्षण, भाव, भरोसा और भोलापन। और तुम्हारे अंदर ये तीनों घटित हो गए तो मेरे पागल, तुम भगवान के भगत हो गए। सब कुछ आपके हाथ में है। जो बलवान लोग होते, कद वाले, पद वाले, पैसा वाले, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। सब कुछ आपके हाथ में हो सकता, घर आपके हाथ में हो सकता, गाड़ी, पति घरवाली बेटा बेटी सब आपके हाथ में हो सकते, पर आपका हाथ ही आपके हाथ में नहीं हो सकता। घड़ी आपके हाथ में है, पर किस घड़ी क्या हो जाए ये घड़ी थोड़ी आपके हाथ में। समय की घड़ी आपके हाथ में, पर किस समय पर क्या हो जाए कोई ठिकाना। समय समय पर होते हैं समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। और समय समय पर होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों के ड्रामे अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था,
11: सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

कौन से लग्न वाले लोग केवल भावनाओं से चलते हैं? कौन से लग्न वाले लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं? और किस लग्न वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? क्या है आपके लग्न की विशेषता और कौन सी पूजा से करें समस्या दूर? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।

0: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: आज देश भर में दही हांडी उत्सव की धूम, गोविंदा आला रे की लग रहे हैं जयकारे, नारी शक्ति भी दिखा रही दम। NCR में मौसम हुआ सुहावना, घने बादलों ने आसमान में डाला डेरा, कई इलाकों में रिमझिम बारिश। टीचर्स डे पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, 48 शिक्षकों को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुजनों से संवाद किया। देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी, 35 महिला अफसर भी शामिल, पासिंग आउट परेड में दिखा शौर्य। महिला एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान आमने सामने, रात 8 बजे से शुरू होगा महामुकाबला, पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है भारत।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। देश भर में मुरली मनोहर नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा चुका है और अब अवसर आया है माखन चोर मुरारी की लीलाओं से जुड़े उत्सव का। आज महाराष्ट्र सहित देश के तमाम इलाकों में दही हांडी उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। मुंबई की गली गली में इसके रंग देखने को मिल रहे हैं। मुंबई के दादर से इस उत्सव का शानदार आगाज हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। लड़कियों की टोली ने मटकी फोड़कर इसकी शुरुआत की है और आपको बता दें आज दोपहर से रात तक ये उत्सव और जोर पकड़ने वाला है। जगह जगह पर कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दही हांडी उत्सव मनाया जा रहा है, इसकी धूम देखने को मिल रही है। फिर चाहे मुंबई, दादर, तमाम जगहों की तस्वीरें हैं ये। गोविंदाओं की टोली माखन की मटकी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बना रही है और अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अभी इस उत्सव का असली रंग बाकी है। मुंबई में आज दिन भर बल्कि दिन से रात तक इस उत्सव के रंग देखने को मिलने वाले हैं। हम भी आपको जीएनटी पर इसकी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। मुंबई में आज तमाम जगहों पर नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटीज इस उत्सव में शामिल होकर गोविंदाओं का जोश बढ़ाने के लिए भी पहुंचने वाले हैं। हमारे संवाददाता भी यहां पर मौजूद रहेंगे और आपको दिखाएंगे दही हांडी के उत्सव के रंग। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यहाँ पर लोग भक्ति में झूम रहे हैं, श्री कृष्ण की तरफ, कान्हा की तरफ अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं, भक्ति जाहिर कर रहे हैं। और इसी बीच आपको अब मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। सीधे मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, अब क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिखाइएगा।
1: दीपाली, बिल्कुल, देखिए पहले तो हम दादर में थे, जहां पर पहले जो लड़कियां हैं उन्होंने दही हांडी फोड़ी और जिसके बाद मुंबई में दही हांडी फोड़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ। अब हम जो दादर नायगांव हैं वहां

0: पर किया जा रहा है। हमारे साथ है कालिदास कोळंबकर जो कई सालों से इसका आयोजन कर रहे हैं। सर, पिछले कई सालों से आप इसका आयोजन कर रहे हैं, इस साल भी किया है, क्या अलग है, क्या कहेंगे?
1: देखो, अलग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सत्य में ये कार्यक्रम होता है और सत्य में काम करना भी जरा मजा आती है, इसलिए मैं ये कार्यक्रम इधर अच्छी तरह होता ही है। और क्या चाहिए?
0: बिल्कुल, तो सत्ता में रहते हुए इस तरीके के आयोजन करने पड़ते हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जो गोविंदा हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको क्या कहना है। दादा, क्या सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का उत्साह है, क्या कहेंगे?
2: सर, ये हर साल का माहौल है, बहुत अच्छा रहता है इसका माहौल, और हर साल हम लोग इधर आते हैं, माहौल के हिसाब से हम लोग आते, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और माननीय कार्य सम्राट कालिदास कोळंबकर साहब, ये हमारे कार्य सम्राट है, ये बहुत साल से ये यहाँ पे ये कार्यक्रम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है।
0: सब किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, डर लगता है ऊपर जाने के बाद?
3: नहीं नहीं, जरा भी डर नहीं लगता, हम लोग पूरे सेफ्टी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। नीचे मैट रहता है, ऊपर हार्नेस रहता है, तो डरने की कोई बात नहीं रहती।
0: ये कितने साल से आप दहेंडी में सहभागी हो रहे हैं?
4: अभी हमको ये 13 साल चल रहा है, 13वां साल है हमारा जो दहेंडी का, हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह करके हर एक छोटे से गोविंदा बड़ा, अभी हम लोग छोटे थे तब से ये गोविंदा में है, अभी दूसरे छोटे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं।
0: प्रैक्टिस कितने दिनों पहले शुरू की जाती है, मतलब?
2: ये जून 6 तारीख से हम लोगों ने चालू किया है, 3 महीना हो गया अभी तक। ये 6 तारीख का मतलब अभी ये समझो, अभी कल का 6 तारीख हो जाए, मतलब तीसरा 3 महीना हो जाएगा, मतलब 3 महीने से हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज रात को हम लोग।
0: प्रैक्टिस के दौरान किस तरीके की प्रिकॉशंस है, सावधानी है जो वो बरतते हैं?
2: सेफ्टी फर्स्ट है, बच्चों से लेके सब बड़े लोग के तब सब सेफ्टी फर्स्ट है। इंश्योरेंस वगैरह निकालना, सब मैट वगैरह रखना, सबके लिए सब सेफ्टी हम लोग रखते हैं, रोप वगैरह लगाते हैं बच्चे के लिए, हम लोग सब करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हम लोग।
0: बिल्कुल, तो जैसे कि आपने सुना कि प्रैक्टिस के समय से ही जो प्रिकॉशंस होती हैं, जो सुरक्षा के नियम होते हैं उनका पालन किया जाता है, वो रखी जाती है, और 3 महीने से ये प्रैक्टिस शुरू है, और आखिरकार आज वो समय है जब इनके प्रैक्टिस।
5: जरा इनसे ये भी जानिएगा कि इनकी ट्रेनिंग के दौरान इन युवाओं को लेकर क्या कुछ नियम जरूरी रखे जाते हैं। दीपेश, जरा जानने की कोशिश कीजिएगा कि ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ नियम इन युवाओं के लिए जरूरी रखे जाते हैं।
0: जी जी, बिल्कुल। सर, जब आप ट्रेनिंग करते हैं तब किस तरीके के नियम होते हैं या किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं?
2: सर, नियम ऐसे होते हैं कि अगर आपको हमारे कोच अगर सीटी मारेंगे, ये सबको रिस्पॉन्स देंगे कि आप जब भी सीटी मारेंगे तो सब अपना मैट पे रहना चाहिए, लड़के लोग तो तुरंत हम लोग वो जगह पे हम लोग अपने अपने पोजीशन में रहते हैं, जो सीढ़ी चढ़ना, थर लगाना, ये सब हम लोग अपने सब कोच के हिसाब से हम लोग चलते, कोई ऐसा ये नहीं कि अनदेखा नहीं करेंगे, सीटी मारा वगैरह ऐसा कुछ नहीं, पर पूरा ये करते हम लोग,
0: मतलब प्रॉपर कोच होते हैं वो जो कहेंगे वो फाइनल।
2: हाँ, कोचिंग के बहुत मेन है, कोच का सुनना ही यही मेन है, अगर वो 3 महीना हमारे लिए इतना कर रहा है, हम लोग को भी रिस्पॉन्स उनको उतना देना ही है।
0: आज की युवा पीढ़ी जो है उसको किस तरीके से इस ट्रेडिशन में आप लोग बांध के रखते हैं, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है काफी मुश्किल होता है युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं से अवगत कराना, उनको साथ लेकर चलना, उनको किस तरीके से आप साथ लेते हैं?
2: गोकुल अष्टमी ये एक अपना पारंपरिक कार्यक्रम है, इसके लिए अपन इसको थर ज्यादा लगाना वगैरह ये नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो सेफ्टी मैन है उसके लिए सेफ्टी नहीं रहेगी तो मत लगाओ, क्योंकि सेफ्टी के बिना आप लोग दवाखाना या कुछ इंजरी हो जाएगी, ये सब देखना पड़ता है, सेफ्टी फर्स्ट है उसके लिए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना कि इन गोविंदाओं के लिए जो है वो सेफ्टी पहले आती है, जो सुरक्षा है वो इनके लिए प्राइमरी है, और उसके बाद ही जो है अपनी परंपराओं को आगे लेकर ये चलते हैं। दीपाली
5: जी, यहाँ पर कितनी मंडलियां आज दही हांडी के इस उत्सव में शामिल होने वाली हैं और कब से इसकी शुरुआत होगी? अब तक क्या दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है?
0: जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है फिलहाल दही हांडी फोड़ने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। मैं दिखा कहूंगा अपने कैमरामैन मंदार से कि जो छोटे बच्चों की एक टोली आ रही है, मंडली आ रही है, वो थोड़ा दिखाएं। और दिन भर में यहाँ पर कई मंडलियां आती हैं, पूरे मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों से जो है यहाँ पर दही हांडी फोड़ने के लिए मंडलियां शामिल होती हैं, और ऐसे मुंबई में एक नहीं कई आयोजन देखने को मिलते

0: हैं, कई सारे आयोजन मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में थे और मंडलियों की कोशिश होती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हंडियां वो फोड़ सके उतना उनकी कोशिश होती है। और ऐसी ही एक कोशिश यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मुंबई के दादर में हैं, लेकिन ये जो मंडली है ये मंडली एंटॉप हिल जो मुंबई का एक हिस्सा है वहां से आई है और एंटॉप हिल से ये मंडली यहाँ तक पहुंची है फोड़ते हुए। इसी के बाद जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मंडलियों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। बारिश हुई थी, पूरा मैदान कीचड़ से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो उत्साह है लोगों का वो कम नहीं हुआ है। और देख सकते हैं जो नियम कानून है, जो किस तरीके से सुरक्षा रखनी चाहिए उनके बारे में जो है आयोजक जो है इन मंडलियों को बता रहे हैं। क्रेन के माध्यम से इस हंडी को लगाया जाता है और एक यहाँ के आसपास जो सुरक्षा के बंदोबस्त है वो यहाँ पर पूरे चाक चौबंद देखने को मिलते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही जो मेडिकल कैंप है वो भी यहाँ पर लगाया जाता है कि अगर किसी को इंजरी होती है या कुछ तकलीफ होती है तो जल्द से जल्द और तुरंत उसका जो उपचार है वो यहीं किया जा सके, उपचार में उसको देरी ना हो। और इस तरीके के आयोजनों में खास करके जो सुरक्षा है और खास करके जो हेल्थ है उस पर ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ऐसा ही यहाँ पर भी आयोजन पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो हेल्थ है उसको भी ध्यान रखा गया है। थोड़ी देर में यहाँ पर सीएम आने वाले हैं, उसकी तैयारियां यहाँ पर शुरू है। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उनका जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है वैद्यकीय कक्ष यानी मेडिकल फैसिलिटी सेंटर। यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और वो इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं कि अगर किसी को कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है या कुछ इंजरी होती है तो उनको यहाँ जल्द से जल्द जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो दिया जा सके और कोई भी क्षति या कोई भी हानि किसी को ना हो। इस त्योहार में जो है किसी भी तरीके का ये ना हो। हमारे साथ डॉक्टर अतुल है, हम उन्हीं से जानेंगे। सर किस तरीके की तैयारियां हैं, मेडिकल मेडिकल की व्यवस्था कैसे की गई है यहाँ पर?
1: सर हर साल गोविंदा में हम सभी लोग यहाँ पे जो भी गोविंदा गिरते हैं, किसी को लगता है, किसको खरोच आती है, किसको सीरियस इंजरी होती है, उन सबको बेसिकली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हमारा पूरा मेडिकल टीम यहाँ पे हर साल हम लोग आते हैं। और आदरणीय कुलमकर सर का गोविंदा जब से शुरू हुआ है हर साल हमारे सभी लोग यहाँ पे आके सेवा देते हैं और गोविंदा को जितना हो सके उतना मेडिकल ट्रीटमेंट देने का काम हम लोग करते हैं।
0: सर किस तरीके के मेडिकल जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है वो दी जाती है और क्या क्या यहाँ पे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं अगर इंजरी होती है?
1: देखो ज्यादा करके है ना कि ये ब्लंट ट्रॉमा गिरने की वजह से थोड़ा कुछ स्वेलिंग आना है या इमरजेंसी में किसको कट होना है या फिर ड्रेसिंग करना है या भी जो भी इमरजेंसी में कोई किसी को कभी कभी फ्रैक्चर के भी पेशेंट हो सकते हैं तो यहाँ पे एम्बुलेंस की सेवा है। जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वो लोगों के लिए हम लोग हायर सेंटर में उनको रेफर करते हैं और जो भी पॉसिबल है वो यही पे ट्रीटमेंट दी जाती है।
0: और प्रिकॉशंस क्या ले जाते हैं, क्या गोविंदा को भी कुछ बताया जाता है कि आपको क्या ध्यान रखना है क्या?
1: तो अभी सभी गोविंदा में जो सबसे ऊपर के जो गोविंदा है उनको रोप लगाया जाता है बैक साइड से। तो अभी जो छोटे गोविंदा जो है सबसे ऊपर चढ़ते हैं तो वो गोविंदा में अभी इंजुरी का प्रमाण बहुत हद तक कम हो गया है क्योंकि उनको रोप लगाते हैं, इसलिए उनको अगर नीचे का अगर पिरामिड कोलैप्स भी होता है तो ऊपर का गोविंदा जो बच्चे रहते हैं वो सेफली ऊपर ही ये हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इसलिए अभी छोटे गोविंदा का जो कोई उनको इंजरी होने का प्रमाण अभी निग्लिजिबल है बहुत।
0: बिल्कुल। तो अगर किसी को
2: ये भी पूछेगा कि अगर जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है, दिन चढ़ रहा है और काफी समय से यहाँ पर बच्चे इंतजार भी कर रहे होंगे, कई कम उम्र के बच्चे हैं, डिहाइड्रेशन और अन्य समस्याएं ना हो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है इनकी ओर से?
0: सर मौसम बदलता रह रहा है, हम अमूमन देखते हैं अगर किसी को डिहाइड्रेशन होता है या अगर ऐसी कुछ दूसरी आपत्ति होती है इंजरी के अलावा तो उसका किस तरीके से मैनेज किया जाता है?
1: बहुत ज्यादा कोई डिहाइड्रेशन किसको होता है या उससे वजह से किसी को कोई एनाफिलेक्टिक शॉक होता है, चक्कर आती है, गिर जाते हैं तो जो भी पॉसिबल है यहाँ पे ओरल हाइड्रेशन देने का है तो हम लोग ओरल भी हाइड्रेशन देते हैं उनके लिए ORS पाउडर, जिसका शुगर कम हो गया, ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकोमीटर वगैरह सब हमारे पास है, बीपी ऑपरेटर, वो हिसाब से उनका कंडीशन देख के जो भी इमरजेंसी जरूरी है सब उनका इलाज किया जाता है।
0: बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं तो क्या पेडियाट्रिक डॉक्टर या उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाती है?
1: हमारे पास सभी डॉक्टर उपलब्ध है इधर।
0: बिल्कुल, तो जो अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी है, और जो बुजुर्ग हैं या जो अगर उम्रदराज हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। यानी अगर किसी को कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो प्राइमरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन या जो उपचार है वो यहाँ पर किया जाता है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। हमारे साथ है कुमार लिंगाड़ी जी। कुमार जी, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है या थोड़ी प्रोसेस कैसे होती है, थोड़ा वो समझाइए। दयंडी गोविंदा जब अंदर आते हैं तो क्या करते हैं?
3: जब पहला गोविंदा जब अंदर आते हैं तो पहला उनका एक प्रतिनिधि आता है यहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, और वो अपने गोविंदा का नाम रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसी हिसाब से सब 8 थर 7 थर 6 थर 5 थर ऐसे सब गोविंदा पदक अपने अपने जो भी थर लगाने वाले वो बता देते हैं, उसी हिसाब से उसका थर लगाए जाते हैं। ऐसे दिन भर में पूरे 450 गोविंदा पदक यहाँ पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है यहाँ पे।
0: और जो प्राइज मनी होता है वो कैसे दिया जाता है? जो उसका
3: प्राइज मनी ऐसा है कि 5 थर अगर जो कोई लगाता है उसको तो 1500 रुपया दिया जाता है, और 6 थर लगाता है तो उसको 3500 रुपया दिया जाता है, और 7 थर लगाता है उसको 6000, और जो भी 8 थर लगाते हैं उनमें 5,55,555 रुपया डिवाइड करके दिया जाता है।
0: गोविंदाओं का उत्साह किस तरीके से रहता है?
3: बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया, जोर शोर से रहता है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनका भी आगमन होने वाला है, इसी वजह से गोविंदा में बहुत ज्यादा उत्साह है।
0: बिल्कुल, तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही गोविंदा अंदर आते हैं तब यहाँ पर पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होने के बाद जो है वो यहाँ पर हांडी जो है फोड़ने की तैयारी की जाती है, और यहाँ पर वो हांडी फोड़ते हैं।
2: दीपेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे और जानकारी लेंगे, तस्वीरें भी देखेंगे। इसी बीच धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठाणे से। धर्मेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाएंगे, किस तरह की धूम वहां पर देखने को मिल रही है दही हांडी उत्सव की?
4: बिल्कुल, देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ ठाणे में, और यहाँ से महाराष्ट्र के मंत्री हैं प्रताप सरनाईक, वर्तक नगर में रहते हैं, और यहीं पर उनकी दही हंडी है, काफी प्रचलित है, काफी फेमस है, और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखें इस समय ठाणे में दही हंडी को लेकर के किस तरीके की तैयारी है। एक बहुत बड़ा मंच सामने लगा हुआ है जहां पर VIP VVIP पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी और वो तमाम लोग जो दही हंडी में शामिल होते हैं वो मंच पर इस समय मौजूद हैं। एक के बाद एक लोगों का आना जाना शुरू होगा, और सुबह 8 बजे से ही गोविंदा पदकों का भी यहां पर आना शुरू हो गया है। आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से दही हंडी को बहुत ही ऊंचे सजाया गया है। मुझे लगता है लगभग 10 थर 12 थर अगर यहाँ लगे तब जाकर के दाही हंडी तक पहुंचा जा सकता है और इसे फोड़ा जा सकता है। अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से मुंबई से 6ठी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल धर्मवीर राजा के जो गोविंदा पथक है उनकी टीम यहाँ पर देखी जा रही है। कुछ देर पहले इन्होंने प्रैक्टिस भी करी थी, हालांकि पहुंच नहीं पाए हंडी तक, पर फिर एक बार प्रयास करने की कोशिश यहाँ पर होगी। बहुत ही अच्छे ढंग से आज दही हंडी मुंबई के ठाणे जिले में मनाई जा रही है। सुबह से इंद्र देवता भी बहुत ज्यादा प्रसन्न है, एक तरफ बारिश दूसरी तरफ साहस। आपको बताया कि महाराष्ट्र की तरफ से दाही हंडी के इन गोविंदा पथकों को एक साहसी खेल के रूप में मान्यता मिली है, और वाकई में ऐसा है भी। तकरीबन 1-1.5-2 महीने पहले से ही इनकी प्रैक्टिस की तैयारी शुरू हो जाती है, और दाही हंडी से ठीक 2 या 3 दिन पहले ही आराम करना भी ये शुरू करते हैं, क्योंकि शरीर में आराम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लगभग 200-250-300 लोगों की टीम होती है, जितने लंबी थर लगती है एक दूसरे चौथे पांचवें छठे के ऊपर उनसे 3 गुना ज्यादा लोग आसपास उन्हें संभालने के लिए मौजूद होते हैं। बहुत ही खास खेल है ये, क्योंकि एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की एकता, एक दूसरे पर भरोसा के सहारे ही एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर थर बनाए जाते हैं, और 8-9 थर बनने के बाद सबसे ऊंचे एक छोटा सा बच्चा जो खुद गोविंदा होता है वो जाके दाही हंडी को फोड़ता है। दाही हंडी में इसमें मक्खन दही जो कुछ श्री कृष्ण जी को पसंद था जब वो दही हंडी मक्खन खाने के लिए फोड़ा करते थे वो सारी चीजें दाही हंडी में रखी गई होती है, और उसके बाद जब दही हंडी फूट जाती है तो यहाँ जो भी इनाम जो भी प्राइस की घोषणा की जाती है वो उन्हें मिल जाता है। सुबह से ये खेल शुरू होकर के रात 10 बजे तक चलेगा, क्योंकि 10 बजे के बाद ये जो ऑडियो चल रहा है, ये जो धुन चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, इसकी परमिशन खत्म हो जाती है और पुलिस ने भी जो सुरक्षा देने की बात करी है वो भी हटा दी जाती है। यानी कि ये जो सिलसिला है सुबह से शुरू होकर लगभग रात 10 बजे तक चलेगा और एक से बढ़कर एक मुंबई की जो टीमें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें कि हजारों की तादाद में मुंबई की जो गोविंदा पथक की टीम है उन्होंने बृहन मुंबई महानगर पालिका में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और इस तरह के जो मंच अभी फिलहाल आप ये जो देख रहे हैं, प्रताप सरनाईक का ये जो मंच देख रहे हैं, इस तरह के मुंबई में हजारों मंच बने हुए हैं जहां गोविंदा पथक चलकर अपनी टीम के साथ ट्रकों में लदकर और बसों में बैठ करके पहुंचने वाले हैं। बहुत ही आनंदमय ये आज का सुखदय पूरा दृश्य
2: और हर बार मुंबई में बेहद ही शानदार तरीके से दही हांडी उत्सव को मनाया जाता है। इस बार लोगों के बीच किस तरह का उत्साह भक्ति देखने को मिल रही है, किस तरह का आनंद वहां पर, उसकी अनुभूति आप कर पा रहे हैं, वहां पर मौजूद लोग कर पा रहे हैं?
4: बिल्कुल, देखिए ये गोविंदा पथक न केवल साहसी हैं बल्कि बहुत ज्यादा उत्साहित भी होते हैं आज के इस खेल को लेकर के। सुबह 5 बजे से ही अपने घरों से निकल जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद 8:30 बजे से ही लोग इस तरह से पिरामिड बनाना शुरू करते हैं और दाई हंडी का ये जो खेल है इसे शुरू कर दिया जाता है। थोड़ा सा बात करें आपके, क्या नाम है आपके मंडल?
5: हमारे धर्मवीर नगर राजा गोविंदा पथक वसंत विहार धर्मवीर नगर गोट प्रमाण 2।
4: बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे, बहुत ज्यादा खुश लग रहा।
5: यही उत्साह के लिए हम लोग एक साल इंतजार करते, इसी आज के दिन के लिए हम लोग 2 महीने से हम प्रैक्टिस करते 40 दिन से, आज इस दिन के लिए। आज इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते कि आज हमारे इतने गोविंदा पथकों का इतना प्रैक्टिस का आज हुआ। बोल बली कीजिए,
4: अरे बोली कीजिए। कितने लोग होते हैं आप लोग? कितने लोग
5: हमारे टोटल 100 जन होते हैं।
4: यस, अच्छा ये जो थर लगता है कितने थर आप लगाएंगे?
5: इस बार हम 8 थर है, बोले तो 8 पिक्चर। अभी
4: आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो जो दही हंडी ऊपर लटकी हुई है कितने थर बना लेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे?
5: ये क्या होता है कि वो ऊपर लटका रहते हैं, जैसे जैसे थर होते वैसे नीचे करते हैं, बट भाई धर्मवीर नगर गोविंदा पथक इस बार 8 थर मारने वाली है।
4: 100 लोगों में कितने लोग थर बनाकर चढ़ेंगे और कितने लोग आप आसपास होंगे बचाने के लिए?
5: आसपास में बचाने के लिए सबको ही आ जाता है, पकड़ाला धरा ना कोई, पर धरा ला या इनका मतलब थर में नहीं आ रहा पर पकड़ने के लिए आई है। अच्छा, हाँ
4: सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ है?
5: बहुत ही अच्छा सुरक्षा यहाँ पर, डेकोरेशन से लेके सब सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड और हर चीज की छोटी से छोटी एमिनिटीज यहाँ पे पूरी होती, किसी को कोई रिस्क नहीं कुछ होता, इमीडिएटली सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे।
4: आपको पता है ना आप साहसी है, महाराष्ट्र ने आपको इस खेल को साहसी कहा है, साहसी खेल ही है।
5: यस यस, साहसी खेल है, साहसी
2: जी।
4: तो ये देखिए इस तरह के उत्साह देखने मिलेंगे हर गोविंदा पथक में और फिर से एक बार पिरामिड बनाने की तैयारी जो है
2: सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। इस बार माखन चोर कान्हा के स्वरूप के प्रति जो हम अपना प्रेम है वो जाहिर करते हैं इस उत्सव के जरिए, और इसीलिए जो लोगों का उत्साह है वो इसे सबसे ज्यादा खास बनाता है। दीपेश इसी बीच हमारे साथ बने हुए हैं, दीपेश दादर में मौजूद हैं। दीपेश, वहां पर मौसम कैसा है? जिस तरह से धर्मेंद्र ने तो बताया मौसम काफी सुहाना हो रहा है जहां पर वो मौजूद हैं, उस तरफ मौसम कैसा है? क्योंकि वहां पर भी लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना है, सीएम का आना भी बाकी है।
0: अजय दीपाली, बिल्कुल, देखिए फिलहाल यहाँ पर धूप निकली हुई है, सुबह और रात में काफी ज्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से मैदान में जो है पूरा कीचड़ जमा हुआ है, लेकिन सुबह से ही बारिश बंद है और धूप निकली हुई है। अमूमन ऐसे समय में बारिश ज्यादा होती है लेकिन आज फिलहाल बारिश नहीं है, कड़ी धूप निकली हुई है मुंबई में, और जैसा कि आप देख रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी जो गोविंदा है उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। यहाँ पर अब पिरामिड बनाने की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। गोविंदा जो है, देखिए पहला जो पिरामिड है वो यहाँ पर बन गया है, और कितनी जल्दी ये लोग अब पिरामिड खड़ा करते हैं और ये हंडी जो है वो फोड़ते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी और अहम बात होती है, क्योंकि ये सारा जो एक साहसिक स्पोर्ट्स में गोविंदा जो है इसको गिना जाता है, और इसी तरीके से अनुशासन इसका एक जो अहम पिलर जिसे हम कहते हैं अहम हिस्सा होता है वो होता है। और देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी ये जो है ये मानव पिरामिड जो है वो बना रहे हैं, और अभी ऊपर चढ़कर ये लोग सलामी देंगे। ये एंटोपिल का गोविंदा पथक है जो अब यहाँ पर आया है और यहाँ पर खड़े होकर सलामी देगा जो सबसे ऊपर चढ़ चढ़ते उन्हें सुरक्षा के कारणों की वजह से जैकेट पहनना पड़ता है और जो एक रस्सी होती है क्रेन से बंधी हुई ताकि अगर वो गिरते हैं तो उन्हें बचाया जा सके, रोका जा सके, वैसी तैयारियां होती है। आप देख सकते हैं एक बच्चा जो है वो फिलहाल जो पिरामिड की जो श्रृंखला है जो चोटी है उस पर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जैसा कि हम बता रहे थे मानव पिरामिड यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेयर का ये पिरामिड जो है वो यहाँ पर तैयार। अब जैसे कि देख सकते हैं कि बच्चे ने जो है एक सलामी जिसे हम कहते हैं हंडी फोड़ने के पहले हर गोविंदा पथक जो है वो सलामी देता है। और जैसे कि देख सकते हैं जो ऊपर के दो लोग थे उनको रस्सी से बांधा गया था ताकि कोई इंजरी ना हो। और जैसे कि देख सकते हैं जैसे ही वो गिरे इस रस्सी के कारण उन्हें रोक लिया गया, कोई इंजरी नहीं हुई और वो सुरक्षित है। और अब बाकी के जो नीचे के गोविंदा है वो आराम से उतर रहे हैं। ऊपर चढ़कर इन्होंने जो सलामी दी सबसे पहले भगवान को प्रार्थना की पिरामिड बनाने से पहले सबकी सुरक्षा की मनोकामना की और जो तैयारियां पिछले 3 महीनों से कर रहे थे उसका पूरी तरीके से एक तरीके से रिवीजन किया। और अब खुशी मनाने का समय है क्योंकि जो इनका जो पहला प्रयास था वो सफल रहा। अब अगले प्रयास में ये हंडी फोड़ने के लिए चढ़ेंगे लेकिन जो पहला प्रयास था सलामी देना जिसे कहते हैं एक तरीके से अभिवादन करना जिसे कहते हैं वो सफल हुआ। और अब दोबारा से जो है वो प्रयास होगा हंडी फोड़ने के लिए और ये सिलसिला जो है ये दिन भर चलता रहेगा। दिन भर जैसे कि आयोजकों ने हमें बताया कि 400 से 500 गोविंदा पथक जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और दही हंडी फोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। और अब जो छोटे बच्चे हैं जो छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं छोटे बच्चों का दल यहाँ पर आया है वो यहाँ पर अपनी मानव श्रृंखला लगाएगा, मानव पिरामिड लगाएगा और अब वो सलामी देकर फिर इसके बाद वो दहीहंडी फोड़ने का प्रयास करेंगे। दीपाली
2: जी दीपेश आप बने रहिए हमारे साथ, अब धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र वहां पर जो युवा मौजूद हैं उनसे बात कीजिए, उत्साह किस प्रकार है वो दिखाइए, जरा प्राइज मनी की भी बात कीजिए।
4: बिल्कुल मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान से कहना चाहूंगा थोड़ा सा तस्वीरें उस तरफ मोड़े कि किस तरीके से एक बड़ी तादाद में दही हंडी में शामिल होने के लिए लोग शामिल हुए हैं। आसपास के जो रहवासी हैं वो तो यहाँ पहुंच ही जाते हैं लेकिन जैसा कि मैंने बताया थाने की ये दही हंडी बहुत ज्यादा प्रचलित है और यहाँ इस मंच पर एक से बढ़कर एक बॉलीवुड के सितारे, मराठी सितारे, इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी काम करने वाले सितारे भी मौजूद होते हैं। सीधे उन्हें भी देखने का यहाँ मौका मिलता है। आपको बताया कि हमेशा से ही दही हंडी बॉलीवुड में भी बहुत मान्यता रखती है। बॉलीवुड की कई फिल्में इस पर बनी हुई हैं, कई गाने इस पर बने हुए हैं और वो सारे गाने एक के बाद एक यहाँ बजाए भी जा रहे हैं। खासतौर से ये मंच इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि एक से बढ़कर एक सितारे आने वाले, जो जानकारी है उसके हिसाब से रितेश देशमुख यहाँ पर, जैकी श्रॉफ, इसके अलावा जानवी कपूर, इसके अलावा अनन्या पांडे, ऐसे तमाम नाम, मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, ऐसे तमाम नाम इस समय लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। जाहिर है कि ये महाराष्ट्र के मंत्री की ये दही हांडी है, प्रताप सरनाइक जी की ये दही हांडी है। ऐसे में तमाम जो पॉलिटिशियन है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी यहाँ मौजूद होंगे। अपने आप में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है ये दही हांडी, कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक है और यही वजह है कि मुंबई के और थाने जिले के तमाम सड़कों पर, गलियों पर, नुक्कड़ पर इस तरह के भव्य मंच बने हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा तस्वीरों में मैं चाहूंगा दिखाने के लिए कि जहां भी नजरें जाएं, जहां भी तस्वीरें देखें, हर जगह सिर्फ और सिर्फ गोविंदा पथक, गोविंदा ही देखे जा रहे हैं और अलग अलग टीमों के गोविंदा हैं। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और इस समय इस ग्राउंड में मुझे ऐसा लगता है कि 1500 से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। लेकिन ये काफिला, ये सिलसिला यहीं तक नहीं थमा है। इस पंडाल के पीछे भी तमाम वो ग्रुप जिन्होंने अपना रजिस्टर करा रखा है उनका नंबर आने वाला है, वो भी यहाँ पर दही हांडी फोड़ने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल जहां तक नजर जा रही है ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कम से कम 5 गोविंदा पथक की जो टीमें हैं वो इस समय यहाँ ग्राउंड में देखने को मिल रहे हैं और एक के बाद एक सभी प्रयास करने में
2: बिल्कुल धर्मेंद्र, और बहुत अच्छी, बहुत शानदार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। रोकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद आप दोनों के पास वापस लौटेंगे, तस्वीरें जरूर दिखाइएगा।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

कौन से लग्न वाले लोग केवल भावनाओं से चलते हैं, कौन से लग्न वाले लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं और किस लग्न वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? क्या है आपके लग्न की विशेषता और कौन सी पूजा से करें समस्या दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।

0: ब्रेक के बाद जीएनटी स्पेशल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मुंबई के कोने कोने में दही हांडी की तैयारियां जारी हैं। मुंबई के दादर इलाके में दही हांडी की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर महिला गोविंदाओं की टोली ने यहां पर दही हांडी फोड़कर उस उत्सव की शुरुआत की है। यहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, जिस तरह से पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी, दही हांडी फोड़ी गई, वहां पर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई थी, हार्नेस बेल्ट्स लगाई गई थी, और जो कि बताता है कि सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ये संदेश पूरी तरह से यहां पर दिया गया है। चलो दीपेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अभी धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र, वहां पर अभी कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है और अभी कितने दल आना बाकी है?
1: देखिए, बता दें कि अभी तक सुबह से 10 से 12 दल आ चुके हैं और मैं उनके बीच आ चुका हूं, गोविंदा पतंग के बीच आ चुका हूं, और किस तरीके से लोग लगातार दही हंडी का आनंद ले रहे हैं ये दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तमाम लोग यहां पर धीरे धीरे मौजूद हो गए हैं और एक के बाद एक दही हंडी की जो गोविंदा पतंग है वो लगाने की चीजें शुरू हो गई है। थोड़ा सा आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका?
2: त्रिशूल।
1: अच्छा, तो कभी सुबह से यहाँ पे आ गए?
2: हाँ, अभी 2 घंटा हो गया।
1: क्या लगता है आपको, कौन सी सबसे बड़ी टीम आई है जिसने बहुत अच्छा अभी प्रैक्टिस किया या वहाँ तक पहुँचे हंडी तक?
2: आर्यंस।
1: आर्यन टीम।
2: हाँ।
1: अच्छा, आप नहीं खेलने थे हंडी?
2: नहीं, अभी तो नहीं खेल रहा।
1: ओके, लेकिन मजा आएगा, पूरा दिन इधर ही रहेंगे।
2: हाँ।
1: ओके, तो देखिए इस तरीके से लोग यहाँ जुटे हुए हैं। फिर से एक बार वो तस्वीरें देखे दही हांडी की कि कितनी ऊंचे वो लगाई गई है। 8 थर 9 थर नॉर्मली लगा दिया जाता है, ये सबसे ज्यादा होते हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा दही हांडी को नीचे की तरफ भी रखा जाता है ताकि बड़ी आसानी से फोड़ा जा सके। लेकिन ये जो मेन दही हांडी है ये इतने जल्दी अभी नहीं फूटेगी, ये तकरीबन रात 10 बजे तक ये सिलसिला चलेगा। जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 300 से 350 टीमें जो है इस संस्कृति दही हांडी के मैदान में फील्ड में उतरेगी। और देखिए किस तरीके से फिर एक बार तैयारी शुरू हो गई है, पिरामिड बनाने का जो ये सिलसिला है वो शुरू है। 1 थर लग चुका है, 2, 3, 4 थर अभी लग चुके हैं, और दूसरे जो साहसी गोविंदा पतंग है वो लगातार चढ़ते हुए 5वें थर की तरफ है। 5वें थर में देख पा रहे हैं यहाँ के कम से कम 2 पहुंच गए हैं, तीसरा अब उसके ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, यानी कि मुझे लगता है ये कुछ 6ठा थर लगेगा। और 7वें में देखिए एक छोटा सा बच्चा जो है वो नीले कलर का हेलमेट पहनकर ऊपर चढ़ रहा है, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा साहसी बच्चा होगा। लेकिन बाकायदा सुरक्षा सिक्योरिटी के साथ उसके पीठ पर एक बहुत ही मजबूती से रस्सी भी बांधी गई है, अगर जब पिरामिड नीचे की तरफ आएगा तो बच्चा सुरक्षित नीचे की तरफ पहुंचे, ये पूरी टीम नीचे की तरफ पहुंचे, इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए देखिए दही अंडी की तरफ बढ़ता हुआ। और फाइनली अब ये जो आखिरी थर है उस बच्चे का, वो कोशिश करेगा कि कंधे पे खड़ा और जोरदार तालियां। यस, तो कुछ इस तरीके से तालियों से गोविंदा पतकों के इस साहसी गेम को जो है हर कोई सैल्यूट देता है। और आप देखें ये छोटा बच्चा इस समय किस तरीके से हवा में लटका हुआ है, लेकिन जरा भी डर इसमें नहीं देखा जा रहा है। जाहिर है साल भर इंतजार करते हैं, जैसे कि कुछ देर पहले ही किसी एक ने हमसे कहा है, और कुछ इस तरीके से बड़े ही अच्छे प्रयास के साथ में एक फिर टीम ने घर बनाई है, अपनी जो मेहनत है वो दिखाने की कोशिश की है। अब इनके जो मेन होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, वो उस बड़े से मंच पे पहुंचेंगे जहां पहले से ही तमाम जो मेहमान हैं, पदाधिकारी हैं इस मंडल के पहुंचे हुए हैं, और ये पूरी टीम अब वहां जाएगी, अपना प्राइज, अपना सम्मान, अपना इनाम वहां से लेगी। आपको बता दें कि ये जिस जगह दही हंडी हो रही है इसका थाने जिला नाम है, और आनंद दिघे के नाम से थाने जिला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, प्रचलित है। आनंद दिघे के ऊपर फिल्में भी आई हुई है, और उस फिल्म में भी दही हंडी का जिक्र हुआ है। दही हंडी मुंबई और महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा संस्कृति दिखाते हुए, देखिए ये बच्चा लटका हुआ है, लेकिन किस तरीके से अपने दूसरे साथियों का और यहाँ मौजूद उन तमाम लोगों का जो दही हंडी को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, और किस तरीके से झूम रहा है, नाच रहा है, सभी को एक अलग ही तरह का उत्साह ये बच्चा देते हुए। इस तरह से ये एक 10वीं टीम है जो सुबह से पहुंचकर प्रैक्टिस कर चुकी है, और अब ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है, लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। और इसी तरीके से दही हंडी की ये जो कला है, ये जो प्रथा है, ये फिलहाल थाने के इस वर्तक नगर में लगातार शुरू होगी। बजे जाओ बोल, बजे अरे बोल, खाना नहीं खाया अपने? अरे थोड़ा खा, अपनी आप दही हंडी नहीं खेलते क्यों? अपने मन के पापा बने, मन करता है खेलने, देखने को अच्छा लगता है। तो इस बच्चे का मन नहीं करता, बोलता नहीं मन नहीं करता मेरा, लेकिन देखना बड़ा अच्छा लगता है किस तरीके से सारे लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और वाकई में
0: और ये बहुत खूबसूरत बात है धर्मेंद्र की, यहाँ पर बच्चे भी पहुंचे हुए हैं क्योंकि श्री कृष्ण के माखन चोर स्वरूप की एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी कि आज यहाँ पर इसे मनाया जा रहा है, उनके प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया जा रहा है। और बच्चों का यहाँ पर पहुंचना ही बताता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी इससे जुड़ाव महसूस कर रही है, अपनी संस्कृति को समझ रही है।
1: बिल्कुल कहीं ना कहीं ये आपने बिल्कुल ही सही बात कही है, क्योंकि बच्चा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो हर कोई जो है अपने आसपास के उस मंडल में उस मंच पर पहुंच जाता है जहां पर दही हंडी की प्रतियोगिता होने वाली है। जाहिर है कल श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है और श्री कृष्ण जी बड़े ही प्यार से चोरी करते थे, वो भी मक्खन की चोरी करते थे, मटकियां फोड़ा करते थे। और जिस गांव में वो रहते थे आसपास की महिलाएं भी कहती थी कि काश आज मेरा काना आकर मेरी मटकी फोड़ दे। तो आज मुंबई और महाराष्ट्र की धरती पर एक काना नहीं है बल्कि तमाम काने हैं जो इन तस्वीरों के माध्यम से हमें देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं दही हंडी तो लोग मनाते ही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा एकता का प्रतीक है, साथ का प्रतीक है। दुश्मनी लोग बुला देते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, बड़े बड़े मंच बनते हैं जहां पर विरोधी नेता और साथ के नेता, सेम पार्टी अलग पार्टी के लोग भी शामिल होते हैं। हर भाषा के खिलाड़ी, हर भाषा के जो है सेलिब्रिटी, फिल्मी कलाकार, यहां तक कि स्पोर्ट्समैन, सारे के सारे जो है इस तरह से बड़े बड़े मंच में शामिल होते हैं, इनके साथ झूमते हैं। और सिर्फ यहां पर शामिल नहीं होते हैं बल्कि अपने अपने गानों पर थिरकते हैं, कहीं ना कहीं लाइव परफॉर्मेंस भी देते हैं। और जो भी दर्शक यहाँ पर इस समय जुटे हुए हैं, जितने लोग भी देखने के लिए जुटे हुए हैं, उन सभी का मनोरंजन करते हैं। खास बात यह है कि कई लोग यहाँ पर आकर बकायदा पानी भी लोगों को पिलाया करते हैं, नाश्ते की चीजें जिनमें मुंबई का फेमस वड़ा पाव है वो दे दिया जाता है, लोग उसे खाते हैं। और यहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं ऐसा फील करते हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं अपने घर ही बैठे हुए हैं, पूरा दिन कैसे झट से निकल जाएगा ये कुछ भी पता नहीं चलता है। अभी इस समय जो है 12 बजने वाले हैं, लेकिन आप देखिएगा 12 बजने से लेकर 10 बजे तक ये जो माहौल है ये लगातार भरता चले जाएगा। जितने भी लोग हैं जो गोविंदा को लाइक करते हैं, प्यार करते हैं और कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर बढ़ते ही चले जाएंगे। जैसे ही शाम होगा, शाम का नजारा और भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि मंच के आसपास तमाम वो लाइटिंगें लगाई गई हैं जो कहीं ना कहीं भव्यता बनाएंगी और सुंदरता भी दिखाएंगी। जी
0: जेएनटी के माध्यम से तमाम तस्वीरें हम दर्शकों को आपके माध्यम से दिखा ही रहे हैं, बेहद उत्साह से भर देने वाली, आनंद से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं और स्क्रीन के माध्यम से हम उसकी अनुभूति भी कर पा रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हुजूम यहाँ पर लोगों का उमड़ा हुआ है, देखिए मानव पिरामिड इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग पहुंच रहे हैं, सेलिब्रिटीज का भी यहाँ पर तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा है, आपने बताया किस तरह से सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं, तो ट्रैफिक को लेकर, डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं, ब्रीफली बताइएगा।
1: बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थाने का वर्तक नगर है और जिन्होंने इस दही हंडी का नेतृत्व किया है जो आयोजक है वो प्रताप सरनायक है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के वो जो है मिनिस्टर है। तो जाहिर है एक तमाम बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक पुलिस है, साथ ही साथ जो मुंबई पुलिस है, साथ ही साथ जो बीएमसी के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हुए रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए फिर से एक पिरामिड बनने की कोशिश चालू हो गई है, फिर से पिरामिड बन रहा है। फिलहाल ये छोटा सा थर था, बच्चों का थर था, अभी भी जो सबसे ऊपर बच्चा लटका हुआ है वो बड़े ही सुरक्षा के साथ नीचे उतार दिया जाएगा। एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर करा। मैं आपको बताऊं कि इस समय ये जो दही हंडी हो रही है ये एक ग्राउंड है और बहुत ही भीतर की तरफ है, इसलिए ट्रैफिक जैसी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि इस ग्राउंड में भी आने वाले जो चार पांच जगह है उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है, हर जगह सिक्योरिटी लगा दी गई है और बहुत ही नाप तोल करके लोगों को भीतर की तरफ आने दिया जा रहा है। बाहर एक बहुत बड़ी पार्किंग है, थाने इलाका है, बहुत बड़ी जगह है, मुंबई जैसी बहुत मतलब घना इलाका नहीं कहते हैं, यहाँ पर अच्छे खासे जगह है, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। आप देखें जिस जगह पे इस दही हंडी को मनाया जा रहा है, जहाँ भी देखें सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें ही नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में, बड़े बड़े आलिशान घरों के बीच में ये वर्तक नगर का ग्राउंड है जहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर दही हंडी मनाया जा रहा है। जहाँ तक देखिए सुरक्षा की बात है और स्वास्थ्य की बात है और ख्याल रखने की बात है, तो आपको बताएं कि इस ग्राउंड के ठीक बाहर ही एक छोटा सा प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया गया है, जहां पर सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और जो भी तमाम लोग हैं वो भी मौजूद हैं। अगर खुदा ना खासा, वैसा तो होगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ घट जाता है तो आसपास में तमाम वो अस्पताल है जहां पर लोगों को फटाक से लेकर जाया जाएगा। साथ ही साथ उपचार केंद्र है, वहां पे भी छोटे मोटे जख्मों का इलाज कर दिया जाएगा। पेन किलर जैसे तमाम दवाइयां हैं जिनसे चीजें ठीक
0: हो जाएंगी। आपके पीछे कई सारे युवा मौजूद है, मैं चाहूंगी कि एक बार आप उनसे बात कीजिए, उनके मन में कितनी भक्ति कितना उत्साह है इसको लेकर जरा उनसे बात कीजिए और दिखाइए।
1: बिल्कुल, देखिए सारे जो लोग हैं इस समय दाही हांडी की तरफ ही मुंह करके खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ देख ही लिया जाए, लेकिन थोड़ी सी तस्वीरें यहाँ की देखें, बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। बैरिकेड्स पे ये बच्ची यहाँ पर खड़ी है। बोल बजरंग
3: बली की जय।
1: अरे बोल बजरंग
3: बली की जय।
1: जोर से बोलो, खाना नहीं खाया आपने? बोल बजरंग
3: बली की जय।
1: बात है तो आप बोल बजरंग
3: बली की जय।
1: बोल
3: बली की जय।
1: अरे तो बेटा क्या नाम है आपका?
3: माही अभय चौधरी।
1: तो आप यहाँ पर दही हांडी कितने बजे से देखने के लिए आ गए?
3: 10 बजे से।
1: आप क्यों नहीं गए? आप नहीं खेलते दही हांडी?
3: नहीं।
1: अच्छा, ये आपके बच्चे?
2: नहीं, भांजी।
1: अच्छा, आप इधर ही आसपास?
2: हाँ, इधर ही।
1: दही हांडी बताइए कितनी स्पेशल है आपके लिए?
2: बहुत स्पेशल है, बचपन में बहुत खेला हूँ, अभी काम धंधे की वजह से नहीं मिल रहा अभी फुर्सत, तो बच्चों को लेके बस यही थोड़ा मनोरंजन करना है बस।
1: लेकिन ये लोग जो खेल रहे हैं दही हांडी गोविंदा पतंग है, ये भी तो नौकरी पे जाते।
0: तो धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर आस्था में सराबोर नजर आ रहे हैं। और ये जो पर्व है ये उत्साह, उमंग, उल्लास, जोश का पर्व है क्योंकि दही हांडी उत्सव है और श्री कृष्ण जिस तरह से माखन चोरी किया करते थे, जो उनकी बाल लीलाएं थी उसे मनाने का ये पर्व है, उनके प्रति अपने प्रेम को जाहिर करने का, उसे प्रकट करने का ये पर्व है। धर्मेंद्र, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और जरा बात करते रहिए।
1: देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि अब मैं इस समय मुख्य मंच पे, जो मैं उस दूरी से दिखा रहा था, सामने की तरफ से जो मंच दिखा रहा था जहाँ पर तमाम जो अतिथि हैं वो मौजूद हैं और कुछ देर में एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी भी मौजूद होने वाले हैं, मैं अब उस मंच की तरफ चल रहा हूँ। कुछ इस तरह की पीछे बैकग्राउंड की व्यवस्था होती है, आप देखिए कितने सुंदर तरीके से नीचे बाकायदा जो है चादर वगैरह बिछाया जा रखा है और कितना भव्य, कितना बड़ा मंच होता है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये इतना बड़ा मंच है कि कम से कम एक बार में 3 से 4 हजार लोग इस मंच पर आराम से खड़े हो सकते हैं। हर तरफ जो है ठंडा हो इसलिए थोड़ा सा एसी कूलर की व्यवस्था करी गई है। एक प्यारी सी मटकी, ये देखिए यहाँ पर छोटी सी मटकी रखी गई है क्योंकि दही हांडी का माहौल है, तो ऐसे में ये मटकी यहाँ पर होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। पदाधिकारी जो है उनके परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ एक बड़ी संख्या में तमाम मीडिया कर्मी हमारे जो मित्रगण है वो भी दही हांडी कवर करने के लिए मौजूद है। और मुख्य मंच से किस तरीके का नजारा होता है, किस तरीके की तस्वीरें होती हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए तमाम गोविंदा पथक, मुझे लगता है ये जितना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर कम से कम आराम से 15,000 लोग जो है खड़े हो सकते हैं। इस समय इस ग्राउंड में कम से कम 5 गोविंदा पथक की जो टीमें हैं वो खड़ी हुई है और एक के बाद एक अपना इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं गोविंदा के लिए तैयारी करें और जाएं। देखिए किस तरीके का उत्साह है, बड़ी बड़ी एलईडी चारों तरफ ग्राउंड के लगाई गई है, जो कुछ भी हलचल हो रही है उस एलईडी में दिखाई जाने वाली है। जो भी सेलेब्स आएंगे, जो भी वो मनोरंजन करेंगे, उन सारी चीजों को उन बड़ी बड़ी एलईडी पे दिखाया जाएगा। साथ ही साथ बड़े बैनर, बड़े कटआउट, बड़े पोस्टर, सज्जा धज्जा, लाइटिंग, फूल हार, बड़ी बिल्डिंगों के बीच ये सुंदर सा ग्राउंड, कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया सा वातावरण यहाँ बना हुआ है, कड़ी सुरक्षा के साथ, पुलिस सुरक्षा के साथ, बीएमसी सुरक्षा के साथ और खुद ये जो मंडल है जो ये आयोजन कर रहा है, इनके भी कार्यकारिणी कमेटी होते हैं, इनके भी सदस्य होते हैं जिनकी भी संख्या हजारों में होती है, वो भी कोने कोने में खड़े होकर के कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम को एक नेक अंजाम मिले उसके प्रयास में जुटे हुए हैं। और दही हांडी की ये तस्वीरें मुंबई के सिर्फ ठाणे के इस वर्तक नगर पर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर उस गली नुक्कड़ पर करी जा रही है जहां के लोग दही हांडी में सम्मिलित होना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा ये उत्सव है और कहीं ना कहीं से सांस्कृतिक उत्सव का भी नाम दिया गया है, साहसिक खेल भी से कहा गया है। और जैसे ही लोग जो हैं जब दही हंडी का प्रयास करते हैं, तो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि दही हंडी का प्रयास करने के बाद जब उनका गुट नीचे की तरफ आता है तो वो जो छोटा बच्चा सबसे ऊपर चढ़ा रहता है उसे इस तरह से सम्मान दिया जाता है, इस तरह से शील्ड दी जाती है और जो भी इनाम होता है वो इनाम उन्हें दे दिया जाता है। आपको बताएं कि लगभग 400 से ज्यादा टीमें इस समय मुंबई के वर्तक नगर में आने वाली हैं। थोड़ा सा करीब दिखाते हैं और कुछ इस तरह की तस्वीरें जो हैं यहाँ से देखने को मिलती हैं। देखिए फिर से एक घर बनना शुरू हो चुका है और फिर से एक और प्रयास यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। हर किसी ने 3-4 महीने से लगातार प्रैक्टिस की है, मेहनत की है और आज उसका फल इन सभी को मिलने वाला है। और लगातार अपने गुट को लेकर के पिरामिड बनाते हुए लोग दही हंडी की तरफ बढ़ रहे हैं। दही हंडी बहुत ही बढ़िया सी प्रथा है। देखिए कितने ऊंचे टीवी पर दही हंडी को
0: लटकाया। धर्मेंद्र आप बता रहे थे कई बॉलीवुड के सितारे भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मुख्य अतिथि अब तक कौन कौन से यहाँ पर पहुँच चुके हैं?
1: देखिए ज्यादातर जो बॉलीवुड के सेलेब्स होते हैं वो उसी समय पहुंचते हैं और उन्हें उसी समय का टाइम भी दिया गया होता है जब उनकी सुरक्षा सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हो जाए और जब मुंबई पुलिस की तरफ से ये कह दिया जाए कि नहीं भाई अब ये सेलेब इस मंच पे आ सकता है, तो जो समय है उसके अनुसार लगभग 2 बजे के बाद उनके यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जाहिर है मैं इस समय थाने जिले में हूँ, मुंबई से लगभग 1.5 घंटे की दूरी है, 40 से 45 किलोमीटर की दूरी होती है और नगर मुंबई के अंधेरे इलाके में बॉलीवुड के जो सेलेब्स हैं वो रहते हैं। यहाँ आने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और आज गोविंदा पदको की बड़ी बड़ी टोलियां ट्रकों के जरिए बसों के जरिए जो है सड़कों पर उतरी हुई है। उस वजह से भी जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, वहां पर ट्रैफिक की चीजें देखने को मिलेगी। हालांकि यही वजह है कि थोड़ी सी देरी होगी लेकिन एक के बाद एक तमाम जो सेलेब्स हैं, फिर वो मराठी हो, भोजपुरी हो, बॉलीवुड।
0: धर्मेंद्र आप मंच पर मौजूद हैं, वहां पर आयोजक अगर कोई मौजूद हो तो जरा उनसे भी बात कीजिएगा और क्या संदेश दिया जा रहा है, उनका क्या उद्देश्य है, जरा ये जानने की भी कोशिश कीजिएगा।
1: देखिए जो आयोजक हैं इस समय प्रताप सर नाइक है, वो इस समय मंच पर मौजूद नहीं है लेकिन उनके जो पुत्र हैं वो इस समय मंच पर मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी माइक पर भाषण दे रहे हैं और संवाद कर रहे हैं यहाँ उपस्थित हुए सारे गोविंदा पदको से। जैसे ही वो फ्री होते हैं मैं उनसे जरूर बातचीत करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मीडिया में आने के लिए परमिशन जो है वो कुछ ही लोगों को यहाँ दी गई है, कुछ ही लोग अपनी बातें मीडिया के समक्ष रख सकते हैं और अभी इस समय वो सभी के सभी व्यस्त हैं, खुद भी गोविंदा पदको।
0: बिल्कुल धर्मेंद्र, और ये जो तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं कैमरा पर्सन वो बहुत सुंदर तस्वीरें हैं, लोगों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। दिन भर ये उत्साह इसी तरह से बरकरार रहे, मौसम कोई चुनौती ना आए, जो समय बढ़ता जा रहा है, दिन चढ़ता जा रहा है, वो कोई चुनौती ना बने, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है दिन भर के लिए?
1: बिल्कुल, ये जो व्यवस्था है ये भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है गोविंदा पदक आते हैं और यहाँ पर शामिल होकर के दाई हंडी फोड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए तमाम इस जो यहाँ पर प्रताप सरनाइक जी की टीम बैठी हुई है और कुछ इस तरीके से लोग रजिस्टर भी करते हैं, उनकी टीमें यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर देखिए तमाम वो चीजें भी रखी हुई है जिनसे कहीं ना कहीं सम्मान दिया जा रहा है गोविंदा पदकों को और इसके साथ ही वो सारी ट्रॉफियां वहां रखी गई है जिन्हें सम्मान के रूप में गोविंदा पदकों को दिया जाएगा। और थोड़ा सा देखते हैं ये देखिए ये जो है सिक्योरिटी जैकेट है जो यहाँ पर जितने भी गोविंदा पदक हैं उनको पहनना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, वो सारी चीजें खुद इनकी तरफ से ही दी जा रही है। इसके अलावा दूसरी भी वो चीजें तमाम जिससे सुरक्षा कहीं ना कहीं गोविंदा पदक को की जाती है वो सारी चीजें यहाँ पे होने वाली। थोड़ा सा बात करते हैं ये क्या हो क्या रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा बताइए।
4: अभी इधर प्रो गोविंदा के मराठी चालेल ना, अरे हिंदी में बात,
1: हिंदी
5: हमारे यहाँ प्रो गोविंदा की तरफ से संतूर दही हंडी ये पिछले 15 साल से चालू है। हम हर साल 50-60 लाख तक बख्शीश बांटते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 150-200 पदक यहाँ गोविंदा के लिए आते हैं और इस साल भी आएंगे और इस साल हमारा 10 थर के लिए 11 लाख का बख्शीश रखा है और जो बम्बई में जाएगा उसको 9 थर के 2 लाख और ढाणा से आएंगे उसको 9 थर के लिए 5 लाख और बाकी 5-4, 6-7 के लिए अलग अलग बख्शीश है और अगली ट्रॉफी भी
0: जी। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत अच्छी शानदार तस्वीरें आपने दिखाई जो आनंद से भर देने वाली ये तस्वीरें थी। दीपेश भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छी शानदार तस्वीरें आप लोगों ने दिखाई और जो यहाँ पर हर वर्ग से, हर क्षेत्र से, हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, फिर चाहे महिला हो या फिर पुरुष, यहाँ पर हर कोई पहुंचा हुआ था। अपना सेवा भाव भी यहाँ पर जाहिर किया गया, ये बताता है कि अनेकता में एकता का संदेश इस उत्सव के माध्यम से दिया जा रहा था। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।

0: कौन से लग्न वाले लोग केवल भावनाओं से चलते हैं, कौन से लग्न वाले लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं, और किस लग्न वालों को डिप्रेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? क्या है आपके लग्न की विशेषता और कौन सी पूजा से करें समस्या दूर, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: आज देश भर में दही हांडी उत्सव की धूम, हर ओर दिख रहा गोविंदा आलारे का जोश, अनुशासन और संतुलन का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। मुंबई दही हांडी उत्सव में नारी शक्ति का भी जबरदस्त प्रदर्शन, बेटियां बढ़ चढ़ कर ले रही हैं हिस्सा, छोटे बच्चे भी दिखा रहे हैं दमखम। दिल्ली NCR में मौसम सुहावना हुआ, कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया था रेड अलर्ट। टीचर्स डे पर आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह, 48 शिक्षकों को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुजनों से संवाद किया। देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी, 35 महिला अफसर भी शामिल, पासिंग आउट परेड में दिखा शौर्य। नीम करौली बाबा पर बनी हनुमान अंश ने जन्माष्टमी पर भी गजब धूम मचाई, हर दिन रच रही कमाई का इतिहास, 100 करोड़ के आंकड़ों को छूने के करीब पहुंचे।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि एक ऐसा उपाय कर लें, एक ऐसी पूजा कर लें जिससे हमारी जिंदगी ठीक रास्ते पे चलती रहे। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कौन सी पूजा कर लें, कौन सा उपाय कर लें कि पूरी जिंदगी बेहतर चलती रहे, ज्यादा मुश्किलें जीवन में ना आए और भाग्य हमारा साथ दे। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आपके लग्न के अनुसार कि आपको कौन सी एक पूजा जरूर करनी है, और अगर वो एक पूजा आप रेगुलरली करें, थोड़ा ध्यान रखें, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, बड़ा शक्तिशाली और बड़ा प्रभावशाली मंत्र है ये। आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, कोई बड़ा विवाद हो गया है, उसको निपटाना चाहते हैं, उसको सुलझाना चाहते हैं, मुकदमे से विवाद से बाहर आना चाहते हैं, तो सुबह और शाम दोनों समय हनुमान जी के सामने बैठ करके इस मंत्र का एक एक माला जप करिएगा। कितना भी बड़ा विवाद हो, कितनी भी बड़ी उलझन हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, अगर सुबह शाम आप ये मंत्र पढ़ेंगे ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, अगर सुबह शाम ये मंत्र पढ़ें लगातार 3 महीने तक, निश्चित रूप से आप बड़ी से बड़ी समस्या से, बड़े से बड़े विवादों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि अगर इस मंत्र का जप करेंगे तो 3 महीने तक सात्विकता का पालन करेंगे, मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके लग्न के अनुसार अगर आप एक विशेष तरह की पूजा करें तो आपको लाभ हो सकता है। आखिर लग्न के अनुसार ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, किसी व्यक्ति का जो लग्न है उसके जीवन का केंद्र है। लग्न का मतलब वो व्यक्ति स्वयं, लग्न मतलब आप खुद, राशि मतलब आपका मन। तो किसी व्यक्ति का लग्न उसके जीवन का केंद्र है और कुंडली के लग्न से ही स्वास्थ्य, सफलता और बाधाएं निर्धारित होती हैं। आपके लग्न से ही ये पता चलता है कि आपके जीवन में स्ट्रेंथ कितनी होगी, ताकत कितनी होगी, कितने सफल होंगे और जीवन में बाधाएं कैसी आएंगी। लग्न के अनुसार हर लग्न के जीवन की बाधाएं निश्चित होती हैं कि उस तरह की बाधाएं जरूर आती हैं। तो लग्न के अनुसार पहले बाधाओं को समझना चाहिए और इसके बाद लग्न के अनुसार विशेष पूजा करके बाधाओं को दूर करना चाहिए। अगर आप अपने लग्न का नेचर जान जाएं, लग्न का टेम्परामेंट जान जाएं, तो एक पूजा करके आप अपने भाग्य को बेहतर कर सकते हैं, अपने भाग्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि हर लग्न का अलग अलग गुण होता है, अलग अलग मुश्किलें भी होती हैं। तो आप पहले देखिए कि आपका लग्न क्या है और लग्न के हिसाब से किस तरह की बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं। जिस तरह की बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं उससे संबंधित

यानी मेष लग्न के अंदर स्थिरता नहीं होती, मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो मेष लग्न वालों के जीवन में चीजें अक्सर अस्थिर रहती हैं और ये लोग काफी उम्र बीत जाने के बावजूद सेटल नहीं हो पाते। योग्य होते हैं, ऊर्जा बहुत होती है, मेहनत करते हैं, नई चीजों को खोज निकालते हैं, लेकिन काफी उम्र तक इनका सेटलमेंट नहीं हो पाता। इनके साथ दुर्घटनाएं होने की संभावना काफी होती है। अगर किसी का मेष लग्न है, सर दर्द की शिकायत होने की पॉसिबिलिटी काफी है, चोट चपेट लगने की संभावना काफी है और उम्र बढ़ने पर नसों की समस्या, नर्व की प्रॉब्लम या ब्रेन की प्रॉब्लम भी इनको पकड़ लेती है। लेकिन मेष लग्न वालों की सबसे बड़ी बाधा है कि इनका जीवन आसानी से स्थिर नहीं होता। इनको जीवन में स्टेबल होने में, स्थिर होने में वक्त लगता है। इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका मेष लग्न है, आंख मूंद कर बिना सोचे विचारे सूर्य भगवान की पूजा जरूर करिए। इनको रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः या ओम घृढ़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो अगर आपका मेष लग्न है तो आपके लिए एक पूजा है कि आप नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और सूर्य मंत्र का जप करेंगे। वृषभ लग्न, शुक्र इस लग्न का स्वामी है, स्थिर स्वभाव का लग्न है। स्टेबिलिटी और स्थिरता इनके काम में हमेशा दिखाई देगी। वृष लग्न के जो लोग होते हैं ये अत्यधिक संघर्ष जीवन में करते हैं, इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है और अक्सर करियर के और इमोशंस के, भावनाओं के उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं। इनका किसी न किसी मामले में स्ट्रगल चलता रहता है। वृष लग्न का जो सिंबल है वो क्या है? बैल। तो स्वभावतः ये बड़े जिद्दी और बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, जिद इनके अंदर काफी ज्यादा होती है और अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं और अपने जिद की वजह से, अपने उग्र स्वभाव की वजह से जीवन में नुकसान उठाते हैं। वैवाहिक जीवन में या रिश्तों में 100% कंट्रीब्यूशन करते हैं, 100% समर्पण होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगला भी उतना ही समर्पण दिखाए। इसीलिए वैवाहिक जीवन में, रिश्तों में इनको संतोष नहीं मिल पाता। वृष लग्न वाले बड़े स्थिर दिमाग के

0: बड़े मेहनती, बड़े तेजी से आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन इनको चीजों को पाने में संघर्ष करना पड़ता है। क्या पूजा करेंगे? वृष लग्न वालों को नियमित रूप से शनि देव की उपासना करनी चाहिए। इनको नियमित रूप से शनि देव की उपासना करने से लाभ होगा। इनको रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक इनको जलाते रहना चाहिए। अगर वृष लग्न वाले नियमित रूप से शनि देव की पूजा करें तो इनका स्वभाव थोड़ा माइल्ड होगा और इनके जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। मिथुन लग्न स्वभावतः इंटेलिजेंट लग्न है, बुद्धिमान लग्न है। बुद्ध इस लग्न का स्वामी है। वायु तत्व का और द्वि स्वभाव का लग्न है। मिथुन लग्न वाले नॉर्मली 100 में से 80% मामलों में इंटेलिजेंट होते हैं। ये अक्सर जल्दबाजी के और दुविधा के शिकार हो जाते हैं। हर काम जल्दी करना चाहते हैं और एक साथ कई काम में हाथ डाल देते हैं। उस चक्कर में कोई काम सही नहीं हो पाता और अक्सर निर्णय लेने में कंफ्यूज होते हैं कि मुझे किस रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। कंफ्यूजन और जल्दबाजी इनके जीवन में बनी रहती है। संतान के साथ इनका अटैचमेंट बहुत होता है। मिथुन लग्न वाले संतान का बड़ा मोह रखते हैं और संतान के मोह में गड़बड़ियां करते हैं। मोह में संतान को बिगाड़ देते हैं और बाद में चीजें बिगड़ जाती हैं। संतान के जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। संतान के मोह में गड़बड़ियां होती हैं। मिथुन लग्न वाले बुरे नहीं होते, किसी को परेशान नहीं करते, नॉन डिस्टर्बिंग होते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में, सबको खुश रखने के चक्कर के मामले में ये अक्सर अकेले रह जाते हैं। इनको लगता है इसको भी संभाल लो, उसको भी संभाल लो, इसका भी ध्यान दे दो, ये काम भी कर लो। उस चक्कर में बेचारे अकेले रह जाते हैं। मिथुन लग्न वाले हार्मफुल बिल्कुल नहीं होते। अब अगर मिथुन लग्न है तो आपकी मुश्किल क्या है? एक साथ बहुत सारे काम में घुसना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहना और बुद्धि तेज होने के बावजूद जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर देना। क्या करना चाहिए? मिथुन लग्न वालों को नियमित रूप से श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका मिथुन लग्न है तो आप रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर कठिन लगता है, बड़ा लगता है, तो मोबाइल पर लगा करके सुन लें। सुन करके भगवान विष्णु से कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। कर्क लग्न, चंद्रमा इस लग्न का स्वामी है। चर लग्न है, जल तत्व का लग्न है। भावनाओं का, इमोशन का, क्रिएटिविटी का और भाग्य का सबसे बड़ा लग्न है कर्क लग्न। लेकिन कर्क लगन वालों के जीवन में सुकून नहीं होता। चमक सूर्य की तरह जाएंगे लेकिन अंधेरा भी अमावस्या की तरह होगा। कर्क लग्न वालों की सेहत आम तौर पर अच्छी नहीं रहती। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े लापरवाह भी होते हैं और स्वास्थ्य की समस्याएं, खासतौर से पेट की समस्याएं इनको परेशान करती हैं और मन की समस्याएं भी इनको काफी परेशान करती हैं। कर्क लग्न वालों की सेहत, आयु और मन की समस्या इनको लगातार परेशान करती है। इनका मेंटल लेवल बड़ा सेंसिटिव होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मन में कोई बात लग गई कहेंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। ऐसा देखा गया है कि कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन 90% मामले में अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन में इनके अगर भगवान की कृपा है तो वैचारिक मतभेद रहता है, जिंदगी रोते गाते घिसटती रहती है, और अगर नकारात्मक प्रभाव है तो शादी टूटना निश्चित होता है। वैवाहिक जीवन को लेकर कर्क लग्न वालों को कष्ट का सामना अक्सर करना पड़ता है। ये जीवन में जब भी निर्णय लेंगे ना, ये बड़े भावनात्मक हो जाते हैं, ये दिमाग का इस्तेमाल कभी नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्क लग्न वाले बुद्धिमान नहीं होते, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इनोवेटिव बहुत होते हैं और भाग्य की कृपा, ईश्वर की कृपा भी होती है इनके ऊपर, लेकिन अक्सर इमोशंस में आके इनसे बड़ी गलतियां होती हैं और भावनात्मक गलतियां करते हैं निर्णय लेने में, जिसके परिणाम गंभीर होते हैं। ये अक्सर दिल की बात सुनते हैं, दिमाग की बात नहीं सुनते, और इसी चक्कर में कर्क लग्न वाले बुद्धि होने के बावजूद बेवकूफ बनते हैं। तो कर्क लग्न वालों की क्या समस्या है? मुख्य समस्या है इनकी भावनाएं, इनका अत्यधिक भावुक होना, अत्यधिक इमोशनल होना। क्या करना चाहिए? कर्क लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दुनिया में संतुलन के दो ही देवता हैं, भगवान शिव और भगवान कृष्ण। क्योंकि कर्क लग्न का स्वामी चंद्र है और चंद्रमा से शिव जी डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, इसीलिए कर्क लग्न वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आप कुछ करें या ना करें, शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं और शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय रोज सुबह पढ़ें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। सिंह लग्न, सूर्य इस लग्न का स्वामी है, स्थिर स्वभाव का, अग्नि तत्व का लग्न है, बड़ा ताकतवर, बड़ा शक्तिशाली, रॉयल लग्न, राजसी लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न वाले जो होते हैं ना, जैसे सूर्य के अंदर भावनाएं नहीं होती। सूर्य का क्या गुण है? रूखा होना, ड्राई होना, क्रूर होना या जिद्दी होना। तो सूर्य का जो बेसिक टेम्परामेंट है ना, वो सिंह लग्न वालों के अंदर होता है। ये बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं, और अगर सूर्य इनका प्रबल हो गया ना, सिंह लग्न है, सूर्य अगर प्रबल है तो ये बड़े रूखे, बड़े डोमिनेटिंग और सबके ऊपर शासन करने वाले होंगे। अगर सिंह लग्न है और जल्दी शादी हो गई, 24 साल में, 25 साल में, 26 साल में, तो ज्यादातर मामले में दिक्कत आती है, विवाह टूटता है या विवाह में कुछ समय तक अलगाव का सामना करना पड़ता है। सिंह लग्न वाले बड़े शक्तिशाली होते हैं, हर स्थिति परिस्थिति से जूझते हैं, संघर्ष से, मेहनत से नहीं घबराते, और किस्मत भी ऐसी ही मिलती है जीवन में छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में चीजें आसानी से नहीं मिलती, लेकिन सिंह लगन वाले भी कम नहीं होते। नहीं मिलेगी तो भी जूझेंगे और पा करके ही दम लेंगे, अगर सिंह लग्न की प्रबलता ज्यादा है। तो अगर आपका सिंह लग्न है तो देखिए, एक लाइन में आपकी समस्या है, आपका कठोर स्वभाव और जीवन का संघर्ष। तो क्या करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना आपको करनी है। अगर आपका सिंह लग्न है तो भगवान सूर्य की उपासना करिए। सूर्य देव को रोज सुबह जल चढ़ाइए और जीवन की समस्याओं में विजय पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सिंह लग्न वालों का जीवन बेहतर होगा, जीवन का अनावश्यक संघर्ष कम हो जाएगा। कन्या लग्न, बुध इस लग्न का स्वामी है, द्वि स्वभाव का लग्न है, पृथ्वी तत्व का लग्न है। कन्या लग्न वाले जो होते हैं ना, वे अनुशासित होते हैं आम तौर पे। अगर कन्या लग्न है तो डिसिप्लिन आपके अंदर होगा, सफाई होगी और क्लास होगा। अगर पैसे ज्यादा नहीं है तो भी कपड़े बड़े सोच समझ के, बड़े सिस्टम से पहनेंगे, बड़े क्लास का पालन करेंगे। तो ये लोग अनुशासन, सफाई और क्लास के शौकीन होते हैं और अक्सर इनको जीवन साथी ऐसा मिलता है जो इनका बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अस्त व्यस्त, अनुशासन को ना मानने वाला, जीवन में लापरवाही करने वाला। ऐसा लाइफ पार्टनर या ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। और कन्या लग्न वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग बहुत होता है, मैनेजमेंट इनके ब्लड में होता है, कठिन से कठिन काम को ब्यूटीफुली मैनेज करने का गुण कन्या लग्न वालों में पाया जाता है। लेकिन इनकी मुश्किल क्या है? बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं। इनको लगता है जीवन में कुछ नया हो, रोज नई चुनौती आए, रोज मेहनत करनी पड़े और रोज कुछ नया करके दिखाने का मौका मिले। कन्या लग्न वाले ऐसा सोचते हैं। कन्या लग्न वालों की मुश्किल क्या है कि ये अपने बराबर किसी को नहीं समझते। ये क्लास के चक्कर में, अपनी योग्यता के चक्कर में दूसरों को अपने बराबर नहीं समझते और दूसरे इनके काम को कुछ नहीं समझते। इस चक्कर में आप देखेंगे कन्या लग्न वालों के ऑफिस में बॉस के साथ झंझट बहुत होते हैं। क्या करना चाहिए? इनको नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। हालांकि देखिए, कितनी बात मानेंगे ये हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी योग्यता का सम्मान हो, आप जीवन में आगे बढ़ें, आपको गौरव मिले, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें, श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें और नियमित रूप से सुबह के समय मधुराष्टक का पाठ करें या सुने। तो यही एक पूजा, भगवान कृष्ण की केवल एक मात्र पूजा अगर आप नियमित रूप से करें तो आपका कल्याण होगा। तुला लग्न, शुक्र इस लग्न का स्वामी है, वायु तत्व का लग्न है और चर यानी मूवमेंट वाला लग्न है। तुला लग्न के जो लोग होते हैं वो होते बड़े डिसेंट हैं। तुला लग्न के लोग आम तौर पर झंझटों में पड़ने वाले नहीं होते और आम तौर पर नॉन डिस्टर्बिंग होते हैं। तुला लग्न के लोग सामान्यतः जल्दबाजी में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, सामान्यतः जल्दबाजी में इनसे बड़ी गलतियां होती हैं, क्योंकि इनको लगता है कोई भी काम जितना जल्दी करो उतना अच्छा। हर काम जल्दी करना अच्छा नहीं होता, कुछ काम में थोड़ा समय देना भी बेहतर होता है। दिखावे के चक्कर में क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इनको पॉम्प एंड शो का, दिखावे का बड़ा शौक होता है और इस चक्कर में काफी धन का नुकसान करते हैं। और तुला लग्न वालों के सरल स्वभाव की वजह से लोग इनको बेवकूफ बनाते हैं, इनसे पैसे भी लेते हैं, इनकी झूठी तारीफ करके इनको उल्लू बनाते हैं और अक्सर प्रेम के चक्कर में, लगाव में इनको अक्सर असफलता मिलती है, उसमें इनको नुकसान होता है। तुला लग्न वालों की दो बहुत बड़ी कमियां हैं। पहला, दिखावा, दिखावे की आदत, उस चक्कर में गड़बड़ी होती है और बिना सोचे समझे, बिना विचार किए प्राइमा फेसी, जो प्रथम दृष्टया है, जो जैसा दिख रहा है, बिना सोचे विचारे, बिना जांच पड़ताल किए प्रेम में और रिश्तों में पड़ जाते हैं और 90% इनको असफलता मिलती है। इनके सरल स्वभाव का लोग फायदा उठाते हैं, ये बेचारे दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, दूसरों को बेहतर करने में लगे रहते हैं और लोग इनको बेवकूफ बना के निकलते बनते हैं। हालांकि तुला लग्न वाले भाग्यवान बहुत होते हैं, इसीलिए तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद किस्मत इनका साथ देती है। अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो नियमित रूप से दान करिए। आपको दिखावे के लिए नहीं, आपको दूसरों की सहायता के लिए दान करना है, नियमित रूप से ध्यान करना है और अगर परमात्मा की कृपा से आपका सही समय विवाह हो गया है तो जीवन साथी की बात मानिए, जीवन साथी से डिस्कस करके, सलाह मान करके चलिए तो बहुत सारी मुश्किलें आपके जीवन की कम हो जाएंगी। वृश्चिक लग्न, मंगल स्वामी है, जल तत्व का लग्न है और स्थिर स्वभाव का लग्न है। जल का एक लग्न कर्क लग्न भी, आपको बताया ना, कर्क लग्न का जो पानी है वो ठंडा है, वृश्चिक लग्न का जो पानी है वो गर्म है, बॉइलिंग वाटर है। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों के अंदर छुपी हुई पानी के अंदर गर्मी होती है, पानी को देख के नहीं जान सकते गर्म है कि ठंडा है, टच करना पड़ेगा। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों को देख के नहीं जान सकते कि क्या है इनका रहस्य। वृश्चिक लग्न वाले बड़े रिवेंजफुल होते हैं, अगर उनको आपने परेशान नहीं किया तो जीवन में उनसे बढ़िया कोई नहीं है। अगर वो नॉर्मल जीवन में चल रहे हैं उनको चलने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए, वो जीवन में आराम से रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन अगर छेड़ा या परेशान किया तो इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, सही समय का इंतजार करेंगे और सही समय आने पर आपके लिए ऐसी तैसी स्थितियां पैदा कर देंगे। वृश्चिक का जो सिंबल है वो क्या है, बिच्छू। अगर आपने उसे छेड़ा वो डंक मारेगा समय आने पर। वृश्चिक लग्न वाले विद्वान बहुत होते हैं, वृश्चिक वाले बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं, वृश्चिक वाले बड़े अच्छे पत्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन वृश्चिक लग्न वालों को अगर कोई भूत, कोई सनक सवार हो गया तो आप मान करके चलिए कि फिर ये देखेंगे नहीं कि उसके परिणाम क्या हैं। अक्सर वृश्चिक लग्न वालों का अपने गुरु के साथ, अपने मार्गदर्शक के साथ मतभेद हो जाता है, जो इनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हो सकता है गुरु ने कभी कोई ऐसी बात कह दी जो इनको ईगो को लग गई, इनके मार्गदर्शक ने इनको कुछ ऐसा बता दिया जो इनको कष्ट पहुंचा गया, चुभ गया, तो ये छोड़ करके रास्ता अलग हो जाएंगे और मौका पड़ने पे अपना काम करेंगे। वृश्चिक लग्न वालों का जीवन साथी या तो रहता नहीं, आम तौर पर जीवन साथी इनको बड़ा अच्छा मिलता है, कोई बड़े उच्च पद की स्त्री, उच्च पद का पुरुष, कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति से इनकी शादी होती है, ऐसा देखा गया है। या तो वो रहता नहीं, और अगर शादी हो गई तो बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों को अपनी बदला लेने की आदत छोड़नी है, मन में रहस्य नहीं रखना है, और ऊपर से मीठे रह के मन में जहर नहीं रखना है। हर जगह राजनीति मत करिए, खुराफातों से बचिए। ईश्वर ने आपको बड़ी योग्यता दी है, क्यों आप दुरुपयोग करते हैं अपनी शक्तियों का? इनको नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। वृश्चिक लग्न वाले अगर शिव जी की उपासना करें तो कम से कम जीवन में शांत तरीके से, संयमित तरीके से, बेहतर तरीके से रहेंगे। और शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव तांडव स्तोत्र का अगर पाठ करें या सुने रोज सुबह, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु लग्न बृहस्पति स्वामी हैं, द्विस्वभाव का लग्न है और अग्नि तत्व का लग्न है। धनु का मतलब जिसके हाथ में धनुष है, लड़ाई करने को तैयार, ये बेसिक फीचर है धनु लग्न का। एग्रेशन होना या लड़ाई करना, इसीलिए आर्मी में, पुलिस में, सेना में, साहस में, करेजियस क्षेत्रों में धनु लग्न वाले काफी होते हैं। धनु लग्न वालों को क्रोध बहुत आता है और उग्रता की काफी समस्या होती है, एग्रेसिव बहुत होते हैं। और जब ये एग्रेसिव होते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्रोध में ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है। धनु लग्न वालों की संतान योग्य होती है, ऐसा देखा गया है, लेकिन संतान इनको कुछ समझती नहीं, इनका बेटा या बेटी इनसे दूर चला जाता है और संतान की तरफ से इनको जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, विचार एक पैसे के नहीं मिलते। धनु लग्न में भी संघर्ष बहुत होता है, आसानी नहीं होती, मेहनत धनु लग्न वालों को भी बहुत करनी होती है, और बहुत बार ये मेहनत करते हैं, फायदा कोई और ले जाता है, ऐसा भी धनु लग्न वालों के साथ होता है। लेकिन ये भागते नहीं, हारते नहीं, अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। मेहनती बहुत होते हैं और लगातार दिमाग लगा के मेहनत करके ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, लेकिन हाँ, काफी उम्र बीत जाने के बाद तब इनको सफलता मिलती है। सामान्यतः दिमाग और ताकत दोनों का कॉम्बिनेशन धनु लग्न वालों के पास पाया जाता है। इनकी समस्या है इनका क्रोध, इनकी उग्रता और इनके जीवन का संघर्ष। भगवान सूर्य की अगर ये उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह सूर्य देव की पूजा करें, उनको जल चढ़ाएं और रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, थोड़ा टेम्परामेंट शांत होगा, जीवन का संघर्ष कम होगा। मकर लग्न शनि स्वामी है, चर लग्न है और पृथ्वी तत्व का लग्न है। मकर लग्न वाले बड़े परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं, कन्या लग्न वालों के जैसे ही परफेक्शन होता है इनके अंदर, और मकर लग्न वाले जिस सब्जेक्ट में होंगे उसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। मकर लग्न वालों की मुश्किल ये है कि अगर इनको बार बार कोई साहस न दे, कोई हिम्मत न दे, कोई दिलासा न दे, तो बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं। मकर लग्न वालों को अगर ये कहते रहा जाए कि तुम सब कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम कर ले जाओगे, तुम्हें सफलता मिलेगी, बार बार इनको बताया जाए तो ये पर्वत भी लांग सकते हैं, लेकिन चूंकि बार बार सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं। और मकर वाले बड़े ईमानदार होते हैं अपने रिश्तों के मामले में, जीवन में आगे बढ़ने के मामलों में। जिसको अपना मानते हैं उसके साथ लगे रहते हैं, उसके साथ संबंध निभाते हैं, लेकिन इनको उतना सपोर्ट वापस नहीं मिलता, इसीलिए पारिवारिक जीवन से रिश्तों के मामले में संतुष्ट नहीं होते। मकर लग्न वालों का स्ट्रेंथ, शारीरिक क्षमता मजबूत होती है। मकर लग्न वालों को आमतौर पर बड़ी बीमारी होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अक्सर छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्या, त्वचा की समस्या, सर दर्द की समस्या, कान नाक गले की समस्या, ये अक्सर मकर वालों को परेशान करती है। मकर वालों को जीवन में कोई ऐसा मिल जाए जो बार बार इनको साहस देता रहे, बार बार इनको इनकी ताकत याद दिलाता रहे, तो मकर लग्न वाले वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अगर आपका लग्न मकर लग्न है, जीवन में भाग्य को मजबूत करना है, आगे बढ़ना है, तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिए। यही एक पूजा आपके लिए जरूरी है। नियमित शनि की उपासना करिए, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ लग्न शनि स्वामी है, वायु तत्व का लग्न है और स्थिर लग्न है। कुंभ लग्न वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े इंटेलिजेंट, और कभी कभी इतने ज्यादा बुद्धिमान कि वो बुद्धि ज्यादा होने की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है कुंभ लग्न वालों को। कुंभ लग्न वालों के चूंकि जीवन का केंद्र होता है शनि, इसीलिए कुंभ लग्न वालों को आप आमतौर पर देखेंगे कि उम्र के 32 साल तक बड़ा संघर्ष करते हैं। 30-32 साल तक कुंभ लग्न वालों का संघर्ष चलता रहता है, खास तौर से करियर के मामले में इनको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन बाकी चीजें धीरे धीरे इनको मिलती रहती हैं। करियर को स्टेबल करने में वक्त लगता है। कुंभ लग्न वाले होते इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ज्ञानवान, और जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिलता है, एग्रेसिव, बात ना सुनने वाला, बात ना मानने वाला, अगर बुद्धिमान है तो भी उद्दंड और उज्जड होता है। तो कुंभ लग्न वालों को जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिलता है, जिसकी वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन करें क्या। कुंभ लग्न वाले बुद्धिमान बहुत हैं, कुंभ लग्न वाले ताकतवर बहुत हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा करके जाते हैं जिंदगी में जिससे उनको दुनिया याद रखती है, अगर भगवान की कृपा रही तो। लेकिन कुंभ लग्न वाले भीड़ में भी अकेले रहते हैं, ये पक्के तौर पे जानिए कि कुंभ लग्न वाले कितने भी पॉपुलर हों, कितने भी प्रसिद्ध हों, जीवन में अकेलापन रहेगा, और कुंभ लग्न वालों को डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। कुंभ लग्न वाले आपको बताएंगे नहीं, वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न, ये सब छुपा लेते हैं अपनी चीजों को, तो जीवन में अकेलापन और अवसाद इनको बहुत जल्दी होता है। कुंभ लग्न वाले जब जीवन में सब कुछ पा जाते हैं तो एक दिन सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेकर या एकदम आइसोलेशन में अकेलेपन की तरफ चले जाते हैं। अगर आपका कुंभ लग्न है तो आपको ध्यान और पूजा उपासना पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आप जितना मेडिटेशन करें, जितना ध्यान करें, आप अपने आप को संभाल पाएंगे। आपकी सहायता कोई और नहीं कर सकता, आपको खुद अपनी सहायता करनी पड़ेगी। जितना ध्यान करें, मंत्र जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें, उतना ही आप जीवन में ठीक रहेंगे। प्रातः काल पूजा करना, प्रातः काल ध्यान करना आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो कुंभ लग्न वालों को सिर्फ एक ही पूजा करनी है, वो है ध्यान। मीन लग्न बृहस्पति स्वामी है, जल तत्व का लग्न है, द्वि स्वभाव का लग्न है। मीन लग्न वाले जो होते हैं ना, वो होते तो बुद्धिमान है, बात किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे कोई कितना भी समझाए, आपके मुंह पे भले ही कह देंगे कि ठीक है मैं मानूंगा, मानेंगे बिल्कुल नहीं। इनको अपनी बुराई और सुझाव बर्दाश्त नहीं होता, और इनके मन में बहुत जल्दी ईर्ष्या का भाव आ जाता है, मौका पाए तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है और अगर गलत संगति पकड़ ली तो चरित्र भी बहुत जल्दी कमजोर होता है। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो शिव जी की जितनी पूजा करें उतना अच्छा होगा। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का अगर आप जप रोज करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: देश भर में इस वक्त दही हांडी की धूम जारी है। मुंबई के दादर इलाके में महिला गोविंदाओं की टोलियों ने दही हांडी फोड़कर उत्सव की शुरुआत की है। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियां बड़ी तादाद में दही हांडी फोड़ने को लेकर उत्साहित हैं। आपको दिखाते हैं मटकी फोड़ने के उस शानदार पल की तस्वीरें और बताते हैं कैसे महिला गोविंदा टोलियों ने पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से आज धूम देखने को मिली है दही हांडी उत्सव की। कल जन्माष्टमी का पर्व था और आज दही हांडी उत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई से लेकर तमाम जगहों की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। महिला गोविंदाएं भी इस बार पहुंची हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा।
1: मुंबई के दादर इलाके में हूँ, जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं मुंबई में वो हांडी फोड़ती हैं और यहाँ से फिर मुंबई में हांडी फोड़ने की शुरुआत होती है। और पहली हांडी जो है वो लड़कियों द्वारा तोड़ दी गई है, अब दूसरी हांडी लगाई जा रही है, जिसे अब जो लड़कियों का दूसरा दल है तेजस्विनी महिला मंडल, उनके द्वारा इस हांडी को फोड़ा जाएगा और इसके बाद से यहां से मुंबई में हांडी फोड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। पिछले 53 सालों से जो है ये प्रथा इसी तरीके से निभाई जा रही है। यहां पे हर साल लड़कियां आती हैं, उनका दल आता है और हांडी फोड़ते हैं। आप देख सकते हैं पूरी सुरक्षा के इंतजाम यहां पर रहते हैं ताकि किसी को कोई चोट न लगे। और सबसे अहम बात जो इस हांडी की यह है कि जो उत्साह है वो इतने सालों से वही है, वो कम नहीं हुआ है। कुछ लड़कियों से हम बात करेंगे, कैसा लगता है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी?
3: बहुत अच्छा, नहीं डर तो नहीं लग रहा है।
1: कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पे?
3: यहाँ पे हम लोग पिछले 10 सालों से तो आ ही रहे हैं।
1: क्या फीलिंग्स है?
4: कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हर साल हम लोग यही करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज की तो फीलिंग ही अलग होती है, जैसे कि कृष्ण जी का जन्म हुआ है तो ऐसा भावना रहती है कि अरे अभी तो हांडी फोड़नी है यहाँ आके।
1: क्या चीज आपको मोटिवेट करती है, क्या चीज आपको?
4: मतलब ये लड़की लोग का जो जोश है वही हम लोग को मोटिवेट करता है बहुत।
1: बिल्कुल, तो जैसे कि देख सकते हैं उत्साह जो है वो हर साल बढ़ते जाता है। मोटिवेट ये लड़कियां अपने आप से होती रहती है और सिर्फ अपने आप से नहीं होती, दूसरों को भी करती रहती है और यहाँ इसे शुरुआत होती है। यहाँ पर जो पहली हांडी थी वो जॉली स्पोर्ट्स क्लब की जो महिलाएं थी उनके द्वारा फोड़ी गई, अब दूसरी हांडी जो है वो तेजस्विनी महिला मंडल इनके द्वारा तोड़ी जाएगी। और खूब भरपूर जोश इन लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं सारी, आप लोग की उम्र कितनी है और आप पढ़ाई कर रहे हैं?
4: हो गया पढ़ाई 25।
5: हम जॉब करते हैं अभी।
6: मेरी 19 है, मैं पढ़ाई कर रही हूं।
4: जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, मैं कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर।
5: हमारे यहाँ पे गर्ल्स है, वुमन्स है, सब है, मतलब जॉब करते हैं सब, छोटे बच्चे।
1: बिल्कुल, तो देख सकते हैं हर उम्र के तबके की आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर एक के इसमें वो जोश जो है, वो जज्बा जो है वो वही कायम है, ना डर है ना चिंता है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जन्माष्टमी है और वही इनको मोटिवेट किया जाता है। लड़कियां जो है अब तैयारी कर रही है हांडी फोड़ने के लिए। अब यहाँ पर पिरामिड बनाया जाएगा, जो हांडी है वो फोड़ी जाएगी। 5 पिरामिड का ये जो है ये हाइट है, इसके पहले भी इसी हाइट पर जो पहले लड़कियों का मंडल आया था उन्होंने फोड़ी थी और अब ये दूसरा जो मंडल है लड़कियों का, दूसरा जो दल है वो ये हांडी फोड़ने की तैयारी कर रहा है। और लड़कियों से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, जैसा कि आपने कहा कि जो लड़कियों और आदमियों के बीच की समानता है उसका एक उत्तम उदाहरण यहाँ पर जरूर मिलता, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे?
7: मैसेज यही रहेगा कि महिला सक्षमीकरण जो हो रहा है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, या पुड़े है तुम्हें, सो लेडीज ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हो या फिर मतलब महिला या लड़कियां हो, वो अपने आप की अंदर के हुनर को पहचाने, अपने आप को आगे लेके जाए और साथ ही अपने समाज को और अपने देश को आगे लेके जाए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आसपास में एक घेरा बना दिया गया है जहां पर लोग खड़े हैं ताकि अगर कोई गिरता है तो उसे पकड़ा जा सके। और ये 5वें पिरामिड पर जो है वो लड़की चढ़ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं हेलमेट पहन चुका है। और अब ये दूसरी हांडी जो है वो फोड़ने जा रही है तेजस्विनी महिला मंडल द्वारा, ये हांडी फोड़ी जा रही है और इसके पहले उन्होंने एक सलामी दी थी। और ये जो दूसरी हांडी है वो इस मंडल द्वारा फोड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं पूरे महिलाओं का दल जो है, दूसरी हांडी जो है वो महिलाओं की फूट चुकी है। मुंबई के दादर इलाके में दूसरी हांडी जो है वो फोड़ने में महिलाएं जो हैं, ये लड़कियां जो हैं वो कामयाब रही हैं। और ये दूसरी महिला दल हंडी है जो महिला दल द्वारा हंडी फोड़ी जा चुकी है। यहाँ पर जो है नारे लगाए जा रहे हैं, भगवान का जय जयकार किया जा रहा है। और अब समय है झूमने का, अब समय है नाचने गाने का। यहाँ पर उत्साह में आपके कोई कमी नहीं होगी, पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है, सुरक्षा से लेकर उत्साह बढ़ाने तक के इंतजाम है यहाँ पर। और ये पिछले 2 से 3 महीनों की मेहनत होती है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के दिन हांडी है तो आज आई है और ये हांडी इन्होंने फोड़ी है। ये लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार 2 महीने 3 महीने जन्माष्टमी के पहले से इसकी प्रैक्टिस शुरू होती है। और काम अपने काम पर से आने के बाद या अपने पढ़ाई से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद जो है वो प्रैक्टिस करती हैं रोज शाम को अपने अपनी जगहों पर। और इसके बाद ही पूरी सुरक्षा के साथ, इतनी सटीकता के साथ जो है ये पिरामिड लगाने में इनको कामयाबी मिलती है। और देख सकती हैं किस तरीके से जोश है यहाँ पर, कंधे पर लेकर जो है एक दूसरे को यहाँ पर डांस किया जा रहा है। जोश है वो, उत्साह है वो मनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियों में कितना उत्साह है, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो प्रैक्टिस थी वो कहीं ना कहीं सफल हुई है, वो आज कामयाब हुई है। और अब यहाँ से जैसे कहते हैं कि लड़कियां जो हैं या औरतें जो हैं वो घर लक्ष्मी होती हैं, और यहाँ पर हंडी फोड़ने के बाद अब मुंबई में अन्य जगहों पर हंडी जो है वो फोड़ी जाएगी, वो वहां पर हंडी फोड़ने के लिए जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं उत्साह की हम बात कर रहे हैं, लगातार मुंबई करों का उत्साह। ये कार्यक्रम जो है सुबह से शुरू हो जाता है, सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत होती है। और 9 बजे से ये कार्यक्रम जो है, 9 बजे से ये कार्यक्रम जो शुरू होता है, महिलाएं मंडल जो है वो यहाँ पर आती हैं। इस जगह की विशेषता ये है कि यही एक ऐसा विभाग है जहाँ पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए विशेष तरीके से दही हांडी का आयोजन किया जाता है। जैसे कि दही हांडी की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम होती है ताकि लड़कियां वहां तक पहुंच सके बिना किसी इंजरी के। जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर पुख्ता होते हैं, मैट बिछाए जाते हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनको यहाँ पर तैनात किया जाता है। लोगों को काफी उत्साह रहता है इस उत्सव का।
0: मुंबई में आज दादर से दही हांडी उत्सव की शुरुआत हुई, यहाँ पर किस तरह से इस उत्सव का आयोजन किया जाता है इसके बारे में जानने के लिए हमारे संवाददाता ने दही हांडी मंडल की आयोजन समिति के सदस्य से बात की है, सुनिए।
1: यहाँ पर जो महिला मंडल है मुंबई से और मुंबई के आसपास के इलाकों से वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आता रहता है, वो यहाँ पर दही हांडी फोड़ने के लिए आता है। और जैसा कि हमने कहा कि 53 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत भी, इसकी जो शुरुआत की कहानी है, शुरू होने की कहानी है, वो भी काफी अपने आप में रोचक है। हम उन्हीं से जानेंगे जो यहाँ पर आयोजक है, उनसे जानेंगे। सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी हंडी की, और महिलाएं हंडी फोड़े, लड़कियां हंडी फोड़े, ये कैसे शुरू हुआ?
7: एक्चुअली इसकी शुरुआत जो हुई 35 साल पहले, हमारे मंडल के जो अध्यक्ष है कैलाशवासी श्री प्रवीण भाई गांवकर जी, वो कुरला में गए थे, वो एक्चुअली समाज सेवक थे, वो कुरला में जो गए थे तो वहाँ पे कुरला में एक लोकल जिम्नेशियम के उद्घाटन में वो गए थे, और वहाँ पे एक महिला गोविंदा पतक था जो कि प्रैक्टिस कर रहा था। वो टाइम पे महिला गोविंदा पतक होते नहीं थे, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे थे नए कहीं जाने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो तो बाहर क्यों नहीं आते कहीं? तो उन्होंने बोला कि महिलाओं को सुरक्षा कौन देगा और उन्हें को चांस कौन देगा? तो भाई ने बोला कि हमारे यहाँ पे हंडी होता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपकी सुरक्षा और आपको चांस हम लोग देंगे। और 35 सालों से यहाँ पे महिला गोविंदा पदक होता है। और मैं ये मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि मुंबई की सबसे पहली हंडी, मतलब जो शुरू होती है वो यहाँ पे होती है, सबसे पहली मुंबई की हंडी यहाँ पे फोड़ी जाती है। जैसे कि आपने पहले देखा यहाँ पे एक जॉली फोटो स्टूडियो, जॉली क्लब आए थे, जॉली स्पोर्ट्स क्लब, वो महिलाओं की हंडी फोड़ के चले गए। ये दूसरा महिला गोविंदा पदक है, उसके बाजू में जो है अपनी वो पुरुष की है। तो यहाँ पे 35 सालों से महिला गोविंदा पतक आके हंडी फोड़ता है, और ये हमें बताने में बहुत खुशी होती है। सर,
1: सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से होता था कि किसी को चोट ना लगे, कोई इंजरी ना हो?
7: सुरक्षा के हिसाब से जो भी नॉर्म्स हमारे गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट है, यहाँ पे उपलब्ध किया गया है। आप स्टेज के राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, हम फॉर्म फिल करवा के लेते हैं। फॉर्म में भी हमारा एक ये होता है कि आपका जो सबसे ऊपर जाने वाला जो भी महिला या फिर पुरुष गोविंदा है, छोटे बच्चे है, उनका वह आयु 14 वर्ष के आगे होना चाहिए। 14 वर्ष के अगर नीचे होता है तो हम लोग उनको अलाउड नहीं करते। उनके बाद उन्हें सेफ्टी हेलमेट पहनना जरूरी होता है, उनका जैकेट पहनना जरूरी होता है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और सुरक्षा की अगर बात की जाए महिला सुरक्षा के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला सुरक्षा रक्षक मतलब प्राइवेटली जिसको हम लोग बाउंसर कहते हैं वो भी यहाँ पे तैनात है कि ताकि किसी को कुछ दिक्कत ना हो या फिर कोई मतलब दुखापत ना हो इसके वजह से।
1: हर साल किस तरीके से जोश होता है कि हर साल महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है, महिलाओं मंडल जो है दल जो है वो हंडी फोड़ने के लिए ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, इसमें किस तरीके का ट्रेंड है?
7: देखिए आजकल हम सबको पता है कि महिलाएं कोई भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। मतलब अगर खाना रसोई से लेके हम लोग अगर एस्ट्रोनॉट तक भी देखें तो हर जगह पे महिलाएं सब ये जगह पे जा रही है, तो ये क्षेत्र क्यों पीछे रहेगा? तो इसी वजह से महिला, और अगर आपको सुरक्षा इतनी खास मिल रही है, आपको सब चीजें आपको ध्यान में दिखे गई आपके, तो क्यों नहीं आगे आए? तो यही हमारा मोटिव है। एक्चुअली अगर मैं बताने जाऊँ कि जिनका मैंने अभी नाम लिया, हमारे प्रवीण भाई गांवकर ये अध्यक्ष थे हमारे, लेकिन अभी वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन ये जो मंडल अभी चलाते हैं वो भी खुद एक महिला है, उनकी बेटी है गौरी गांवकर, वो अभी ये मंडल चलाती है। तो वो भी हमें एक ये है कि मतलब हमारे लिए गौरव की बात है कि महिला ही है जो ये मंडल चलाती है और ये महिला दही हंडी का आयोजन करती है।

बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों के ड्रामे अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज, दिल्ली में राष्ट्रपति ने 48 टीचर्स को दिया नेशनल अवार्ड, अवार्ड पाने वालों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल। आज देश भर में दही हांडी उत्सव की धूम, हर ओर दिख रहा गोविंदा आलारे का जोश, अनुशासन और संतुलन का जबरदस्त प्रदर्शन। मुंबई दही हांडी उत्सव में नारी शक्ति की भी जबरदस्त झलक देखने को मिली, बेटियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, छोटे बच्चे भी दमखम दिखा रहे हैं। दिल्ली NCR में मौसम हुआ सुहावना, कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया था रेड अलर्ट। पटना में गंगा नदी ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड, अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा जलस्तर, 50.53 मीटर की ऊंचाई दर्ज की गई। देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी, 35 महिला अफसर भी शामिल, पासिंग आउट परेड में दिखा शौर्य। नीम करौली बाबा पर बनी हनुमान अंश ने जन्माष्टमी पर भी गजब धूम मचाई, हर दिन रच रही है कमाई का इतिहास, 100 करोड़ के आंकड़ों को छूने के करीब पहुंचे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है दही हांडी उत्सव, माखन की मटकी फोड़ने में जुटे गोविंदाओं की टोली। मुंबई के दादर इलाके में दही हांडी का आयोजन, उत्सव में नारी शक्ति की दिखी झलक, बड़ी तादाद में लड़कियां भी जश्न में शामिल हुईं। महिला गोविंदा टोलियों ने पिरामिड बनाकर फोड़ी मटकी, लगे गोविंदा आला रे किनारे। अलवर में दही हांडी प्रतियोगिता में युवाओं ने आजमाया दम, 17 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दही हांडी फोड़ने को लेकर युवाओं में दिखा खासा जोश। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी का भव्य महोत्सव देखने को मिला। ठाकुर जी को पीताम्बरी में सजाया गया। कान्हा के जन्मोत्सव के बाद सुबह भव्य मंगला आरती का आयोजन। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बद्रीनाथ मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर की गई विशेष साज सज्जा। कृष्ण डोल उत्सव का आयोजन किया गया। आज दिन भर भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना। दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी। मेरठ में पुलिस लाइंस में जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भजनों पर झूमे पुलिसकर्मी। बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
10: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालू।

गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है।

0: जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए रिश्तों के ड्रामे अनलिमिटेड। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन, देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज दिल्ली में राष्ट्रपति ने 48 टीचर्स को दिया नेशनल अवार्ड, अवार्ड पाने वालों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल। आज देश भर में दही हांडी उत्सव की धूम, हर ओर दिख रहा गोविंदा आला रे का जोश, अनुशासन और संतुलन का अद्भुत प्रदर्शन। मुंबई दही हांडी उत्सव में नारी शक्ति का भी जबरदस्त प्रदर्शन, बेटियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, छोटे बच्चे भी दिखा रहे हैं दमखम। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहावना, कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया था रेड अलर्ट। पटना में गंगा नदी ने तोड़ा सभी का रिकॉर्ड, अब तक की सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा जलस्तर, 50.53 मीटर की ऊंचाई दर्ज की गई। देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी, 35 महिला अफसर भी शामिल, पासिंग आउट परेड में दिखा शौर्य। नीम करौली बाबा पर बनी हनुमान अंश ने जन्माष्टमी पर मचाई गजब की धूम। हर दिन रच रही है कमाई का इतिहास, 100 करोड़ के आंकड़े को छूने के करीब।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: मैं हूं रिंकी भाभी और लेकर आई हूं आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालादार खबरें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सास बहू और बेटियां। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
1: एंटरटेनमेंट के गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां में आज देखिए, नरेंद्र करेगा वृंदा पर जानलेवा हमला, कौन करेगा वृंदा की रक्षा। नाकाम हुई जगधात्री की कोशिशें, क्या जगधात्री पर लगेगा कत्ल का इल्जाम।
2: प्लीज आज के दिन में बख्श दो, आज रुद्र का मिलना और उसका रहने दो प्लीज जगधात्री।
3: तपस्या का सुख तो तुझसे कभी देखा नहीं गया।
1: सीरियल मन अति सुंदर में दादी की चाल हुई कामयाब, पड़ी एकता और राध्या के बीच फूट।
4: जरूर तुम्हें ना कोई पट्टी पढ़ाई होगी इसे, तभी मेरी बच्ची ऐसी बातें कर रही है।
1: सीरियल मन सुंदर में उठेगा दुल्हन के चेहरे से घूंघट, निहाल को लगेगा झटका। हमारी राधा की राधा, काना की भक्ति में होंगी लीन।

और साथ ही बाहर आएगी बिग बॉस 20 के प्रतियोगियों की लिस्ट। इस बार बिग बॉस के घर में कौन करेगा बवाल और कौन करेगा धमाल, जानेंगे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

सीरियल हमारी राधा में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में शो में राधा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सिमरन बड़े ही श्रद्धा भाव से कान्हा जी को झूला झूला रही है और हमें अपने सेट की सैर करवा रही है। चलते हैं सिमर के पास।

0: देश भर मनाया जन्माष्टमी का त्योहार। कान्हा की भक्ति में लीन राधा, सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है सिमरन, यानी कि जी अनमोल के सीरियल हमारी राधा में राधा का किरदार निभाने वाली सिमरन,
1: इसमें काहे आ गई हम,
0: जिनके साथ आज हम एक पूरा दिन बिताने वाले हैं, क्योंकि सास बहू और बेटिया पहुंच गया है हमारी राधा के सेट पर, जहां सिमरन अपने सेट की सैर करवाएंगी, दिखाएंगी कैसे होती है शूटिंग, कैसे इनके इस रील आशियाने को सजाया गया है, और साथ ही साथ फिल्माया जाने वाला है जन्माष्टमी का त्योहार, जिसके लिए इस कमरे को सजाया गया है जहां पर कान्हा जी हैं, तो सिमरन बनाएंगी रंगोली और सेट पर ही मना लेंगी जन्माष्टमी। और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि सेट पर ही सिमरन जन्माष्टमी मनाए। तो चलिए ये सभी नज़ारे देखते हैं।
2: नमस्ते, कैसे हो आप? मैं हूँ आपकी राधा, और आप आए हुए हैं आज हमारी राधा के सेट पे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं सास बहू और बेटियों के साथ में आपको अपना पूरा सेट दिखाऊंगी सारे दर्शकों को। ये पहली बार हो रहा है, तो जेन्युइनली मैं बहुत बहुत हैप्पी और एक्साइटेड हूँ। चलो चलो चलो, लेट्स गो।
0: तो चलिए बिना देर किए करते हैं सेट टूर की शुरुआत, और देखते हैं किस तरह से सजाया गया है हमारी राधा के सेट को।
2: शूटिंग चल रही है तो हम इस रास्ते से चलेंगे। देखो वैसे कितना वो लगता है ना, जब हम टीवी पे देखते हैं सब ऑर्गेनाइज्ड होता है, सेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शूटिंग चल रही है और इतने सारे लोग होते हैं। ये हमारे साउंड डायरेक्टर जी हैं दीपक जी, तो आप जितनी हमारी प्यारी प्यारी आवाजें सुनते हैं ना, वो इनकी वजह से एकदम क्लियर आती है। तो अभी हम पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि मेन एंट्रेंस पे शूटिंग चल रही है। तो सबसे पहले हम आएंगे हॉल में। ये देखिए सुंदर लग रहा है ना, क्योंकि जन्माष्टमी का हम एपिसोड शूट कर रहे हैं और सब डेकोरेशन जन्माष्टमी के हिसाब से हुई है। और सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जन्माष्टमी है और सबसे पहले कान्हा जी से मिलेंगे, और कान्हा जी को प्यार से झूला भी झुलाएंगे।
0: तो भाई अब जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है, और ऐसे में सेट पर कान्हा जी भी है और साथ सजावट भी, तो सिमरन को मिल गया मौका सीरियल के बहाने ही सही, लेकिन जन्माष्टमी का ये त्योहार मनाने का। और देखिए कैसे आज सीरियल की ये राधा यानी सिमरन हो गई है कान्हा की भक्ति में लीन, क्योंकि वो कान्हा जी को झूला झूला रही है, मना रही है रंगोली, डांस कर रही है, और साथ ही साथ कृष्ण भगवान की पूजा भी कर रही है।
2: जन्माष्टमी का दिन है और हमारे साथ कान्हा जी है, तो सबसे पहले तो हम कान्हा जी को प्यार से झूला झुलाएंगे और साथ में कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्योंकि आप हमारी राधा के सेट पे आए हैं और मैं राधा हूँ, मेरा नाम राधा है, और मैं कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जिनका नाम राधा है, राधा रानी है, तो ये मेरे लिए मतलब बहुत बहुत एक लकी बात कह सकते हैं। और क्योंकि आज सास बहू और बेटियां हमारे साथ आई हुई है और कान्हा जी हमारे घर आए हुए हैं, तो थोड़ी बहुत पूजा तो बनती है। तो पहले तो हम कान्हा जी के लिए प्यारे प्यारे फूल लगा देंगे, आरती भी करनी होगी, तो मैं आपको ये माइक पकड़ा रही हूँ ताकि मैं दोनों हाथों से

हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जय श्री कृष्ण। प्रसाद में ये देखिए पंचअमृत है, और पंचअमृत जब पूजा खत्म हो जाती है ना उसके बाद सब में बांट दिया जाता है पंचअमृत का प्रसाद, ठीक है। और फिर यहाँ पे फल फ्रूट हैं, बनाना एप्पल और पोमीग्रेनेट, और वो देखिए सबसे बढ़िया चीज टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी लड्डू प्यारे से लड्डू हमारे लड्डू गोपाल के लिए। और मैं ना मतलब लड्डू देख के तो मैं ऐसे मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं फटाफट खा लूँ, लेकिन हमेशा प्रसाद पूजा के बाद ही खाते हैं। आप भी ध्यान रखिएगा, पहले ऐसा दिल ललचाएगा कि हाँ मतलब, बट नहीं, पूजा के बाद ही खानी होती है, ठीक है। हम भी पूजा के बाद ही खाएंगे। तो क्या होता था ना कि घर के बाहर हम लोग सजाते होते थे खूब ऐसे फ्लावर से और टॉयज रखते थे। और हाँ जी, जैसे यहाँ पे देखो फूल की सजावट हो रखी है बहुत प्यारी, और देखिए देखिए यहाँ पे कान्हा जी के पदचिन्ह भी बनाए हुए हैं। तो ये पदचिन्ह है पूरे, आप देखिए पूरी ट्रेल है ऐसे पदचिन्ह की, कि ऐसा लगेगा कि जो कान्हा जी है वो हमारे घर ही आ रहे हैं। जो बहुत सुंदर ऐसे डेकोरेशन है, पिंक पिंक फ्लावर्स हैं, पिंक वस्त्र पहनाए हैं कान्हा जी को। और जब कान्हा जी ने गुलाबी वस्त्र पहने हैं तो राधा भी गुलाबी वस्त्र तो पहनेगी। और ये जो कान्हा जी के पदचिन्ह है ना, इसको देख के ऐसा ही लगता है कि नंदलाल सीधा हमारे घर में ही आ रहे हैं। खादवा को बता रही थी कि हमारे घर के बाहर ऐसे डेकोरेशन हम लोग करते होते थे, ऐसे फूलों से डेकोरेट करते थे, खूब सारे टॉयज रखते थे। मैं बचपन में राधा बनती थी, और स्कूल में हम लोग सब कान्हा जी और राधा जी बन के जाते थे और फिर ऐसे डांस करते थे। और मैंने पता है कभी नहीं सोचा था, मेरा हमेशा से दिल से सपना था कि मुझे कभी ऐसा कोई रोल मिले, यू नो, कोई या तो ऐसा जहाँ मैं टीवी पर राधा जी बन पाऊँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई जन्माष्टमी पर। आज एक्चुअली मुझे एक सीरियल मिला है जिसका नाम है हमारी राधा, और मेरा नाम राधा है इसमें। तो जो मैंने बचपन में कहते ना मैनिफेस्ट किया था, तो आज मेरा वो सपना, वो मनोकामना पूरी हो गई है, थैंक्स टू कान्हा जी। बस मैं कान्हा जी से प्रे करना चाहती हूँ कि सारे दर्शकों को हमारी राधा जो हमारा शो है वो बहुत बहुत बहुत पसंद आए, और सब हमें खूब सारा प्यार दे। प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा प्यार दे और सपोर्ट करे। जैसे आपको कान्हा जी और राधा जी बहुत पसंद है, वैसे आप ये वाली राधा को भी उतना पसंद कीजिए और हमें खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।

0: आज राधा काफी सजी धजी है। त्योहार का मौका जो है, तो आइए उन्हीं से ही उनके लुक के बारे में भी जान लेते हैं।
1: आज जन्माष्टमी है और मैं हूँ आपकी राधा, और आज मैं एकदम कान्हा जी के रंग में रंगी हुई हूँ। कान्हा जी ने भी गुलाबी वस्त्र पहने हैं और मैंने भी ये गुलाबी साड़ी पहनी है। ये एक बनारसी गुलाबी साड़ी है और जिसमें खूब ऐसा प्यारा सा डिज़ाइन किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी भी मुझे बहुत सुंदर लगती है। और साथ में जो मेरे झुमके हैं वो गोल्ड के प्यारे से ऐसे झुमके, और छोटी सी क्यूट सी ये चेन भी पहनी है यहाँ पर। तो झुमके और चेन ऐसे मैचिंग मैचिंग है, और क्योंकि मैं मैरिड हूँ शो में, तो मुझे लगता है कि एक औरत सबसे ज़्यादा सुंदर तब बनती है जो वो सिंदूर लगाती है। तो इसलिए मैंने भर के प्यारा सा अच्छा सा अपने मिस्टर जी के लिए सिंदूर लगाया है, पूरी मांग भरी है। और एक होता ना कि जब भी कोई भी, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में कोई भी लेडी, कोई भी जब सिंदूर लगा लेती है ना, तो उनके चेहरे पे एक अलग ग्लो आ जाता है, एक अलग खुशी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक लुक कंप्लीट हो जाती है जब मैं सिंदूर लगाती हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटी सी बिंदी लगाई है और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कान्हा जी की भक्ति करते हो तो ऑटोमेटिकली ही आप मन से और चेहरे से अपने आप ही सुंदर हो जाते हो। तो इसीलिए ये मेरा था आज का लुक।
0: भाई खुशी और त्योहार का मौका है, ऐसे में एक डांस तो बनता ही है।

0: भाई जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा जी की भक्ति भी हो गई, अब घूम लिया जाए बाकी का सेट और देखते हैं कौन कौन से कमरे हैं इस सेट में और कैसे इन्हें सजाया गया है।
1: ये है हमारे सुंदर सा हॉल, यहाँ पे हमारा सोफा है और मैं आपको ये चीज दिखाना चाहती हूँ जो आज के टाइम पे कोई यूज नहीं करता है, लेकिन ये राधा के दिल के बहुत करीब है, यानी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये ना फैन है और मेरे मिस्टर जी कहते हैं तुम पागल हो क्या, देखो ऊपर फैन लगा हुआ है, तुम क्या ये फैन यूज करती रहती हो। मैं कहती हूँ कि गांव में हम इसी पंखे का इस्तेमाल करते थे, अपने माँ बाबू जी को ऐसे पंखा करते थे, तो आप भी यहाँ बैठिए आपको भी ऐसे पंखा करेंगे। तो ये मेरे दिल के और राधा के दिल के बहुत करीब और बहुत ट्रेडिशनल सा फैन है। इस पर आप डिजाइन भी देखो, ये मैंने खुद इस पे ये जो ये सब लगाया हुआ है चमकीला चमकीला, तो हाँ मुझे अच्छा लग रहा है फैन बहुत। तो लेकिन आपको किचन भी दिखाएंगे क्योंकि ये हॉल और किचन दोनों ऐसे है, तो किचन में एक उधर राधा कहती है कि उसने सारे यहाँ पे मसाले कूट के रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे आम का छुंदा है, मेथी है, हींग है, दालचीनी, तेज पत्ता, चक्रफूल, तो और ना एक बहुत ही प्यारा सा डायलॉग था राधा का, वो कहती है कि हाँ ये इस सबका मैं इस्तेमाल करती हूँ और मैं एक्चुअली पता है जब शूट करते तो मैं रियल में खाना भी बनाती हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब वैसे तो मुझे खाना बनाना आता है लेकिन जो एकदम परफेक्ट खाना नहीं आता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी राधा शो करके मुझे एकदम परफेक्ट खाना बनाना आ गया, क्योंकि राधा बहुत खाना बनाती है, वो हमेशा आधा टाइम किचन में। हाँ मैं गृहिणी बन गई हूँ अच्छे से, सर्वगुण संपन्न, तो मुझे अच्छे तरीके से खाना बनाना आ गया है। और एक राधा का ना बड़ा प्यारा डायलॉग था जो आज तक मेरे दिल में ऐसे है। एक बार मैं किचन में ऐसे शूट कर रही थी और उसमें ऐसा डायलॉग था कि मैं ऐसे बोलती हूँ कि जब भी लड़कियाँ नाराज़ होती हैं तो अपने मायके चली जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब भी मैं मतलब एज राधा मैं नाराज़ होती हूँ या मैं थोड़ी गुस्सा हो जाती हूँ मिस्टर जी से तो मैं किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में आती हूँ तो यहाँ पे मसाले की खुशबू से मेरा मन एकदम ऐसा खुश हो जाता है और मैं सारी नाराज़गी भूल जाती हूँ, सारा गुस्सा भूल जाती हूँ और एकदम खुश हो जाती हूँ रसोई घर में आके। तो ये मेरे लिए वो जगह है, एक कहते हैं ना एक हैप्पी प्लेस है, तो ये किचन राधा का हैप्पी प्लेस है।
2: कान्हा की यही आशा है,
0: कान्हा की ये,
1: हाँ ये आपको पूरे घर में दिखेंगे ये ऐसी एम्ब्रॉयडरीज वगैरह ना और अंदर रूम में भी आपको ना ऐसे छोटी छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरीज आपको दिखेंगी, जिससे एक वो ना बड़ी प्यारी ट्रेडिशनल फीलिंग आती है।
2: कान्हा का प्यार किस,
1: तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ट्रेडिशनल टाइप के सब बास्केट्स वगैरह हैं।
2: राधा जले, राधा जले, राधा जले।
1: मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे फिर एम्ब्रॉयडरी आ गई, तो मेरे ख्याल से यही उस कैरेक्टर को थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है। और देखो फोटोग्राफ्स, ये शादी की पिक्चर है, ये छोटे किनू के साथ है और ये किनू जब किसी को ऐसा शेर बन के डरा रहा था, तो ये और ये मिस्टर जी और किनू। पर सारी एम्ब्रॉयडरीज में से ना मुझे ये सबसे ज्यादा सुंदर लगता है, ये तो मेरा मन करता है मैं इसको अपने घर ले जाऊं, सच में ये इतना सुंदर है। या टेबल क्लॉथ, लेकिन बड़ा ना अच्छा सा ऐसे इसे इस एम्ब्रॉयडरी को ना कुछ कहते हैं क्रोशे कहते हैं, है ना, तो इसके मेरे पास एक्चुअली वो भी हैं, कपड़े भी हैं एंड आई फील दिस इज वेरी प्रिटी। मैं तो कभी कभी मन करता कि मैं इसको ले जाऊँ अपने घर में लगाऊँ मैं इसको लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी इसका यहीं पे अच्छे से इसका यूज़ करेंगे शूटिंग के टाइम पर। फोटो है साथ में, वो लालटेन है, पर देखो ना ये वाली लालटेन कितनी सुंदर है मेरे ख्याल से, इतनी सुंदर। तो यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे ये जो ट्रेडिशनल डिजाइन हैं, क्योंकि ना राधा गांव से बहुत प्यार करती है और वो गांव को अपने साथ शहर लेकर आ गई है, तो छोटी छोटी चीजें होती है जिससे हमें पता चलता है कि मतलब यू नो वो कैरेक्टर अपने जो एक कहते हैं ना कि अपने रूट से कितना कनेक्टेड है। एक होता हम एक जगह से जब दूसरी जगह चले जाते हैं तो हम भूल जाते हैं उस जगह के बारे में, लेकिन राधा एज अ कैरेक्टर बिल्कुल नहीं भूलती है और उसको ऐसा लगता है कि बस मुझे वापस गांव भेज दो या फिर गांव को शहर ले आओ, तो वो गांव को शहर ले आइए। और यहाँ पे वैसे तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है लेकिन यहाँ पे भी लाइटिंग चल रही है, तो यहाँ इसलिए वैसे तो आपको एकदम सजा धजा मतलब रहता है थोड़ा सजा धजा। ये इसमें सिंदूर है, सिंदूर की डब्बी है, अ सजा तजा रहता है कमरा, लेकिन अभी शूटिंग करने वक्त यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग का काम चल रहा है और वो मेरा ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग टेबल है बेसिकली, जहाँ मैं बैठ के थोड़ा बहुत अपने मिस्टर जी के लिए श्रृंगार करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा वहाँ पे लाइटिंग का काम चल रहा है। और ये बेडरूम, और ये भी तो देखिए ना पीछे का वॉलपेपर भी मतलब बड़ा ट्रेडिशनल सा है, बड़ा अच्छा सा है एकदम ना, क्योंकि ऐसे एकदम मॉडर्न मॉडर्न भी मतलब वही कलरफुल है कमरा। हमें आजकल अगर आप नोटिस करते हो लोग ना बड़े वैसे से कलर्स का इस्तेमाल करते हैं जो पर्सनली मेरे को भी पसंद आते, बड़े ग्रे डल डल शेड्स, तो राधा का कमरा एकदम कलरफुल है। आपको वो टेबल क्लॉथ से लेकर पिक्चर से लेकर ये सब बास्केट से लेकर सब डिजाइन, वॉल्स भी इनफैक्ट बहुत कलरफुल और बहुत लाइवली कमरा है, तो मुझे नहीं अच्छे लगते वो थोड़े डल डल से, कोई कलर नहीं है ऐसे ग्रे ग्रे से, जो एस्थेटिक होता है विच इज गुड, इट्स फाइन, बट मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट थोड़ा सा कलरफुल, थोड़ा सा ट्रेडिशनल, छोटी छोटी चीजें हों और ऐसी सी चीजें हों जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये कमरा और इस कमरे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो राधा की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। और मेरी चूड़ियाँ भी है, मेरी चूड़ियों को मत भूलिए, मैं बहुत, मुझे मेरी चूड़ियों से बहुत प्यार है, तो इनको तो मैं दिखा के रहूंगी, जो मेरी कलरफुल चूड़ियां हैं। और अब आते हैं छोटे बच्चे के कमरे में, उसका भी कमरा फटाफट दिखा देते हैं। तो ये कीनू का कमरा है जो शो में मेरा बच्चा है, और अभी तो थोड़ा लाइटिंग यहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी आपको हल्का सा एक जिस्ट दिखा देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे उसके टॉयज हैं, खूब सारे मेडल्स हैं, कितना ओवर अचीवर, मतलब मैं कितनी खुश होगी जब जब मैं शादी करूंगी, फिर जब मेरा बच्चा होगा फिर वो इतने सारे मेडल्स लेकर आएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और पता है यहाँ पे मेरी एक और बहुत फेवरेट चीज़ है जो मैं दिखाती हूँ आपको, मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है, वो आपको समझ आएगी या नहीं आएगी या क्या आएगी वो मेरे को नहीं पता, लेकिन कभी कभार ना कह के भी आप बहुत कुछ कह सकते हो। क्योंकि देखो ना, मैं ये सेट पे आई और मुझे, मैंने कहा यार ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा कैरेक्टर है, कभी छूटेगा भी नहीं, हमेशा नोबिता मेरे साथ रहेगा और डोरेमोन भी मेरे साथ रहेगा, शिजुका जी भी है यहाँ पर। अब क्योंकि ये तीन है तो डायलॉग तो बनता है, तो चलिए एक डायलॉग बोलते हैं राधा के रूप में लेकिन नोबिता की आवाज में। डोरेमोन डोरेमोन, क्या तुम मुझे कोई गैजेट दे सकते? डोरेमोन तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, अगर तुमने मुझे कोई गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा। शिजुका शिजुका, देखो कितनी प्यारी लग रही है पिंक टॉप में, ये मुझसे बात नहीं करेगी फिर मैं क्या करूंगा डोरेमोन। अरे मैं तो क्रिकेट बहुत खेलती हूँ, स्टम्प्स जब डोरेमोन के ऐसे कैरेक्टर नोबिता उस पे हो तो मतलब ये नोबिता और ये नोबिता दोनों एकदम बढ़िया हैं।
0: तो भाई देखा आपने, सिमरन तो मल्टी टैलेंटेड है, ये कार्टून कैरेक्टर की आवाज भी निकालती हैं, एक्टिंग भी करती हैं और डांस में तो है माहिर। तो आप सब भी राधा को ढेर सारा प्यार दीजिए, अब वक्त हो चला है सिमरन को बाय बाय कहने का।
1: तो आज आपने देखा आपकी राधा का घर, एंड आई होप आपको घर देखकर बहुत मजा आया होगा, मैंने पूरा आपको होम टूर दिया है राधा के घर का। और लेकिन बदले में मुझे आपसे एक प्यारी सी चीज चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी राधा शो को ढेर सारा प्यार दे, बहुत सपोर्ट करे, अब ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, खूब सारा प्यार दे रहे हैं, लेकिन और ज्यादा प्यार दीजिए, मैं मुझे सारा प्यार चाहिए आपका। तो प्लीज आप हमारी राधा को ढेर सारा प्यार दीजिए और देखते रहिए हमारा प्यारा सा शो, हमारा प्यारा सा शो जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी राधा।
0: मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल जगत धात्री में रुद्र की शोक सभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब जगत धात्री ने बताया कि रुद्र जिंदा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए जगत धात्री ने लिया काकी का सहारा। अब काकी सबके सामने मुकर जाएगी या फिर देगी जगत धात्री का साथ, चलिए देखते हैं।
0: रुद्र के मातम पर मचा कोहराम।
4: प्लीज आज के दिन में बख्श दो, आज रुद्र का मिलन उसका रहने दो प्लीज जगधात्री।
5: तपस्या का सुख तो तुझसे कभी देखा नहीं गया।
0: जगधात्री पर फिर लगे इल्जाम।
5: हमारे दामाद जी को तो तूने छीन ही लिया।
0: क्या शिवाय देगा जगधात्री का साथ? जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जैसे ही जगधात्री ने सभी घरवालों को ये बताया कि ये लाश रुद्र की नहीं है, तब से संपदा और तपस्या दोनों ने ही रोने का ड्रामा शुरू कर दिया है। और तो और आज जगधात्री ने घर पर बुला लिया है काकी को, जिन्हें देखकर सभी घरवाले हो रहे हैं हैरान और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये काकी है कौन। ऐसे में जगधात्री ने सभी को बताया कि जिसकी लाश है ये उसकी माँ है। बस फिर क्या, ये सुनकर माया ने जगधात्री को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ये झूठ हुआ तो माया कभी उसे माफ नहीं करेगी। लेकिन जगधात्री को पूरा यकीन है। ऐसे में जगधात्री ने काकी को बॉडी की शिनाख्त करने को कहा। बस फिर क्या, जैसे ही काकी गई और देखे कैसे उन्होंने लाश को देखते ही सभी घरवालों के सामने झूठ बोल दिया कि ये उनका बेटा है ही नहीं। बस फिर क्या, शुरू हो गया ड्रामा।
4: क्या कह रही हैं आप? क्यों कह रही हैं? आप सबको बताइए ना, आप सबको बताइए ना सच कि यह आप ही का बेटा है। सच ही कह रही हूँ, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा जिंदा है।
6: अरे वो क्या रहा है यहाँ पे, क्या तमाशा लगा के रखा है? हाँ क्या पूछ रहे हो, क्या बोल रही है ये? मेरा बेटा बड़ा है, हम क्या शांति से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं? इतना भी हमें नसीब नहीं होगा क्या? हाँ बाहर में गई तबीयत मेरी।
4: शिवाय इन्होंने कहा था कि
7: बस
8: हाँ, कल तक तो मुझे भी नहीं पता था कि ये साजिश है। हम सब लोग सैड थे, रियली सैड थे कि क्या कहते हैं रुद्र हमारा चला गया, मैं हमारा दामाद चला गया, तपस्या के साथ इतना बुरा हुआ। पर अचानक से एक ट्विस्ट आता है कि तपस्या के मुंह से ही हमें पता चल जाता है कि रुद्र अभी जिंदा है। अभी हम लोगों ने रुद्र को देखा नहीं है और किसी को कुछ नहीं पता है, तो हमें भी बिलीव करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन तपस्या कह रही है कि रुद्र जिंदा है, तो फिर ये जो आज का हमने कुछ कहा कि कोई मतलब मैं तपस्या को सपोर्ट करने के लिए आती हूँ, वो लोगों की क्या प्लानिंग है इतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता, पर तपस्या को सपोर्ट करने के लिए मैं आई हूँ कि हाँ भाई अब चलो हमें थोड़ा नाटक करना है, थोड़ी प्लानिंग करनी है कि सबको ये दिखाना है कि रुद्र, ये जो लाश पड़ी है वो रुद्र की है, तो वो मैं मेरा काम कर रही हूँ।
0: भाई शिवाय ने भले ही जगदात्री की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन शिवाय ने सभी के सामने काकी से सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर वो यहाँ इस बॉडी की शिनाख्त करने क्यों आई, कौन उन्हें इस घर में लाया। ऐसे में एक एक कर सभी घर वाले उनसे सवाल करने लगे। बस फिर क्या, उन काकी ने जो बम फोड़ा वो सीधा जगधात्री के ऊपर जा गिरा।
4: काकी प्लीज बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या कोई लेकर आया आपको यहाँ? हाँ मुझे ये लेके आई है, वो भी जबरदस्ती। पूछो इससे पूछो, मैंने बोला था मेरा बेटा जिंदा है।
9: सिर्फ वो दो दिन से घर नहीं आया,
4: ये बोली वो मर चुका है, इसलिए मैं घबरा गई और मैं इसके साथ आ गई, पर ये मेरा बेटा नहीं है।
0: अब काकी की बातें सुनकर जगधात्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर काकी अपनी बात से मुकर कैसे गई। ऐसे में जगधात्री ने काकी को अपना मोबाइल भी दिखाया, वो तस्वीर भी दिखाई, जिसे देखकर काकी ने हामी भरी थी। इतना ही नहीं, जगधात्री ने तो सभी के सामने उस बॉडी के हाथ में लगे टैटू को भी दिखाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या, काकी वहाँ पर भी मुकरने लगी और बात का बतंगड़ बनता चला गया।
4: ये टैटू टैटू क्या होता है? देखिए रुद्र के हाथ पे कोई टैटू नहीं था, आप सभी लोग ये बात तो जानते हैं ना, पर यहाँ इस बॉडी के हाथ पे टैटू है, इसका मतलब क्या हुआ?
10: इसका मतलब ये होता है कि तुम पागल हो गए हो।
4: जगदात्री प्लीज तुम जो भी करने की कोशिश कर रही हो ना, जस्ट स्टॉप इट, इट्स एम्बैरेसिंग। प्लीज आज के दिन में बख्श दो, आज रुद्र का मिलना और उसका रहने दो प्लीज जगदात्री। कैसे समझाऊं आपको मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज तुम मेरा यकीन करो, ये सच नहीं है। इन्होंने कहा था मुझसे कि ये इन्हीं का बेटा है।
7: मैंने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ?
8: हीरोइंस तो हमेशा सही रहती हैं, ये तो सीरियल का नियम है। तो और हीरोइन को हमेशा गलत साबित करने वाले हम करेक्टर आर्टिस्ट, ये भी नियम है तो, लेकिन ये है कि सच्चाई तो जगधात्री को ही पता है और जगधात्री को जो सच पता है वो कैसे भी करके प्रूफ करेगी, लेकिन कब करेगी कैसे करेगी वो भी मुझे नहीं पता, पर वो सच है, ये उसको पता चल गया कि ये साजिश है और वो अपनी बात कह नहीं पा रही है। और इस माहौल में हम जगधात्री पर बिलीव कर नहीं पा रहे हैं, देशमुख भी नहीं कर पा रहे हैं, और नाइक तो शुरू से उसके खिलाफ थे, मतलब मैं और मेरी बहनी और तपस्या, तो हमें और मौका मिल गया जगधात्री को ह्यूमिलिएट करने का और उसको झूठा साबित करने का, उसके चरित्र को देशमुख में थोड़ा नीचा दिखाने का, तो वो हम लोग यही कर रहे हैं कि उस वो तू झूठी है ऐसा बोल रहे हैं।
10: भाई जगधात्री तो सभी को सच दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शिवाय भी उस सच को अब मानने से मुकर रहा है। इससे पहले कि जगधात्री कुछ और कह पाती, सभी घर वाले जगधात्री पर बरसने लगे और ऐसे में मौके का फायदा उठाया संपदा ने।
4: कैसी बहन है तू जगधात्री,
5: तपस्या का सुख तो तुझसे कभी देखा नहीं गया,
4: अब दुख भी नहीं देखा जा रहा है,
5: वो चाहती क्या है,
4: ये सब करके तू क्या चाहती है, हमारे दामाद जी को तो तूने छीन ही लिया, अब क्या चाहती है कि तपस्या भी घुट घुट के मर जाए और किस्सा ही खत्म हो जाए, यही चाहती है ना तू, बता ना, अरे शांति से हमारे दामाद जी की अंतिम यात्रा भी नहीं होने दे रही है, जगदात्री मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, बहुत तो मैं तेरे पैर भी छू लूंगी जगदात्री, पर आज का दिन बहुत भारी है हम सब पर, इसको और भारी मत कर, मत कर,
8: बहुत ज़्यादा नौटंकी, क्योंकि अगर सच्चाई होती है तो उसको अगर थोड़े में भी कहा जा सकता है, पर जब हम कुछ झूठ बोल रहे होते हैं तो अक्सर हम झूठ बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, तो ये मेरा और तपस्या का झूठ है इसीलिए थोड़ा, और वैसे भी मेरा कैरेक्टर ही बहुत ही शुरू से ही ओवर एक्टिंग का था, तो इस वजह से तो मैं अपने ओवर एक्टिंग ही करती रहती हूँ।
10: बिल्कुल सही कहा, आज तो ओवर एक्टिंग में संपदा ने नंबर वन का खिताब जीत लिया है और सभी घर वालों के सामने ये विश्वास दिला दिया कि जो सामने पड़ी लाश है वो किसी और की नहीं बल्कि रुद्र की है, लेकिन जगधात्री सच जानती है और कहीं न कहीं अब शिवाय भी असमंजस में है, हालांकि वो अपने पापा को संभालने की कोशिश कर रहा है जो अभी जगधात्री और काकी पर भड़के हुए हैं। देखना होगा क्या जगधात्री सभी घर वालों के सामने ये प्रूफ कर पाएगी कि रुद्र जिंदा है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: बिग बॉस 20 इस हफ्ते शुरू होने जा रहा है और सलमान खान का ये रियलिटी शो जाना जाता है अपने कंटेस्टेंट्स के लिए, और हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 20 की ऑफिशियल लिस्ट, कौन होंगे वो घर वाले जो इस रियलिटी शो में कैद होंगे, आइए करते हैं उनका पर्दाफाश और देखते हैं बिग बॉस 20 की ऑफिशियल कंटेस्टेंट लिस्ट।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और हर साल की तरह लेकर हाजिर हूं इस साल के बिग बॉस यानी बिग बॉस 2020 जो आ रहा है 2026 में की ऑफिशियल कंफर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट। जी हाँ, आपने इंटरनेट पे बहुत सारे नाम देखे होंगे, ये आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन मैं लेकर आया हूं सीधा कंफर्म नामों की सूची। तो हर बार की तरह इस बार भी मिक्स है। इस बार 4 टीवी के एक्टर्स हैं जिन्हें आप अपने फेवरेट सीरियल्स में देख चुके हैं। इसके अलावा भोजपुरी की दुनिया से भी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है, ओटीटी की दुनिया से और फिल्मों की दुनिया से भी कुछ कलाकार हैं, रियलिटी शो की दुनिया से एक ऐसा एक्टर है जो दोनों रियलिटी शो जीत चुका है। लेकिन इस सीजन की खास बात है कि इस बार कुछ जेंजी लोग घर में शामिल होंगे। भाई हाल ही में हमारे देश में जेंजियों को लेकर काफी हंगामा हुआ था, तो इस बार बिग बॉस के घर में भी कुछ जेंजी आ रहे हैं। इसके अलावा म्यूजिक की दुनिया और स्पोर्ट्स की दुनिया और मॉडलिंग की दुनिया से भी कुछ प्रतियोगी हैं। तो इस बार का सीजन है 2020, तो 20 लोग घर में कैद होंगे। कुछ सरप्राइज एलिमेंट है, लेकिन मैं लेकर आया हूं ये ऑफिशियल लिस्ट। तो चलिए करते हैं बिग बॉस 20 यानी बिग बॉस 2026 के ऑफिशियल कंटेस्टेंट्स की लिस्ट का पर्दाफाश। बिग बॉस कंटेस्टेंट नंबर 1 का नाम है आसिफ खान। भाई आपने पंचायत देखी है तो उसमें जो दामाद जी थे, जो कहते हैं गजब की बेइज्जती हुई, वही है आसिफ खान। भाई उन्होंने मिर्जापुर से लेकर चमताड़ा जैसे कई ओटीटी शोज में काम किया है, और खास बात है कि उनका ओटीटी शो मिर्जापुर जिससे उन्हें पॉपुलैरिटी मिली, वो फिल्म के रूप में उसी दिन रिलीज हो रहा है जब वो बिग बॉस के घर में दाखिल हो रहे हैं। तो भाई बिग बॉस के घर में दाखिल होने जा रहे हैं आसिफ खान। राजस्थान के छोटे से शहर से आकर आसिफ ने फिल्मी दुनिया में, रंगमंच की दुनिया में, ओटीटी की दुनिया में और टीवी की दुनिया में एक नाम कमाया, लेकिन इन्हें पॉपुलैरिटी मिली ओटीटी शोज से, खासकर पंचायत थे। अब चूंकि जमाना बदल गया है, ओटीटी के कलाकार भी अब बिग बॉस में आ रहे हैं, तो बिग बॉस एक ऐसी एक समुंदर होता है जिसमें सारी नदियां आके मिलती हैं। तो इस बार ओटीटी का रिप्रेजेंटेशन लेकर आए हैं आसिफ खान। तो देखना होगा कि राजस्थान का ये लड़का क्या अपने किरदार के उस पर, अपनी रियल पर्सनैलिटी से गेम में कितना आगे तक जाएगा। बिग बॉस कंटेस्टेंट नंबर 2 माही विज। माही विज टीवी की दुनिया का एक काफी पॉपुलर नाम है, और भाई जिन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी सीरियल तुझसे लागी लगन में नकुशा के किरदार में। भाई इस शो में उन्होंने एक तरह से एक डुअल रूप निभाया था और इस शो से उन्होंने काफी पॉपुलैरिटी अर्जित की। उसके बाद उन्होंने बालिका वधू से लेकर हाल ही में सहर होने को है जैसा शो किया था। कलर्स चैनल के साथ माही का एक अनोखा नाता रहा है, क्योंकि उनका मोस्ट पॉपुलर शो भी कलर्स पे आया था, और अब कलर्स इतने सालों बाद, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 15-16-17-18 साल बाद कलर्स उन्हें मौका दे रहा है अपनी रियल पर्सनैलिटी को दिखाने का। वैसे माही के करियर की बात करूं तो उन्होंने अपनी शुरुआत म्यूजिक वीडियो से की थी, एक बहुत पॉपुलर म्यूजिक वीडियो था 90s का, तू तू है वहां, लेकिन सीरियल की दुनिया ने उन्हें पहचान दी। इसके बाद उनकी शादी हुई टीवी एक्टर जय भानुशाली के साथ और उन्होंने नच बलिए जैसे शोज भी जीते। उनकी एक बेटी है, लेकिन हाल ही में उनके अलगाव की खबरें आई थी, यानी जय भानुशाली के साथ उनका ब्रेकअप हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना सीरियल सहर होने को है अभी कुछ दिनों पहले ही छोड़ा था। तो माही एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है, क्योंकि बहुत ही आउटस्पोकन है भाई, वो पूरा दिल से बात करती है और अपनी काफी पॉलिटिकली करेक्ट भी रहती है। भाई लड़ने भिड़ने में माहिर है, अपनी बातें रखने जानती हैं, तो बिग बॉस के घर के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। कई सालों से माही और जय का नाम आता रहा था, जय का तो पता नहीं, तो माही ने इस शो में आने की हामी भर दी है। अब अपनी पर्सनल लाइफ का खुलासा करेंगी, अपनी कंट्रोवर्सीज का खुलासा करेंगी, या कुछ और टीवी की दुनिया के सच वो बताने वाली हैं, देखना होगा। बिग बॉस के घर में दिलचस्प, टीवी की दुनिया की वजह से उनकी एक फैन फॉलोइंग है जो उन्हें लंबे समय तक गेम खेलने के लिए सपोर्ट करेंगी। तो माही विज इज वन कंटेस्टेंट टू लुक आउट फॉर। बिग बॉस कंटेस्टेंट नंबर 3 कनिका मान। सीरियल्स की दुनिया का एक और नाम जिन्होंने ZTV के सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से पॉपुलैरिटी अर्जित की। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि कनिका ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंस नरूला के साथ एक सीरियल में की थी जिसका नाम था बड़ो बहू। इसमें वो एक हरियाणवी लड़की बनी थी जो वो रियल लाइफ में भी है। जी हाँ, ये किरदार कंगना रनावत की फिल्म तनु बेट्स मनु के किरदार पर आधारित था। इस सीरियल के साथ पानीपत की इस लड़की ने एंट्री मारी। हरियाणा की पंजाबी लड़की काफी पॉपुलर हुई अपने ZTV के सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद इन्होंने
जिन्होंने हाल ही में नागिन किया और बहुत से शोज किए, यहां तक कि खतरों के खिलाड़ी भी ये कर चुकी हैं। क्योंकि हरियाणा से है और हरियाणवी स्वैग इनमें भर भर के है। सीरियल की दुनिया का इन्हें एक्सपीरियंस है, इनकी एक अच्छी फॉलोइंग है युवाओं के बीच में भी, और टीवी सीरियल की ऑडियंस भी इन्हें पहचानती है। तो कनिका का एक स्ट्रांग चांस है लंबे समय तक खेलने का। अब चूंकि वो टीवी इंडस्ट्री में काफी काम कर चुकी हैं, उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में भी काम किए हैं, म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं, रियलिटी शोज भी किए हैं, टेलीविजन भी किए हैं, कुछ फिल्में भी की हैं, तो वो काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और मजा आएगा देखने में कि कनिका घर की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से कैसे लड़ भिड़ कर आगे तक पहुंचती हैं। बिग बॉस कंटेस्टेंट नंबर 4, टीवी की दुनिया से एक और युवा नाम इस बार बिग बॉस 20 के घर में कैद होने जा रहा है, और इस कलाकार का नाम है अमन गांधी। अमन गांधी को पॉपुलैरिटी मिली जब उन्हें मिला जी टीवी का सीरियल भाग्यलक्ष्मी, इसमें उनका किरदार काफी पसंद किया गया। इसके बाद उन्हें स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में ऋतिक का किरदार निभाने का मौका मिला। इस शो ने उन्हें काफी पॉपुलैरिटी दी, और उसके बाद उन्हें एक स्पिन ऑफ भी करने को मिला, रिश्तों के भी रंग बदलते हैं, जो स्टार प्लस पर वो कर रहे थे। भाई जब बिग बॉस को ऑफर आया तो वो खुद को रोक नहीं पाए और अपने सीरियल को कहा उन्होंने अलविदा, और अब वो दिखेंगे बिग बॉस के घर में। अमन गांधी काफी विटी है और एकता कपूर के कई शोज को ये एंकरिंग भी कर चुके हैं, मतलब वो एक हाजिर जवाब है, पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं, काफी खुश मिजाज हैं। लेकिन बिग बॉस का घर जो है खुश मिजाजी के लिए नहीं, बल्कि अपना रियल पर्सनालिटी दिखाने का है, क्योंकि अब तक हम इन कलाकारों को उनके किरदारों के रूप में देखते हैं, लेकिन अमन गांधी चूंकि इंडस्ट्री से है तो काफी बारीकियां वो समझते हैं और उनकी इमेज काफी क्लीन है। तो देखना होगा कि अमन गांधी बतौर रियलिटी शो कंटेस्टेंट क्या बिग बॉस में एक नई पहचान बनाकर बाहर जाएंगे। कौन जाने, वो ट्रॉफी भी जीत सकते हैं। बिग बॉस कंटेस्टेंट नंबर 5, भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली दुबे। भाई बिग बॉस के हर सीजन में भोजपुरी स्टार्स छाए रहते हैं, फिर चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, नीलम गिरी हो, दिनेश लाल निहलुआ हो, या फिर हो मोनालिसा। बिग बॉस ओटीटी में जब भी आता है तो भोजपुरी स्टार उसमें जरूर होता है, और इस बार बिग बॉस 20 लेकर आए हैं एक ऐसी भोजपुरी स्टार का जो काफी सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। मैं तो कहूंगा ये भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुरानी है जो अब बिग बॉस में अपना असली रूप दिखाने वाली है। आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, और खासकर उनकी फिल्में दिनेश लाल लोहिया के साथ बहुत ही सुपरहिट रही। आम्रपाली मुंबई में पली बड़ी लड़की है, काफी प्रैक्टिकल है, दिल से बोलती हैं लेकिन समझदारी के साथ बात करती हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में असली टेस्ट तब होता है जब समझदारी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि बिग बॉस के घर में कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता उस सिचुएशंस में खुद को एडजस्ट करने के लिए। तो क्या आम्रपाली अपनी भोजपुरी फिल्मों की इमेज को तोड़कर एक नई पहचान दर्शकों के साथ बनाएगी, तो ये देखना होगा दिलचस्प। फिलहाल रियलिटी शो में तड़का लगाने आ गई है बिग बॉस की बहुरानी आम्रपाली दुबे। बिग बॉस कंटेस्टेंट नंबर 6, मैरी कॉम। जी हाँ, भारत का नाम बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहराने वाली मैरी कॉम, जिनके ऊपर एक फिल्म

पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं और अपने स्टेट मणिपुर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मैरी कॉम ने बनाए हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है मैरी कॉम पर कि वो क्या अब तक जो उन्होंने अर्जित किया है क्या उससे वो वन लेवल अप लेकर जाएंगी। भाई उनकी रियल कहानी तो हम फिल्मी पर्दे पर देख चुके हैं, लेकिन मैरी कॉम कैसी है, इन टफ सिचुएशंस में कैसे हैंडल करती हैं, क्या एक स्पोर्ट्स वुमन की तरह, क्या उनका एक अनोखा अंदाज जो अब तक उनकी फिल्म में या उनके स्पोर्ट्स करियर में नहीं दिखा है वो देखने को मिलेगा। ये देखना होगा दिलचस्प। वैसे नॉर्थ ईस्ट से इससे पहले भी कई कैंडिडेट्स आए हैं, लेकिन मणिपुर से आकर मैरी कॉम क्या अपने स्टेट, अपने स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, अपनी जो लाइफ है उसका कोई पन्ने खोलेंगी या अपनी रियल पर्सनैलिटी जो उनके इस इमेज के पीछे है वो दिखाई देगी, ये मजेदार होगा देखना इस रियलिटी शो में जिसका नाम है बिग बॉस। और 20th सीजन में इस बार मैरी कॉम एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। बिग बॉस कंटेस्टेंट गुल्लू उर्फ कुशल तनवर। कुशल तनवर यानी गुल्लू इससे पहले दो रियलिटी शो जीत चुके हैं, रोडीज डबल क्रॉस और स्प्लिट्स विला X6। भाई दो दो रियलिटी शो जीतने के बाद अब वो आ गए बिग बॉस के घर में और शुरू से ही गुल्लू यानी कुशल का नाम काफी चर्चा में था। तो फाइनली अब गुल्लू को आप बिग बॉस में देखेंगे। भाई हबीबी हबीबी कहते हुए गुल्लू ने अपने फैंस के दिलों में जगह बनाई। ये एक पॉपुलर रियलिटी स्टार है और दो दो रियलिटी शो जीतने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बातों से खेलना जानते हैं, कॉन्टेंट कैसे बनता है इन्हें खूब पता है। तो ये टफ कॉम्पिटिशन देंगे सारे घर वालों को। फिलहाल गुल्लू का एक नया अंदाज बिग बॉस में देखने को मिलेगा। भाई रोडीज में उनका एक हमने यू नो स्वैग वाला अंदाज देखा, प्लिस फिल्म में उनका रोमांटिक अंदाज देखा, दोनों शोज को उन्होंने जीता। लेकिन बिग बॉस एक अलग टाइप का गेम है और नेशनल टेलीविजन पर गुल्लू का ये अंदाज थोड़ा उनके फैंस को चौंका भी सकता है, डरा भी सकता है और क्या पता हंसा सकता है। और कौन जाने प्रिंस नरूला की तरह, आशुतोष की तरह वो भी एक रिकॉर्ड कायम करें, क्योंकि पिछले रियलिटी शोज के इतिहास में जो लोग स्प्लिट्स विला या रोडीज टाइप के शोज से आते हैं वो जनरली काफी लंबी रेस के घोड़े होते हैं, वो आगे तक जाते हैं, कहीं तो जीत के भी गए हैं। तो क्या एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराएंगे गुल्लू उर्फ कुशल तनवर? मैं कहूंगा कि एक बहुत स्ट्रांग चांस है कुशल का इस शो में आगे तक जाने का। बिग बॉस के अगले कंटेस्टेंट का नाम है रोहेन खान। ये एक NRI है, मैं कहूंगा इंडियन तो नहीं है, इनका सिटीजनशिप ऑस्ट्रियन है लेकिन रियलिटी में अफगान इनकान पाकिस्तान के बॉर्डर की एक जगह से है और कई सारी भाषाएं बोल लेते हैं लेकिन मूलतः ये भारतीय फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में काम करते हैं। इन्होंने दिलजीत दोसांझ से लेकर काफ़ी सारी हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, तो काफ़ी सारे इन्होंने शोज़ किए हैं। तो एक हमेशा एक विदेशी कैंडिडेट जो होता है वो कुछ ना कुछ एक अलग रंग और स्वैग लेके आता है, तो रोहेन खान उस कमी को पूरा करेंगे। एक विदेशी जब भी कोई होता है एक आउटसाइडर के रूप में आता है और कैसे घर के घर वालों के साथ रम जाता है, तो रोहेन खान का वो अंदाज देखने को मिलेगा। चूंकि वो इंडिया के नहीं है तो सबसे पहले कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उनका जो होगा वो सबसे शुरुआत में लोगों को थोड़ा इंट्रीग करता है, फिर धीरे धीरे उनका असली रूप इस शो के सामने आएगा। अब देखना होगा कि रोहेन इन बाकी घर वालों के साथ कितना आगे तक इस शो में जाएंगे। फिलहाल एक नया अंदाज, एक नया बैकड्रॉप लेकर आ गए हैं अभिनेता रोहेन खान, जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा लेकिन अब उनकी रियल पर्सनैलिटी दिखेगी बिग बॉस 20 में। बिग बॉस कंटेस्टेंट लवप्रीत कौर। भाई आपको शहनाज गिल याद है, उसके बाद सारा गुरपाल और पंजाब से कई लड़कियां आई और उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा। आई थिंक शहनाज गिल ने पंजाब से एक नए दरवाजे खोल दिए और इस बार उसी परंपरा को आगे बढ़ाने आ गई है लवप्रीत कौर, जिन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है, बहुत ही आउटस्पोकन है, ठेठ पंजाबन है। इन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यूज अपने बिग बॉस की एंट्री के दे दिए हैं लेकिन ट्विस्ट ये है कि जनता का फैसला होगा एक और कंटेस्टेंट के साथ, उसके बाद ही लवप्रीत को घर में एंट्री मिलेगी। लेकिन लवप्रीत ऑलरेडी अपनी सब इंटरव्यूज में अपनी जर्नी, अपनी सब चीज़ें बता चुकी हैं। वो एतराज करती हैं कि उन्हें शहनाज गिल से कंपेयर करें, लेकिन बिग बॉस के घर में पंजाब से कोई आए तो शहनाज गिल से तो कंपेरिजन होगा ही। अब देखना होगा क्या शहनाज की तरह लवप्रीत वही जगह बना पाती हैं, वही प्यार पाती हैं, या फिर कुछ और कंटेस्टेंट की तरह वो अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाएंगी। लेकिन जितना उन्हें देखा और समझा गया है तो लवप्रीत होंगी इस बार इस सीजन की सरप्राइज, क्योंकि उनमें वो सारे गुण हैं जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट में होने चाहिए। तो घर में स्वागत कीजिए पंजाबी कुड़ी लवप्रीत का। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस।
बिग बॉस कंटेस्टेंट यंग डीएसए, जो दरअसल एक रैपर है। अभी एमसी स्टैन के बाद लगता है कि म्यूजिशियंस

0: हैं, छाए हुए हैं। लेकिन इससे पहले भी बिग बॉस के घर में कई सारी म्यूजिक के दुनिया के लोग आए हैं, फिर चाहे वो इस्माइल दरबार हों या फिर ढेर सारे सिंगर्स आके गए हैं और उन्हें कुछ ने इम्पैक्ट छोड़ा, कुछ ने नहीं छोड़ा। लेकिन एमसी स्टैन के बाद कुछ नई टाइप के म्यूजिशंस जो हैं वो बिग बॉस में आके एक नई पहचान बनाते हैं। तो ऐसे ही महाराष्ट्र पुणे के यंग डीएसए, पुणे के यंग डीएसए का असली नाम है हर्ष विजय मचारे, जिन्होंने मराठी पॉप को और हिंदुस्तानी क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक को एक साथ कंबाइन किया है। तो ये एक रैपर है और मुझे लगता है कि ये कॉमेडी और म्यूजिक का एक अच्छा संगम लेकर आएंगे। इनका एक गाना था येड़ा यंग, जो काफी हिट हुआ था। अब ये घर में सबको येड़ा बनकर पेड़ा खिलाते हैं या फिर अपने म्यूजिक से सबका दिल चुराते हैं, ये देखना मजेदार होगा। लेकिन म्यूजिशियंस जो आते हैं घर में वो अपना एक अंदाज, अपनी एक पर्सनैलिटी लेकर आते हैं। तो आई थिंक यंग डीएसए यानी हर्ष इस बार शो में कौन से सूट छेड़ेंगे, ये देखना होगा मजेदार। बिग बॉस 20 यानी 2026 में जेंजी कलाकारों को भी लिया गया है। भाई ये साल जेंजियों का साल रहा और जेंजियों ने हमारे पॉलिटिकल क्षेत्र हो या फिर हमारा एंटरटेनमेंट क्षेत्र हो काफी कुछ कर रहे हैं। देश हमारा हमेशा यंगिस्तान रहा है, तो जेंजी इस बार छाने वाले हैं बिग बॉस 20 के घर में भी। तो कौन है वो जेंजी के कलाकार, आइए आपको बताता हूँ। बिग बॉस कंटेस्टेंट रिया अहीर, भाई हाल ही में जो जंतर मंतर पर हुआ था वहीं पर मुंबई में एक लड़की ने बहुत वायरल होकर नाम कमाया था। उस लड़की का नाम है रिया अहीर, जो पेशे से तो एक मॉडल और एक्टर हैं, लेकिन उनका ये वीडियो जब हुआ वायरल तो वो अचानक से सुर्खियों में आ गई। बस बिग बॉस के घर में उनको एंट्री मिल गई। अब मॉडल एक्टर बनने के लिए तो बहुत मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन एक वायरल वीडियो ने रिया अहीर को अब बिग बॉस के घर तक पहुंचा दिया है। भाई वो सपने देखा पड़ती थी कि मॉडलिंग करेंगी, एक्टिंग करेंगी, एक्ट्रेस बनेंगी, और मुझे लगता है कि बिग बॉस अब रियल टेस्ट होगा इस जेंजी क्रिएटर का। जी हाँ, मैं उनको नाम दूंगा जेंजी क्रिएटर, जेंजी कलाकार। अब वाकई में क्या इस जेंजी में काबिलियत है आगे बढ़ने की, ये तो बिग बॉस में पता चलेगा, क्योंकि रियल में वो कैसी हैं, जो इमेज हमने वायरल वीडियोस में देखी है, जो इमेज हमने न्यूज चैनल पर देखी है, क्या वाकई में वैसी ही है रिया, क्या कुछ इसके बियॉन्ड है। देखना होगा कि रिया को बिग बॉस के बाद एक्ट्रेस बनने का मौका मिलेगा या फिर वो अनदर स्टार बनकर भूल जाएंगे लोग, ये देखना होगा मजेदार। बिग बॉस के घर की अगली जेंजी कंटेस्टेंट है रीति तिवारी, जो ज्यादातर मशहूर है मशहूर भोजपुरी एक्टर और पॉलिटिशियन मनोज तिवारी की बेटी के रूप में। लेकिन इसके बियॉन्ड रीति एक म्यूजिक कंपोजर, सिंगर हैं और साथ साथ पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखती हैं। इनफैक्ट वो बीजेपी का भी हिस्सा रही हैं। चूंकि वो एक पॉलिटिकल और म्यूजिकल फैमिली से ताल्लुक रखती है, उनके पिता मनोज तिवारी एक एक्टर भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं, और अपनी मम्मी रानी तिवारी की तरह वो भी काफी आउटस्पोकन है। मुंबई में जमनाबाई स्कूल में पली बड़ी रीति काफी स्ट्रांग माइंडेड है और बिल्कुल आज की जेंजी तरह है। तो क्या रीति अपने पिता मनोज तिवारी की तरह, जो पहले बिग बॉस के घर में आ चुके हैं, उनकी तरह एक अच्छी इमेज बनाएंगी क्या, जो टफ सिचुएशंस हैं उन्हें टफली हैंडल करेंगी या फिर थोड़ी ब्रेकआउट कर जाएंगी जेंजी के अंदाज में। इस फिल्मी बेटी का घर में क्या होगा, ये देखना होगा मजेदार। फिलहाल जेंजी की कैटेगरी में आ गई हैं रीति तिवारी, अपने पिता का नाम लेकर जो है मनोज तिवारी, लेकिन उसके बियॉन्ड एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर, क्या वो बिग बॉस में अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा पाएंगी, भाई ये तो शो जब शुरू होगा आगे बढ़ेगा तब समझ में आएगा। बिग बॉस की अगली जेंजी कंटेस्टेंट है अरिफशा खान, जो दरअसल आई हैं हमारी टीवी सीरियल्स की दुनिया से ही, लेकिन इन्होंने नाम कमाया बतौर इन्फ्लुएंसर बनके। जब लोग इन्फ्लुएंसर कैटेगरी को नहीं जानते तो अरिफशा उस जमाने के इन्फ्लुएंसर हैं जब टिकटॉक वीडियोस बना करते थे, तो एक टिकटॉक स्टार ने इन्हें एक पॉपुलैरिटी दी। वैसे बचपन से कई सीरियल्स में काम कर रही हैं, उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पहचान मिली एज अ यंग इन्फ्लुएंसर। ये करीब 22-23 साल की है, बचपन से ही काम कर रही है, तो फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों से वाकिफ है। इनके ऑनलाइन फैंस की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, तो ये बन जाती हैं एक वेरी स्ट्रांग जेंजी कंटेस्टेंट, जो देखना होगा कि बिग बॉस के घर में कैसे टफ सिचुएशंस से निपटेंगी। फिलहाल जेंजी का जमाना है और अरिफशा एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर जेंजीज आजकल बहुत पसंद किए जाते हैं, तो अरिफशा का एक स्ट्रांग चांस है इस शो में आगे तक जाने का और बने रहने का। लेकिन कौन जाने, बिग बॉस के घर में चीजें कभी कभी पलट भी जाती है। फिलहाल अरिफशा खान आने जा रही है बिग बॉस के घर में अपना स्टाइल, स्वैग, ग्लैमर लेकर, जो उन्होंने बॉलीवुड, टेलीविजन और अपनी सोशल मीडिया से कमाया है। तो स्वागत कीजिए बिग बॉस के घर में अरिफशा खान का। अब बात करते हैं बिग बॉस के एक कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट की, जिनका नाम है ईशा रिखी। ईशा रिखी दरअसल सिंगर कंपोजर बादशाह की बीवी है और करीब 6-7 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही बादशाह और ईशा ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि वो अब डिवोर्स लेने जा रहे हैं। और डिवोर्स के स्टेटमेंट के तुरंत बाद अब ईशा रिकी की एंट्री हो रही है बिग बॉस के घर में। तो अब इसे क्या कहेंगे, यानी कंट्रोवर्सी के साथ ही ईशा रिकी की शो में एंट्री होगी। तो क्या बिग बॉस में ईशा रिकी अपनी कंट्रोवर्सीज की बात करेंगे, अपने हस्बैंड बादशाह के साथ अपने संबंधों की बात करेंगे, या अपनी रियल पर्सनालिटी जो वह है, क्योंकि ईशा भी एक परफॉर्मर है, कलाकार है, और बादशाह की एक्स वाइफ होने के अलावा उनकी एक पर्सनैलिटी है जो वो बिग बॉस में दिखाना चाहती हैं। तो कंट्रोवर्सीज और अपने पति बादशाह के साथ उनके निजी रिश्ते के अलावा ईशा रिकी इस शो में क्या करती हैं, टास्क कैसे करती हैं, घर वालों के साथ कैसे रहती हैं, भाई ये सब प्रूव करेगा कि वो कोई बबल नहीं जो बर्स्ट हो गई। उनकी एक पर्सनैलिटी है जिसे दिखाने वो इस शो में आई है। तो कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट की लिस्ट में ईशा रिकी आ चुकी है। देखना होगा कि पर्सनल लाइफ के उस बार ईशा इस घर में कौन सी इमेज लेकर जाएंगी। बिग बॉस कंटेस्टेंट उदिति सिंह। उदिति सिंह मॉडलिंग की दुनिया का एक पॉपुलर नाम है,
1: लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी जुड़ी हुई है टीवी एक्टर करण वाही के साथ, क्योंकि इनका और करण वाही का रिश्ता था। लेकिन अब इनका रिश्ता टूट चुका है और अब उदिति बिग बॉस के घर में भी आने वाली है। देखना होगा कि बिग बॉस के घर में वो अपने रिश्ते कैसे बनाएंगी। बिग बॉस के घर में इस बार कश्मीरी आवाज भी गूंजने वाली है, भाई सुरों की महफिल जमेगी, क्योंकि काजी तौकीर इस बार बिग बॉस 20 में नजर आएंगे। वैसे बता दें कि काजी तौकीर ने फेम गुरुकुल का खिताब जीता था, उसके बाद उन्होंने कुछ गाने बनाए और फिर अपनी जन्मभूमि यानी कि कश्मीर चले गए। लेकिन अब वो कश्मीर से वापस मुंबई आ गए हैं। तो क्या मुंबई आने की यही वजह है कि वो बिग बॉस के घर में भी जाएंगे।
0: बिग बॉस 20 में दिखेगा एक और कपल जिनका नाम है सना ईरानी और मोहित सैगल। भाई ये दोनों टीवी की दुनिया के एक पॉपुलर नाम है, जो मिले जब हम तुम नाम के एक शो में मिले थे, वहीं पर इन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया था और उसके बाद इन्होंने शादी की। इन्होंने रियलिटी शोज तो थोड़े बहुत किए, हाल ही में कबूल है कि एक वेब सीरीज में भी दिखे। काफी पॉपुलर है ये दोनों, और उस जमाने में जब 2008-2009 में जब मिले जब हम तुम आया करता था, ये काफी पॉपुलर थे और फिल्म इंडस्ट्री में इनकी अच्छी रेपुटेशन है। लेकिन बिग बॉस के घर में क्या ये दोनों कपल आगे बढ़ पाएंगे, टिक पाएंगे, ये देखना होगा दिलचस्प।
1: बिग बॉस 20 के घर में नजर आएंगे तन्मय सिंह। ये तन्मय सिंह वही है जिन्हें आप स्काउट ओपी के नाम से जानते हैं। ये एक गेमर है, इन्होंने एशियन इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स फेडरेशन में इंडिया को एक नई पहचान दी है। गेमिंग वर्ल्ड में इनका नाम बहुत है और इनके फैंस भी बहुत हैं। ऐसे में पहली बार होगा कि बिग बॉस 20 के घर में एक यूट्यूब गेमर आएगा अपना नया गेम लेकर। हालांकि बता दें कि 2025 में तन्मय ने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन फिर अप्रैल 2026 में इन्होंने वापसी कर ली है, क्योंकि ये खेल से दूर नहीं रह सकते और अब ये नजर आएंगे बिग बॉस 20 के घर में।
0: तो ये थे बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स जो अब घर में दाखिल हो चुके हैं। जी हाँ, रियलिटी शो बिग बॉस की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है, जहां पर ये सारे घर वाले आज सलमान खान के साथ एक स्टेज शेयर कर रहे हैं। उसके बाद इनकी घर में एंट्री होगी और बकायदा अगले 3 महीने तक इनमें से कौन घर में रहेगा, कौन आगे जाएगा, कौन विनर होगा, ये देश को देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हर अपडेट के लिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आते हैं ऑफिशियल और सच्ची कंफर्म खबरें। तो इस बार एक कंफर्म नाम हम लेकर आए हैं बिग बॉस 20 के मंच से। एक ऐसा रियलिटी शो है जिसका सबको इंतजार रहता है। तो देखना होगा कि बिग बॉस के पिछले सीजन की तरह या बिग बॉस 20 भी कमाल दिखाएगा। फिलहाल कई कंटेस्टेंट के नाम आपको चौंका सकते हैं, लेकिन कौन जाने स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और इनमें से कोई हो विनर जिसके बारे में हमने सोचा ना था। तो हर बार बिग बॉस के इतिहास में ऐसा होता है और इस बार भी लगता है ऐसा ही होगा। तो बने रहिए हमारे साथ टीवी की दुनिया के हर अपडेट के लिए, क्योंकि हम आपको रखते हैं हमेशा मनोरंजन की दुनिया की हर न्यूज से अपडेटेड।
2: सीरियल मन सुंदर में निहाल और जाह्नवी की शादी में बड़ा गोलमाल हो गया है, जहां शादी के मंडप पर बदल गई है दुल्हन। और जब ये सच निहाल के सामने आया तो उन्हें लगा जोर का झटका। कैसे, चलिए देखते हैं।
1: लगा निहाल को झटका, दुल्हन के के चेहरे से पर्दा। जुड़ा रुचिता और निहाल का अनजाना रिश्ता। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में जानवी घर से लापता है। ऐसे में निहाल की दादी सुभद्रा और माँ पूर्णिमा ने फैसला लिया है कि वो रुचिता को दुल्हन बनाएंगी। और तो और, सुभद्रा के कहने पर पूर्णिमा रुचिता का चेहरा ढककर दुल्हन बनाकर उसे शादी के मंडप पर ला रही है, लेकिन रुचिता वो घबरा रही है। ऐसे में रुचिता के कदम रुक गए और ये बात पूर्णिमा ने भांप ली। बस फिर क्या, रुचिता को मनाने के लिए पूर्णिमा ने जेल में फोन लगा दिया ताकि रुचिता को ये बता सके कि अगर वो शादी करेगी तो उसका भाई जेल से रिहा हो जाएगा। बस फिर क्या, फोन पर ये बातें सुनकर रुचिता के कदम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और वो निहाल के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सुभद्रा दादी और पूर्णिमा दोनों ही डरी सहमी सी हैं कि कहीं सभी घर वालों को ये बात पता ना चल जाए कि दुल्हन के जोड़े में जानवी नहीं बल्कि रुचिता है। बेचारी जानवी की पूनम नानी वो परेशान है क्योंकि आज उनकी जानवी की नहीं बल्कि रुचिता की शादी निहाल से हो रही है। खैर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन सुभद्रा और पूर्णिमा दोनों टेंशन में ही हैं। इसी बीच उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं निहाल रुचिता का चेहरा ना देख ले। इसलिए देखिए कैसे सुभद्रा दादी पूर्णिमा को इशारे करती हैं और पूर्णिमा जाकर लाइट बंद कर देती है ताकि अगर घूंघट उठाई भी तो उसे रुचिता का चेहरा नजर ना आ जाए। लेकिन ज्यादा देर तक वो सिचुएशन संभाल नहीं पाई क्योंकि अगले ही पल वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने घूंघट को लेकर एतराजगी जताई। बस फिर क्या, यहाँ पर भी सुभद्रा दादी ने सभी के सामने बहाना मार दिया।
3: अरे वो हमारे गांव वाले पंडित जी हैं ना, वो जहाँ से आते हैं वहाँ ऐसी रस्म है। उन्होंने बताया है कि जब दुल्हन का चेहरा छिपाकर सिंदूर लगाया जाता है ना, तो दूल्हे की उम्र लंबी होती है, 7 जन्मों तक रिश्ता टिकता है। जो जल्दी से चुनी लेगी।
1: सुभद्रा और पूर्णिमा दोनों को लगा था कि आज वो इस खेल में जीत जाएंगी, लेकिन जैसे ही निहाल अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने के लिए गया तो उसकी नजर जमीन पर रखे पानी के कटोरे पर पड़ गई, जहां पर उसने रुचिता का चेहरा देख लिया। बस फिर क्या, उसने तुरंत ही सभी के सामने घूंघट उठा दिया और सभी के सामने खुल गया रुचिता का राज। खैर अब शादी तो हो चुकी है, मांग में सिंदूर भी लग चुका है, मंगलसूत्र भी पहन लिया है। देखना होगा कि निहाल और रुचिता का ये अनचाहा रिश्ता कैसे चाहत में बदलेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: ईटीवी के सीरियल तू ही रे में हो गया है नरेंद्र और वृंदा का आमना सामना, जहां वृंदा को देखते ही नरेंद्र उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। ऐसे में क्या नरेंद्र वाकई दिल से माफी मांग रहा है या फिर ये उसकी कोई नई चाल है, देखना होगा दिलचस्प।
1: नरेंद्र बना जानलेवा दुश्मन। खतरे में वृंदा। आखिर कौन बनेगा वृंदा का रक्षक? जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में जैसे ही नरेंद्र और विपुल को पता चला कि वृंदा कहाँ रहती है, वो पहुँच गए हैं वृंदा से मिलने के लिए। और इस बात से अनजान कि नरेंद्र और विपुल उसके ही शहर में हैं, वृंदा तो मार्केट से सामान लिए खुशी खुशी जा रही थी कि तभी उसकी नजर पड़ जाती है नरेंद्र और विपुल पर। बस फिर क्या, उन्हें देखकर वो डर जाती है और घबरा कर जाने लगती है। ऐसे में नरेंद्र अपना ड्रामा शुरू कर देता है और देखिए कैसे वो वृंदा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है, विनती करता है, पैरों पर गिरकर माफी भी मांगता है। ये देख वृंदा हैरान है, लेकिन नरेंद्र और विपुल दोनों का ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में देखिए कैसे वृंदा को यकीन दिलाने के लिए नरेंद्र तो अपने गालों पर चांटे भी जड़ने लगता है।
4: गांव ने उनको बाहर निकाल दिया, सरपंच जी से बाहर निकाल दिया, बाहर एक झोपड़े में रह रहे थे। गांव वालों ने उन्हें जला के मारने की कोशिश की, अरे उन्होंने खुद को दो तीन बार मारने की कोशिश की, ना खाते ना पीते ना सोते, अब बहुत हालत खराब है।
5: बुलाया किसी को नहीं है, हम दोनों खुद चल के आए हैं। दरअसल वृंदा का पता कर लिया हमने कि वृंदा है कहाँ, और हम लोग उसको यहाँ लेने आए हैं, अहमदाबाद में आए हैं। तो हम लोगों का यही प्लान है कि हम लोग उसको यहाँ से लेकर वापस अपने घर जाएं।
6: और प्लान का ये है कि भाई एकदम अब सीधा बनना चाहते हैं, सीधा सच्चा पुरुष बनना चाहते हैं, जो कि आपको पता है कि क्या कहते हैं उसको, घड़ियाल के आंसू।
5: हाँ, मतलब कोशिश यही कर रहा हूँ कि ऐसा ना लगे कि ये मतलब घड़ियाल के आंसू हैं। मेरी फूई ने मुझे समझाया है कि ऐसा है कि अब ऐसा मत करना, तेरा जो ये नेचर है ना, तेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। तो मैं यहाँ आया हूँ अहमदाबाद में, मैं और विपुल भाई, और दोनों मिलकर वृंदा को यहाँ से ले जाने की कोशिश
6: करेंगे, पूरा लेके जाएंगे यहाँ से, पूरी कोशिश यही है हमें हमारी। बट अभी देखिए किस तरह से चीज़ें होती हैं, क्योंकि आगे की स्क्रिप्ट अब भी जब साथ में आई है हमारे, पढ़ेंगे हम।
5: दरअसल मतलब उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मैं बदल चुका हूँ, मैं जो पहले नरेंद्र था अब वो नहीं रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है आज तक है, और अब जो है तुम बात मान जाओ, वापस चलो गाँव में, और पुलिस से अपना जो केस मेरे ऊपर लगाया है वापस ले लो, ताकि मैं जाकर शांति से रह सकूँ।
6: क्योंकि हम लोग जैसे वृंदा गई गाँव से तो क्या हुआ ना, हमारा भाग्य चला गया, तो हमारे ऊपर केस हो गए और इनकम टैक्स की रेट पड़ी, और भाई की हालत तो इतनी ख़राब थी, घर से बाहर निकाला था और जानवरों के साथ रह रहे थे वो, तो इस चीज़ से परेशान हो करके, इसलिए हमें फाइनली धनकोट जी ने कहा है कि आप जाओ और वृंदा को लेकर के आओ इधर, और उससे ताकि वो केस वापस ले सके और चीज़ें नॉर्मल रूटीन में आ सके हमारी।
1: यहाँ विपुल ने वृंदा के सामने दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। उसे लगा था कि ये सारे दुख सुनकर वृंदा का दिल पिघल जाएगा, लेकिन वृंदा उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है नरेंद्र पर, जो इस ड्रामे को हाई वोल्टेज ड्रामा बनाने के लिए माता रानी की मूर्ति के सामने अपना सर पटकने लगता है। ऐसे में विपुल ये देखकर हैरान है और वृंदा जाकर नरेंद्र को रोकती है, लेकिन रोकने के साथ साथ नरेंद्र को ये भी बताती है कि नरेंद्र ने उसके साथ जो भी किया था ठीक नहीं था। इतना ही नहीं, वृंदा ने तो नरेंद्र और विपुल दोनों को ही माफ करने से इनकार कर दिया, और यही इनकार जानलेवा हमला में तब्दील हो गया।
5: वृंदा भरोसा कभी कर ही नहीं सकती नरेंद्र के ऊपर, जैसा नरेंद्र का चरित्र है उसने बचपन से देखा है। तो एक इंसान अगर एक बार में ऐसे बदल जाएगा तो कैसे विश्वास कर लेगी वो। और हमने जो कोशिश की है, जहाँ तक हमें पता है कि हमारे संजोग जी कहीं ना कहीं इसमें बीच में आने वाले हैं, जो हमारा ये जो प्लान है मैंने और विपुल ने सोचा है कि बना लेंगे, उसको चौपट करेंगे। क्या
6: चौपट करेंगे? वो जरूर करेंगे, बिकॉज वी आर विलन एंड हम लोग मार तो खाएंगे, ऑब्वियसली
5: विलन्स मार ही खाते हैं।
1: भाई नरेंद्र तो यहाँ पर वृंदा को ले जाने के इरादे से आया है, इसलिए देखिए कैसे मोहल्ले में मौजूद सभी लोगों को चाकू दिखाकर वो वृंदा को ले गया है। अब देखना होगा कि कौन बनेगा वृंदा का रक्षक और कौन सिखाएगा नरेंद्र को सबक।
7: जब ये कह चुकी है कि अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, तो फिर ये यहाँ नाम बदल के क्यों रह रही है? संजू भैया को बताऊं कि वृंदा ही अम्मू बन के यहाँ रह रही है।
8: कुछ गड़बड़ है, चाय में पी के देखना।
9: वो अम्मू के हाथ की स्पेशल चाय पीने की आदत पड़ गई ना, उसके बाद ही सारी चाय बेकार लगने लगी।
10: अम्मू से पहले भी इस घर में चाय बनती थी और आप लोग चाय पीते थे और एंजॉय।
1: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
11: मुझे जल्द से जल्द इस अम्मू की सच्चाई सबके सामने लानी पड़ी, ताकि मैं उसके साथ इसे दूर कर पाऊं।
2: अंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में दादी राध्या के खिलाफ नया षड्यंत्र रच रही है और डाल रही है देवरानी और जेठानी के बीच फूट। ऐसे में राध्या की जेठानी एकता उन पर भड़क रही है। राध्या इस नई मुश्किल का सामना कैसे करती है, चलिए देखते हैं।
3: आज मेरी
1: दादी ने चली चाल।
11: जरूर तुम्हें ना कोई पट्टी पढ़ाई होगी इसे, तभी मेरी बच्ची ऐसी बातें कर रही है।
1: देवरानी जिठानी के बीच बवाल। राध्या को खुश करने की प्रथम की कोशिशें।

0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में दादी तो बस मौके ढूंढ रही हैं राध्या और एकता के बीच फूट डालने की, और आज उन्हें वो मौका मिल ही गया। वो गई थी एकता के कमरे में, लेकिन तभी उन्हें राध्या के आने की आहट हुई, तो देखिए कैसे जाकर वो एकता के बिस्तर में छुपकर चादर ओढ़कर लेट गई। ऐसे में राध्या आई और इस तरह एकता भाभी को देखकर वो परेशान हुई। उसे लगा कि एकता की तबीयत खराब है। ऐसे में राध्या ने फैसला ले लिया। अब राध्या को क्या पता कि हाँ एकता ने नहीं बल्कि दादी ने कही है। खैर मौके का फायदा उठाते हुए दादी झटपट बाहर आ गई और देखिए कैसे एकता के कमरे को सुधारने लगी। ये देख एकता हैरान है और दादी को मना भी करती है, लेकिन दादी उसका ख्याल रखने का बहाना करती है और उसे करने लगती है गुमराह, ये बोलकर कि उसने राध्या को उसकी बेटी बुलबुल को स्कूल ले जाने दिया। बस फिर क्या, ये सुनकर एकता हैरान हो रही है और दादी एक के बाद एक चाल चल रही है। और राध्या को बुरा बनाते हुए दादी ने तो एकता को वो तस्वीर भी दिखा दी जिसमें राध्या बुलबुल और प्रथम तीनों साथ में सो रहे हैं, और वो देखकर एकता हैरान हो रही है और कहीं ना कहीं डर भी रही है। यहाँ दादी की चाल रंग ला रही है तो वहाँ बुलबुल वो हो रही है परेशान। ऐसे में उसे परेशान देखकर राध्या पहुँच जाती है उसकी परेशानी जानने के लिए। ऐसे में बुलबुल अपनी चाची को बताती है कि आजकल उसकी माँ एकता उसके साथ खेल ही नहीं रही। ऐसे में राध्या नन्ही सी बच्ची को समझाने लगती है कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है और ये बात उसे समझनी चाहिए, लेकिन वो तो ठहरी छोटी सी बच्ची, भला ये क्या जाने की, वो तो आने वाले बच्चे को ही कोसने लगी। राध्या समझा रही है लेकिन बुलबुल मानने को तैयार नहीं है और उसका कोसना एकता ने सुन लिया और मचा दिया बवाल।
1: देखिए ना एमजी, जिस बेबी के लिए बुलबुल इतनी एक्साइटेड थी आज उससे नफरत कर रही है।
2: राध्या बिंग राध्या वो बुलबुल को शांत कराती है और समझाती है कि बेटा आप जिद मत करो, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब है क्योंकि एक नया बेबी आने वाला है, तो वो अच्छे से समझाती है और बुलबुल और चिढ़ जाती है कि नहीं मुझे ये बेबी नहीं चाहिए क्योंकि बेबी की वजह से मम्मी की तबीयत खराब चलती है, तो मेरी मम्मी बदल गई तो इसलिए मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, आई हेट हिम, ऐसे करके बोल देती है। और इतने में एकता सुन लेती है, फिर एकता सीढ़ियों से नीचे आके बुलबुल पे पहले चिल्लाती है, उसके बाद राध्या उसको शांत कराने की कोशिश करती है एकता को, लेकिन एकता उल्टा उस पे ही बरस जाती है कि जरूर तुम्ही ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी तभी मेरी बच्ची ये सब बोल रही है।
0: अब एकता तो समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रजनी वो बहुत समझदार निकली, उन्होंने बुलबुल से पूछा। ऐसे में बुलबुल ने अपनी दादी को बता दिया कि उसकी राध्या चाची उसे कह रही थी कि आने वाले बच्चे की वजह से उसकी मम्मी बीमार रहने लगी है। बस फिर क्या, ये सुनते ही एकता का कंट्रोल खो गया और तो और मौके का फायदा दादी ने भी उठा लिया और वो राध्या पर भड़कने लगी।
3: गड़बड़ करके हर बार आप दोनों राध्या की बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। इसका इरादा गलत नहीं है।
1: आप सब लोग इसकी ये गलतदारी करें।
4: लेकिन मम्मी जी इसको कह दीजिए कि ये मुझसे और मेरे होने वाले बच्चों से दूर रहे।
2: बुलबुल चिड़चिड़ तो हो ही रखी है और मम्मी ऐसे बदल गई है इसीलिए, लेकिन मेनली राध्या पे ऐसा ब्लेम आ जाता है कि राध्या बुलबुल को ऐसे सिखा रही है कि उस बेबी के वजह से मम्मी बदल रही है और बुलबुल नेगलेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ एकता को नहीं पसंद आ रही है कि बुलबुल को मम्मी के खिलाफ राध्या भड़का रही है, तो इसीलिए बुलबुल एकता और भी चिढ़ जाती है राध्या से कि पूरा परिवार तो इसका साथ दे ही रहा है, प्लस मेरी बच्ची भी अभी उसकी भाषा बोल रही है। तो राध्या करने तो भला ही जा रही थी लेकिन हो सब उल्टा गया, तो ये हुआ सीन में।
0: अब देखना होगा कि राध्या इस सिचुएशन को कैसे संभालेगी, क्योंकि वो तो परेशान रहने लगी है। ऐसे में प्रथम उसकी परेशानी को बखूबी समझ रहा है, इसलिए देखिए कैसे उसके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए प्रथम ले आया है फूलों का गुलदस्ता, जिसे देखकर राध्या खुश तो है।
5: मैं तनु समझावा कि न तेरे बिना लगदा जी।
0: लेकिन प्रथम साथी देने वाला है राध्या को सरप्राइज भी। अब देखना होगा क्या उस सरप्राइज में भी दादी अड़ंगा अड़ाएंगी। मुंबई से कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नैंसी रॉय ने मुंबई में अपना नया आशियाना खरीदा है। ऐसे में सास बहू और बेटियां की टीम भी उनके गृह प्रवेश में पहुंची, जहां नैंसी ने हमारे साथ किया घर वाला डे आउट। तो चलिए देखते हैं कैसा है नैंसी का ये नया घर।
7: रूही का दिल फिर हुआ मन सुंदर, झूम रही है रूही उर्फ नैंसी रॉय। नया घर, पूरा परिवार एक साथ।

0: भाई नैन्सी रॉय के लिए ये है खुशी का दिन। जन्माष्टमी का त्यौहार लेकर आया है मन सुंदर की रूही यानी नैन्सी रॉय के लिए ढेर सारी खुशियाँ। बिहार की पूर्णिया की रहने वाली नैन्सी ने मुंबई में फाइनली अपना घर खरीद लिया और उन्होंने रखी ये खास पूजा, जहां पर बिहार पूर्णिया से नैन्सी का पूरा परिवार आया है पूजा के लिए। पूरे परिवार ने एक साथ विधिवत अंदाज में घर की पूजा की और देखिए नैन्सी की खुशी कैसे झूम रही है, डांस कर रही है, अपने घर के व्यूज दिखा रही है और साथ साथ सास बहू और बेटिया के ऑडियंस को टूर भी दे रही है। भाई इस मौके पर उनके सीरियल मन सुंदर की सबसे बड़ी दुश्मन अग्नि यानी अनन्या आई है बधाई देने, लेकिन पर्दे की ये दुश्मनी रियल लाइफ में सहेलियां हैं और आज सहेली की इस गुड विशेष के साथ नैन्सी ने अपने घर की पूजा में सास बहू और बेटिया को आमंत्रित किया, जहां वो अपना घर दिखाएंगी, अपने परिवार से मिलाएंगी और खासकर उनकी मम्मी से जो जिनकी आंखें भराई हैं अपनी बेटी के इस अचीवमेंट से। बिहार के एक छोटे से शहर पूर्णिया से मुंबई तक का सफर नैन्सी के लिए आसान नहीं था। उन्होंने कई सालों तक मन सुंदर से शो में मेहनत की और हाल ही में उन्होंने अपने शो को छोड़ा क्योंकि वो जल्द ही एक नए शो के साथ शुरुआत करने जा रही हैं और साथ साथ अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं मुंबई में नैन्सी के नए घर में, जहां उनकी पूरी फैमिली आई है इस खास पूजा में शामिल होने।
1: ओम गंगा ये नमः पीजिए, ओम यमुना हो जाता है, ओम यमुना ये नमः, ओम गोदावरी ये नमः, ऋषिकेशाय नमः, फिर दोनों हाथ पोछ लीजिए, हस्तो प्रक्षाल्य ओम श्री सदे लक्ष्मी सपत्याम बहु रात्रे वारसे नक्षत्राणि रूपमसिनो ध्यातम माय घन निखाणः मम महिखाणः सर्वलोकम माय

अरे अम्मा ससिना इंद्रो बृहस्रवाहा ससिना भूखा विश्ववेदा ससिना सारचो वरिष्ठनेमि ससिनो बृहस्पति दधातो बृहद स्वामरुदः वृष्णि मातरः शिवा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा वज्रं वसे माध्य विजत्राः स्थिरैरङ्गयितु शवाद्वं स्वसन विवसे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जगान।

0: की नैन्सी एंड ये मेरा घर जैसे कि आप देख रहे हैं. सो मुझे लगता है मुंबई आने के बाद मेरा सबसे बड़ा सपना यही था कि मैं अपना घर ले पाऊँ, एंड आज वो सपना सच हो गया है. और आप देख रहे हैं कि मेरे घर में कितनी चहल पहल है क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बिहार से यहाँ पर आई हुई है. मम्मी यहाँ किचन में खाना बना रही है. सो आप देखिए हम लोगों ने खीर बनाया है, एंड जो जो बिहार के होंगे उनको पता होगा शीतल प्रसाद चढ़ता है हमारे यहाँ पे, तो हमने वो भी बनाया हुआ है.
1: मुंबई में नैन्सी के नए घर की पूजा हुई और खासकर जब उन्होंने चाबी ली थी तो उनकी बहन आई थी, लेकिन आज उनके मम्मी पापा और उनका भाई आया है बिहार से. वैसे वो मुंबई में अपने भाई के साथ इस घर में शिफ्ट होंगी, लेकिन फिलहाल उनकी मम्मी की आंखें भर आई हैं अपनी बेटी के इस अचीवमेंट पे. तो मिलते हैं नैन्सी रॉय की मम्मी से.
2: बात खुश हूँ और क्या,
0: आंखों में दिख रहा है मम्मी के. बोलो क्या बोलना चाहोगी ऑडियंस को, नया घर में कैसा लग रहा है?
2: बहुत ही खुशी मिल रही है और यहाँ पे प्रॉपर बिहारी तरीके से हम लोग जो हैं प्रॉपर बिहारी तरीके से अरेंजमेंट किए हुए हैं, और जो बिहार में हम लोग करते हैं पूजा में वैसे पूजा की तैयारी हुई है. आप लोग प्रॉपर देखिए और जो जो बिहार में हम लोग बनाते हैं बस वही बनाए हैं, यहाँ की हम लोग जानते ही नहीं और यहाँ का नहीं है.
1: सीरियल मनसुंदर ने नैन्सी को पहचान दी. वैसे पर्दे पर उनकी दुश्मन अग्नि यानी अनन्या भी यहाँ पर आई है, देखिए ढेर सारी खुशियों के साथ. पर्दे पर भले ही ये दोनों दुश्मन होने के लिए लाइफ में ये बहुत अच्छी दोस्त हैं, और अच्छी दुआओं के साथ आज अनन्या आई है नैन्सी के पास. तो चलिए देखते हैं मनसुंदर किन कलाकारों का महामिलन.
3: आज अनन्या आई है नैन्सी के पास और मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी दोस्त ने इतना बड़ा अपना गोल जो था वो अचीव कर लिया, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं जब भी सोच रही हूँ मेरी आंखों में आंसू भर आ रहा है सोच के, क्योंकि इसका सपना था और आज मेरी दोस्त का सपना पूरा हुआ. मुझे बहुत ज्यादा खुशी है. अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है.
1: नैन्सी का एक घर अभी नया नया है और जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने पूजा रखी है, जहाँ पर उनके पापा पूजा कर रहे हैं, उनकी मम्मी पूजा कर रही है, उनके भाई और घर में ढेर सारे मेहमान हैं. तो चलिए नैन्सी के साथ घर का टूर लेते हैं और देखते हैं कि इस पूजा के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है.
0: So, ये मेरे किचन का व्यू है, बहुत ही सुंदर. मैंने बहुत मन पसंद करके ये घर फाइनल किया है. सो एंड ये मेरे मन सुंदर की सेट की नितेश जो मेरी हेल्प करने आई है आज, सी सो स्वीट. बोलो क्या बोलोगी, कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा लग रहा है. और दीदी बहुत ही प्यारी है, आज उनके घर में सेवा करने का मौका मिल रहा है मुझे नए नए घर में.
0: ये सब हुआ है मेरी ऑडियंस की वजह से. सो थैंक यू सो मच टू मेरी ऑडियंस, आप लोगों की वजह से आज मैं अपना घर ले पाई हूँ. मन सुंदर ने मुझे ये घर दिया है, ऑनेस्टली मन सुंदर ने ही मुझे ये घर दिया है. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू मन सुंदर एंड मेरी प्यारी ऑडियंस जिन्होंने मुझे 3 साल तक कंटिन्यू इतना प्यार दिया. बट कुछ चीज़ों की वजह से मुझे शो छोड़ना पड़ा, बट मैं फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जल्दी आपसे अलग शो में मिलूंगी. सो आइए. तो यहाँ पर जैसे आपको पीछे आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि हमारे यहाँ पर पूजा चल रही है, एंड ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी. आप पूरी वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पे पूजा चल रही है. सो ये मेरे भाई का बेडरूम होगा एक्चुअली, क्योंकि मैं और मेरा भाई हम दोनों ही अब शिफ्ट हो रहे हैं मुंबई. तो मैंने अपना घर इसीलिए भी लिया क्योंकि मुझे और मेरे भाई दोनों को रहना था. सो आप देखिए यहाँ से व्यू कितना सुंदर है. ये देखिए पहाड़ दिख रहे हैं, झील दिख रहे हैं, झरने दिख रहे हैं. मुझे लग रहा है मैं किसी सपनों वाले घर में आ गई हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मुंबई में ऐसा घर होना एक सपने से कम नहीं है. एंड मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है मेरा पहला घर. सो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं सुबह उठूँ और एक सुंदर सा व्यू हो, जो व्यू मुझे मिल रहा है मेरे मनपसंद घर में. सो जब इसका इंटीरियर होगा तो मैं आपको फिर से एक बार होम टूर दूंगी. सो आपके लिए उसके लिए आपको स्टे ट्यून इस वीडियो पर रहना पड़ेगा. सो आइए मैं आपको दिखाती हूँ. पापा पूजा में बिजी है. तो आइए अब हम पूजा में बैठते हैं.
5: अपने हृदय से लगाइए, दाहिने भुजा से लगाइए, दाहिने हाथ में. टच कीजिए ओम श्री सती लक्ष्मी सपत्याम रात्रि बारसे नक्षत्राणी रूपमसी नो ध्यातम
0: मम्मी
5: घर निघाण मम्मी खाण सर्वलोकम महि खाण.
1: फाइनल अपने परिवार के साथ एनसी की पूजा हुई खत्म और आखिर में उन्होंने दिखाया अपना कमरा जिसे जल्द ही वो सजाने वाली हैं. लेकिन फिलहाल वो एक्साइटेड हैं अपने नए घर, अपने नए कमरे और अपने नए व्यू के साथ. और त्योहार के सीजन में अपने नए घर का एक्साइटमेंट उन्होंने हमारे साथ कुछ इस अंदाज में शेयर किया.
0: आइए मैं आपको ले चलती हूँ मेरे रूम में. अभी तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं हुआ है, बट यहाँ मेरा कबर्ड होगा. वो आपको रूम ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाऊंगी. इस वीडियो के बाद आपको रूम ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ हमारा कबर्ड होगा, यहाँ हमारा बेड होगा, यहाँ मेरा सुंदर सा ड्रेसिंग टेबल होगा, एंड ये मेरा वॉशरूम है, एंड बहुत सारे कंटेंट बनाने वाली हूँ मैं यहीं पर. तो स्पेशली कंटेंट क्रिएशन को ध्यान में रखते हुए ये घर लिया गया है. सो मुझे एक्चुअली अभी तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी हाइट पर घर है, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी. पर बहुत सुंदर लग रहा है. आपको बहुत बड़ा सपना
5: एक्टर का तो स्पेस
0: और इतनी प्रॉब्लम्स आई है ये घर लेने में, इतनी प्रॉब्लम्स आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती. कभी रजिस्ट्रेशन में कुछ रुक गया, कभी डॉक्यूमेंट में कुछ रुक गया, अभी पूजा के दिन भी मैंने इनको भी वेट करवाया है क्योंकि एक्चुअली हमारे किचन का काम चल रहा था. आज सुबह तक हमारे किचन के रॉल्स लग रहे थे, बट एट द एंड सब अच्छा हो जाता है गाइस. सो आई एम वेरी हैप्पी कि पूजा भी चल रही है. आप लोग भी देखेंगे इसमें, इस वीडियो में, कि पूजा कैसे हो रही है और कितने धूमधाम से हम अपने घर की पूजा कर रहे हैं, कितनी खुशी से हम सब पूजा कर रहे हैं. सो आप लोग देखिए और आगे के ब्लॉग में मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी. रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे. तो आखिर ये सपना मेरा सच हो गया. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस होम. थैंक यू सो मच इस घर को भी कि इसने मुझे चूज किया. तो थैंक यू सो मच.
1: मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
6: आस बहू और बेटियां में आज बस इतना ही. कल फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमको इजाजत. नमस्कार.

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज दिल्ली में राष्ट्रपति ने 48 टीचर्स को दिया नेशनल अवार्ड, अवार्ड पाने वालों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं। मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, दिया नशा मुक्ति का संदेश।

0: दिल्ली NCR में बारिश से सुहाना हुआ मौसम, आसमान पर छाए काले बादल, कई इलाकों में जोरदार बारिश। श्रीनगर के डल झील में देवदूत बने SDRF के जवान, तूफानी हवा और तेज बारिश के बीच चलाए रेस्क्यू अभियान। मंदरदी में फंसी नाव पर सवार टूरिस्ट का किया रेस्क्यू। नीम करोली बाबा पे बने हनुमान अंश ने जन्माष्टमी पर भी मचाई गजब की धूम। हर दिन रच रही है कमाई का इतिहास, 100 करोड़ के आंकड़े को छूने के करीब पहुंची फिल्म।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा दही हांडी उत्सव, माखन की मटकी फोड़ने में जुटी गोविंदाओं की टोली। मुंबई में जगह जगह दही हांडी उत्सव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्ली में दही हांडी जश्न में हुए शामिल। इस मौके पर CM ने पारंपरिक रूप से फोड़ी दही हांडी, मानव पिरामिड बनाने वाले गोविंदाओं का बड़ा हौसला। मुंबई के घाट कोपर में भी दही हांडी का भव्य आयोजन, भारत की सबसे बड़ी दही हांडी में शुमार ही आई। इस भव्य कार्यक्रम में बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के कई बड़ी हस्तियों में शामिल, देशवासियों को दी दही हांडी उत्सव बधाई। मुंबई के दादर इलाके में दही हांडी का आयोजन, उत्सव में नारी शक्ति की दिखी खास झलक, बड़ी तादाद में लड़कियां भी जश्न में शामिल। महिला गोविंदा टोलियों ने पिरामिड बनाकर फोड़ी मटकी, लगे गोविंदा आला रे के नारे। अलवर में दही हांडी प्रतियोगिता में युवाओं ने आजमाया अपना दम, 17 टीमों ने लिया इसमें हिस्सा। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित, दही हांडी फोड़ने को लेकर युवाओं में दिखा खासा जोश। जन्माष्टमी के मौके पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गर्जी तोपे, श्रीनाथ जी मंदिर में दी गई 21 तोपों की सलामी, 350 साल से चली आ रही है ये परंपरा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी का भव्य महोत्सव, ठाकुर जी को पीताम्बरी से सजाया गया। कान्हा के जन्मोत्सव के बाद सुबह भव्य मंगला आरती का हुआ आयोजन, भारी संख्या में श्रद्धालु रहे इस दौरान मौजूद। बद्रीनाथ मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर की गई विशेष साज सज्जा, कृष्ण डोल उत्सव का हुआ आयोजन। आज दिन भर भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना, दर्शनों के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। मेरठ में पुलिस लाइंस में जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भजनों पर झूमे पुलिसकर्मी, बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। महाराष्ट्र के अकोला में 20,000 स्कूली बच्चों ने शाडू मिट्टी से गणपति बनाए, बच्चों ने उत्सव के साथ पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। अकोला में बच्चों ने खुद अपने हाथों से गणपति की प्रतिमाएं तैयार की, मकसद है आस्था के साथ प्रकृति को भी बचाना। बच्चों ने तय किया है कि 10 दिन पूजा के बाद गणपति का विसर्जन घर में ही करेंगे, इससे नदियों और तालाबों को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। अकोला की इस मुहिम में इस बार 20,000 बच्चे जुड़े हैं, पिछले साल करीब 10,000 बच्चों ने पर्यावरण फ्रेंडली गणपति बनाए थे। अकोला में बच्चों की स्नेक पहल का साफ है संदेश, गणपति उत्सव की परंपरा भी निभाए और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। सूरत के वेसू में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी हो गई है शुरू, यहां 40,000 वर्ग गज में महल जैसा विशाल पंडाल हो रहा है तैयार। इस बार सूरत में 22 फीट ऊंचे गणपति बप्पा विराजेंगे, खास बात देखी गई है कि मूर्ति 700 किलो टिश्यू पेपर से बनाई जा रही है। गणेश उत्सव में रोज करीब 1,00,000 श्रद्धालु के पहुंचने का है अनुमान, भीड़ को देखते हुए दर्शन और आने जाने की खास व्यवस्था की जा रही है। गणेश उत्सव में पूजा के साथ समाज सेवा का भी संदेश दिया जाएगा, वृद्धाश्रम और शेल्टर होम के लोगों का सम्मान और हेल्थ चेकअप होगा। गणेश उत्सव के 11 दिनों में भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसाद की व्यवस्था होगी, हेल्थ चेकअप में बीमारी मिलने पर जरूरतमंदों के इलाज में भी सहायता की जाएगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षकों को मिला सम्मान। 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए उत्कृष्ट शिक्षक। शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय सम्मान। विज्ञान भवन में जुटे देश भर के शिक्षक। शिक्षकों की मेहनत और उनके समर्पण को सम्मान। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को किया संबोधित। पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 138वीं जयंती।

0: साझा किया, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों का भविष्य निर्माण शिक्षकों की जिम्मेदारी, शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि हर बच्चे का बचपन उसमें हमेशा जिंदा रहे। पीएम से मुलाकात को सभी शिक्षकों ने बताया गर्व का पल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित टीचर्स के साथ खिंचवाई फोटो। दिल्ली में एसआरसीसी को छात्रों को आज शाम करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी ने जारी किया बधाई संदेश, पढ़ाई को आधुनिक स्वरूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाले समस्त गुरुजनों और शिक्षकों को दी मुबारकबाद। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, प्रदेश के बेसिक और सेकेंडरी शिक्षा विभागों के 81 बेहतरीन शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। पटना दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन गोला रोड स्थित ज्ञान निकेतन स्कूल में शिक्षक दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस मौके पर उन्होंने स्कूल परिसर में स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा का किया अनावरण, सभी शिक्षकों को दी बधाई। मुरादाबाद में टीचर्स डे का अनोखा सेलिब्रेशन, स्टूडेंट्स ने बनाई महान दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 40 फीट की शानदार रंगोली। देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी, गया में आज आयोजित पासिंग आउट परेड में दिखा जवानों का जोश। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल की दूसरी पासिंग आउट परेड, 35 महिला अफसर भी हुई इसमें शामिल। पासिंग आउट परेड में वियतनाम पीपल्स आर्मी के अधिकारी हुए शामिल, समारोह के दौरान सिंफनी बैंड ने देशभक्ति की धुनों और सैन्य मार्च की शानदार प्रस्तुति दी। ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऑफिसर कैडेट्स को दिए गए मेडल, परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर ने किया उन्हें सम्मानित। अफसर कैडेट्स ने पेश किया शक्ति, साहस और युद्ध कौशल का शानदार नजारा, दर्शकों में दिखा रोमांच।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लो
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार। सिल्वर स्क्रीन पर बाबा का दिव्य अवतार। हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा। धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा। जीएनटी स्पेशल शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 48 टीचर्स को दिया नेशनल अवार्ड। अवार्ड पाने वालों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं। मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, दिया नशा मुक्ति का संदेश। दिल्ली एनसीआर में बारिश से सुहाना हुआ मौसम। आसमान पर छाए काले बादल, कई इलाकों में जोरदार बारिश। श्रीनगर के डल झील में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। तूफानी हवा और तेज बारिश के बीच चलाया रेस्क्यू अभियान। मंझधार में फंसी नाव पर सवार टूरिस्ट का किया गया रेस्क्यू। नीम गरोली बाबा पर आधारित हनुमान अंश ने जन्माष्टमी के मौके पर मचाई गजब की धूम। हर दिन रच रही कमाई का इतिहास, 100 करोड़ के आंकड़ों को छूने के करीब पहुंचे सर।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। हिंदू धर्म में सिंदूर को बहुत महत्व दिया जाता है। महिलाएं सिंदूर को सौभाग्य और श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करती हैं। सिंदूर पति की लंबी उम्र और सुहाग की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है। आज हम आपको सिंदूर का आम जीवन में होने वाले कुछ अलग प्रयोगों और इसके महत्व के बारे में बताने वाले हैं। चाहे दुर्घटनाओं से रक्षा आप चाहते हो, या नौकरी पाना चाहते हो, तरक्की का वरदान चाहते हो, या फिर आप कर से मुक्ति का समाधान चाहते हो, सिंदूर के प्रयोग से सभी संकट दूर हो सकते हैं। ज्योतिष में इसके लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, तो शुरू करते हैं प्रार्थना हो स्वीकार का आज का सफर।

0: सिंदूर जो सुहागन स्त्री का ताज है, सिंदूर जो सुहाग की अमिट पहचान है, ये सिर्फ जीवन साथी के दीर्घायु होने भर का प्रतीक नहीं है, बल्कि सिंदूर सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का भी प्रतीक है। सनातन धर्म में सिंदूर को शुभता और सौभाग्य की निशानी माना जाता है, जो सुहागिनों के प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। आज हम आपको सिंदूर का आम जीवन में होने वाले कुछ अलग प्रयोगों और इसके महत्व के बारे में बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सिंदूर का भी खास महत्व है।
1: सिंदूर एक ऐसा चमत्कारिक पदार्थ कि जिसके प्रभाव से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, को जो व्यक्ति अपने माथे पर लगाता है उस व्यक्ति की सफलताएं और उस व्यक्ति का सम्मान चतुर्दिक बनता है। ऐसा व्यक्ति यदि अपनी स्त्री को अपने हाथ से शुक्रवार के दिन मांग में सिंदूर भरता है तो अपनी भी आयु वृद्धि करता है और धर्म पत्नी के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है और धर्म पत्नी और उस व्यक्ति का प्रेम भाव सदैव बना रहता है।
0: तो चलिए सबसे पहले सिंदूर के महत्व को जानते हैं। सिंदूर असल रूप में नारंगी रंग का होता है। महिलाएं सिंदूर को सौभाग्य और श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करती हैं। हिंदू धर्म में बिना सिंदूर के विवाह हो ही नहीं सकता। सिंदूर को मंगल ग्रह से भी जोड़ा जाता है, इसलिए सिंदूर मंगलकारी होता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और लेपन करना बहुत शुभ है।
1: सिंदूर लाल रंग का होता है, लाल रंग ही ऊर्जा का प्रतीक है और सिंदूर जो स्त्री अपने माथे पर अपने पति से लगवाए या प्रतिदिन पति का ध्यान करके लगाए उससे प्रेम भाव उत्पन्न होता है दोनों के मध्य में। और आप इस बात का समझ लीजिए कि माता पार्वती से सीधा सीधा जुड़ा है। जो स्त्री अपने माथे पर सिंदूर लगाए माता पार्वती का आशीर्वाद उसे स्वयं प्राप्त होता है। गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होने से ही सीता को राम जी मिले थे।
0: लाल रंग का सिंदूर सिर्फ सुहागिन स्त्री का गहना भर नहीं, बल्कि ये प्रतीक है शौर्य का, शक्ति और एहसास का। सुहागिनों का यही चुटकी भर सिंदूर आपकी समस्याओं का निवारण भी कर सकता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं, अगर आपकी नौकरी में कुछ समस्याएं आ रही हो या बार बार नौकरी छूट जाती हो तो कुछ महा उपाय करिए। किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाएं। एक सफेद कागज पर उस सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। इस कागज को अपने पास रखें। नौकरी की हर समस्या दूर होगी। धन की तमन्ना हर किसी की होती है। जीवन में सुख साधन और संपन्नता से जीना हर किसी का सपना होता है, लेकिन धन के अभाव में ऐश्वर्य नहीं भोगा जा सकता। और अगर जीवन में कर्ज ने परेशान कर रखा है, दुश्वारियां और भी बढ़ जाती हैं। तो चलिए अब ज्योतिष के नजरिए से जानते हैं कि अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाएं। जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्ते ले लें। हर पत्ते पर राम लिखें। इन पत्तों की एक माला बना लें। इस माला को मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करें। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। सातों फेरों के सातों वचन से जुड़ा है सिंदूर। इसका मूल्य भावनाओं से आंका जाता है। जब कोई लड़की विवाह के बंधन में बंधती है तो ये सिंदूर संस्कार में शामिल हो जाता है। सिंदूर का प्रयोग दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए भी किया जाता है, जिससे रिश्तों में मधुरता और मजबूती आती है। नित्य प्रातः स्नान के बाद माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करें, फिर स्वयं को भी सिंदूर लगाएं। सुखद दाम्पत्य के लिए प्रार्थना करें। ये प्रयोग केवल महिलाएं ही करेंगी।
1: अगर सिंदूर देवी को अर्पण करें तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। गणेश जी को अर्पण करें तो अति प्रिय वस्तु है। गणेश जी को सिंदूर लगाकर पान और सुपारी और साथ में लड्डू और दूर्वा अर्पण करें तो मन की चतुर्दिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और देवी के चरणों में चांदी की डिब्बी में सिंदूर भर के माता को लगाकर, उनके चरणों में लगाकर अपने माथे पर स्पर्श करा के चांदी की डिब्बी वहीं छोड़ाएं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सौभाग्य में निश्चित वृद्धि हो जाएगी।
0: कहा जाता है कि देवी पार्वती ने अपने पति शिव के लिए सदा मांग में सिंदूर धारण किया, इसलिए महिलाएं उनकी तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर के उपाय से देवी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके भी हैं कुछ नियम। देवी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार या शुक्रवार को सिंदूर अर्पित करें। देवी को सिंदूर अर्पित करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते।
1: कभी भी सूखा सिंदूर देवी को अर्पण न करें और कभी भी केवल सिंदूर अर्पण न करें। देवी के विषय में तो ये कहा गया कि सिंदूर जो व्यक्ति देवी को अर्पण करेगा वो अपने दो मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ तो उसको विवाह सुयोग्य कन्या प्राप्त हो जाए, ऐसे मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। और जिस व्यक्ति का विवाह हो गया लेकिन वैवाहिक जीवन में कहीं क्लेश है, कहीं आपस में कलह बना हुआ है, तो सिंदूर चढ़ाने से वो कलह शांति होकर प्रेम भाव उत्पन्न होता है। और जो व्यक्ति सिंदूर देवी को अर्पण करे तो लक्ष्मी की कृपा भी माता पार्वती के साथ साथ उसको प्राप्त हो जाती है, तो घर में धन का अभाव दूर हो जाता है।
0: सिंदूर का चमत्कार यही खत्म नहीं होता। कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके आप जीवन की कई बाधाएं दूर कर सकते हैं। विशेष प्रयोगों से जीवन में आने वाली किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको वो महा उपाय भी बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: महावीर विक्रम बजरंगी से सिंदूर की कथा जुड़ी है, इसीलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है सिंदूर का प्रयोग। राम भक्त हनुमान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है सिंदूर। कहते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके जीवन के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। ज्योतिष में इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताए गए हैं।

0: हनुमान जी की कृपा दिलाएगा सिंदूर। बजरंग बली की कृपा से कष्ट होंगे दूर। सिंदूर के प्रयोग से प्रसन्न होंगे हनुमान। भक्तों को देंगे मनचाहा वरदान। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि के अंश से ही इस धरती पर ईश्वर का अवतरण हुआ। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस धरती पर अवतार लिया, जिनके अनन्य भक्त बने महावीर हनुमान। उन्हीं से जुड़ी है सिंदूर की कथा।
1: माता को सिंदूर माथे पे लगाते देखकर बजरंग बली ने ये एक कौतुक किया था, अपने पूरे शरीर पर सिंदूर मलाए। तो भगवान राम ने जब ये पूछा कि ये क्यों किया, तो भगवान को बताया कि माता आपकी प्रीति प्राप्त करने के लिए माथे पे सिंदूर लगाती हैं, मैंने पूरे शरीर पे लगा लिया तो आप मुझसे अति प्रसन्न होंगे। तो भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो व्यक्ति आपको सिंदूर चढ़ाएगा मैं तो उससे प्रसन्न होऊंगा ही होऊंगा। इस बात पर प्रसन्न होकर भगवान हनुमान जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो व्यक्ति मुझे सिंदूर चढ़ाएगा मैं उसे शनिकृत पीड़ाएं, तंत्र प्रयोग से मुक्ति, उसके रोजगार में आने वाली अड़चने, इन समस्त समस्याओं को मैं उसके दूर करूंगा।
0: कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता से प्रेरित होकर सिंदूर लगा लिया था। तब से ही यह मान्यता है कि सिंदूर के प्रयोग से प्रसन्न होते हैं हनुमान। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से महावीर को सिंदूरी चोला चढ़ाता है उसके जीवन में आने वाले सभी संकटों का नाश करते हैं महावीर। कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके कर्ज मर्ज और दुर्घटना से बचा जा सकता है।
1: किसी व्यक्ति को शनिकृत पाप ग्रह कृत या किसी भी ग्रह जनित दोष व्यक्ति के जीवन में चला रहा हो या व्यक्ति के ऊपर बार बार टोना टोटका होता हो या तंत्र प्रयोग होता हो, व्यक्ति के रोजगार में किसी प्रकार की कमी आ जाए, नौकरी ना मिल रही हो, तो व्यक्ति को हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, सिंदूर घी या चमेली के तेल या आंवले के तेल के साथ चढ़ाना चाहिए और उनके उसमें दीपक जलाने के बाद उनके चरणों में भगवान राम की स्तुति करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार राम भजन हनुमान जी के आगे बैठ के करता है तो हनुमान जी उससे अति प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
0: कलयुग में हनुमान जी ही सबसे सिद्ध देव हैं। उनकी कृपा अगर मिल जाए तो जीवन के सभी कष्ट आसानी से दूर हो सकते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है सिंदूर का प्रयोग।
1: किसी व्यक्ति को रोग शरीर में चल रहा हो या एक्सीडेंट बार बार होते हो, वो व्यक्ति चमेली के तेल में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, चोला बना के चढ़ाए। नियम यह है कि हनुमान जी को पहले चमेली के तेल से स्नान कराए, उनकी मूर्ति पे करने के बाद फिर सिंदूर उनको लगाकर उनको मल मल कर लगाए, आंखों में न जाए ये ध्यान रखें। लाल रंग का वस्त्र हनुमान जी को और चांदी के वर्क लगाने के पश्चात उनको बताशे और पान भोग में दे। उस व्यक्ति को कभी एक्सीडेंट नहीं होगा और एक्सीडेंट होता भी है तो उसका वाहन भले खत्म हो जाए वो व्यक्ति सुरक्षित एक खरोंच भी नहीं आएगी, जीवित वापिस अपने घर वालों के पास आएगा।
0: हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिंदूर अर्पित किया जाता है। ध्यान रहे कि ये सिंदूर नारंगी रंग का होना चाहिए। मंगलवार को सिंदूर अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होते हैं, इससे दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। सिंदूर को पीपल या पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करना चाहिए। महिलाओं को सिंदूर नहीं अर्पित करना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा सकती हैं। भक्तों की पुकार सुनते हैं महावीर। बजरंग बली के भक्त उन्हें अलग अलग उपायों से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष के मुताबिक हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के कुछ नियम हैं।
1: हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करने के मूल नियम ये हैं कि पूरा चोला चढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति रोग शनिकृत पीड़ा और मन की इच्छा रोजगार से संबंधित चाहता हो तो वो तेल में चढ़ाए, चमेली के तेल के साथ मिलके, लेकिन सूखा नहीं। उसको चमेली के तेल से पहले भगवान को स्नान कराकर फिर उनके ऊपर सूखा सिंदूर लगाकर फिर भगवान को लेप करें, और भगवान को चांदी का वर्क या सोने का वर्क या भगवान को वस्त्र चढ़ाने के बाद प्रसाद अर्पण करें, माला अर्पण करें और एक मीठा पान भगवान को अर्पण करें तो मन की इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है।
0: हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर मंगल बाधा दे रहा हो या कोई विशेष संकट हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं और उसका लेपन भी, जबकि महिलाओं को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप सिंदूर के चमत्कार से हनुमान जी की कृपा हासिल कर सकते हैं। जो भी काम आप करेंगे बजरंग बली की कृपा से वो काम बिना किसी रुकावट के सफल हो जाएगा। महाबली हनुमान के आशीर्वाद से हर तरह की बाधा दूर हो जाएगी।
2: हम आपको सिंदूर के दिव्य प्रयोग से हनुमान जी की कृपा पाने के उपाय बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा महाप्रयोग जिससे बजरंग बली आप पर हो जाएंगे शीघ्र ही मेहरबान।

हनुमान जी को चढ़ाओ सिंदूर। दुख संकट रहेगा आपसे कोसों दूर। सिंदूर दिलाता है मंगल दोष से छुटकारा। महावीर की कृपा से मिलेगा भवसागर से किनारा। राम भक्त हनुमान की महिमा अपरंपार है। पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान की उपासना कलयुग में सबसे फलदायी है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भक्त अलग अलग उपाय करते हैं, लेकिन सिंदूर के दिव्य प्रयोग से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। सिंदूर के कुछ चमत्कारी प्रयोगों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब हम आपको सिंदूर का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने बच्चों को चोट चपेट से बचा सकते हैं। जी हाँ, ये प्रयोग नोट कर लीजिए। अगर आपने देखा हो कि आपके बच्चे को अक्सर चोट लग जाती है, तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर ले आएं। इसे एक जगह सुरक्षित रख लें। बच्चे को हर सुबह इसी सिंदूर का तिलक लगाएं। इस तरह से हमने आपको सिंदूर के कई ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया जिससे आप अभी तक अनजान होंगे। आप प्रयोगों को अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली और बदलाव ला सकते हैं। साथ ही आप इन प्रयोगों से हनुमान जी की कृपा हासिल कर सकते हैं।

0: भाद्रपद महीने में हमारे जो पूर्णावतार जिनको कहा गया भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर सबसे बड़ा है, उनका जन्म होना, भगवान बलराम का जन्म होना, भगवान गणपति का जन्म होना जिसमें हम गणेशोत्सव मनाते हैं, और भगवान शिव पार्वती के जो मिलन का दिन है हरतालिका व्रत, और संसार में सबसे बड़ी जो चीज है संतान की प्राप्ति कामना के लिए लोलार्क षष्ठी का व्रत, और रायसु यज्ञ करने वाले राजा युधिष्ठिर के लिए राज्य दिलाने वाला अनंत चतुर्दशी का व्रत। तो यह जो भाद्रपद मास है यह विविध मनोरथों से युक्त है। राधा अष्टमी पड़ती है, जो राधा जी का जन्मदिन है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम राधा अष्टमी, उस दिन हमारे यहाँ काशी में तो एक महालक्ष्मी का मंदिर है लक्ष्मी कुंड पर, वहाँ 16 दिन का मेला आरंभ होता है और महिलाएं 16 दिन लगातार भगवती लक्ष्मी की आराधना करती हैं, कुंड में स्नान करती हैं। आगे हम चलें तो अनंत चतुर्दशी का व्रत पड़ता है, जिस दिन नमक नहीं खाते और भगवान विष्णु की पूजा करके 14 गांठ के रेशमी सूत्र को हम अपने दाहिनी भुजा में बांधते हैं, नमक का त्याग करते हैं, और उसके दूसरे दिन से महालय आरंभ हो जाती है। जिनको लक्ष्मी की कामना है, तो हमारे यहाँ जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी पड़ती है, जो भगवती राधा जी के प्राकट्य का दिवस है, महालक्ष्मी व्रत आरंभ जिस दिन होता है उस दिन से भगवती महालक्ष्मी की उपासना 16 दिन लगातार करें, उनके जीवन में उनके परिवार में सुख समृद्धि का निवास होगा।
1: प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।

0: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: आज महाराष्ट्र सहित देश के तमाम इलाकों में दही हांडी उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। मुंबई की गली गली में इसके रंग देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से खूबसूरत तस्वीरें जो है वो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से सामने आ रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई की गली गली में इसके रंग जो है वो बिखरे हुए हैं। मुंबई के दादर से इस उत्सव का शानदार आगाज हुआ, जहां लड़कियों की टोली ने मटके फोड़कर इसकी शुरुआत की। और मुंबई में आज दिन भर बल्कि दिन से रात तक इस उत्सव के रंग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और हम आपको जीएनटी पर इसकी तस्वीरें लगातार दिखाते भी रहेंगे। वहीं मुंबई में आज तमाम जगहों पर नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटीज इस उत्सव में शामिल होकर गोविंदाओं का जोश बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई में इसकी तैयारियां जो है काफी पहले से ही शुरू हो गई थी। उसकी तस्वीरें भी हम लगातार जो एनटी पर आपको दिखा रहे थे। और आज जो गोविंदाओं की टोली है वो पिरामिड बनाकर मटकी यहां पर फोड़ती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मटकी फोड़ी और नशा मुक्ति का संदेश दिया। इसके साथ ही मुंबई में इसे काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें कई अभिनेता भी शामिल होते हैं। तो चलिए बात मुंबई की दादर की, जहां एक और दही हांडी की मटकी फोड़ने में नारी शक्ति का शानदार दमखम दिखा, तो वहीं यहां के दही हांडी मंडल की कमान भी एक महिला के हाथों में है। दादर दही हांडी मंडल के अध्यक्ष गौरी गावकर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और जाना कि इस उत्सव का आयोजन किस तरीके से किया जाता है। आप भी देखिए।
1: आपके पिताजी ने एक दही हांडी नहीं शुरू की, एक लेगेसी शुरू की एक तरीके से, कैसा लगता है आपको, क्या फीलिंग आता है?
2: उनका ड्रीम ही था ये कि लड़कियों को आगे लेके जाना है। वो एक ओपनिंग के लिए गए थे जिमनास्टिक्स के, जहाँ पे ये लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही, वो देख के उन्होंने पिरामिड बना रहे थे, सिंगल हैंडेड पिरामिड। तभी उनके दिमाग में ये थॉट आया, क्यों नहीं ये भी हड्डी लगा सकती है, इतनी अच्छी तरह पिरामिड्स बना रहे हैं तो ये भी इनसे हो जाएगा। तो उनको 3 महीने का टाइम था, 3 महीने बाद हड्डी थी, तो उनको बोला गया था कि आप प्रैक्टिस करो, आपको फोड़ने का चांस मैं दूंगा। और तब से ये ऐसे चालू है, अभी 35 इयर्स हो गए इसको।
1: आपने भी ये लेगेसी कायम रखी है, कितनी मुश्किलें आती है इसकी?
2: मुश्किलें तो इतनी नहीं आती है, बिकॉज जो पॉलिसीज है, जो हम लोग को गाइडलाइन फॉलो करने बोले, वो सब गाइडलाइन फॉलो करके ही हम सब करते हैं, तो इतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आता है। पुलिस वाले भी सपोर्टिव है, सब कुछ बीएमसी वीएमसी सब अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं, ऐसे कुछ नहीं। मेरी टीम भी बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करती है, जो एक वीक से पूरा तैयारी में लग जाते हैं, पूरा रात तक जगे रहते हैं यहाँ पे। मैट्स जो भी हम लोग का प्रोटोकॉल दिया गया है वो फॉलो करके ही सब हम लोग आगे लेके जा रहे हैं।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार। सिल्वर स्क्रीन पर बाबा का दिव्य अवतार। हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा। धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा। जीएनटी स्पेशल शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन। देखिए रण क्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 48 टीचर्स को दिया नेशनल अवार्ड, अवार्ड पाने वालों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं। मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, दिया नशा मुक्ति का संदेश। दिल्ली NCR में बारिश से सुहाना हुआ मौसम, आसमान पर छाए काले बादल, कई इलाकों में जोरदार बारिश। श्रीनगर की डल झील में देवदूत बने SDRF के जवान, तूफानी हवा और तेज बारिश के बीच चलाया रेस्क्यू अभियान, मझधार में फंसी नाव पर सवार टूरिस्ट का किया गया रेस्क्यू। नीम करोली बाबा पर बनी हनुमान अंश ने जन्माष्टमी पर मचाई गजब की धूम, हर दिन रच रही कमाई का इतिहास, 100 करोड़ के आंकड़ों को छूने के करीब पहुंच चुका है।

0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गोविंदा आला रे, गो गो गो गोविंदा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि देश भर में मुरली मनोहर नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने के बाद अब अवसर आ गया है दही हांडी उत्सव का। देखिए, इसकी तस्वीरें जो है हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से युवाओं में जोश है। गोविंदाओं की जो टोली है वो दही हांडी फोड़ने में यहाँ पर लगी हुई है। आज महाराष्ट्र सहित देश के तमाम इलाकों में दही हांडी उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। मुंबई की गली गली में इसके रंग देखने को मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो मानव पिरामिड बनाने की तैयारियां होती हैं, दही हांडी की जो तैयारियां होती हैं, ये बहुत समय पहले से ही शुरू हो जाती है जन्माष्टमी के। उसके रंग हम आपको पहले से ही दिखा रहे थे और आज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जन्माष्टमी के अगले दिन अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दही हांडी की, वो लोगों को किस तरीके से उत्साहित कर रही हैं। मुंबई के दादर से इस उत्सव का शानदार आगाज हुआ, जहां लड़कियों की टोली ने मटकी फोड़कर शुरुआत की। वहीं दहिसर और ठाणे में भी गोविंदा टोलियां पूरी तरीके से जोर आजमाइश के साथ मटकी फोड़ने की तैयारी में नजर आई। आज देर रात तक दही हांडी उत्सव का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। देखिए, यूं तो अब कई जगहों पर इसे मनाया जाने लगा है, लेकिन अगर बात मुंबई में करें विशेषकर, क्योंकि मैं खुद मुंबई में रही हूँ, तो ये जो दृश्य होता है वो देखने लायक होता है। आपको बता दें कि जगह जगह गोविंदाओं की टोलियां माखन के मटके फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाकर अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगी। और मुंबई में आज दिन से रात तक इस उत्सव के रंग जो है वो देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि हम भी आपको गुड न्यूज टुडे पर इसकी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। वही मुंबई में आज तमाम जगहों पर नेता अभिनेता और सेलिब्रिटीज इस उत्सव में शामिल होकर गोविंदाओं का जोश बढ़ाने वाले हैं। हमारे संवाददाता भी इस बड़ी कवरेज पर हमारे साथ रहेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिरकार दही हांडी के उत्सवी रंग किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, गो गो गो गोविंदा के जयघोष जो है वो हर जगह सुनाई दे रहा है और साथ ही में तमाम सेलिब्रिटीज भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। सुनील शेट्टी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही बादशाह समेत तमाम सिंगर्स भी कई जगहों पर पहुंचने वाले। तो चलिए, धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से, सीधा उनके पास चलते हैं। धर्मेंद्र, आपने तो कई बार इसे कवर किया होगा, मैं खुद मुंबई में रही हूँ और कहना पड़ेगा क्या मजा आता है आज के दिन। दही हांडी उत्सव पूरे दिन चलता है, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या नजारा वहाँ पे देखने को मिल रहा है?
1: देखिए, मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रताप सर नाइक, इस वक्त मैं उनके मंच में मौजूद हूं, जहां पर आम खास बहुत सारे मेहमान यहां पर पहुंच ही रहे हैं। कुछ देर बाद पहले बहुत सारे सेलेब्स भी यहां पहुंचे हुए थे, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से देखे इस तरह के महामंच, बड़े बड़े मंच मुंबई के सिर्फ प्रताप नाइक के मंच पे ही नहीं बल्कि हर नुक्कड़ सड़क गली पे देखने को मिलेंगे। और ये तैयारी पूरी वहां पे है और ये जो जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, यहां पर अतिथि मुख्य अतिथि सेलेब्स पॉलिटिशियन आम खास बहुत समान लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। अब थोड़ा सा ये नजारा जो है लोगों का देखें किस तरीके से तमाम गोविंदा पथक इस समय इस महामैदान में पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि अब तक 100 से ज्यादा जो यूनिट है, जो टीमें हैं, वो प्रयास करके जा चुकी हैं। देखिए, ये जो मैदान है, मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 12 हजार लोग इस समय यहाँ पर जुटे हुए हैं और मुंबई और महाराष्ट्र के कई जो गोविंदा पदक की जो टीमें हैं वो इस ग्राउंड में देखने को मिल रही है। हर किसी के दल का अलग अलग नाम है, हर कोई अपने समय का इंतजार कर रहा है। फिलहाल इस समय जो है वो आदित्य टीम प्रैक्टिस में लगी पड़ी है। थोड़ा सा देखें किस तरीके से दही हांडी को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाकर रखा गया है। जो भी टीम यहाँ पर 10 हर लगा लेगी उसे 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा और जो भी टीम उससे नीचे आएगी कुछ ना कुछ इनाम और स्पेशली सम्मान यहाँ से लेके जाएंगे। यहाँ पर उपस्थित होने वाले कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर के साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, मराठी कलाकार, भोजपुरी कलाकार और वो बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं सेलेब्स में गिनती होते हैं, मंच पे मौजूद हो रहे हैं। ये सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और रात 10 बजे तक चलता रहेगा, क्योंकि 10 बजे के बाद मुंबई पुलिस साउंड और जितने भी परमिशन है उसे कैंसिल कर देगी। सुरक्षा बहुत ही ज्यादा पैनी यहाँ पर की गई है, फिर चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की बात हो, मुंबई पुलिस की बात हो, या फिर यहाँ के जो प्रताप सरनाइक है उनके खुद के मेंबर्स की बात हो, उनकी भी टीमें लगातार लगी हुई हैं। ये देखिए बड़े बड़े यहाँ पर जो सम्मान है वो रखे गए हैं। जो भी टीमें यहाँ पर दाही हंडी तोड़ने के लिए आती है सभी का रजिस्ट्रेशन यही होता है, और फिर भले ही वो 10 थर ना बना पाए लेकिन जिस तरीके से 8 थर 9 थर की जो प्रक्रिया होती है, जो वो प्रयास करते हैं, उनके लिए भी सम्मान मिलता है। खास बात ये है कि इंद्र देवता भी आज सुबह से अच्छे खासे प्रसन्न है। बारिश हो रही है, नहीं भी हो रही है, और हो भी रही है तो धीमी गति से हो रही है, लेकिन ये जो ग्राउंड है वहां देखिए कीचड़ लगा हुआ है और बकायदा इनकी प्रैक्टिस है। 3-4 महीने पहले से ही प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, साल भर पहले से ही इन गोविंदा पदकों का इंतजार होता है, स्पेशली इस दाही हांडी को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। और खास बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस दही हांडी उत्सव को साहसी खेल नियुक्त किया है, और वाकई में साहस का काम है, क्योंकि बारिश में भीगे हुए और जिस तरीके के पोशाक इन्होंने पहन रखे हैं वो भी पॉलिएस्टर है, एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर के बकायदा पिरामिड बनाया जाता है।

0: की टीम बल्कि महिलाओं की टीम भी प्रयत्न कर चुकी है और यही माहौल है। देखिए खास बात यह है कि संस्कृति को जोड़ती है ये। देखिए यहाँ पर तमाम भीड़ तो जुटी हुई है लेकिन आसपास की जो इमारतें हैं उन इमारतों पे भी थोड़ा सा अगर नजर डालें तो हर कोई अपनी बालकनी से खिड़की से इस महाउत्सव का आनंद ले रहा है और हर कोई चाह रहा है कि इसमें शामिल हो जाए क्योंकि वाकई में महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा उत्सव है और इसे विदेशों में भी ले जाने की प्रक्रिया जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र की तरफ से प्रताप सरनाइक की कोशिश इस बात को लेके जारी है। अभी तक सेलिब्रिटियों की बात करें तो सुनील शेट्टी साहब अभी सुबह ही यहाँ पर आकर गए हैं। इसके अलावा और भी अभी बहुत सारे दिग्गज सेलिब्रिटियों का नाम शामिल है। अब हर किसी को यहाँ पर इंतजार है संजय दत्त का। खबर यह है कि संजय दत्त भी अब कुछ देर में ही इस मंच पे पहुंचने वाले हैं। आप देखें छोटा बड़ा बुजुर्ग हर वर्ग के लोग यहाँ पर शामिल हैं और खास बात यह है कि सुबह से बैठने की जगह किसी को भी नहीं मिली है लेकिन उत्साह और एनर्जी साफ तौर से छलक आ रहा है।
1: बिल्कुल धर्मेंद्र, उत्साह जो है वो लोगों का देखते ही बन रहा है। आप अपनी नजर इस पर बनाए रखिए और जैसे आपने कहा ना कि आज बारिश हो रही है, इंद्रदेव जो है वो प्रसन्न हो गए हैं, तो मैंने देखा है ये लगभग हर साल ही होता है धर्मेंद्र की जन्माष्टमी का मौका हो और बारिश ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए ऐसा लगता है कि जो कान्हा है वो भी प्रसन्न हो गए हैं और जो आज गोविंदाओं की टोली है वो मानव पिरामिड बनाकर जिस तरीके से दही हांडी तोड़ने वाली है उसके बाद वो और प्रसन्न होंगे। खैर नजर इसे बनाए रखिए, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। और आपको बता दें कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में दही हांडी उत्सव पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी ने घाटकोपर में उत्सव का जायजा लिया, आप भी देखिए।
2: देश भर में आज जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और महाराष्ट्र और खास करके मुंबई में इसकी बड़ी धूम देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर में हैं जहां पर बीजेपी नेता और विधायक राम कदम जी द्वारा भारत के सबसे बड़ी दही हांडी जो है वो लगाई जाती है, ऐसा दावा किया जाता है। हमारे साथ है राम कदम जी।
3: ऐसी हांडी है वो 6 साल होती है, बड़े जोश के साथ होती है, बड़े उल्लास के साथ होती है। इस साल की जोश और उल्लास के साथ में मटकी का प्रोग्राम यहाँ होगा।
2: लोगों का कैसा उत्साह है, खास करके गोविंदाओं का जो है मटकी फोड़ने आ रहे हैं, काफी भव्य दिव्य आयोजन लोगों का कैसा उत्साह है और गोविंदा जो खास करके उनके कैसा
3: है? नहीं, इसमें ऊंचाई तो आप देख रहे हो क्या है, रात को 10 बजे तक चलेगा, रात को 10 बजे तक चलेगा और रात को 10 बजे तक ये पूरा त्यौहार चलेगा। कई सारे मुंबई के बाहर के गोविंदा पतंग आएंगे और सबके बीच में ये पूरे त्यौहार को मनाने का एक अलग आनंद, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सभापति महोदय, कई सारे नेता, महाराष्ट्र के कई सारे सेलिब्रिटी सभी इसमें हिस्सा
2: लेंगे। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आज जन्माष्टमी के मौके पर?
3: देखिए हम देखिए प्रतियोगिता हम ले रहे हैं प्रतियोगिता और वो प्रतियोगिता महाराष्ट्र की महारील की प्रतियोगिता ले रहे हैं और उस प्रतियोगिता में हम पूरा जब आएंगे तब वो उसकी घोषणा करेंगे कि क्या होगा, किस तरह से होगा, पर बड़े धूमधाम के साथ शाम तक ये प्रोग्राम मनाया जाए।
2: बिल्कुल, तो एक अनोखी तरह की प्रतियोगिता जो है महाराष्ट्र रेल प्रतियोगिता को उसका भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, काफी ऊंची है दही हांडी होती है और दिन भर ये कार्यक्रम चलता है, रात को 10 बजे तक सैकड़ों गोविंदा पतंग जो है यहाँ पर आते हैं, यूएन पिरामिड बनाते हैं और इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कैमरामैन मंदार चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।
1: तो देखिए अलग अलग जगह से उत्सव के जो रंग है वो देखने को मिल रहे हैं। धर्मेंद्र ध्रुवे का एक बार फिर से रुख करते हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से आप हमें तस्वीरें दिखा रहे थे कि लोग अपनी बालकनी से भी देख रहे हैं, दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, 3,000 से ज्यादा लोगों के वहां पे पहुंचने की उम्मीद आप बता रहे हैं और देखिए चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वहां पर किसी के भी चेहरे पे शिकन नहीं नजर आ रही है। धर्मेंद्र, रात तक ये कार्यक्रम चलता है धर्मेंद्र?
0: अभी देखिए ये नई तस्वीर
1: जी,
0: बिल्कुल ये देखिए एक नई तस्वीर आपने देखा भी कुछ देर पहले ही, एक और दल जो है उन्होंने अपना पिरामिड बनाना शुरू कर दिया था। वाकई में 8 थर लगाना, 9 थर लगाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जैसा कि मैंने बताया, महाराष्ट्र ने साहसिक खेल दही हंडी को घोषित करा है, एक दूसरे का

0: विश्वास करके एक दूसरे के कंधे पे चढ़ते हुए पिरामिड बनाना। लगभग 200 से 300 लोगों की टीमें होती हैं, 100 लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, इसके अलावा 150 से 200 लोग उन्हें संभालने के लिए भी खड़े रहते हैं। साथ ही साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका ने भी तमाम वो सुविधाएं इन्हें दे रखी है, फिर चाहे वो मेडिकल की बात हो, मेडिकल क्लेम की बात हो, या फिर आसपास के अस्पताल में सीटें अभी से खाली रखने की बात हो, या फिर प्राथमिक उपचार केंद्र भी बगल में ही बना दिया गया है। इसके साथ ही साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका के भी तमाम जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मुंबई पुलिस भी एक सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ आज जितने भी रास्ते हैं वहां पर गोविंदा पथकों की जो टोली निकलती है ट्रकों द्वारा, बसों द्वारा, उन सभी को भी संभालने का जो जिम्मेदारी मुंबई पुलिस संभालती है, महोत्सव वाकई में काबिले तारीफ है चीजें। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बारिश भी है लेकिन फिर भी हर उम्र वर्ग के लोग यहां पर मौजूद हैं और बकायदा आज रात तक डटे होंगे। 10 बजे के पहले यहां से कोई भी खाली नहीं होने वाला है, लेकिन तारीफ उसकी होगी जो दस्तर बना करके ये जो ऊंची मटकी यहाँ पर बनाई हुई है, बड़े सज्जा धज्जा से यहाँ पर लटकाई हुई, यहाँ तक कौन पहुंच पाएगा, आखिर कौन होगा विजेता, कौन यहाँ से लाखों रुपए रकम जीत के जाएगा और अपने दल का नाम बहुत ज्यादा रोशन करेगा। और कहीं ना कहीं जो खास बात ये भी है कि महाराष्ट्र शासन की तरफ से ये भी तय किया गया है कि इस गोविंदा पथक को कहीं ना कहीं विदेश में ले जाएगा, वहां पे विदेश में भी ले जाकर के इस तरह के टूर्नामेंट खेले जाएंगे। और ये जो टोलियां हैं जो जो सम्मान हासिल करेंगी, जो विजेता बनेंगी, उन्हीं में से एक टीम बनाई जाएगी और बकायदा जिन्हें विदेशों का दौरा भी कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज गोविंदा पथकों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक बहुत बड़ा मौका भी है कि वो अपना बहुत अच्छा काम दिखाएं और महाराष्ट्र की टीम में शामिल हो जाएं। आपको बताएं कि देखिए गोविंदा पथक दही हांडी इस तरह से संस्कृति और इस तरह से पूरे देश में लत है कि इस पर कई फिल्में बनी हैं, कई गाने बने हैं, बड़े बड़े स्टार्स भी गोविंदा पथक के गाने गा करके उस पर एक्टिंग करके आज बड़े स्टार हुए हैं। और यही वजह है कि जो बड़ा सा मंच है यहां पर न केवल बॉलीवुड, मराठी, भोजपुरी और तमाम वो इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं आते हैं, बकायदा उनके साथ में अपना समय बिताते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनके लिए मनोरंजन भी करते हैं। जो गाना गा सकता है सिंगर वो गाना गाता है, जो एक्टिंग करता है वो एक्टिंग कर पा रहा है, और इसके अलावा जो डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस है वो भी लोग आके यहाँ करते हैं। जैसा कि सुनील शेट्टी साहब कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने मराठी में बहुत सारी यहाँ पर बातें करी, और इसके साथ ही साथ जो है ये देखिए फिर से एक पिरामिड बनता हुआ और अचानक ही नीचे गिर पड़ा। एक प्रयास, एक एकता और कहीं ना कहीं समानता का बहुत बड़ा प्रतीक है। और वाकई में एक दूसरे के भरोसे पर इस तरह से पिरामिड बनाना, अपनी जान जोखिम में डालना अपने आप में एक बहुत बड़ा साहसी खेल है। और जैसा कि मैं बता रहा था सुनील शेट्टी साहब भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने बकायदा मराठी में लोगों से बात करी, और इसके अलावा अपने फिल्मों के बहुत से डायलॉग भी उन्होंने कहे। आप देखें एक तरफ महामंच इस तरह से बना दिया जाता है, मुंबई के तमाम वो जो दिग्गज लोग हैं जो दही हंडी में कहीं ना कहीं सालों से लीन है, और आप देखें यहाँ पर ही कम से कम 500 से 1000 की तादाद में यहाँ भी इस मंच पे भी लोग खड़े रहते हैं। वीवीआईपी को बैठने के लिए बकायदा वैनिटी वैन का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा ये पूरा परिसर सुरक्षा के साथ, व्यवस्था के साथ बना दिया गया है। खास बात यह है कि मैं इस जगह जहां मौजूद हूं, ये थाने इलाका है और थाने में थोड़ा सा वीडियो जल्दी साहिल चौहान से कहूंगा आनंद दिघे साहब की तस्वीरें दिखाएं। आपको बताएं कि जो थाना जिला है, आनंद दिघे लोक नेता है यहां के, उनके नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, इनके नाम पे फिल्म भी आई है, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। और कहीं ना कहीं थाने में भी चार पांच एक बहुत बड़े मंच है जहां पर इस तरह के दही हंडी का आयोजन होता है, और आप खुद ही देखें कि इंद्र देवता जिस तरीके से प्रसन्न है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी धीमी रफ्तार में हो रही है, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, यंग, युवा यहाँ पर सब जुटे, और हर कोई सिर्फ एक ही बात कहता है, बोल बजरंग बली की जय। यही एक गूंज जो है, एक ये जो नारा है, ये आज मुंबई और महाराष्ट्र के हर उस मंच में देखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं मुंबई के दही हांडी की, फेस्टिवल शुरू हो चुका है। खास बात ये है कि जब एक
1: बिल्कुल धर्मेंद्र उत्सवी रंग साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, आप अपनी नजर बनाए रखिए, 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है तो आपके पास हम आने वाले हैं, आप हमें ये जो रंग है ये दिखाते रहिए। वहीं थाने की यहाँ पर बात हो रही है तो थाने में भी दही हांडी उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभिनेता सुनील शेट्टी, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे, वो भी इसमें शामिल होकर गोविंदाओं का जोश बढ़ाने पहुंचे।
2: बचपन में बहुत खेला हूँ, लेकिन अभी शायद वो ताकत नहीं है चढ़ने की और ना ही वो हिम्मत है। पर कोशिश हमेशा यही रहती है कि सालों साल खाना हो, क्योंकि यहाँ का माहौल ही अलग है। जब एक त्योहार मनाया जाता है ऐसे लगता है कि घर घर का हर बच्चा आके साथ त्योहार मनाता, और ये बहुत जरूरी भी है हमारे कल्चर को, हमारे रूट्स को, हमारी सभ्यता को हम आगे बढ़ाए दुनिया में। और दुनिया ये देखती है, आज खाना हो, म्यूजिक हो, हमारे फेस्टिवल हो, हमारी स्पिरिचुअलिटी हो, हमारा एक सन जट होकर रहना हो, वो सभी लोग बहुत ही बहुत उसकी तारीफ कर रहे हैं, दुनिया इस तरफ मुड़ रहा है। अच्छा, हाँ, बचपन में बहुत खेला, यही
3: विश्वविक्रम,
2: यही कि एक दूसरे का साथ दीजिए। गोविंदा से हम यही एक चीज जरूर सीखते हैं कि जब एक साथ हो तो आप किसी भी ऊंचाई पर चढ़ सकते।
1: तो देखिए, तमाम सेलिब्रिटीज लगातार पहुंच रहे हैं उत्सवी रंग आपको जीएनटी पे दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र दुबे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से सुनील शेट्टी अभी कह रहे थे कि बचपन में तो खूब खेला है लेकिन अब जो है हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये जो गेम है इतनी आसान नहीं है जिस तरीके से मानव पिरामिड बनाया जाता है, इसके पीछे साइंस भी है, क्योंकि जितनी मजबूत सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उतना ही ऊपर आप पहुंच सकते हैं और मटकी फोड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये देखिए, सारा आशीर्वाद ईश्वर का है। श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है और होने के बाद ही वो अपने गांव में जिस तरीके से चोरी करते थे मक्खन की, दही की, और जिस तरीके से पिरामिड बना करके वो मटकियां तोड़ते थे, वही तो लोग सीख रहे हैं और स्पेशली उस पर बहुत ज्यादा लोगों का विश्वास भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि 8 थर 9 थर 10 थर जब लोग बनाते हैं, 100-200 की टीमें लगती हैं, तो सुरक्षा किस तरीके से की जाती है। मैं जहां इस समय मौजूद हूं, कुछ इस तरह की विशेषताएं यहां पर है। ये देखिए, एक ये लाइफ जैकेट है, यहाँ पर जो लोग भी दही अंडी के लिए जुड़ते हैं, जो पिरामिड बनाते हैं, जो साहसी खेली स्पोर्ट्समैन है, उनको इस तरह से सिक्योरिटी जैकेट भी यहाँ दिया जाता है। और ये देखिए, एक बहुत बड़ी ट्रॉफी यहाँ पर बनी हुई है, 3-4 महीने से जिस किसी का इंतजार है, इसी ट्रॉफी का इंतजार है, और इसी के लिए लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। बड़ी बड़ी ट्रॉफी यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा ये देखिए, सिंधुदुर्ग, सालेर, ये बहुत सारे सम्मान हैं जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लोगों को दिए जाने हैं और होना भी ऐसा चाहिए। इसके अलावा आप देखें कितनी सारी यहां पर अलग अलग ट्रॉफियां रखी हुई हैं, जो कोई भी गोविंदा पथक यहां पर आता है और कुछ इस तरीके से पिरामिड बनाता है, भले ही वो जीत हासिल ना कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो सम्मान है वो यहां पर किया जाता है, क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा साहसी खेल है। अभी जो थर लगा हुआ है आप देखें, अगर मैं नीचे से गिनती करूं तो 1 2 3 4 5 और छठी थर यहां पर लगने तैयार हुई। और आप
1: देखिए धर्मेंद्र, ये जो खेल है आसान नहीं है, देखकर बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन जो गोविंदा होते हैं वो जिस तरीके से मानव पिरामिड बनाते हैं, एक के ऊपर चढ़ते हैं और अपनी जान जो है वो जोखिम में डालकर ये खेल खेलते हैं। अच्छा, एक सवाल धर्मेंद्र जो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप तो कई सालों से इसे कवर कर रहे होंगे, आपने तो कई मानव पिरामिड्स बनते हुए देखे होंगे, आपको कितना आनंद आ रहा है इस बार? आपने खेला है कभी ये खेल?
0: मैं खुद भी ये फील कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि वाकई में मैं खुद भी ये फील करता हूँ कि काश की मैं इस साहसिक खेल में खुद को भी जोड़ पाता, लेकिन चूंकि इसके लिए फिटनेस बहुत एक ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और शुरू से ही आपका एक एक मन होना चाहिए कि मैं दही हंडी के खेल में शामिल हो जाऊं। लेकिन खास बात यह है कि वाकई में ये जो मुंबई है इसमें सिर्फ एक मराठी मानुष नहीं है, दूसरे भी परप्रांति इसमें शामिल है, क्योंकि जब एक टीम बनती है तो बहुत ज्यादा लोगों को जोड़कर बनती है, एकता का प्रतीक है। क्योंकि आप खुद सोचें, 8 थर 9 थर लोग लगाते हैं अपनी जान की जोखिम डाल करके, बकायदा दही अंडी तोड़ने फोड़ने की कोशिश करते हैं, श्री कृष्ण की भूमिका निभाने की, उनकी टीम में शामिल करने की लोग प्रयत्न यहां पर करते हैं, लेकिन उनके आसपास बकायदा किस तरीके से महफिल बनती है और किस तरीके से तैयारियां होती है, ये आप तस्वीरों में देखें ना, आप देखें अब ये टीम फिर से एक बार तैयार हो रही है, मतलब जो पिरामिड बनाने वाले हैं वो बीच में आ गए हैं, और जब पिरामिड बनेगी और अचानक से नीचे की तरफ लोग गिरेंगे तो किस तरीके से उन्हें संभाला जाएगा उसका भी रणनीति इन्होंने बना रखा है। आपको बताया कि बाकायदा इस बार एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस और ट्रेनर लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल भी ये नहीं चाह रही थी कि गोविंदा पथकों को इस बार किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, किसी भी तरीके का कोई घाव लगे, किसी भी तरीके का कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए बाकायदा ट्रेनरों को बुला करके इन सभी को सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने कई तरह की योजनाओं के साथ कई उपलब्धियां भी इन गोविंदा पथकों को दी है। फिर चाहे वो मेडिकल क्लेम की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, या आसपास के अस्पतालों में सीटें खाली करने की बात हो, उन सारी तैयारियों के साथ इस तरह के गोविंदा पथकों को तैयार किया जाता है। और कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, कहना ये था कि भाई एक साल से इस चीज के लिए इंतजार किया जाता है तमाम। ये देखिए गोविंदा पथक अपना, एक मिनट भैया थोड़ा सा आपसे बात करते, इस तरफ हो जाओ। क्या नाम है आपका, आपका मतलब आपके पार्टी का क्या नाम है आपके?
3: श्री साई गोविंदा पथक।
0: अच्छा, तो कितना तरह आपने बनाया?
3: 7 ट्राई किया था पर गिर गए।
0: कितने लोगों की टीम थी आपकी?
3: ज्यादा नहीं, 30-40 जन थे हम लोग।
0: बोलो
4: बली की जय।
0: अरे बोलो
4: बली की जय।
0: क्या नाम है आपका?
4: नीरज।
0: और कितने साल के हैं?
4: 2।
0: कितने थर पे चढ़े थे?
4: 7।
0: 7 थर पे, डर नहीं लगता आपको?
4: नहीं।
0: जरा ट्रॉफी दिखा दीजिए। वाह, ये सम्मान। बोलो बजरंग
4: बली की जय।
0: धन्यवाद आपका। तो इस तरीके से भले ही यहाँ पर 10 थर नहीं लोग पहुंच पाए, लेकिन इस तरह का जो सम्मान है वो लिख लेते हैं। और देखिए फिर से एक बार पिरामिड बनने का काम शुरू हो गया। जैसे कि मैंने बताया, मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के थाने के संस्कृति दहीहांडी में, और कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र से प्रताप सरनाईक, उनका ये ग्राउंड है, और उसी जगह पर हर साल ही एक बहुत बड़े लेवल पर दहीहांडी उत्सव मनाया जाता है। अभी तक 100 से ज्यादा टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं और प्रयास करके जा चुकी हैं सम्मान लेकर के, लेकिन फिर से एक बार एक नई टीम यहाँ पर मौजूद है और पिरामिड बनाने का जो इनका प्रयास है वो शुरू हो गया है। इस टीम को तो देखकर लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस इन्होंने कर रखा है, क्योंकि काफी बड़ी टीम दिख रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को यहाँ इंतजार है कोई तो एक ऐसी टीम आए जो कम से कम 10 थर बनाए, क्योंकि जो भी टीम यहाँ पे 10 थर बना लेगी और ऊंचे टीले पर जो मौजूद हंडी लगाई गई है उसे तोड़ लेगी तो कम से कम 5 लाख रुपए का इनाम और महाराष्ट्र भर में एक सम्मान लेकर वो जाएगी उसी के फराक, उसी की कोशिश में यहाँ पर टीमें जुटी हुई है। पहला थर, दूसरा थर, तीसरा थर, चौथा थर भी लग चुका है, पांचवा थर भी लग चुका है। देखिए छठे की कोशिश में फिर से एक बार ये जो गोविंदा पथक का बहुत साहसी खिलाड़ी है पहुंचा है। इसके बाद एक लाल कलर की हेलमेट में एक छोटा बच्चा भी आ गया है उसके पीछे, मतलब कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थर का पूरा पिरामिड बनने वाला है, और जो भी 9 और 10 थर जैसा मैंने बताया बना लेगा तो उसे यहाँ का आज विजेता घोषित करा जाएगा। लेकिन 8 थर में इन्हें कहीं ना कहीं खुश होना पड़ेगा और संतुष्ट भी होना पड़ेगा, लेकिन वाकई में ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और इसी की वजह से इसे साहसी खेल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यहाँ मौजूद जितने भी लोगों ने हैं, जितने भी लोग हैं हजारों की तादाद में यहाँ मौजूद है, सभी ने बकायदा तालियां बजा करके इस टोली की, इस टीम की प्रसन्नता की है और बड़ी तारीफ करी है। और देखिए वो बच्चा अभी भी ऊपर ही लटका हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि दहीहांडी धीरे धीरे मुंबई महाराष्ट्र में इस कदर इस बड़े लेवल पर मनाई जाने लगी है कि सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ी अहम है। और देखिए अभी भी वो बच्चा लटका ही है और धीरे धीरे बड़े सुरक्षित तरीके से उसे नीचे भी उतार लिया जाएगा, उसके बाद ये ही बच्चा अपने कैप्टन के साथ इस महामंच पर आएगा जहां पर जो आयोजक है मौजूद, इसके अलावा जो अतिथि है जिनमें विधायक हैं, सांसद हैं, सेलेब्स हैं, तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं समाज में बहुत ऊंचा नाम कमा चुके हैं उनके हाथों से इस बच्चे को सम्मान दिया जाएगा। तो धीरे धीरे माहौल बहुत ज्यादा रंगीन होते जा रहा है, दोपहर बीत चुकी है, शाम का मौका है।
1: बिल्कुल धर्मेंद्र, रोंगटे खड़े कर देने वाले ये दृश्य है, क्योंकि दहीहांडी जो है सिर्फ एक उत्सव नहीं है लोगों के लिए, ये उनके दिल में बसता है, उनके संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे और आपको बता दें कि क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव भी थाने में गोविंदाओं का जोश बढ़ाने के लिए पहुंचे, उन्होंने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
5: माहौल तो एकदम गर्मा गर्मी वाला है, जैसा इन्होंने पूरा क्रिएट किया है, इतनी एनर्जी, इतना जो पैशन है, बट इसके लिए हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि चाहिए बैकिंग और प्लेटफॉर्म, जो प्रताप सर और पूर्वेश दादा ने दिया है सबको। अभी हमारे इधर बोलते हैं ना, मट्टी का स्पोर्ट है, मट्टी से लेके मैट तक का सफर, इन लोग की वजह से इतना अच्छा इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दिया है, तो ये मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा स्पोर्ट होना चाहिए आने वाले सालों में।
6: क्रिकेट का मैदान या गोविंदा का मैदान कौन सा भारी लग रहा है आपको, क्या लग रहा है?
5: अभी तो मैं थोड़ा क्रिकेट से फ्री हूँ, तो इधर आने के बाद थोड़ा ज्यादा पैशन फॉलो हो रहा है।
7: क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके मतलब?
5: मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि ऐसी मेहनत करते रहो, अपॉर्चुनिटीज आगे आते रहेंगी, प्लेटफॉर्म देने के लिए लोग रेडी है, क्योंकि लोग देख रहे हैं आप लोग मेहनत कर रहे हो, और जैसे ही आपको आगे अपॉर्चुनिटी आएगी उसको तुरंत पकड़ लेना।
1: तो दही हांडी के उत्सवी रंग आपको लगातार दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं।

0: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 48 टीचर्स को दिया नेशनल अवार्ड, अवार्ड पाने वालों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं। मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, दिया नशा मुक्ति का संदेश। दिल्ली एनसीआर में बारिश से सुहाना हुआ मौसम, आसमान पर छाए काले बादल, कई इलाकों में जोरदार बारिश। श्रीनगर की डल झील में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, तूफानी हवा और तेज बारिश के बीच चलाए रेस्क्यू ऑपरेशन, मझदार में फंसी नाव पर सवार टूरिस्ट का किया गया रेस्क्यू। नीम करोली बाबा पे बनी हनुमान अंशनी, जन्माष्टमी के मौके पर भी मचाई गजब की धूम, हर दिन रच रही है कमाई का इतिहास, 100 करोड़ के आंकड़ों को छूने के करीब पहुंची फिल्म।

0: तो गोविंदा आ गया है और मुंबई के दहिसर इलाके में भी दही हांडी फोड़ने के लिए गोविंदाओं का जो जोश है वो देखते ही बन रहा था। हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी दिखा रहे हैं तस्वीरें वहां की तैयारियों की।
1: जैसे ही गोविंदा अंदर आते हैं तब यहाँ पर पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होने के बाद जो है वो यहाँ पर हांडी जो है फोड़ने की तैयारी की जाती है और यहाँ पर वो हांडी फोड़ते हैं। यानी एक पूरी तरीके से SOP जो है वो पहले तैयार की जाती है।
2: फिलहाल यहाँ पर धूप निकली हुई है, सुबह और रात में काफी ज्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से मैदान में जो है पूरा कीचड़ जमा हुआ है, लेकिन सुबह से ही बारिश बंद है और धूप निकली हुई है। अमूमन ऐसे समय में बारिश ज्यादा होती है लेकिन आज फिलहाल बारिश नहीं है, कड़ी धूप निकली हुई है मुंबई में और जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो गोविंदा है उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। यहाँ पर अब पिरामिड बनाने की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। गोविंदा जो है देखिए पहला जो पिरामिड है वो यहाँ पर बन गया है और कितनी जल्दी ये लोग पिरामिड खड़ा करते हैं और ये हंडी जो है वो फोड़ते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी और अहम बात होती है, क्योंकि ये सारा जो एक साहसिक स्पोर्ट्स में गोविंदा जो है इसको गिना जाता है और इसी तरीके से अनुशासन इसका एक जो अहम पिलर जिसे हम कहते हैं अहम हिस्सा होता है वो होता है। और देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी ये जो है ये मानव पिरामिड जो है वो बना रहे हैं और अभी ऊपर चढ़कर ये लोग सलामी देंगे। ये एंटोफिल का गोविंदा पतक है जो अब यहाँ पर आया है और यहाँ पर खड़े होकर सलामी देगा। जो सबसे ऊपर चढ़ते हैं उन्हें सुरक्षा के कारणों की वजह से जैकेट पहनना पड़ता है और जो एक रस्सी होती है क्रेन से बंधी हुई ताकि अगर वो गिरते हैं तो उन्हें बचाया जा सके, रोका जा सके, वैसी तैयारियां होती है। आप देख सकते हैं एक बच्चा जो है वो फिलहाल जो पिरामिड की जो श्रृंखला है जो चोटी है उस पर चढ़ता हुआ दिखाई देगा और जैसा कि हम बता रहे थे मानव पिरामिड यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेयर का ये पिरामिड जो है वो यहाँ पर तैयार। अब जैसे कि देख सकते हैं कि बच्चे ने जो है एक सलामी जिसे हम कहते हैं हंडी फोड़ने के पहले हर गोविंदा पथक जो है वो सलामी देता है और जैसे कि देख सकते हैं जो ऊपर के दो लोग थे उनको रस्सी से बांधा गया था ताकि कोई इंजरी ना हो और जैसे कि देख सकते हैं जैसे ही वो गिरे इस रस्सी के कारण उन्हें रोक लिया गया, कोई इंजरी नहीं हुई और वो सुरक्षित हैं। और अब बाकी के जो नीचे के गोविंदा है वो आराम से उतर रहे हैं। ऊपर चढ़कर इन्होंने जो सलामी दी सबसे पहले भगवान को प्रार्थना की, पिरामिड बनाने से पहले सबकी सुरक्षा की मनोकामना की और जो तैयारियां पिछले 3 महीनों से कर रहे थे उसका पूरी तरीके से एक तरीके से रिवीजन किया और अब खुशी मनाने का समय है क्योंकि जो इनका जो पहला प्रयास था वो सफल रहा। अब अगले प्रयास में ये हंडी फोड़ने के लिए चढ़ेंगे लेकिन जो पहला प्रयास था सलामी देना जिसे कहते हैं एक तरीके से अभिवादन करना जिसे कहते हैं वो सफल हुआ और अब दोबारा से जो है वो प्रयास होगा हंडी फोड़ने के लिए और ये सिलसिला जो है ये दिन भर चलता रहेगा। दिन भर जैसे कि आयोजकों ने हमें बताया कि 400 से 500 गोविंदा पथक जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और दही हंडी फोड़ने के लिए प्रयास करते हैं।
0: तो ये मुंबई के दहिसर की तस्वीरें थी जो हम आपको दिखा रहे थे। अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे का जो कि लगातार थाने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जो तस्वीरें अभी दिखा रहे थे दहिसर से हमारे संवाददाता, मैं तो वो देखकर भी हैरान रह गई। मतलब कितनी सिंक्रोनाइज तरीके से वो मानव श्रृंखला बनाते हैं। 8 लेवल थे पूरे और ऊपर छोटा सा बच्चा था जिसकी आंखों में डर तक नहीं था और साथ ही में आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने इसे एडवेंचर स्पॉट का दर्जा दे दिया है और अब इसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की भी तैयारी है। धर्मेंद्र,
3: बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर ऐसी दिखाता हूँ जो आप देख के फिर से एक बार आश्चर्य हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। थोड़ा सा देखें, ये जो वो ग्राउंड है जहाँ पर गोविंदा पथक इस समय मौजूद है पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ है। तमाम चप्पले जूते यहाँ पर लोग छोड़कर चले भी गए हैं, यानी कि दान कर दिया हुआ है। अब आप सोचिए इंद्र देवता भी खुश है, धीमी धीरे धीमी बारिश हो रही है और इस तरह की यहाँ पे जमीन है, ऐसे में पिरामिड बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा साहसी काम है और ऐसा हो भी क्यों ना। साथ ही साथ थोड़ा सा और भी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं स्वर्गीय अजित दादा पवार जी, जिनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा बगल में एक और पोस्टर है, बोलतो मी मराठी, ये जबार मराठी मुद्दा जिस तरीके से पूरा एक मुंबई और महाराष्ट्र और पूरे देश में छाया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है। खुद सुनील शेट्टी यहाँ पर आए थे, इसके अलावा इंडिया के जो पूर्व कप्तान है यादव जी वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी मराठी में संवाद किया और यहाँ पे मौजूद जितने लोग थे बहुत ज्यादा खुश हुए थे। इसके अलावा देखिए तमाम वो तस्वीरें पॉलिटिशियन के यहाँ पर लगाई गई है जो महाराष्ट्र के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिग्गज नेता रहे और इस समय देश भी चला रहे हैं। और इसके अलावा कई एलईडी भी यहाँ पर लगाई गई है कि भाई मंच पर अगर जो भी सेलेब आ रहा है वो ठीक से नहीं दिख रहा है, एलईडी के जरिए खुद को देख पा रहा है। और देखिए अब फिर वो तस्वीरें जहाँ पर गोविंदा पथक है, साथ ही साथ सबसे खास बात यहाँ पे है कि स्टेडियम की तरह लोगों को बैठने की भी जगह दी गई है, क्योंकि आसपास के जितने भी निवासी हैं दिन भर इस महाउत्सव का आनंद ले सके इसलिए बकायदा बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ये जो ग्राउंड है इसके आसपास ऊंची इमारतें ये कहती है, ये बताती है कि भैया ये है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। देखिए चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें और उन इमारतियों की छोटी छोटी खिड़कियों में अपने परिवार के साथ लोग इस दही अंडे का बाकायदा आनंद लुप्त उठा रहे। ये मेरे दाहिने तरफ की जरा सी इमारत दिखा दीजिए, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान हमारे साथ है। देखिए बाकायदा सारा परिवार बालकनी में कुर्सी लगा करके और बारिश के मौके पर गर्मा गर्म भजिया तल कर चाय का आनंद लेते हुए इस महाउत्सव का आनंद ले रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है तो 10 बजे तक चलेगा, उसके बाद चूंकि मुंबई पुलिस साउंड की और बहुत सारी चीजों की परमिशन नहीं देती है इसलिए फाइनली 10 बजे के आसपास ये जो ऊंची मटकी ऊपर की तरफ लगी हुई है इसे कहीं ना कहीं।
0: अच्छा धर्मेंद्र एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, मैं बड़ी क्यूरियस हूँ, बड़ी उत्सुकता है मेरे मन में ये जानने के लिए कि ये जो मानव श्रृंखला बनाते हैं और छोटे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं इसमें कितनी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती होगी, क्योंकि कितने सिंक में हैं ये सब एक दूसरे के साथ, कितने लंबे समय पहले से ये जन्माष्टमी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि किस लेवल का स्टैमिना चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए एक दूसरे के साथ इस तरह का खेल खेलने के लिए। धर्मेंद्र
3: देखिए आपको बताएं कि बेसिकली ये होता है कि ये जो 200-300 लोग एक टीम बनाने में लगते हैं, ये सभी कोई नौकरी करता है, सब युवा पीढ़ी है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई अपने कॉलेज जाता है और प्रतिबंध नहीं है यहाँ पर एक एज का, हर कोई शामिल हो जाता है। 3-4 महीने से ही प्रैक्टिस लोगों की शुरू हो जाती है, बाकायदा अपने घरों से लोग परमिशन लेकर आते हैं और खास बात सबसे ज्यादा सलामी बच्चे को देनी होती है जो 8वें 9वें घर पे चढ़ता है और इससे भी लोग इसलिए भी जुटते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक है, सालों महीनों बाद लोग एक दूसरे को मिलते हैं और सालों इंतजार करते हैं। और खास बात ये भी है कि फेस्टिवल अनोखा होता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये देखिए इस तरह के महामंच मुंबई की कई जगहों पर बनाए गए हैं और इस तरह के आजकल जेंजी कहते हैं लोग इस तरह की युवा पीढ़ी को जो कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़े चले जा रहे हैं, हर कोई इस तरह के हिस्सों को मनाता है और इस तरह के कार्यक्रम इस तरह के परफॉर्मेंस जो है बड़े बड़े मंचों पे दिए जाते हैं, ये भी यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनके मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन है। और फिर हर एक घंटे बाद, हर एक 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद एक एक सेलिब्रिटी जो कहीं ना कहीं लाखों लोगों को अपने फॉलोअर्स में शामिल कर चुके हैं वो भी इस महामंच पर मौजूद होते हैं। तो मनोरंजन का मनोरंजन और साहस का साहस और उस पर एक बहुत बड़ी संस्कृति को दिखाता हूँ एकता का प्रतीक, एक दूसरे पर भरोसा करना, दुश्मनी भुला करके साथ होना एक बहुत बड़ी चीज है, दाई अंडी जैसा ये प्रतीक्षा जो है ले आता है। वाकई में आप देखें कितना बड़ा मेहनत और कितना ज्यादा लोग कोशिश करते हैं कि जुड़ा जाए यहाँ पर जितने भी सेलेब आ रहे हैं। खास बात ये है कि वो चाहे तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद 2-4 जो सेंटेंस है वो मराठी का सीख कर आ रहे हैं और बाकायदा मराठी बोल करके लोगों को अपना रहे हैं। और जिस तरीके से मीडिया में भी इंटरव्यू चल रहा है और उनका भी साफ तौर से ये कहना है मुंबई में रहना है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना थोड़ा सा जरूरी।
0: बिल्कुल धर्मेंद्र, जो तस्वीरें सामने आ रही है जिस तरीके से जो कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और पीछे से मैं म्यूजिक की आवाज भी सुन पा रही हूं, तो मुझे लग रहा है कि आपका मन कर नहीं रहा होगा आज रिपोर्टिंग करने का, आपको लग रहा होगा कि आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते हैं।
3: बिल्कुल, जैसे ही आप मुझे लाइव से फ्री करेंगी मेरी पूरी कोशिश होगी कि इनके बीच जाकर के मैं भी झूमूं। हालांकि डांस करना आता नहीं है लेकिन पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर वातावरण है, जिस तरीके की धुनें बज रही है, म्यूजिक बज रहा है और लोगों का, तमाम लोगों का, देखिए ना इस उत्साह के, बोल बजरंग
4: अली की जय,
3: अरे बोल
4: मलिक की जय,
3: इस तरह की गूंज इस पूरे मैदान में है। हजारों की तादाद में इस मैदान में लोग जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतों के बीच ये ग्राउंड है, ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है। मुंबई पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से ये पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है और कहीं उनका उत्सव जो है अब धीरे धीरे 3-4 घंटे के बाद समापन की तरफ है। अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है जिसे सुनने के बाद दिल में आहत हो या किसी तरह की तकलीफ हो। हर जगह खुशी खुशी नजर आ रही है जिसकी तस्वीरें साफ तौर से,
0: बिल्कुल धर्मेंद्र, खुशी तो आपके चेहरे पर भी साफ देखने को मिल रही है। मुझे लगता है अभी तो उत्सव के रंग शुरू ही हुए हैं, अभी तो रंग जमना शुरू हुआ है, तो आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, दही हाड़ी फोड़ने का काम जो है आसान नहीं है, जिसके बारे में मैं बात भी कर रही थी, इसके लिए महीनों तैयारी की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद हादसे की आशंका बनी रहती है। हालांकि आयोजकों की ओर से गोविंदाओं की सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर इलाज के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके बारे में हमारे संवाददाता ने दहीसर में मौजूद डॉक्टर अतुल से बातचीत की, आप भी सुनिए।
1: सर, किस तरीके की तैयारियां हैं, मेडिकल की व्यवस्था कैसे की गई है यहाँ पर?
5: सर, हर साल गोविंदा में हम सभी लोग यहाँ पे, जो भी गोविंदा गिरते हैं, किसी को लगता है, किसको खरोच आती है, किसको सीरियस इंजरी होती है, उन सबको बेसिकली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हमारा पूरा मेडिकल टीम यहाँ पे हर साल हम लोग आते हैं। और आदरणीय कुलमकर सर का गोविंदा जब से शुरू हुआ है, हर साल हमारे सभी लोग यहाँ पे आके सेवा देते हैं और गोविंदा को जितना हो सके उतना मेडिकल ट्रीटमेंट देने का काम हम लोग करते हैं।
1: हाँ सर, किस तरीके के मेडिकल जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है वो दी जाती है और क्या क्या यहाँ पे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं अगर इंजरी होती है?
5: देखो, ज़्यादा करके है ना कि ये ब्लंट ट्रॉमा, गिरने की वजह से थोड़ा कुछ स्वेलिंग आना या इमरजेंसी में इसको कट होना है या फिर ड्रेसिंग करना है या भी जो भी इमरजेंसी में कोई, किसी को कभी कभी फ्रैक्चर के भी पेशेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे एम्बुलेंस की सेवा है जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो लोगों के लिए हम लोग हायर सेंटर में उनको रेफर करते हैं और जो भी पॉसिबल है वो यही पे ट्रीटमेंट दी जाती है।
1: और प्रिकॉशंस क्या लिए जाते हैं, क्या गोविंदा को भी कुछ बताया जाता है कि आपको क्या ध्यान रखना है क्या?
5: तो अभी सभी गोविंदा में जो सबसे ऊपर के जो गोविंदा है उनको रोप लगाया जाता है बैक साइड से। तो अभी जो छोटे गोविंदा जो है सबसे ऊपर चढ़ते हैं, तो वो गोविंदा में अभी इंजरी का प्रमाण बहुत हद तक कम हो गया है, क्योंकि उनको रोप लगाते हैं, इसलिए उनको अगर नीचे का अगर पिरामिड कोलैप्स भी होता है तो ऊपर का गोविंदा जो बच्चे रहते हैं वो सेफली ऊपर ही ये हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इसलिए अभी छोटे गोविंदा का जो कोई उनको इंजरी होने का प्रमाण अभी निग्लिजिबल है बहुत।
0: तो चलिए, अब धर्मेंद्र दुबे का एक बार फिर से रुख करते हैं, तमाम तस्वीरें वो दिखा रहे हैं थाने से, जिस तरीके से उत्सवी रंग सामने आ रहे हैं। धर्मेंद्र, अभी तो रंग जमना शुरू हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा 10 बजे तक जो है दही हांडी का ये जो उत्सव है ये चलता रहेगा। आपने बताया था कि कई सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो क्या सिलसिला अभी शुरू हुआ है, कौन कौन यहाँ पर पहुंच चुका है अब तक?
6: मानवी मनोरा रचनासाठी
3: बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे शाम हो रही है और अब शाम का रंग, शाम की तस्वीरें जो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बहुत ज्यादा सुंदर होने वाली है। तमाम लाइटिंगें यहाँ पर लगा चुके गए हुए हैं और जैसे ही वो सारी चीजें शुरू होंगी तो देखने वाली चीज यहाँ बनेगी। अभी सुबह से जहाँ तक सेलिब्रिटी की बात है तो सुनील शेट्टी साहब यहाँ पर आए थे, बाकायदा उन्होंने अपने फिल्मों के कई डायलॉग कहे हैं, लोगों का अभिवादन किया, उनके साथ लगभग 15 मिनट बातचीत करी है, लोगों के जवाब भी दिया है। खास बात यह है कि बॉलीवुड किस तरीके से इनके साथ में अपने रंग में बन जाता है, ये देखने वाली बात होती है। उसके बाद क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव भी आए थे, उन्होंने भी मराठी में संवाद किया और इनके साथ बहुत ज्यादा जुड़े। अब जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि कुछ देर में ही संजय दत्त यानी कि संजू बाबा यहाँ पे आने वाले हैं और इसकी भनक, इसकी खबर यहाँ पर मौजूद उन तमाम गोविंदा पदकों को लग चुकी है, इसलिए कोई भी यहाँ पे हिल नहीं रहा है, क्योंकि संजय बाबा की बात ही अलग है, संजय दत्त की बात ही अलग है, उनके इंतजार में लोग हैं, कुछ देर में वो आएंगे।
0: संजय दत्त भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, आपके पास भी आएंगे। लेकिन एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा था, तो जिस तरीके से प्रतीकात्मक तौर पे इस खेल को मनाया जाता है जन्माष्टमी के अगले दिन, जिस तरीके से भगवान कृष्ण जो है अपने दोस्तों के साथ मटकी फोड़ दिया करते थे, माखन चोर थे, माखन चुराया करते थे, तो अब तो इस गेम को हमने काफी ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है धर्मेंद्र। तो आजकल ये जो मटकी होती है जिसे गोविंदा पतक तोड़ते हैं, उस मटकी में आखिरकार होता क्या क्या है?
3: बिल्कुल, सबसे पहले आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। देखिए यहाँ पर कई मटकियां लगाई गई हैं, लेकिन सबसे पहले उस मंच की मटकी दिखाता हूँ मैं, जहाँ पर लगा करके ये निशानी दे दी गई है कि भैया आज दही हंडी है और आज हम सभी को इसी रंग में पूरी तरह से घुल जाना है। जो भी सेलेब या जो भी अतिथि उपस्थिति यहाँ पर अपनी देते हैं वो इस मटकी को देकर के खुद अपने मूड में आते हैं। उसके बाद एक दूसरी मटकी जिसके लिए जद्दोजहद मुंबई और महाराष्ट्र की उन तमाम टीमों में है, जिसे फोड़ करके लाखों का इनाम जो यहाँ पर रखा गया है उसे हासिल करना है। कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है और इस तरह की मटकियां यहाँ पर तमाम लगाई गई हैं। मुंबई महाराष्ट्र के हर कोने, हर नुक्कड़, हर गली में देखने मिलेगी। इस मटकी में वही चीजें रखी जाती हैं जो श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसमें मक्खन है, दही है, हल्दी है, मिठास है और बहुत सारे कहते हैं बादाम, काजू, पिस्ता, वो सारी चीजें हैं। लोग वहां तक पहुंचकर जो आखिरी थर पे, यानी कि यहाँ पर 10 थर लगाने के बाद ही इस मटकी पे पहुंचा जा सकता है। 10वें थर पे एक छोटा सा बच्चा चढ़ता है जो हेलमेट लगाकर चढ़ता है, और अगर उसका इच्छा हो रहा है और वो खुद को ठीक पा रहा है तो वो अपने माथे से भी मटकी फोड़ देगा, या फिर मटकी के ऊपर लगी हुई जो नारियल है, जो नारियल रखा गया है, नारियल से भी मटकी फोड़ करके, जैसे ही मटकी फूटती है तो उसके अंदर जितनी भी सामग्री है वो उन पर गिरती है और पूरी टीम उस सामग्री से, उस कह सकते हैं कि अमृत से हर कोई बहुत ज्यादा पूज्य हो जाता है, अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझता है कि भाई वो जो चाह रहा था उसे मिल गया, ईश्वर की आराधना में पूरी तरह से लिप्त हो गया, श्री कृष्ण का आशीर्वाद, उनका प्रसाद उन तक पहुंच गया है। ये सारी चीजें मटकी में मौजूद होती हैं और इसी वजह से ऐसा मटकी को कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की जो कोशिश है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है और यहाँ के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रताप सरनाईक, ये जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई है और इस समय हम जहाँ मौजूद हैं ये मंच भी उन्हीं का है, जहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं दही हंडी के इस रंग में खुद को रंगने में लगे पड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया, देखिए बारिश के साथ ये कीचड़, कीचड़ के साथ ये तमाम पब्लिक और इसके साथ इनको खुद की सुरक्षा भी करनी है और कुछ इस तरह की ट्रॉफी भी लेनी है। यहाँ पर जो मौजूद और यहाँ पर आने वाली जो टोलियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक महामंच पर नहीं पहुंच रही है। जिस तरीके से मैंने बताया कि अब तक 300 से ज्यादा टीमें इस ग्राउंड पर मटकी फोड़ने का प्रयास करते हुए आगे की तरफ निकल गई हैं, उसी तरीके से ये जो टीमें होती हैं, ये जो पिरामिड होता है, ये जो गोविंदा पतक का जो टोली होता है, इन्हें भी ये पता है कि आज दिन भर में समय अनुसार मुंबई में मौजूद हजारों की तादाद में जो महामंच बनाए गए हैं उनमें से कम 25 से 30 महामंच तक तो पहुंच रही है, अपना नाम कमाना ही है। जहां एक तरफ एकता की बातें होती हैं, जहां एक तरफ ये संस्कृति दर्शाती है, जहां एक तरफ दही हंडी एक दूसरे को जोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां की जो टोलियां साल भर इंतजार में होती है दही हंडी की, कोई भी ये चाहती है कि उनके मंडल का, उनके टीम का नाम मुंबई और महाराष्ट्र में शामिल हो, तभी तो जाकर के उनका भी चुनाव होगा उस टीम के लिए, महाराष्ट्र की टीम के लिए, इंडिया की टीम के लिए, जो अब प्रो गोविंदा के नाम पर इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी और दही हंडी के इस साहसिक खेल को विश्व भर में फैलाएगी।
0: बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम उत्सवी रंग दिखाने के लिए। तो देखिए हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से जन्माष्टमी के अगले दिन जो उत्सवी रंग देखने को मिल रहा है दही हांडी का, कितना जोश है लोगों के मन में, और साथ ही महेंद्र देव प्रसन्न हो गए, बारिश भी हो रही है, तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन आ जाइए।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार सिल्वर स्क्रीन पर बाबा का दिव्य अवतार हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा जीएनटी स्पेशल शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया डील, दुश्मन की तबाही का लिफाफा सील, एलएसी से एलओसी तक सैनिकों के पास किलिंग मशीन। देखिए रणक्षेत्र आज शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 48 टीचर्स को दिया नेशनल अवार्ड, अवार्ड पाने वालों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं। मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, दिया नशा मुक्ति का संदेश। दिल्ली NCR में बारिश से सुहाना हुआ मौसम, आसमान पर छाए काले बादल, कई इलाकों में जोरदार बारिश। श्रीनगर के डल झील में देवदूत बने SDRF के जवान, तूफानी हवा और तेज बारिश के बीच चला रेस्क्यू अभियान, मझदार में फंसी नाव पर सवार टूरिस्ट का किया गया रेस्क्यू। नीम करोली बाबा पर बनी हनुमान अंश ने जन्माष्टमी पर भी मचाई गजब धूम, हर दिन रच रही कमाई का इतिहास, 100 करोड़ के आंकड़ों को छूने के करीब पहुंचे फिर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है,

0: पूर्वी लद्दाख हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाला बॉर्डर का इलाका, घने जंगल में घात लगाए दुश्मन हो या फिर बंकर में छिपे हूँ आतंक के प्यादे, फौलादी टैंक हो या फिर स्टील से भी मजबूत बंकर, हर किसी का परखचा उड़ना तय है। भारतीय सेना के पास वो किलिंग वेपन आने वाला है जो चीन और पाकिस्तान के टैंकों के लिए काल साबित होगा। भारतीय सेना अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एक एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं और इसके तहत जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में होगा, यानी कि अमेरिकी कंपनी और साथ ही साथ भारत की डिफेंस कंपनी टाटा दोनों मिलकर जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे और बहुत ही जल्द ये भारतीय सेना को मिल जाएगी।
1: भारत में जेवलिन मिसाइल का प्रोडक्शन रणनीतिक लिहाज से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इससे मेक इन इंडिया मिशन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत तथा अमेरिका की सरकार के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत अब निकट भविष्य में ही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। खास बात है कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल जो है वो एक इमेज इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से काम करती है और दुश्मन के टैंक को 4 किलोमीटर की दूरी से निस्तनाबूद कर देती है। जब इस जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगा और हमारी इन्फेंट्री की फॉरवर्ड डिप्लॉयड बटालियंस को इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी, तो युद्ध के मैदान में उनकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी।
1: आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़े हथियार ही काफी नहीं होते, जरूरत के हिसाब से ऐसे हथियारों की भी जरूरत होती है जिन्हें सैनिक अपने हाथ में भी लेकर चल सके, जो तेजी से तैनात हो सके और दुश्मन के भारी भरकम टैंक को आसानी से निशाना बना सके। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए अमेरिकी हथियार की एंट्री होने जा रही है। एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल जिसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर एंड फॉरगेट।
0: दरअसल भारतीय सेना अमेरिका से शुरू से ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन को खरीदने की इच्छुक थी। 2010 में भारत ने इसकी इच्छा जताई थी, लेकिन अब जाकर यानी कि 28 अगस्त को इस पर फाइनल डील साइन हुई है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
1: इमरजेंसी खरीद प्रक्रिया के तहत हुए सौदे में 60 जेवलिन मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। इनकी कुल कीमत 292 करोड़ रूपए हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एक मिसाइल खरीदने में भारत को 16 साल क्यों लग गए? वो क्या वजह थी कि जेवलिन की जगह इजराइल की स्पाइक मिसाइल को चुन लिया गया और फिर इतने साल बाद भारत जेवलिन की ओर वापस क्यों लौटा? इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जेवलिन आखिर क्या है और भारतीय सेना के लिए इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई।
0: साल था 2010 जब भारतीय सेना ने अमेरिका से जेवलिन मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई। दोनों देशों के बीच में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आखिर में ये बातचीत विफल रही और विफल इसलिए रही क्योंकि अमेरिका भारत को मिसाइल तो देना चाह रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो राजी नहीं था, जिस पर भारत ने हामी नहीं भरी।
1: भारत चाहता था कि अमेरिका से सिर्फ जेवलिन मिसाइल की खरीद न करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले और आगे भारत में इसका उत्पादन हो सके। अमेरिका जेवलिन की महत्वपूर्ण तकनीक, खासकर इसके IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक साझा करने को तैयार नहीं था। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक को आधुनिक गाइडेड मिसाइल की आंख और दिमाग कहा जाता है। सबसे पहले आईआर सीकर थर्मल पिक्चर तैयार करता है। आईआर सीकर में डिजिटल कैमरे की तरह एक खास फोकल प्लेन एरे सेंसर लगा होता है। ये सेंसर सिर्फ गर्मी के किसी एक बिंदु को नहीं पकड़ता, बल्कि सामने मौजूद पूरे दृश्य की एक साथ थर्मल इमेज बनाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। मिसाइल के अंदर मौजूद हाई स्पीड प्रोसेसर इस इंफ्रारेड वीडियो को प्रोसेस करते हैं। एल्गोरिदम की मदद से मिसाइल ये पहचान लेती है कि सामने दिख रही गर्मी किसी टैंक की है या फिर किसी गाड़ी की या फिर सिर्फ धूप से गर्म हुई किसी चट्टान की। अगला स्टेप टारगेट के कमजोर हिस्से की पहचान करना होता है। टारगेट लॉक होने के बाद आईआर सीकर तकनीक दुश्मन के वाहन या फिर विमान के सबसे कमजोर हिस्से जैसे कि टैंक के ऊपर का हिस्सा या लड़ाकू विमान का कॉकपिट को खुद खोजती है और मिसाइल को सीधे उसी पॉइंट पर जाकर टकराने का निर्देश देती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक से कैसे बेहतर है ये भी जानना जरूरी है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल सिर्फ गर्मी के सबसे तेज बिंदु की तरफ भागती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल टारगेट के पूरे आकार को पहचान कर उसको लॉक करती है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल दुश्मन की ओर से फेंके गए फ्लेयर से आसानी से भटक जाती थी, लेकिन आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस मिसाइल असली टैंक विमान और नकली फ्लेयर्स के बीच का अंतर समझ सकती है और इसीलिए इसे चकमा देना लगभग असंभव है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल टैंक विमान के एग्जॉस्ट यानी कि धुआं निकालने वाली जगह पर ही हमला कर पाती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस मिसाइल ऑल एस्पेक्ट क्षमता से लैस है, यानी दुश्मन किसी भी दिशा में खड़ा हो ये उसकी बॉडी हीट को पकड़ लेती है।
2: आमतौर पर ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वह इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं, यानी दुश्मन के टैंक के इंजन से जो गर्माहट निकलती है

0: फायर करता है या आर्टिफिशियल हाई टेम्परेचर ग्रेनेड्स फायर करता है जिससे कि छोटे छोटे पटाखे जैसे आग जलने लग जाते हैं, तो जो एंटी टैंक मिसाइल हीट सीकिंग हमने लॉन्च किया है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और इन नकली हीट सोर्सेज की तरफ चल पड़ता है।
1: जेवलिन की खरीद प्रक्रिया के लिए कड़ी अमेरिकी शर्तें और इजराइल स्पाइक से ज्यादा लागत की वजह से शुरुआती जेवलिन खरीद प्रक्रिया अटक गई। दरअसल अमेरिका के साथ हथियार खरीदने पर अमेरिका ने यूज एंड मॉनिटरिंग की शर्त रखी थी, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये था कि अगर भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है तो अमेरिकी अधिकारी कभी भी आकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं था और ये एक बड़ी वजह रही कि दोनों के बीच ये डील तब साइन नहीं हो पाई। जब जेवलिन मिसाइल की खरीद को लेकर बात चल रही थी तब जेवलिन की प्रति यूनिट लागत इजराइल की स्पाइक मिसाइल की तुलना में बहुत ज्यादा थी। भारतीय सेना को अपनी 380 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियनों के लिए हजारों की संख्या में एंटी टैंक मिसाइलों की जरूरत थी, इसीलिए आर्थिक रूप से भी स्पाइक एक बेहतर विकल्प साबित हो रही थी।
0: भारत की जो फौज है वह काफ़ी समय से एक आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल की मांग कर रही थी। भारत में ही हम DRDO की मदद से नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम काफ़ी हद तक डेवलप हो भी चुका है। इसके प्रोटोटाइप को ऑलरेडी चांदीपुर टेस्ट रेंज में और पोकरण रेंज में ट्रायल कर लिया गया है, लेकिन इसकी फाइनल प्रोडक्शन लाइन असेंबली लाइन बनाने में अभी 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए इतने सालों से भारत ने और कोई दूसरा इंपोर्टेड यानी विदेशी एंटी टैंक मिसाइल नहीं खरीदा, लेकिन अब जब नाग को इंडक्ट होने में 2-3 साल और लगेंगे तो एज एन एंट्रिम मेजर टेम्परेरी व्यवस्था के तहत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत में ही प्रोडक्शन किया जाएगा।
1: भारत के पास 8 तरह की एंटी गाइडेड मिसाइल हैं, जिसमें एक नया नाम जेवलिन जुड़ने वाला है जो इंडियन इन्फेंट्री की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा।
2: वक्त बदला और अमेरिका और भारत के रिश्ते साल दर साल और बेहतर होते चले गए, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका ने भी भारत के लिए अपने रुख को थोड़ा सा नर्म किया। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके भारत में ही प्रोडक्शन पर भी हामी भर दी।
1: जेवलिन सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई देशों की सेनाएं करती हैं। इसे बख्तरबंद वाहनों और मजबूत किलेबंदी वाली जगहों समेत कई तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। अब जेवलिन कैसे काम करती है, इसकी ताकत और खासियत क्या है और क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है और ये कैसे काम करती है, ये आपको बताते हैं। पहला फेज, टारगेट ढूंढना और लॉक करना। सैनिक अपने कमांड लॉन्च यूनिट में लगे थर्मल डिपेंडेंट कैमरे की मदद से दुश्मन के टैंक को ढूंढता है और उस पर निशाना लॉक करता है। दूसरा फेज, सॉफ्ट लॉन्चिंग। ट्रिगर दबाते ही मिसाइल का पहला छोटा मोटर उसे ट्यूब से बाहर धकेलता है। जब मिसाइल सैनिक से सुरक्षित दूरी पर पहुंचती है तब इसका मुख्य रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है। तीसरा फेज, इंफ्रारेड गाइडिंग। मिसाइल के आगे लगा सीकर टैंक से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करता है और मिसाइल खुद अपना रास्ता तय करती है। चौथा फेज, टारगेट पर अटैक। मिसाइल 2 तरह से टारगेट पर अटैक करती है, एक है टॉप अटैक मोड और दूसरा है डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक मोड में मिसाइल सीधे जाने के बजाय हवा में 150 मीटर ऊपर उठती है और फिर सीधे नीचे आकर टैंक की छत पर हमला करती है। डायरेक्ट अटैक मोड का इस्तेमाल बंकर, इमारत या कम ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाने को लेकर होता है, जिसमें मिसाइल सीधे सामने जाकर टकराती है।
0: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल में एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी हमारा जो इन्फेंट्री का ट्रूपर है उसको दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाना है और मिसाइल को फायर कर देना है। उसके बाद ये मिसाइल तुरंत ऊपर की तरफ चली जाती है और दुश्मन

0: दुश्मन के टैंक को टॉप अटैक मोड में हमला करती है। अगर सामने दुश्मन का बंकर है उसके ऊपर भी लॉन्च करने के बाद जेवलिन मिसाइल जो है सीधा दुश्मन के बंकर की तरफ अग्रसर होती है।
1: आधुनिक टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है जो किसी भी मिसाइल के टकराते ही खुद ब्लास्ट होकर मिसाइल के असर को बेअसर करता है। इससे निपटने के लिए जेवलिन में टैंडम वॉरहेड लगा है, यानी दो विस्फोट। पहला विस्फोट टैंक के बाहरी सुरक्षात्मक कवच को नष्ट करता है और ठीक उसके पीछे वाला दूसरा मुख्य विस्फोटक टैंक के अंदर छेद करके उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वैसे रेंज की बात की जाए तो जेवलिन 2.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के बख्तरबंद वाहन बंकर, यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। यानी सामने कोई भी हो, जेवलिन मिसाइल के आगे सब फेल।
0: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की एक और खास बात है कि इसके वॉरहेड में दो वॉरहेड होते हैं, एक सामने और एक थोड़ा सा पीछे। जब यह मिसाइल दुश्मन के टैंक से टकराती है तो पहले सामने वाला वॉरहेड फटता है, जिससे कि दुश्मन के टैंक पे जो भी बख्तरबंद या कवच लगा है उसको नष्ट किया जाता है और एक छेद बन जाता है। उस छेद से जो दूसरा वॉरहेड है वो अंदर चला जाता है और सेकेंड वॉरहेड जो है टैंक के अंदर जाके फटता है। यानी सेकेंड वॉरहेड से ही टैंक दुश्मन के टैंक के अंदर जो क्रू है, ड्राइवर, गनर, कमांडर, लोडर, उनकी मौत होती है। तो इससे द किल प्रोबेबिलिटी जो है, यानी टैंक पर ना सिर्फ हमला करना वरन यह सुनिश्चित करना कि वह टैंक और उसका क्रू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्राय प्राय 100% बढ़ जाती है।
1: अब सवाल ये भी है कि भारत को जेवलिन की जरूरत क्यों है, तो आइए अब आपको समझाते हैं। भारत की सीमाएं बेहद विविध और चुनौतीपूर्ण है। कहीं ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, कहीं संकरे रास्ते, तो कहीं ऐसे इलाके हैं जहां भारी सैन्य वाहनों को तेजी से तैनात करना आसान नहीं है। ऐसे में सैनिकों के पास ऐसे हथियार होना जरूरी है जिससे आसानी से आगे पोस्ट तक ले जाया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि जेवलिन जैसी मिसाइल भारत की एंटी आर्मर क्षमता को मजबूत कर सकती है। रण क्षेत्र में जब सीमा पर सैनिक तैनात होता है तो वहां सबसे अहम भूमिका होती है हथियारों की, खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाके। वहां सैनिकों को ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ती है जो हल्के भी हों और सटीक निशाना भी लगा सके। ऐसे में इस तरह के हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। मौजूदा समय में भारत अपनी MPATGM यानी स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी विकसित कर रहा है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, टॉप अटैक मोड और टैंडम वॉरहेड जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल करीब 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों को सटीक निशाना बना सकती है। MPATGM की सबसे बड़ी ताकत है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक, जिसमें सीधे तौर पर मतलब यह है कि गोला दागो और उसके बाद भूल जाओ, और ये सबसे बड़ी तकनीक इसको और ज्यादा ताकतवर बनाती है। एक बार गोला दाग दिया उसके बाद ये खुद ब खुद टारगेट को निशाना बनाएगा और उसे ध्वस्त करके ही दम लेगा।
2: रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियों की मारक क्षमता बढ़ेगी और विदेशी एंटी टैंक हथियारों पर निर्भरता कम होगी। हालांकि जब तक स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की पूरी तरह से परिपक्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक जेवलिन का भारत में बनना और सेना में शामिल होना एक बेहतरीन स्टॉप गैप व्यवस्था प्रदान करेगा।
1: जमीनी जंग का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद हथियार है टैंक, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके साथ चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां और टोट राइफल्स, यानी इसे और ज्यादा ताकत देती हैं। और टैंक जब रण क्षेत्र में निकलता है तो ना तो इसको रेतीली जमीन रोक पाती है ना ही ऊंचाई वाले पहाड़।
2: टैंक को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल। इसे टैंकों का काल कहा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब ATGM की जगह RCL यानी रिकॉइल लेस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था।
3: के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना 106 mm की आरसीएल गन। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि फायर होते ही इसकी आग पीछे की तरफ से निकलती थी, जिससे दुश्मन दूर से ही इसे पहचान लेता था। एक और खामी जो इसमें थी वो ये थी कि आप इसमें से केवल 1, 2 या 3 बार फायर कर सकते हैं। बावजूद इसके इसने अपने पराक्रम का परिचय दिया।
2: 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए, ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग जाए। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुके रहे जब तक कि पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आ गए। अब्दुल हमीद एक जीप में आरसीएल गन के साथ तैनात थे।
3: असल उत्तर की लड़ाई धूल भरी जमीन पर लड़ी गई, जहां चारों तरफ केवल धुएं का गुब्बार था, धूल थी और ऊपर से गोलीबारी का धुआं। ऐसे में चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे। अब्दुल हमीद ने एक बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को करीब आने दिया और 180 मीटर की दूरी पर उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों के परखचे उड़ा दिए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत से अपने ड्राइवर को पोजीशन बदलने के लिए कहा।
2: दिन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने 2 टैंकों को तबाह कर दिया था, जबकि 4 टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वहीं छोड़कर भाग निकली थी। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने 4 ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले 1 घंटे में पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हमीद ने जैसे ही देखा कि 6 पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी आरसीएल गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा भी मिला। यहाँ से उन्होंने सबसे पहले आगे की टैंक उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर 2 और टैंक उड़ा दिए। अब्दुल हमीद ने गजब का साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले ही तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी।
4: टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं और वो उनका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के दौरान जो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके टैंक जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे, तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है टैंकों के विरुद्ध और बस्तरबंद गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नागमार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है मार्क 2 की, तो ये बैटलफील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है।
2: मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें अलग अलग वर्जन की कई मिसाइलें हैं। कुछ टैंक से फायर करने में सक्षम है तो कुछ हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती हैं। यही नहीं, कंधे पर रखकर भी सेना के जवानों से फायर कर सकते हैं। मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक नाम है स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट।
3: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दरअसल इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि कई बार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दुश्मन फायदे की पोजीशन पर होता है। मान लीजिए कि दुश्मन किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा है, तो ऐसे में मोर्टार से हमला करना जोखिम भरा हो सकता है। और यहाँ पर सैनिकों का सबसे भरोसेमंद हथियार होता है ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
2: पाइक NLOS भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत को इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
5: स्पाइक जो है वो नॉन लाइन ऑफ साइट एक मिसाइल है जो 2020 में लॉकहीड मार्टिन और रफाल ने मिलकर ये वेपन सिस्टम बनाया। ये एक मैन इन दी लूप वाला वेपन सिस्टम है और इसको तीनों वर्शन में यानी एयर से, लैंड से और मैरीटाइम, वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खूबी ये है कि बिकॉज ये मैन इन दी लूप वाला सिस्टम है तो इसको किसी तरह से भी गाइड करके, और गाइडिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिस्टम हो लेजर का, चाहे वो टीवी कैमरास का हो जो फिट होते हैं वारहेड के नोज के अंदर, या वो कोई वायर गाइडेड हो, किसी तरह के भी सिस्टम से इसको गाइड करके वहां तक दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाना और उसको मार गिराना, ये इसकी खूबी है। और अगर मिशन किसी तरीके से अबॉर्ट करना पड़े तो ये अबॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका रेंज तकरीबन 32 किलोमीटर है जो कि बहुत बड़ी इसकी एक ताकत है।
2: हवा से दागी गई NLOS मिसाइल न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत ने इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी है। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने LAC पर करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू विमानों की तैनाती करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का ऑर्डर दिया।
3: खबरों के मुताबिक भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का इच्छुक था। साल 2011 में भारत के पास दो विकल्प थे, एक अमेरिका की फाल्कन और दूसरा था इसराइल की NLOS। भारत ने इसराइल की NLOS को चुना। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मूड में नहीं था, लेकिन भारत को एक ऐसे मुल्क से डील करनी थी जो उसे हथियार के साथ साथ तकनीक का ट्रांसफर भी देता ताकि भारत में उसका प्रोडक्शन हो पाए, इसीलिए भारत ने NLOS को चुना।
2: फिलहाल सरकार ने सीमित संख्या में NLOS मिसाइलें ऑर्डर की हैं, बाद में इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बड़ी संख्या में हासिल किया जाएगा।
3: रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज़ टुडे

0: महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार। सिल्वर स्क्रीन पर बाबा का दिव्य अवतार। हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा। धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा। जीएनटी स्पेशल शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दो तरह की हैं। एक तो छोटी मिसाइलें जिन्हें एक व्यक्ति आसानी से उठा कर ले जा सकता है और कंधे से ही लॉन्च कर सकता है। दूसरी होती है बड़ी मिसाइलें जिन्हें लॉन्च करने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत होती है। इन्हें हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। दुनिया ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत देखी, जहां यूक्रेन एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका से मिले जेवलिन मिसाइलों का खूब इस्तेमाल हुआ। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्पाइक को जेवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल माना जाता है। स्पाइक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स ने दुनिया भर में कई युद्धों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। स्पाइक मिसाइल ने 1982 और साल 2006 के लेबनान युद्ध में अपनी ताकत दिखाई। साल 2001 और 2021 के अफगानिस्तान वॉर में इसने अपनी जबरदस्त जंगी क्षमता का परिचय दिया। वहीं इराक युद्ध में स्पाइक बेजोड़ साबित हुई। साल 2014 में इसराइल गाजा संघर्ष और साल 2020 में नार्गो कारबाख संघर्ष में भी स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल ने अहम भूमिका निभाई। स्पाइक की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे एंटी टैंक मिसाइल में होती है। भारत के पास पहले से ही स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जमीन से फायर करने वाला वर्जन मौजूद है। भारतीय सेना इस समय स्पाइक एलआर मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। स्पाइक एलआर पोर्टेबल है। 2 जवानों की टीम के साथ इसे तैनात किया जा सकता है। एक जवान लॉन्चर लेकर चलता है, दूसरा मिसाइल। स्पाइक मिसाइल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं। इसे फायर करने के 2 मोड हैं। पहला है फायर एंड फॉरगेट, मतलब मिसाइल फायर करने के बाद टारगेट को भूल जाइए। दूसरा है फायर एंड विजिबल, इसमें मिसाइल के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से विजुअल लॉन्चर तक पहुंचता है। सैनिक देख पाता है कि मिसाइल किस टारगेट की ओर बढ़ रही है, वो टारगेट पर कहां लगेगी। जरूरत पड़ने पर मिसाइल की हवा में रहते हुए सैनिक उसकी दिशा भी बदल सकता है। इस खूबी के चलते उस टारगेट को भी खत्म किया जा सकता है जो सीधे न दिख रहा हो।

0: बाइक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कंधे पर ट्राइपॉड से भी लॉन्च किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसे किसी भी टैंक पर फिट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी ताकत इसकी ये है कि इसे ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत ही जल्द इंस्टॉल किया जा सकता है। हाल ही में अर्जुन टैंक पर हुए इसके सफल परीक्षण ने इस बात का सबूत भी दिया है।
1: स्पाइक मिसाइल अपने टारगेट पर अचूक प्रहार करती है। ये इतनी घातक है कि टारगेट को बचने का मौका तक नहीं मिलता। स्पाइक मिसाइल न सिर्फ दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकर को तबाह करने में सक्षम है, बल्कि ये दुश्मन की टैंकों के परखचे उड़ाने की ताकत भी रखती है।

0: یہ میزائل کی جو اسپائک کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ انفراسٹرکچر کو استعمال کر کے اس کی جو نائٹ ویزیبلٹی ہے اور اس کا جو رینج ہے وہ بہت لیتھل ہے, بہت ڈیواسٹیٹنگ ہے. اور یہ اپنا ٹارگیٹ خود بے خود لوکیٹ کر لیتا ہے, تو آپ مان کے چلو کہ اس کو پارشلی آپ ایف این ایف کیٹیگری میں ڈال دیتے ہو, فائر اینڈ فرگیٹ, فائر کرو بھول جاؤ, اپنا ٹارگیٹ ڈھونڈ کے نیویگیٹ کر کے وہاں پہنچ کے اس کو دھوست کر دے گا.
1: اسپائی کے علاوہ بھارت کے پاس سودیشی ناگ اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل بھی ہے. تیسری پیڑھی کی اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کو کسی بھی موسم میں داغا جا سکتا ہے. انٹیگریٹڈ گائیڈڈ مسائل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تھرڈ جنریشن کی ناگ مسائل کو تیار کیا گیا. ناگ پانچ طرح کی ویریئنٹس میں آتی ہے. ناگ مسائل کے الگ الگ ویریئنٹس کی رینج 500 میٹر سے لے کر 20 کلومیٹر تک ہے, جو 828 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی میکسیمم سپیڈ سے حملہ کرنے میں سکشم ہے. ناگ ایسی مسائل ہے جسے زمین یا ہوا کہیں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے. اس کا گائیڈنس سسٹم فائر اینڈ فرگیٹ ہے, جس کا مطلب ہے ایک بار میں ناگ کو فائر کر دیا اور اس کے بعد یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ کے ہی دم لے گی.
2: مسائل مین کے نام سے مشہور پورو راشٹرپتی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے 90 کے دشک میں ناگ مسائل کو آکار دینا شروع کیا. ڈی آر ڈی او نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا. 90 کے دشک کی شروعات میں ٹیسٹ بھی ہوئے, لیکن آئی آئی آر آدھارت گائیڈنس سسٹم میں دقت کے چلتے ڈیولپمنٹ پھنس گیا. 1997 اور پھر 2000 میں ناگ مسائل نے ٹیسٹ میں قابلیت ثابت کر دی. پھر اگلے کچھ سالوں کے بھیتر اسے اور زیادہ ریفائن کیا گیا.
1: ناگ مسائل کے لیے خاص مسائل کریئر این ایم آئی کا تیار کیا گیا ہے, جسے سارت نام دیا گیا ہے. یہ ایک ٹینک ڈسٹروئر ہے جس میں 12 مسائلیں رکھی جا سکتی ہیں. ناگ مسائل کے 5 الگ الگ ٹائپ پر کام چل رہا ہے. ناگ مسائل کا ایک لینڈ ورژن ہے, دوسرا ماس ماؤنٹن سسٹم, باقی 3 خاص ضرورتوں کے حساب سے بنائے جا رہے ہیں. تیسری پیڑھی کی ایم پی 80 جی ایم یعنی مین پورٹیبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کا ٹرائل 2005 میں شروع ہوا. یہ دکھنے میں ناگ مسائل کی لینڈ ورژن جیسی ہے, لیکن بہت ہلکی ہے, جو قریب 14 کلوگرام ہے. ناگ کے ایم پی 80 جی ایم ورژن کی رینج قریب 2.5 کلومیٹر ہے. یہ ٹینک کے اوپر سے حملہ کرنے میں سکشم ہے, جسے ٹاپ اٹیک کہا جاتا ہے. دراصل ٹینکوں میں چاروں طرف ریئیکٹو آرمر کی پلیٹ لگی ہوتی ہے, جو مسائل حملے کے دوران پھٹ کر اس کے پربھاؤ کو کم کر دیتی ہے. اسی لیے اوپر کی اور ٹینک پر حملہ اسے بہت نقصان پہنچاتا ہے. اسے داغنے کے بعد اس کے لکشے کو بدلا بھی جا سکتا ہے.
3: جو پاور ٹو ویٹ ریشو ہے اس کو زیادہ بڑھانے کے لیے آپ نے ویٹ کم کرنا ہے, ٹینک کی ایجیلیٹی کو بڑھانے کے لیے, تاکہ ٹینک فائر کر کے ایک دم وہاں سے ہٹ سکے. تو اس لیے ٹینک کی ویٹ کو کم کرنے کے لیے ٹرٹ کے اوپر آرمر جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے. تو اگر کوئی اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کسی طریقے سے اوپر سے آ کے ٹرٹ کے اوپر حملہ کرے گی تو وہ نقصان ٹینک کو زیادہ ہوگا, اس کے بشرطے کہ ہل کے اوپر یا فرنٹ میں وہ اٹیک کرے اور اس کو نقصان کم ہوگا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل میں کیپیبلٹی ہو کہ وہ اوپر سے فائر کر کے, یعنی کسی ایسے پلیٹ فارم سے, ایئر سے, ہوائی جہاز سے, کسی ہیلی کاپٹر سے, وہاں سے فائر کر سکے اور ٹینک کے اوپر کے ٹرٹ کے حصے کو نقصان پہنچائے.
1: ناگ اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کو پہاڑ پر لے جانا ہو یا پھر ریگستان میں, اسے کہیں پر بھی آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے, کہیں پر بھی فٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کے لیے کسی نشچت جگہ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ضرورت کے حساب سے اس کا استعمال ہوگا. ایم پی 80 جی ایم میں اور بھی کئی ہائی ٹیک تکنیکوں کا استعمال کیا گیا ہے. ایم پی 80 جی ایم امیج انفراریڈ رڈار سے لیس ہے, جو رات کے اندھیرے میں دشمن کو ڈھونڈ لیتا ہے. ایم پی 80 جی ایم میں انٹیگریٹ ایوینوکس بھی لگا ہے. اس مسائل کی ادھکتم مارک کشمتا 3 کلومیٹر ہے. قریب 1.25 میٹر لمبائی والی इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड फिट होता है, जिससे ये टैंकों के बेहद मजबूत कवच को पिघला सकती है। थर्मल सेंसर की वजह से ये टैंक से निकलती गर्मी की ओर भागती है, जिससे बचना टैंक के लिए आसान नहीं है।
3: किसी भी टारगेट के इमेजेस को या उसकी इंफ्रारेड को या उसकी हीट सेंसिंग जो है, उसकी जो भी हीट निकलती है उसको किसी तरह से सिग्नेचर्स को ट्रैक किया जाए और उसको ट्रैक करते करते टारगेट को तबाह किया जाए। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंदर टीवी कैमरास या लेजर गाइडेंस ऐसी पैदा की जाती है, ऐसी डिजाइन की जाती है कि वो टारगेट को ढूंढ के वहां तक जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी होम करेगा, उसकी जो थर्मल इमेजेस हैं, थर्मल इमेजेस मतलब जो उसमें से सिग्नेचर निकलते हैं, और उसको अवॉइड करने के लिए दुश्मन क्या करते हैं या टैंक वाले जो करते हैं उसके पीछे फ्लेयर जो है आर्टिफिशियल फ्लेयर या ऐसी चीज कर जाते हैं ताकि सिग्नेचर जो है गलत मिले और मिसाइल जो है भटक जाए।
1: स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। एयरफोर्स वेरिएंट का नाम है ध्रुवास, जिसे हेलेना नाम से भी जाना जाता है। ध्रुवास को ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है।
2: डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत के बाद ध्रुवास मिसाइल तैयार की है। इसने तकरीबन अपने सारे टेस्ट पास भी कर लिए हैं और बहुत ही जल्द इसे भारतीय सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स में कमीशन भी कर दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर मौसम में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकती है।
1: दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर चलने वाली इस मिसाइल से दुश्मन टैंक बच नहीं पाएंगे। यही वजह है कि ध्रुवास की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी टैंक हथियारों में होती है। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगा हुआ है, जिससे यह अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। ध्रुवास मिसाइल की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। ये 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है और इसमें 8 किलो विस्फोटक लगा होता है। भारत के पास सैंट यानी स्टैंडर्ड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल में होती है। सैंट ध्रुवास का अपग्रेडेड वेरिएंट है। 15 से 20 किलोमीटर रेंज वाली सैंट में एक्टिव रडार सीकर लगा है ताकि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दूर रहे। ये मिसाइल इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से टारगेट का पता लगाती है और भागते टारगेट को भी तबाह कर सकती है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मार्च 2023 में अपनी थर्ड जनरेशन की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया। अमोघा 3 बेहद अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर है। इसमें जो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है वो 650 मिलीमीटर बियॉन्ड एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर के भी चीतड़े उड़ा सकता है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन की तरफ इंफ्रारेड इमेजिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक की मदद से आगे बढ़ती है। हालांकि इसकी स्पीड का खुलासा इसे बनाने वाली कंपनी ने नहीं किया है। अमोघा 3 मिसाइल पर 8 फिन्स यानी छोटे छोटे पंख लगे हैं ताकि उड़ान के समय इसे नियंत्रित किया जा सके।
2: भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर और मॉडर्न हथियारों से लैस करने के लिए लगातार इस पर काम चल रहा है। पांचवीं पीढ़ी के कई हथियारों को भारतीय सेना के साथ अटैच करने की बात भी हो रही है और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि चीन और पाकिस्तान की गुस्ताखियों को जवाब देने के लिए भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने नए नए हथियारों को बना भी रहा है। इसी के तहत भारत के पास कॉन्कस एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, जो दुश्मन के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से लैस बख्तरबंद वाहनों को सेकंड्स में तबाह कर सकती है।
1: महज 19 सेकंड में 4 किलोमीटर दूर टारगेट को खाक में मिलाने की ताकत है कॉन्कस एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में। कॉन्कस एम मिसाइल सेकेंड जनरेशन की मैकेनाइज इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर से लैस बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने के लिए काफी है। चीन की सेना हो या फिर पाकिस्तान में पनपते आतंक के मोहरे, ये दुश्मन के लिए अल्टीमेटम है कि अब वक्त है, संभल जाओ वरना खाक में मिला दिए जाओगे। कांग्रेस एम मिसाइल को बीएमपी 2 बख्तरबंद गाड़ी से या फिर सतह से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 208 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 4 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खाक में मिला सकती है। बीएमपी 2 बख्तरबंद गाड़ी में 6 सैनिक सवार हो सकते हैं जो टैंक के ग्राउंड क्लियरेंस के बाद अपना मोर्चा संभालते हैं। बीएमपी से सपोर्ट फायर होता है और फिर सैनिक अपने हाईटेक वेपन के साथ दुश्मनों को निशाना बना सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ियां यानी बीएमपी न केवल दुश्मन पर मिसाइलों, मोर्टार रॉकेट्स और मशीन गन से जबरदस्त हमला कर सकती हैं, बल्कि इसके अंदर बैठकर सैनिक मैदान जंग में हर गोलीबारी से सुरक्षित रहकर आगे बढ़ सकता है। जरा सोचिए, अगर बीएमपी 2 पर कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तैनाती कर दी जाती है तो ये दुश्मन के खेमे में कितनी बड़ी तबाही मचाएगा।
0: ये कॉन्कर एम जो है वायर गाइडेड मिसाइल है, बीएमपी 2 से फायर किया जा सकता है या ग्राउंड से भी फायर किया जा सकता है, और ये वायर गाइडेड, जैसा मैंने कहा, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल है, मोर देन 80% की एक्यूरेसी है। और अब जैसे जैसे हम ATGM की बात करते हैं, तरह तरह का है, कोई मैन पोर्टेबल है, कोई वायर गाइडेड है, कोई सेल्फ गाइडेड है, तो ये वायर गाइडेड कैटेगरी में आता है। और इसका इसकी जो क्षमता है, ये हमने इस्तेमाल किया है।
1: भारतीय सेना बड़ी तादाद में रूसी मूल के बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल करती है। बीएमपी का इस्तेमाल भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की ओर से रेगिस्तान, मैदान और ऊंचाई वाले इलाकों में किया जा सकता है। सरहद पार दुश्मन अगर बंकर में छिपकर गुस्ताखी करने की फिराक में हो तो कॉन्कर्स एम उसे खाक में मिलाने की कुव्वत रखती है, लिहाजा अब आतंक के मोहरों के लिए जान बचाना मुश्किल होगा। बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को नाइट विजन डिवाइस से लैस किया गया है ताकि रात में भी दुश्मन से मुकाबला किया जा सके। यानी बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को हर वो ताकत सौंपी गई है जो रणभूमि में जीत के लिए गारंटी मानी जाती है। भारतीय सेना के पास 34,000 Milan 2T मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। इसे फ्रांस और भारत ने मिलकर बनाया है। इसे भी टैंक ट्राइपॉड कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। इसके 5 वेरिएंट्स हैं: मिलान 1, मिलान 2, मिलान 2T, मिलान 3 और मिलान ER। मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में सिंगल या टैम्ड हीट वॉरहेड लगाए जा सकते हैं और इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक है।
2: रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
5: जाए। शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: आज महाराष्ट्र सहित देश के तमाम इलाकों में दही हांडी उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। मुंबई की गली गली में इसके रंग देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से खूबसूरत तस्वीरें जो है वो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से सामने आ रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई की गली गली में इसके रंग जो है वो बिखरे हुए हैं। मुंबई के दादर से इस उत्सव का शानदार आगाज हुआ, जहां लड़कियों की टोली ने मटके फोड़कर इसकी शुरुआत की। और मुंबई में आज दिन भर बल्कि दिन से रात तक इस उत्सव के रंग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और हम आपको जीएनटी पर इसकी तस्वीरें लगातार दिखाते भी रहेंगे। वहीं मुंबई में आज तमाम जगहों पर नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटीज इस उत्सव में शामिल होकर गोविंदाओं का जोश भी बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई में इसकी तैयारियां जो है काफी पहले से ही शुरू हो गई थी, उसकी तस्वीरें भी हम लगातार जीएनटी पर आपको दिखा रहे थे। और आज जो गोविंदाओं की टोली है वो पिरामिड बनाकर मटकी यहां पर फोड़ती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मटकी फोड़ी और नशा मुक्ति का संदेश दिया। इसके साथ ही मुंबई में इसे काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें कई अभिनेता भी शामिल होते हैं। तो चलिए बात मुंबई के दादर की, जहां एक और दही हांडी की मटकी फोड़ने में नारी शक्ति का शानदार दमखम दिखा, तो वहीं यहां के दही हांडी मंडल की कमान भी एक महिला के हाथों में है। दादर दही हांडी मंडल के अध्यक्ष गौरी गावकर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और जाना कि इस उत्सव का आयोजन किस तरीके से किया जाता है। आप भी देखिए।
1: आपके पिताजी ने एक दही हांडी नहीं शुरू किया, एक लेगेसी शुरू की एक तरीके से, कैसा लगता है आपको, क्या फीलिंग है?
2: उनका ड्रीम ही था ये कि लड़कियों को आगे लेके जाना है। वो एक ओपनिंग के लिए गए थे जिमनास्टिक्स के, जहाँ पे ये लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही, वो देख के उन लोग पिरामिड बना रहे थे, सिंगल हैंडेड पिरामिड। तभी उनके दिमाग में ये थॉट आया, क्यों नहीं ये भी हड्डी लगा सकती है, इतनी अच्छी तरह पिरामिड्स बना रहे हैं तो ये भी इनसे हो जाएगा। तो उनको 3 महीने का टाइम था, 3 महीने बाद हड्डी थी, तो उनको बोला गया था कि आप प्रैक्टिस करो, आपको फोड़ने का चांस मैं दूंगा। और तब से ये ऐसे चालू है, अभी 35 इयर्स हो गए इसको।
1: आपने भी ये लेगेसी कायम रखी है, कितनी मुश्किलें आती है इसकी?
2: मुश्किलें तो इतनी नहीं आती है, बिकॉज जो पॉलिसीज है, जो हम लोग को गाइडलाइन फॉलो करने बोले, वो सब गाइडलाइन फॉलो करके ही हम सब करते हैं, तो इतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आता है। पुलिस वाले भी सपोर्टिव है, सब कुछ, बीएमसी वीएमसी सब अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं, ऐसे कुछ नहीं। मेरी टीम भी बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करती है, जो एक वीक से पूरा तैयारी में लग जाते हैं, पूरा रात तक जगे रहते हैं यहाँ पे। मैट्स जो भी हम लोग का प्रोटोकॉल दिया गया है वो फॉलो करके ही सब हम लोग आगे लेके जा रहे हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: महाप्रयाण के 53 साल बाद चमत्कार। सिल्वर स्क्रीन पर बाबा का दिव्य अवतार। हनुमान अंश पर बरसी बजरंग बली की कृपा। धरती को धन्य करने आए बाबा की महागाथा। जीएनटी स्पेशल शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9:00।

0: देव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की धूम, गोविंदाओं की टोलियों में दिखा मटकी फोड़ने के लिए गजब का उत्साह, ढोल नगाड़े के साथ गूंज रहा जय बजरंग बली का जयघोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी उत्सव, श्री कृष्ण के जयकारों के भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी के पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की एयरफोर्स, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 48 टीचर्स को दिया नेशनल अवार्ड, अवार्ड पाने वालों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं। श्रीनगर के डल झील में देवदूत बने SDRF के जवान, तूफानी हवा और तेज बारिश के बीच चला रेस्क्यू अभियान, मझधार में फंसी नाव पर सवार टूरिस्ट का किया गया रेस्क्यू।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़।
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी।

0: उन्हीं युगातीत दिव्यात्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहां बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

0: आप शायद यकीन न करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं।
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: में। जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है तो
1: क्या
2: करते ये करते हैं, तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी।

0: सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनंद फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो वैसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धिजीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, हल्का दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते हैं, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के तीसरे हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
2: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौरी बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और

0: प्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया। हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से। महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया। अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: स्टेशन पे बैठ गए।
1: स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसके वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करोली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे, पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करोली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीब करोली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करोली बाबा का देहावसान हो चुका था। फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करोली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
2: बंदे में है दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: देव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की धूम, गोविंदाओं की टोलियों में दिखा मटकी फोड़ने के लिए गजब का उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ गूंज रहा जय बजरंग बली का जय घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी उत्सव, श्री कृष्ण के जयकारों की भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी के पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की एयरफोर्स, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज, दिल्ली में राष्ट्रपति ने 48 टीचर्स को दिया नेशनल अवार्ड, अवार्ड पाने वालों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं। श्रीनगर के डल झील में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, तूफानी हवा और तेज बारिश के बीच चलाया रेस्क्यू अभियान, मझधार में फंसी नाव पर सवार टूरिस्ट का किया रेस्क्यू।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा दही हांडी उत्सव, माखन की मटकी फोड़ने में जुटी गोविंदाओं की टोली। मुंबई में जगह जगह दही हांडी उत्सव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्ली में दही हांडी जश्न में हुए शामिल। इस मौके पर सीएम ने पारंपरिक रूप से फोड़ी दही हांडी, मानव पिरामिड बनाने वाले गोविंदाओं का बढ़ाया हौसला। मुंबई के घाटकोपर में भी दही हांडी का भव्य आयोजन, भारत की सबसे बड़ी दही हांडी में शुमार है ये आयोजन। इस भव्य कार्यक्रम में बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल, देशवासियों को दी दही हांडी उत्सव की बधाई। मुंबई के दादर इलाके में दही हांडी का आयोजन, उत्सव में नारी शक्ति की दिखी खास झलक, बड़ी तादाद में लड़कियां भी जश्न में शामिल। महिला गोविंदा टोलियों ने पिरामिड बनाकर फोड़ी मटकी, लगे गोविंदा आला रे किनारे। अलवर में दही हांडी प्रतियोगिता में युवाओं ने आजमाया अपना दम, 17 टीमों ने लिया हिस्सा। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन, दही हांडी फोड़ने को लेकर युवाओं में दिखा खासा उत्साह और जोश। जन्माष्टमी के मौके पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गर्जी तोपे, श्रीनाथ जी मंदिर में दी गई 21 तोपों की सलामी, 350 साल से चली आ रही है ये परंपरा। थाने में दही हांडी के जोश चरम पर, 100 से ज्यादा गोविंदा टोलियां पहुंची, ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाकर हांडी फोड़ने की जोरदार तैयारी। थाने के दही हांडी सिर्फ गोविंदाओं ही नहीं, सितारों के लिए भी है काफी खास, सुनील शेट्टी और क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव बने आकर्षण का केंद्र। दही हांडी अब से पुरुषों का खेल नहीं, महिला गोविंदा टीमें भी बढ़ चढ़कर ले रही हैं इसमें हिस्सा, साथ ही सुरक्षा के लिए हेलमेट, हार्नेस और बीमा जैसे इंतजामों पर दिया जा रहा जोर। थाने में स्वामी प्रतिष्ठान की दही हांडी पर इस बार 71 लाख रुपए के इनाम, पंच पखाड़ी और हीरा नंदानी में गोविंदा पथक दिखा रहे अपना दमखम। थाने में दही हांडी की परंपरा कहीं दशकों पुरानी, साल 2008 में थाने के वर्तक नगर में देश का पहला 9-स्तरीय मानव पिरामिड भी बना था। श्री साईं मंदिर में जन्माष्टमी का भव्य उत्सव मनाया गया, चांदी के पालने में श्री कृष्ण की प्रतिमा रखी गई। श्री कृष्ण जन्म के बाद मंदिर में जोरदार संकीर्तन और हरि कथा हुई, हजारों श्रद्धालुओं ने कहना कि जयकारों से पूरा मंदिर गूंजा। साईं मंदिर में फूलों से सजी दही हांडी फोड़ी गई, श्रद्धालुओं ने कृष्ण के जयकारों के बीच जमकर उत्सव मनाया। साईं बाबा की समाधि पर भी श्री कृष्ण की प्रतिमा रखी गई, दोपहर की आरती के दौरान भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। जन्माष्टमी पर साईं मंदिर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजा, पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और उत्सव का माहौल नजर आया। गोकुल में नंदोत्सव की धूम, नंद के घर आनंद भयो के जयकारों से गलियां गूंज उठी। नंद भवन से बालकृष्ण और बलराम की शोभा यात्रा निकाली गई, गलियों में भक्तों ने फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। नंदोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोकुल पहुंचे, बैंड बाजों और भजनों के बीच पूरा गोकुल कृष्णमय नजर आया। बालकृष्ण का डोला गोकुल के गलियों से होता हुआ नंद चौक पहुंचा, यहां भजन कीर्तन और जयकारों के बीच उत्सव का रंग और चढ़ गया। गोकुल में नंदोत्सव के दौरान श्रद्धालु पीछे पीछे और उपहार उठाए गए, मिठाई और खिलौने पाने के लिए भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। जन्माष्टमी पर सोमनाथ महादेव का हुआ लौकिक कृष्ण दर्शन, श्रृंगार शिवलिंग पर भगवान कृष्ण की सौम्य मुद्रा की खास प्रतिकृति सजाई गई। जन्माष्टमी पर सोमनाथ महादेव को करीब 2 करोड़ रुपए के स्वर्ण मुकुट से सजाया गया। लखी परिवार ने यह मुकुट हाल ही में भगवान के चरणों में अर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण की बाल लीलाओं की सुंदर झांकियां सजाई गई। वासुदेव की यमुना यात्रा से लेकर झूले में बैठे बाल कृष्ण तक के दर्शन हुए। सोमनाथ में गायों के बीच बांसुरी बजाते गोपाल कृष्ण की झांकी ने भक्तों का मन मोह लिया। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर परिसर भक्ति और आध्यात्मिक रंग में डूबा नजर आया। सोमनाथ में जन्माष्टमी के मौके पर शिव और कृष्ण की भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भक्तों ने हरिहर एकत्व के दर्शन किए और खुद को धन्य महसूस किया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी का भव्य महोत्सव ठाकुर जी को पीताम्बरी में सजाया गया। कान्हा के जन्मोत्सव के बाद सुबह भव्य मंगला आरती का हुआ आयोजन, भारी संख्या में श्रद्धालु रहे इस दौरान मौजूद। बद्रीनाथ मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर की गई विशेष साज सज्जा, कृष्ण डोल उत्सव का हुआ आयोजन। आज दिन भर भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना, दर्शनों के लिए भक्तों की लगी लंबी कतारें। मेरठ में पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भजनों पर झूमे पुलिसकर्मी, बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षकों को मिला सम्मान, 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए उत्कृष्ट शिक्षक। शिक्षकों के योगदान को राष्ट्र सम्मान, विज्ञान भवन में जुटे देश भर के शिक्षक। शिक्षकों की मेहनत और समर्पण को सम्मान, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को किया संबोधित। पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 138वीं जयंती। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित शिक्षकों से किया संवाद, पीएम आवास पर हुई है मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से उनके अनुभव जाने और अपनी स्मृतियों को साझा किया, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों का भविष्य निर्माण शिक्षकों की जिम्मेदारी, शिक्षक से ये सुनिश्चित करें कि हर बच्चे का बचपन उसमें हमेशा जिंदा रहे। पीएम से मुलाकात को सभी शिक्षकों ने बताया गर्व का पल, प्रधानमंत्री ने सम्मानित टीचर्स के साथ फोटो खिंचवाई। दिल्ली में एसआरसीसी को छात्रों को आज शाम करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया बधाई संदेश, पढ़ाई को आधुनिक स्वरूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाले समस्त गुरुजनों और शिक्षकों को मुबारकबाद दी। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के बेसिक और सेकेंडरी शिक्षा विभागों के 81 बेहतरीन शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। पटना दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गोला रोड स्थित ज्ञान निकेतन स्कूल में शिक्षक दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस मौके पर उन्होंने स्कूल परिसर में स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा का किया अनावरण, सभी शिक्षकों को दी बधाई। मुरादाबाद में टीचर्स डे का अनोखा सेलिब्रेशन, स्टूडेंट्स ने बनाई महान दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 40 फीट की शानदार रंगोली। देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी, गया में आयोजित पासिंग आउट परेड में देखा जवानों का जोश। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल की दूसरी पासिंग आउट परेड, 35 महिला अफसर शामिल। पासिंग आउट परेड में वियतनाम पीपल्स आर्मी के अधिकारी हुए शामिल। समारोह के दौरान सिम्फनी बैंड ने देशभक्ति की धुनों और सैन्य मार्च की शानदार प्रस्तुति दी। ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऑफिसर के डेट्स को दिए गए मेडल, परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर ने किया उन्हें सम्मानित। अफसर कैडेट्स ने पेश किया शक्ति, साहस और युद्ध कौशल का शानदार नजारा, दर्शकों में दिखा रोमांच। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंजाकोट सरकारी उच्च विद्यालय चला रहा शिक्षक की ज्योत, सीमावर्ती छात्रों के लिए आशा की नई किरण। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी छात्र ले रहे हिस्सा, खास बात यह है कि यहां बच्चियों की तादाद ज्यादा है। चंडीगढ़ में गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने एंटी ड्रग कैंपेन में लिया हिस्सा, युवाओं से की नशा मुक्त होने की अपील। सुकना लेक के पास आयोजित किया गया ये वॉकाथॉन, हजारों युवाओं ने निकाली यात्रा। राज्यपाल ने कहा गुरुओं की भूमि के लोग हर बुराई से लड़ना जानते हैं। मौके पर कॉमनवेल्थ गोल्ड विजेता खिलाड़ी यश किरत भी थी मौजूद। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक ली करवट, कई इलाकों में तेज गरज के साथ झमाझम बारिश। दिल्ली में बारिश से वीकेंड हुआ सुहाना, पूरे हफ्ते बारिश की बनी रहेगी संभावना। श्रीनगर की डल झील में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, तूफानी हवा और तेज बारिश के बीच मझधार में फंसी नाव पर सवार टूरिस्ट का किया गया रेस्क्यू। मुंगेर में बड़ा गंगा का जलस्तर कर रिहायशी इलाकों में भरा पानी, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के प्रशासन ने अपील की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। फिल्म कजिन ईशा का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, म्यूजिकल रोमांटिक लव स्टोरी में पहली बार दर्शकों के सामने होगी विक्रांत रॉय और सुरभि तालोदिया की जोड़ी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म द विवियान का पहला गाना हुआ रिलीज, रोमांटिक ट्रैक को तनिष बागची ने किया है कंपोज। बॉलीवुड में होगी नई जोड़ी की एंट्री, निर्देशक इंद्रजीत लंकेश की फिल्म जय हिंद जय सिंध में गौरव ढींगरा और अकाशा वत्स फिल्म में लीड पेयर के तौर पर नजर आएंगे। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर के रिलीज डेट का हुआ ऐलान, 21 जनवरी 2027 में आएगी रणबीर आलिया और विक्की की फिल्म। जन्माष्टमी पर फिल्म हनुमान अंश की बंपर कमाई, 29वें दिन कमाए 10 करोड़ रुपए, करीब 98 करोड़ पहुंचा ग्रॉस कलेक्शन। चीन मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची सात्विक चिराग की जोड़ी, डेनमार्क की जोड़ी को हराया। लगातार चौथी बार टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय जोड़ी, एशियाई खेलों से पहले ये जीत अहम। भारत जापान रिश्तों के 75 साल पूरे होने के मौके पर सुजुकी कप, 22 सितंबर को दोनों टीमों में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे श्रेयस अय्यर, उप कप्तान तिलक वर्मा, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी जैसे नाम भी शामिल। दलीप ट्रॉफी फाइनल में 100वां फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे क्रिकेटर मोहम्मद शमी, मुकाबले से पहले बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन करेगा उन्हें सम्मानित। हांगकांग में दुकान का दुकानदार अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट है, रोबोट ग्राहकों से बात करता है, उन्हें सामान देता है और डांस भी करता है। हांगकांग में पहली बार रोबोट ने संभाली किराने की दुकान, 24 घंटे खुलने वाली इस दुकान में स्नैक्स और ड्रिंक्स मिल रहे हैं। दुकान में पहुंचा 5 फुट 8 इंच का ह्यूमनॉइड रोबोट, ये मंदारिन, कैंटोनीज और अंग्रेजी में बात करता है। रोबोट दुकानदार को देखने के लिए लोगों की उमड़ रही है भीड़, हालांकि ग्राहक बोले रोबोट को जवाब देने में अभी थोड़ा सा वक्त लगता है। चीन के बाद अब हांगकांग में भी रोबोट की एंट्री हो गई है। कंपनी करीब 50 शहरों में 200 ऐसी दुकानें पहले ही चला रही है। मुंबई में बने यांजी यांगजी ब्रिज का 5 रातों तक चला लोड टेस्ट सफल रहा। अब पुल के जल्द ट्रैफिक के लिए खुलने की उम्मीद। 40-40 टन वजन वाले 180 ट्रैकों पर पुल के दोनों डेक पर खड़ा किया गया, यानी पुल पर कुल 7,200 टन का दबाव डाला गया। टेस्ट में पुल पर डाला गया कुल वजन 18 पूरी तरीके से भरे बोइंग 747 विमानों के बराबर था। इस टेस्ट में पुल की मजबूती जांची गई। यांजी ब्रिज का मुख्य स्पैन 1,860 मीटर है, जो नदी के ऊपर बिना बीच के सहारे के से बना है। इसे दुनिया का पहला 4 मेन केबल सस्पेंशन ब्रिज बताया गया है। इस पुल में दो अलग अलग डेक बनाए गए हैं, ऊपर एक्सप्रेस वे चलेगा जबकि नीचे शहरी एक्सप्रेस वे से शहर का ट्रैफिक घुसरेगा। चीन में बनाए गए बुजुर्गों को गिरने से होने वाली चोटों से बचाने के लिए एंटी फॉल एयरबैग जैकेट बीजिंग में केयर एंड रिहैबिलिटेशन एक्सपो चाइना 2026 में प्रदर्शित। इस जैकेट में शरीर की गतिविधियों और मुद्राओं को ट्रैक करने के लिए लगे हैं 2 सेंसर, जो 0.15 सेकंड में एयरबैग खोल देता है, जिससे गिरने पर कुशन जैसा बचाव मिलता है। ब्राजील में ओजी ऑसबॉर्न प्रिंस ऑफ डार्कनेस भूल भुलैया लॉन्च यूनिवर्सल स्टूडियोज के हैलोवीन हॉरर नाइट्स अनुभव का हिस्सा है ये भूल भुलैया। भूल भुलैया के अलावा यहाँ पे टेरर ट्रॉम राइड और स्टंट शो द पर्स डेंजरस वाटर्स भी आकर्षण का मुख्य केंद्र बना। 1 नवंबर तक चलेगा ये भूल भुलैया। वेनेजुएला में लोगों ने पिज्जा बनाने के हुनर का किया प्रदर्शन। जीतने वालों को वर्ल्ड पिज्जा चैंपियनशिप साल 2027 में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाएगा इटली। चोंगकिंग के एनिमल पार्क में 4 शेर के बच्चे और 1 बाघ का बच्चा स्कूल पहुंचे, सबने घास पर खेला दौड़े और फिर दूध मांस की दावत उड़ाई। स्कूल के पहले दिन शावकों ने खूब मस्ती की। पार्क का मकसद इन्हें स्वस्थ रखना और इनके अंदर के जंगली गुण मजबूत करना है। लॉन पर शेर और बाघ के शावक एक दूसरे के पीछे भागते हुए नजर आए, कभी दौड़े कभी लोटे और धूप में आराम भी किया। खेल खत्म होते ही बच्चों के लिए ताजा दूध और मांस परोसा गया। भूखे नन्हे शेर बाघों ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। पार्क में इन्हें बच्चों को खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इससे वो बड़े होकर अपनी प्राकृतिक शिकार वाली आदतें नहीं भूलेंगे। अमेरिका के ऑस्टिन में टेस्ला ने बिना स्टेयरिंग और पेडल वाली साइबर कैब चलाना शुरू किया। अभी इसे शहर के कुछ इलाकों में ही चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसी ने टेस्ला की नई साइबर कैब पे नजर रखनी शुरू कर दी है। एजेंसी देख रही है कि कार सुरक्षा नियमों पर खरी उतरती है या नहीं। एलन मस्क साइबर कैब को टेस्ला के भविष्य की बड़ी गाड़ी मानते हैं। उनका लक्ष्य ऐसी कारों को बड़ा नेटवर्क बनाना है जो बिना ड्राइवर के चलें। टेस्ला ने जून 2025 में ऑस्टिन से रोबो टैक्सी सेवा शुरू की थी। अब यह सेवा टेक्सास और फ्लोरिडा के कुछ और शहरों तक पहुंच गई है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों को दुनिया भर में कड़ी टक्कर मिल रही है, खासकर चीन की कंपनियों से। ऐसे में कंपनी को बिना ड्राइवर वाली कारों से भविष्य की बड़ी उम्मीद है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: चीन के पहाड़ी इलाकों में स्कूल जाना कभी बच्चों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता था। कहीं खड़ी चट्टाने, कहीं फिसलन भरे रास्ते और कई घंटे की मुश्किल चढ़ाई, लेकिन अब इसी सफर को आसान बना दिया है एक अनोखी स्काई स्कूल बस ने। यूनान प्रांत की गहरी घाटी में बने ये विशाल एलिवेटर बच्चों को मिनटों में पहाड़ की चोटी तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कैसे एक लिफ्ट ने सिर्फ बच्चों का सफर नहीं बदला बल्कि पूरे गाँव की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी है।
9: ये कोई आम लिफ्ट नहीं बल्कि पहाड़ के सीने को चीरती स्काई स्कूल बस है। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में निझुए नदी की गहरी घाटी से पहाड़ की चोटी तक जाने वाली ये दो एलिवेटर बच्चों के लिए स्कूल का रास्ता आसान कर रही हैं। जहां पहले स्कूल पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, अब यही सफर कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है।
10: It turns what used to take hours into a journey of less than a minute, and it saves us so much energy so we can focus and calm down to study.
9: 268 और 288 मीटर ऊंचे ये एलिवेटर घाटी में बसे निझुए गांव को पहाड़ की चोटी पर बने ग्वांगशाई प्राइमरी स्कूल से जोड़ते हैं। 500 मीटर से ज्यादा का ऊंचा अंतर जिसे पार करने के लिए बच्चों को कभी खड़ी चट्टानों और संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, कीचड़, खाई और फिसलन हर कदम जोखिम भरा था।
11: The old trail was really hard to walk. There was mud and moss, so it was very slippery. Now with the elevator, we save about 3 hours on the journey.
9: लेकिन कहानी सिर्फ स्कूल तक पहुंचने की नहीं है। 2022 में घाटी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया गया। एलिवेटर और केबल कार ने गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ा, तो पर्यटन से कमाई के नए मौके भी खुले। 36 साल के चेन ग्वांगपिंग शहर से लौटे और अब यहां होम स्टे चला रहे हैं।
12: Back then, we mainly grew a little ginger, and at most, we could make 5,000 to 6,000 yuan a year. Now, we can earn at least 300,000 to 400,000 yuan in gross income a year. Life has really changed dramatically.
9: इन लिफ्ट ने बच्चों के लिए रास्ता छोटा किया, तो पर्यटन ने गांव की कमाई बढ़ाने का रास्ता खोल दिया। स्थानीय प्रशासन अब खाली पड़े घरों और संसाधनों को गेस्ट हाउस में बदलने पर जोर दे रहे हैं।
13: We want to make the best possible use of idle resources and vacant houses, turning villagers' homes into goose houses and these untapped resources into a major source of income for local residents.
9: निजुआ गांव में पहाड़ वही हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच रहने वालों की जिंदगी बदल रही है। जहां कभी स्कूल तक पहुंचना एक मुश्किल चढ़ाई थी, आज वही रास्ता स्काई स्कूल बस से मिनटों का सफर है। और यही बदलता सफर बता रहा है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रास्ते नहीं बनाता, लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते भी खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: मुंबई थाड़े सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की धूम, गोविंदाओ की टोलियों में दिखा मटके फोड़ने के लिए गजब का उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ गूंज रहा जय बजरंग बली का जय घोष।

0: दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी। एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साई मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी उत्सव। श्री कृष्ण के जयकारों की भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी। चांदी के पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जन 2026 युद्धाभ्यास। आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना। आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 48 टीचर्स को दिया नेशनल अवार्ड। अवार्ड पाने वालों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं। श्रीनगर की डल झील में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। तूफानी हवा और तेज बारिश के बीच चलाया रेस्क्यू अभियान। मझधार में फंसी नाव के सवार टूरिस्ट का किया रेस्क्यू।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और गुड न्यूज टुडे पर हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, गोविंदा जो है वो आ गए हैं देश भर में। मुरली मनोहर नंद किशोर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने के बाद, यानी कि जन्माष्टमी के अगले दिन अब अवसर आ गया है दही हांडी उत्सव का। इसकी तस्वीरें हम जीएनटी पर आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि 10 बजे तक ये जो कार्यक्रम है ये चलने वाला है। इसके जो रंग है जीएनटी पर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आज महाराष्ट्र सहित देश के तमाम इलाकों में दही हांडी उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी सब कुछ बयां कर रही हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुंबई की गली गली में इसके रंग बिखरे हुए हैं। मुंबई के दादर से इस उत्सव का शानदार आगाज हुआ, जहां लड़कियों की टोली ने मटके फोड़कर शुरुआत की। वहीं दहिसर और थाने में भी गोविंदा टोलियां पूरे जोर आजमाइश के साथ मटके फोड़ने की तैयारी में नजर आ रही हैं। आज देर रात तक दही हांडी उत्सव का ये जो सिलसिला है ये जारी रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 बजे तक ये जो कार्यक्रम है ये चलेंगे और जगह जगह गोविंदाओं की टोलियां माखन की मटकी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड मानव श्रृंखला बनाकर अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही हैं। और यही इस खेल की सबसे अच्छी बात है। देखिए, मुंबई में आज रात तक इस उत्सव के रंग दिखेंगे और हम भी आपको जीएनटी पर लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इन कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं और लोगों के दिलों में ये जो खेल है ये बसता है और ये जो तस्वीरें हैं इसे साफ बयां कर रहे हैं। वहीं मुंबई में आज तमाम जगहों पे नेता अभिनेता और सेलिब्रिटीज इस उत्सव में शामिल होकर गोविंदाओं का जोश बढ़ाने पहुंच रहे हैं। सुनील शेट्टी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुनील शेट्टी, क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख भी पहुंचे। सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के पूर्व सांसद और नेता नवनीत राणा भी गोविंदाओं का उत्साह बढ़ाने पहुंचे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, वो रंग दिखाएंगे और आपको दही हांडी किस तरीके से मनाई जा रही है मुंबई में वो भी दिखाएंगे। तो देखिए, चाहे दहिसर की बात करें, थाने की बात करें, तस्वीरें आपको हम शाम को भी हम दिखा रहे थे किस तरीके से मुंबई के अलग अलग जगहों पर दही हांडी के जो रंग हैं, उत्सव के जो रंग हैं, वो साफ देखने को मिल रहे हैं और लोग दूर दूर से इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये जो खेल है ये लोगों के दिलों में बसता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है जिसे आप मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखें, ये एक संस्कृति का हिस्सा है जिसे लोग साल दर साल आगे बढ़ा रहे हैं। और तस्वीरें अपने आप ये बयां कर रही हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। आखिरकार गोविंदा आ गए हैं और मानव श्रृंखला बनाकर मटकी फोड़ने वाले हैं। और उधर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी दही हांडी उत्सव की धूम रही। यहाँ श्री कृष्ण के जयकारों के साथ भक्तों ने रंग बिरंगे फूलों से भरी मटकी को फोड़ा। इस दौरान मंदिर परिसर चांदी के पालनी पर विराजमान कान्हा जी को भक्त झुलाते और दुलार करते नजर आए। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चांदी के पालनी में श्री कृष्ण को यहाँ पर विराजमान किया है। नंद गोपाल यानी बाल कृष्ण को झूले में विराजमान यहाँ पर किया है। तमाम तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। एक तरह देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से जन्माष्टमी के रंग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। श्री कृष्ण को पालने में झुलाते हुए भक्त काफी ज्यादा उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शिरडी साई बाबा मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहाँ दही हांडी उत्सव बड़े ही अलग तरीके से मनाया गया। तो शिरडी साईं बाबा मंदिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ दही हांडी उत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन ये मनाया जाता है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पालने में भगवान को झुलाया जा रहा है। यहाँ पे भक्त जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं। कल जन्माष्टमी के रंग हमने आपको जीएनटी पर दिखाए थे, आज दही हांडी का जो उत्सव है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो अलग अलग जगह पर इसके रंग अलग अलग तरीके के देखने को मिल रहे हैं। साईं बाबा मंदिर में भी जन्माष्टमी के रंग यहाँ पर अलग तरीके से देखने को मिले। और अभी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मानव श्रृंखला यहाँ पर बनाकर मटकी फोड़ने का जो कार्यक्रम है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से खासतौर पर मुंबई पहुंचते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आजकल अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन होने लगा है। दिल्ली की बात कीजिए, झारखंड की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की, लेकिन मुंबई की तो बात ही कुछ और है। थाने की तस्वीरें भी हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। देखिए सुनील शेट्टी यहाँ पर पहुंचे थे, युवाओं का उत्साह उन्होंने बढ़ाया और हमारे संवाददाता से भी खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि उनको ये खेल काफी ज्यादा पसंद है, ये संस्कृति का हिस्सा है और वो चाहते हैं कि लोग इसे साल दर साल आगे बढ़ाते रहें, यूं ही लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनते रहें। और देखिए ये आसान खेल नहीं है, हालांकि देखने में ये काफी ज्यादा आसान लगता है लेकिन ये संतुलन का खेल है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो देखिए किस तरीके से एक मानव पिरामिड, एक श्रृंखला बनाई जाती है और काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज तरीके से इसे किया जाता है और सबसे ऊपर चढ़कर जो मटकी है उसे फोड़ा जाता है। और देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी उत्सव का जो कार्यक्रम है वो उसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और काफी पहले से इसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। इसके लिए काफी हाई लेवल का डिसिप्लिन चाहिए होता है, स्टैमिना चाहिए होता है और ये तस्वीरें जो है ये साफ बयां कर रही हैं कि किस लेवल की तैयारी गोविंदाओं ने यहाँ पर की है और तमाम सेलिब्रिटीज इसमें शिरकत कर रहे हैं। देखिए भगवान कृष्ण जो हैं अपने दोस्तों के साथ गोपियों के घर में घुसा करते थे, माखन चुराया करते थे, प्रतीतात्मक तौर पर दही हांडी उत्सव के तौर पर इसे मनाया जाता है। गोविंदाओं की टोली होती है जो कि मानव श्रृंखला बनाती है, पिरामिड बनाती है, जिस तरीके से श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ ऊपर चढ़कर हांडी को फोड़ा करते थे ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस उत्सव को मनाया जाता है। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और शाम से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र दुबे के पास यहाँ पे चलते हैं। धर्मेंद्र आप थक गए होंगे, आप हमें शाम से तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैं बता दूं कि जैसे जैसे अब रात होने को है, आपने कहा था ना 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, तो रौनक जो है वो देखते ही बन रही है। धर्मेंद्र
1: बिल्कुल शाम हो गई है और शाम की तस्वीरें दही हांडी की बहुत ही अलग है, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ। बोल बजरंग, अरे बोल बजरंग। अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ, आप ये बताइए कि कहाँ से हैं? यहीं से?
2: हाँ भांडुप से हूँ।
1: दही हांडी को लेकर के क्या कुछ आप सोचते हैं और कितना खास है यहाँ क्या?
2: दही हांडी मतलब महाराष्ट्र में तो लाइक हर हर गली के बच्चे खेलते हैं, ये जैसे बच्चों के लिए क्रिकेट है वैसे दही हांडी है। और देखना यहाँ पे इतने 9-8 थर लगा रहे, आई मीन से कि बहुत क्रेजी है, बहुत हिम्मत लगती है करने के लिए। एंड यस
1: आप बताइए आपने ज्वाइन नहीं किया?
2: सो आई एम एक्सपीरियंसिंग थिंग्स फर्स्ट टाइम एंड बहुत बहुत अलग लेवल का मजा आ रहा है। सो या दैट्स ऑल।
1: क्या क्या हाथ में क्या आपके?
2: ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं बट क्या बोलते हैं
1: जो भी है, थोड़ा सा बजा के दिखाइए। तो ये तस्वीरें एक तरफ यहाँ पे मंच जहाँ पे लगातार सेलिब्रिटी और लगातार जो भी अतिथि हैं आने का मौका है यहाँ पे ज्वाइन है। इसके अलावा आप देखें लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है दही हंडी को लेकर के और वाकई में ऐसा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भी इतनी रात में कैसे पिरामिड बना करके अपने आप को संभालते हुए उस थर तक पहुंचना है जहां इनको विजयी होना है। देखिए बहुत ही दूरी पर दही हंडी अभी भी है और 9 थर 10 थर जिसने भी बना लिया वो विजेता हो जाता है। सबसे खास बात आपको बताएं इस समय मुंबई में तमाम बड़े बड़े इनाम रखे हुए हैं और सबसे बड़ा जो इनाम है वो 81 लाख रुपए का है। अभी खबर लगी है बोरीवली से है वो, ठीक है। इसके अलावा 71,000 रुपए का जो इनाम है वो थाने में ही है और 51 लाख रुपए की दही हंडी घाटकोपर में रखी गई है। तो आप समझ सकते हैं लाखों रुपए इन गोविंदा पदकों के लिए इनाम के तौर पर रखे गए हैं और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा साहसी खेल है। और देखिए शाम हो चली है लेकिन बावजूद इसके लगातार गोविंदा पदकों का जो टीम है उनके जो गुट है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए कितने लोग हाथ बढ़ाए हैं। ये जो हाथ बढ़ी हुई है ना ये हाथ एकता वाली हाथ है और ये हाथ जो है ये उनके समर्थन वाली हाथ है, सपोर्ट वाली हाथ है। ये देखिए किस तरीके से पिरामिड अब धीरे धीरे नीचे की तरफ, अच्छा ये नॉर्थ आर्थ था ठीक है ना, और धीरे धीरे बड़े ही साहसी तौर से एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए एक दूसरे का साथ और समर्थन देते हुए नीचे धीरे धीरे उतर रहे हैं। खास बात यह है कि अभी तक 200 से ज्यादा टीमें जो हैं वो इस थाने के जगह पर पहुंच चुकी हैं, जहां पर महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं प्रताप सर नाइक उनकी टीम है, ये उनका ये आयोजन है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं विजेता बन जाए। लेकिन थोड़ा सा तस्वीरें देखिए, शाम का समय जैसा कि मैंने बताया था सुबह से शाम हो जाएगी और रात 10 बजे जब तक मुंबई पुलिस इन्हें बाय नहीं बोलेगी, ये जो पब्लिक है, ये जो मुंबईकर हैं, ये जो महाराष्ट्रवासी हैं।

0: यहाँ पर छुट्टियां नहीं दी गई हैं, अपने काम करके लोग पहुंचे हुए हैं। दही हंडी का ये प्यारा सा त्योहार लगातार न केवल थाने की सड़क पर बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र के हर नुक्कड़ पर देखी जा रही है। बहुत ही ज्यादा भव्य उत्साह, बहुत ही ज्यादा भव्य ये कह सकते हैं कि उत्सव है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आपको बताएं कि जो माहौल है ये लगातार यहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें हैं मुंबई की, और उन इमारतों के बीच में एक मैदान है जहाँ पर इस तरह का आयोजन किया गया है। थोड़ा देखें आसपास, सारा का सारा इमारतें हैं और इमारतों में अपनी बालकनी में अपने सारे परिवार संग लोग यहाँ उपस्थित है। जहाँ तक नजरें जाएं, सिर्फ और सिर्फ नजरें जहाँ तक भी जाएं आपके, सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक धुन, एक से बढ़कर एक म्यूजिक बॉलीवुड से यहाँ पर देखी जा रही है, और तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेस भी और एक्टर भी यहाँ पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले संजय दत्त साहब भी यहाँ पर पहुंचे थे, मराठी में बात करने की उन्होंने कोशिश करी लेकिन उन्हें देखते ही बहुत से जी
1: जी धर्मेंद्र, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गोविंदा भी एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी, उसकी तस्वीरें हैं। सुनील शेट्टी यहाँ पर पहुंचे, संजय दत्त जैसे धर्मेंद्र आपने कहा था वो भी पहुंचे। अच्छा, ये देख के बड़ी हैरानी हो रही है कि जहां नजरें जा रही हैं वहां लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। खैर, ये भी कारण हो सकता है कि सैटरडे है, एक नॉन वर्किंग डे है, बहुत से लोगों की छुट्टी है, इसीलिए लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं धर्मेंद्र, और उनको देखकर लग नहीं रहा है कि वो 10 बजे भी घर जाने के लिए राजी हैं।
2: गोवा सर्फर्स, गोवा अंदर शिव टेकड़ी
0: बिल्कुल, आपको बताएं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये वीकेंड है इसलिए जो लोग जुटे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इतना ही हांडी अपने आप में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, सांस्कृतिक महोत्सव है, एकता का प्रतीक है। मुंबई महाराष्ट्र इसी बहाने एक साथ जुटता है, और जैसा कि मैंने बताया ये जो गोविंदा पथक इतनी मेहनत कर ना, ये जो इतने सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, ये सारे के सारे मैं आपको बताऊं कि कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई अपने एजुकेशन ले रहा है अलग अलग तरह का, लेकिन जब भी गोविंदा पथक और दही हंडी की बात आती है तो लोग समय निकालकर प्रैक्टिस करते हैं, अपने अपनी टीमें बनाते हैं। और ये जो ग्राउंड है, इस समय ये जो भीड़ है ये कोई आम भीड़ नहीं है, ये सारे के सारे गोविंदा पथक है जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। मिला जुला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ग्राउंड में इस समय मुझे लगता है कि कम से कम 8 से 10 हजार के लोग जुटे हुए हैं, और कम से कम 9 से 10 जो टीमें हैं, जो गुट हैं, जो दल हैं गोविंदा पथक को लेकर के, वो भी यहाँ पे जुटे हुए हैं और हर कोई अपने नंबर का इंतजार कर रहा है। जैसा कि अब आप देखें अगली जो टीम है उसकी तैयारी यहाँ पर शुरू है, और जो उसकी अगुवाई कर रहा है ये बंदा, ये अगुवाई कर रहा है, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अब हमारी बारी है, अब हमारा भी खेल देखें। हम भी सुन के आए हैं कि आज कम से कम 8 से 9 थर तो बनाएंगे और 10 थर के लिए कोशिश करेंगे, और आज यहाँ की जो लाखों रुपए का इनामी है वो तो जीत के जाएंगे ही, साथ ही साथ यहाँ जो बहुत बड़ा एक ट्रॉफी रखी है वो भी जीत के जाएंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है जीतने के बाद में महाराष्ट्र की कमेटी में इन्हें सभी की एंट्री होने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र ने जन्म उत्सव के इस दही हंडी खेल को कहीं ना कहीं एक साहसी खेल में तब्दील करा है, कहा है कि भाई ये साहसी खेल है, और ये टीम एक इंडिया की टीम बनने वाली है और विदेशों में इस टीम को ले जाया जाएगा, और दही हंडी पूरे विश्व लेवल में कामयाब किया जाएगा, वहां भी जाकर के ये सब अपनी खेल खेलेंगे,
1: इंटरनेशनल लेवल पर इसे ले जाने की तैयारी है। जी तस्वीरें आपको देखिए लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। रणदीप हुड्डा की तस्वीरें भी अभी आपने आपको दिखाई, रणदीप हुड्डा हो, सुनील शेट्टी हो, संजय दत्त हो, गोविंदा हो, तमाम बड़े सेलिब्रिटीज दही हांडी उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं, और धर्मेंद्र दुबे लगातार हमें तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र आपके पास एक बार फिर से यहाँ पर लौटते हुए, देखिए धर्मेंद्र बहुत सी बार हमें लगता है कि हम सब कुछ अकेले करने के कर सकते हैं, है ना, हम अपने आप में काबिल हैं, लेकिन जब हम दही हांडी जैसा उत्सव देखते हैं तो हम देखते हैं कि टीम वर्क कितना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वो मानव श्रृंखला बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, उनका एक दूसरे पर भरोसा होता है और तभी वो मटकी फोड़ पाते हैं।
3: कदम नहीं संगीत कि तुमचा हा मंडळ
0: बिल्कुल आपने सही कहा, दरअसल

0: लगता है कि भैया जो ये दही हंडी है, दही हंडी एक तरह से मुंबई और महाराष्ट्र ही अब खेल नहीं हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाने की इसकी बात चल रही है, प्रैक्टिस लगातार लोगों की चलती है, 3-4 महीने पहले से ही ये जो दही हंडी खेलने वाले गोंदा पतक है करना शुरू कर देते हैं और आज के ही दिन का इंतजार करते हैं। हर कोई विजेता बनना चाहता है, हर कोई किसी से खास बनना चाहता है, यही वजह है कि भैया हजारों की तादाद में न केवल एक थाने इस ग्राउंड में बल्कि मुंबई के उन तमाम महामंचों पर जहां पर न केवल आम खास लोग जुड़ते हैं, ये सभी आते हैं। ये फिलहाल थाने की तस्वीरें हैं, लेकिन ये जो गोविंदा पतक अपनी टीमें बना करके यहाँ पहुंचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ थाने के इसी ग्राउंड पे अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और यहीं पे विजेता बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इनकी भी एक भूमिका है, ये भी कुछ सोच रखे हैं और कम से कम आज मुंबई के 25 से 30 ऐसे महामंच पर ये सारे लोग पहुंचने वाले हैं जहां जाकर के अपने मंडल का नाम जो है वो शोहरत के लेवल पे लाना चाहते हैं और यही कोशिश इन दही हंडी पथकों की होती है। लेकिन मैं इस समय और हमारी टीम इस समय जिस जगह पहुंची है और जिस जगह से हम ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वजह से भी क्योंकि एक बहुत बड़ा मंच है, कुछ देर में अब यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं, कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ से जा चुके हैं और इसके अलावा बॉलीवुड के तमाम एक्टर जिनमें संजय दत्त का नाम है, सुनील शेट्टी साहब का नाम है, क्रिकेटर्स भी बहुत सारे आ चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत बड़ा मंच गोविंदा पतकों के लिए ये कहा जा सकता है। लेकिन वाकई में बहुत बड़ी तारीफ इस समय जो है उनकी करनी होगी जो इतने बड़े पिरामिड बनते हुए उनको बचाने के लिए, इनको जरा भी किसी भी तरह की चोट ना पहुंचे, नीचे भी खड़े हैं कम से कम 300 से 400 लोगों की एक टीम होती है और जिसमें 100 से 150 लोग इस तरह से पिरामिड बनाते हैं और उनके आधे ही ज्यादा आसपास खड़े होते हैं, आपने देखा ही हाथ बढ़ाए हुए लोग खड़े हुए हैं, मतलब जैसे ही ये लंबी ऊंची चौड़ी पिरामिड बन रही है और जैसे ही दाही हांडी फोड़ने के बाद ये नीचे की तरफ उतरेगी, उन्हें संभालने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे हाथ खड़े हैं, सब बचाएंगे, मतलब मिला जुला कहानी है कि वाकई में बड़ा गजब का ये खेल है, एक साहसी खेल है। और देखिए किस तरीके से सबसे ऊंचे में जो एक बच्चा चढ़ा हुआ था उसे बकायदा सुरक्षा और सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पर बचा लिया गया है और वो जो बच्चा है देखिए अभी भी लटका हुआ है, लेकिन जरा भी डर इस बच्चे के दिल और दिमाग में नहीं है, उल्टा वो तो ये देख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर
1: लगातार इसके बारे में बात भी कर रहे हैं ना कि किस तरीके से ये मानव श्रृंखला इतने ज्यादा लेवल्स पर बना रहे हैं और उसके बावजूद भी किसी के भी चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं नजर आ रही है। अब बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर लौटेंगे। वहीं थाड़े में भी दही हांडी उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, अभिनेता सुनील शेट्टी भी इसमें शामिल होकर गोविंदाओं का जोश बढ़ाने पहुंचे।
2: बचपन में बहुत खेला हूं, लेकिन अभी शायद वो ताकत नहीं है चढ़ने की और ना ही वो हिम्मत है, पर कोशिश हमेशा यही रहती है कि सालों साल थाना हो, क्योंकि यहाँ का माहौल ही अलग है। जब एक त्योहार मनाया जाता है ऐसे लगता है कि घर घर का हर बच्चा आके साथ त्योहार मनाता, और ये बहुत जरूरी भी है हमारे कल्चर को, हमारे रूट्स को, हमारी सभ्यता को हम आगे बढ़ाए दुनिया में, और दुनिया ये देखती है। आज खाना हो, म्यूजिक हो, हमारे फेस्टिवल हो, हमारी स्पिरिचुअलिटी हो, हमारा एक सन जट होकर रहना हो, वो सभी लोग बहुत ही बहुत उसकी तारीफ कर रहे हैं, दुनिया इस तरफ मुड़ रहा है। अच्छा, हाँ बचपन में बहुत खेला, यही विष्णु विक्रम से यही कि एक दूसरे का साथ दीजिए। गोविंदा से हम यही एक चीज जरूर सीखते हैं कि जब एक साथ हो तो आप किसी भी ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं।
1: तो सिर्फ सुनील शेट्टी ही नहीं, क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव भी थाने में गोविंदाओं का जोश बढ़ाने पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पे क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं।
3: माहौल तो एकदम गर्मा गर्मी वाला है, जैसा इन्होंने पूरा क्रिएट किया है, इतनी एनर्जी, इतना जो पैशन है। बट इसके लिए हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि चाहिए बैकिंग और प्लेटफॉर्म, जो प्रताप सर और पूर्वेश दादा ने दिया है सबको, अभी हमारे इधर बोलते हैं ना मट्टी का स्पोर्ट है, मट्टी से लेके मैट तक का सफर इन लोग की वजह से इतना अच्छा इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दिया है, तो ये मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा स्पोर्ट होना चाहिए आने वाले सालों में।
4: क्रिकेट का मैदान या गोविंदा का मैदान कौन सा भारी लग रहा है आपको, क्या लग रहा है थोड़ा सब?
3: अभी तो मैं थोड़ा क्रिकेट से फ्री हूँ, तो इधर आने के बाद थोड़ा ज्यादा पैशन फॉलो हो रहा है।
5: क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके मतलब?
3: मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि ऐसी मेहनत करते रहो, अपॉर्चुनिटीज आगे आते रहेंगी, प्लेटफॉर्म देने के लिए लोग रेडी है क्योंकि लोग देख रहे हैं आप लोग मेहनत कर रहे हो, और जैसे ही आपको आगे अपॉर्चुनिटी आएगी उसको तुरंत पकड़ लेना।
1: मुंबई के दादर में आज सुबह 9 बजे से ही दही हांडी के उत्सव की शुरुआत हुई, और खास बात देखिए ये है कि यहाँ पर इस उत्सव में नारी शक्ति की अनोखी झलक देखने को मिली। यहाँ महिला गोविंदा टोलियों ने मटकी फोड़कर उत्सव का आगाज किया। हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी उस वक्त दादर में मौजूद थे, उन्होंने देखा किस तरह से यहाँ पर गोविंदा टोलियों ने दमखम का प्रदर्शन किया, और अब आपको भी दिखाते हैं मटकी फोड़ने के शानदार पल की तस्वीरें और बताते हैं कैसे महिला गोविंदा टोलियों ने पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ी।
6: मैं इस वक्त मुंबई के दादर इलाके में हूँ जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं मुंबई में वो हांडी फोड़ती हैं, और यहाँ से फिर मुंबई में हांडी फोड़ने की शुरुआत होती है, और पहली हांडी जो है वो लड़कियों द्वारा तोड़ दी गई है, अब दूसरी हांडी लगाई जा रही है, जिसे अब जो लड़कियों का दूसरा दल है तेजस्विनी महिला मंडल उनके द्वारा इस हांडी को फोड़ा जाएगा, और इसके बाद से यहां से मुंबई में हांडी फोड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। पिछले 53 सालों से जो है ये प्रथा इसी तरीके से निभाई जा रही है, यहां पे हर साल लड़कियां आती हैं, उनका दल आता है और हांडी फोड़ते हैं। आप देख सकते हैं पूरी सुरक्षा के इंतजाम यहां पर रहते हैं ताकि किसी को कोई चोट ना लगे, और सबसे अहम बात जो इस हांडी की यह है कि जो उत्साह है वो इतने सालों से वही है, वो कम नहीं हुआ है। कुछ लड़कियों से हम बात करेंगे, कैसा लगता है, क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है?
7: बहुत अच्छा लग रहा है।
6: कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी?
8: बहुत अच्छा, नहीं डर तो नहीं लग रहा है।
6: कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पे?
8: हम लोग पिछले 10 सालों से तो आ ही रहे हैं।
6: क्या फीलिंग्स है?
9: कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हर साल हम लोग यही करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज की तो फीलिंग ही अलग होती है, जैसे कि कृष्ण जी का जन्म हुआ है तो ऐसा भावना रहती कि अरे अभी तो हंडी फोड़नी है यहाँ आके।
6: क्या चीज आपको मोटिवेट करती है, क्या चीज आपको?
9: मतलब ये लड़की लोग का जो जोश है वही हम लोग को मोटिवेट करता है बहुत।
6: बिल्कुल, तो जैसे कि देख सकते हैं उत्साह जो है वो हर साल बढ़ते जाता है, मोटिवेट ये लड़कियां अपने आप से होती रहती है, और सिर्फ अपने आप से नहीं होती दूसरों को भी करती रहती है, और यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पर जो पहली हंडी थी वो जॉली स्पोर्ट्स क्लब की जो महिलाएं थी उनके द्वारा फोड़ी गई, अब दूसरी हंडी जो है वो तेजस्विनी महिला मंडल इनके द्वारा तोड़ी जाएगी, और खूब भरपूर जोश इन लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं सारी, आप लोग की उम्र कितनी है और आप पढ़ाई करते हैं?
9: हो गया पढ़ाई 25।
10: हम जॉब करते हैं अभी।
11: मेरी 19 है, मैं पढ़ाई कर रही हूं।
9: जॉब कर रहे स्टूडेंट है, मैं कॉलेज स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर।
10: हमारे यहाँ पे गर्ल्स है वुमन्स है सब है, मतलब जॉब करते हैं सब छोटे बच्चे।
6: बिल्कुल, तो देख सकते हैं हर उम्र के तबके के आपको यहाँ पे मिलेंगे, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर एक के इसमें वो जोश जो है वो जज्बा जो है वो वही कायम है, ना डर है ना चिंता है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जन्माष्टमी है, और वही इनको मोटिवेट किया जाता है। लड़कियां जो हैं अब तैयारी कर रही हैं हांडी फोड़ने के लिए, अब यहाँ पर पिरामिड बनाया जाएगा, जो हांडी है वो फोड़ी जाएगी। 5 पिरामिड का ये जो है ये हाइट है, इसके पहले भी इसी हाइट पर जो पहले लड़कियों का मंडल आया था उन्होंने फोड़ी थी, और अब ये दूसरा जो मंडल है लड़कियों का दूसरा जो दल है वो ये हांडी फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और लड़कियों से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, जैसा कि आपने कहा कि जो लड़कियों और आदमियों के बीच की समानता है उसका एक उत्तम उदाहरण यहाँ पर जरूर मिलता, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे?
12: मैसेज यही रहेगा कि महिला सक्षमीकरण जो हो रहा है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, या पुढ़े है तुम्हें, सो लेडीज ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हो या फिर मतलब महिला या लड़कियां हो, वो अपने आप की अंदर के हुनर को पहचाने, अपने आपको आगे लेके जाए और साथ ही अपने समाज को और अपने देश को आगे लेके जाए।
6: बिल्कुल, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आसपास में एक घेरा बना दिया गया है जहां पर लोग खड़े हैं ताकि अगर कोई गिरता है तो उसे पकड़ा जा सके। और ये पांचवें पिरामिड पर जो है वो लड़की चढ़ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं हेलमेट पहन चुका है। और अब ये दूसरी हांडी जो है वो फोड़ने जा रही है, तेजस्विनी महिला मंडल द्वारा ये हांडी फोड़ी जा रही है। और इसके पहले उन्होंने एक सलामी दी थी और ये जो दूसरी हांडी है वो इस मंडल द्वारा फोड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं पूरे महिलाओं का दल, जो एक दूसरी हांडी जो है वो महिलाओं की फूट चुकी है। मुंबई के दादर इलाके में दूसरी हांडी जो है वो फोड़ने में महिलाएं जो हैं, ये लड़कियां जो हैं वो कामयाब रही हैं। और ये दूसरी महिला दल हांडी है, जो महिला दल द्वारा हांडी फोड़ी जा चुकी है। यहाँ पर जो है नारे लगाए जा रहे हैं, भगवान का जय जयकार किया जा रहा है। और अब समय है झूमने का, अब समय है नाचने गाने का। यहाँ पर उत्साह में आपके कोई कमी नहीं होगी, पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है, सुरक्षा से लेकर उत्साह बढ़ाने तक के इंतजाम है यहाँ पर। और ये पिछले 2 से 3 महीनों की मेहनत होती है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के दिन हांडी है तो आज आई है और ये हांडी इन्होंने फोड़ी है। ये लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार 2 महीने 3 महीने जन्माष्टमी के पहले से इसकी प्रैक्टिस शुरू होती है। और काम अपने काम पर से आने के बाद या अपने पढ़ाई से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद जो है वो प्रैक्टिस करती हैं रोज शाम को अपने अपनी जगहों पर। और इसके बाद ही पूरी सुरक्षा के साथ, इतनी सटीकता के साथ जो है ये पिरामिड लगाने में इनको कामयाबी मिलती है। और देख सकती हैं किस तरीके से जोश है यहाँ पर, कंधे पर लेकर जो है एक दूसरे को यहाँ पर डांस किया जा रहा है। जोश है वो, उत्साह है वो मनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियों में कितना उत्साह है, उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो प्रैक्टिस थी वो कहीं ना कहीं सफल हुई है, वो आज कामयाब हुई है। और अब यहाँ से जैसे कहते हैं कि लड़कियां जो हैं या औरतें जो हैं वो घर लक्ष्मी होती हैं, और यहाँ पर हांडी फोड़ने के बाद अब मुंबई में अन्य जगहों पर हांडी जो है वो फोड़ी जाएगी, वो वहां पर हांडी फोड़ने के लिए जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं उत्साह की हम बात कर रहे हैं, लगातार मुंबईकरों का उत्साह। ये कार्यक्रम जो है सुबह से शुरू हो जाता है, सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत होती है और 9 बजे से ये कार्यक्रम जो है, 9 बजे से ये कार्यक्रम जो शुरू होता है, महिलाएं मंडल जो है वो यहाँ पर आती हैं। इस जगह की विशेषता ये है कि यही एक ऐसा विभाग है जहाँ पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए विशेष तरीके से दही हांडी का आयोजन किया जाता है। जैसे कि दही हांडी की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम होती है ताकि लड़कियां वहां तक पहुंच सके बिना किसी इंजरी के। जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर पुख्ता होते हैं, मैट बिछाए जाते हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनको यहाँ पर तैनात किया जाता है। लोगों को काफी उत्साह रहता है इस उत्सव का।
1: तो देखिए गोविंदा आ चुके हैं, समा बन चुका है और जो रौनक है वो लगातार हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा मत क्योंकि हाजिर हो रहे हैं जल्दी।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मुंबई, ठाणे सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की धूम, गोविंदाओं की टोलियों में दिखा मटकी फोड़ने के लिए गजब का उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ गूंज रहा जय बजरंग बली का जय घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी उत्सव, श्री कृष्ण के जयकारों के भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी के पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशनल सहयोग होगा मजबूत।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, गोविंदाओं की टोली आ चुकी है, पिरामिड बन चुका है, लेकिन मटकी फूटी है या नहीं फूटी है ये जानने के लिए धर्मेंद्र दुबे का रुख करते हैं। हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र। जैसे आपने बताया था कि 200 या 20 कितनी टोलियां वहां पर शामिल हुई हैं इस खेल में हिस्सा लेने के लिए, और साथ ही में लाखों में इनाम। धर्मेंद्र, बहुत बड़ी बात है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भी लगातार इस खेल को बढ़ावा दे रही है। जैसे आपने कहा था, इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की तैयारी है, एडवेंचर स्पोर्ट का इसे दर्जा दिया जा रहा है, कहीं 78 लाख, 91 लाख, ये छोटे अमाउंट्स नहीं है।
1: बहुत बड़े ये जो बहुत बड़े अमाउंट है, और महाराष्ट्र और यहाँ पे रहने वाले जितने भी जो दही हंडी मनाना चाहते हैं, इतना ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब महत्वपूर्ण और कितना इम्पोर्टेंट ये कहीं ना कहीं फेस्टिवल हो चुका है। और वाकई में इसके लिए तमाम लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं, इसका नजारा आप देखिए, तस्वीरें देखिए, जहाँ तक आपकी नजरें जाए लगातार सिर्फ और सिर्फ लोग ही दिख रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पे मौजूद वो लोग जो गोविंदा पथक है, बल्कि उसके अलावा दर्शक भी हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान से ये कहना चाहूंगा कि भाई वो भी तस्वीरें दिखाएं, जहाँ पर बकायदा बैठने के लिए इंतजाम बनाया गया है दर्शकों के लिए। आसपास के जितने भी निवासी हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा और भी लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दहेंडी तो पूरे मुंबई में ही है, लेकिन सेलेब्स को देखने का मौका कभी कभार ही मिलता है, उन्हें सुनने का मौका कभी कभार ही मिलता है। कुछ देर पहले ही सुनील शेट्टी साहब आए थे, इसके अलावा जो है संजय दत्त साहब आए थे, और उन्होंने मराठी में बातें करी, अपने अपने डायलॉग जो हैं फिल्मों के जो बहुत ज़्यादा वायरल और सुपरहिट हुए हैं वो सारी चीज़ें करी हैं, और इससे कहीं ना कहीं मनोरंजन हो गया। ये देखिए, इस तरफ मेरे दाईं तरफ जो है बढ़िया था, वापस से एक पिरामिड बन रहा है और लगातार लोग कोशिश में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भाई यहाँ पर जीतने वाला जो भी होगा 51 लाख रुपया लेकर जाएगा, ये छोटी रकम नहीं है। 10 थर बनाना पड़ेगा लेकिन उसे, क्योंकि जो ये ऊंची सी दही हंडी यहाँ पर लगाई गई है इतनी आसान नहीं है। 10 थर कम से कम 10 थर, और 10 थर के लिए कम से कम 400 लोग लगेंगे, और स्पेशली एक्सपीरियंस लगेगा, ट्रेनिंग लगेगा, ऐसे ही कोई यहाँ नहीं जीत जाएगा। और जो यहाँ जीतेगा वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की टीम में शामिल होगा, और फिर इंडिया की टीम में भी शामिल होगा, और फिर इंटरनेशनल भी खेलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये एक जिस जगह इस समय मैं मौजूद हूँ, थाने में, इसका नाम दिया गया है संस्कृति की दही हंडी, यानी कि भैया संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। मराठी मानुस, न केवल मराठी मानुस बल्कि अन्य भी राजाओं और दूसरी भी जो प्रजाएं हैं वो सारी संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये भीड़ सिर्फ मराठी मानुस की नहीं है, दूसरे भी परप्रांतियों की है, और हजारों की तादाद में लोग हाथ यहाँ बढ़ा रहे हैं, इस महाउत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएं, लगातार सिर्फ और सिर्फ भीड़ जुटी हुई है। खास बात ये है कि हर इलाके को लेकर के कहीं ना कहीं, ये देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि भाई ये जिस ग्राउंड में दही हंडी का उत्सव आयोजित किया गया है, बड़ी बड़ी इमारतें आसपास देखने को मिल रही हैं, और सभी अपनी गैलरी में परिवार संग बकायदा इस पूरे महोत्सव को देख रहे हैं। जितने भी सैलाब आ रहे हैं उनको सुन रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, और देखिए भले ही नीचे नहीं पहुंच पाए लेकिन बकायदा अपनी खिड़कियों से लोग देख रहे हैं। चारों तरफ इस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें, और बड़ी बड़ी इमारतों के बीच एक ग्राउंड जहां पर एक महाउत्सव का आयोजन। कोशिश करते हैं कुछ लोगों से भी बात करने के लिए, क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी ये भी जानना कि यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो क्या सोचते हैं। कैमरा वहाँ है,
2: बोल बजरंग बली कीजे, बोल बली कीजे,
1: थक गए
2: नहीं? हाँ, सुबह से आए हो 10 बजे से? हाँ, सुबह 10 बजे से आया हूँ, और हर साल आता हूँ ये देखने के लिए, क्योंकि साल में एक ही बार ये दिन आता है और हम इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इस जगह।
1: क्या मंडल का क्या नाम है?
2: हम मंडल से नहीं, हम हुए
1: देखना है। और क्या मजा रहा? हर साल
2: आते
1: हैं। कहीं नहीं ज्वाइन कीजिए,
2: ज्वाइन करने के लिए
1: ज्वाइन कहीं नहीं ज्वाइन किया?
2: ज्वाइन एक्चुअली जॉब वीक के अलावे इतना होता नहीं है, पर ट्राई करते हैं कि आज के दिन भी छुट्टी नहीं था।
1: यहीं की रे वैसे?
2: हाँ यहाँ की।
1: बोल बजरंग बोल की जय। क्या देखा आपने अभी तक जुड़े? बहुत सारे नौतर देखे आज, बहुत मजा आया। अभी जय जवान के लिए रुके।
3: जय जवान क्या है, वो चीज क्या है वहाँ देख के बताइए, जय जवान चीज क्या है?
1: जय जवान अपना पदक है जो जोगेश्वरी में, उनके लिए रुके
3: जिन्होंने पिछली बार आतंक मचाया था, मतलब है जय जवान ने आतंक मचाया था और बहुत सारी हंडी फोड़ी थी, उसके इंतजार में। कितने बजे क्या लगता है आपको, कितने बजे तक आ जाना चाहिए और क्या वाकई में इस बार भी जीतना चाहिए?
1: आ गए वो।
3: आपको लगता है इस बार भी जय जवान को जीतना चाहिए?
1: यस यस लगाएंगे, वो 10 लगाएंगे।
3: देखिए आपको पता है कि जय जवान जो है पिछली बार यहाँ पर आकर के विनर हुए थे और 10 थर बनाया था। इस बार उन्होंने ये दावा कर रहा था कि भैया 11 थर तो बनाएंगे और इसीलिए बहुत सारे लोग उनके इंतजार में यहाँ पे जुटे। बोल बजरंग
4: बलि कीजिए।
3: मजा नहीं आ रहा है। बोल बजरंग
4: बलि कीजिए।
3: नहीं आए। बोल बजरंग
4: बलि कीजिए।
3: क्या बात है। तो देखिए इस तरीके से लगा
0: धर्मेंद्र, यकीन करना मुश्किल है कि ये लोग सुबह से आए और इनके चेहरे पे थकान शिकन नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये तो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार मटकी कौन फोड़ेगा। तो धर्मेंद्र आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या अब तक कोई मटकी फोड़ पाया है या अभी इंतजार है विजेता का?
3: देखिए यहाँ पे जो है ना मनाया गया है, जो भी 10 थर तक अपनी अगर पिरामिड बना लेता है तो 5 लाख रुपए यहाँ से लेके तुरंत ही वो चला जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी टीम यहाँ पे नहीं पहुंच पाई है, हर कोई 9 थर तक जा रहा है।
0: जी धर्मेंद्र आप बने रहिए आपके हमारे साथ, हम आएंगे आपके पास। दही हांडी उत्सव का इतिहास कान्हा जी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से वो बाल अवस्था में सखाओं के साथ मिलकर गोकुल के घरों से माखन की चोरी किया करते थे, ठीक उसी तरीके से आज के गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी अभ्यास किया जाता है, काफी प्रैक्टिस की जाती है और कई कई गोविंदाओं की टोली सालों भर इस जीत को हासिल करने के लिए योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और यही नहीं अब तो बकायदा प्रतियोगिता का भी आयोजन होने लगा है जिसमें लाखों रुपए बतौर इनाम इन्हें दिए जाते हैं।
5: मुरलीधर की गोकुल में की गई बाल लीलाओं की याद दिलाता है मटकी फोड़ कार्यक्रम। जिस तरह से नन्हे घनश्याम अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऊंचाई पर लटकी मटकियों से माखन चुराते थे, उसी तरह मुंबई के युवक भी 30 से 40 फुट की ऊंचाई पर दही और हल्दी से भरी मटकियों तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक खड़े होकर मीनारे बनाते हैं। जिस टोली के हाथ मटकी लगती है उसे इनाम में मोटी रकम भी मिलती है। क्या आपको पता है कि आखिर दही हांडी का पर्व क्यों मनाया जाता है और दही हांडी की मटकी में क्या क्या भरा होता है? तो आज हम आपको दही हांडी पर्व का इतिहास भी बताएंगे और उससे जुड़ी हर जानकारी भी देंगे। सनातन में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन श्री कृष्ण के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजा पाठ करते हैं और साथ में भगवान को प्रिय भोग भी अर्पित करते हैं। जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 5 सितंबर को दही हांडी का पर्व मनाया जाने वाला है। दही हांडी खासतौर से महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, गोकुल में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस खास आयोजन को देखने और इसमें भाग लेने के लिए लाखों लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। इस उत्सव में भाग लेने वाले युवाओं को गोविंदा कहा जाता है।

दही हांडी केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि कान्हा की नटखट लीलाओं की यादों का उत्सव है जो हर कृष्ण भक्त के दिल को आनंद और भक्ति से भर देता है। दरअसल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय था। मुरलीधर अपने सखाओं के साथ आस पड़ोस के घरों के मक्खन को चोरी कर खाया करते थे। इसी वजह से लड्डू गोपाल को माखन चोर के नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण की इस शरारत से परेशान होकर गांव की महिलाएं मक्खन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाने लगी ताकि कान्हा और उनके साथी मटकी तक न पहुंच सके, लेकिन कृष्ण ने अपने बाल सखाओं के साथ माखन चोरी का अनोखा उपाय खोज निकाला। कृष्ण अपने सखाओं के साथ मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी मटकी तक पहुंचकर माखन निकाल लेते थे। इस खेल में कई बार मटकी नीचे गिरकर टूट भी जाया करती थी। धीरे धीरे यही परंपरा दही हांडी उत्सव में बदल गई। श्री कृष्ण की इस बाल लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मक्खन एक तरह से धन का प्रतीक है। जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन हो जाता है तो उसे हम संचित यानी इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि धन अधिक होने पर पहले उसका कुछ भाग जरूरतमंदों को दान करें। श्री कृष्ण माखन चुरा कर पहले अपने उन मित्रों को खिलाते थे जो निर्धन थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके पास कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक है तो पहले उसका दान करो, बाद में उसका संचय करो। दही हांडी में दूध, दही, मक्खन, फल, शहद जैसी चीजें भरकर रस्सियों की मदद से किसी ऊंचे स्थान पर लटका दिया जाता है, जिसके बाद इस हांडी को फोड़ने के लिए प्रशिक्षित नौजवानों की टोली एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर मटके तक पहुंचने की कोशिश करते हुए मटकी फोड़ते हैं। मटकी फोड़ने वाली टोली को पुरस्कार से भी नवाजा जाता है। दही हांडी का पर्व एक संदेश भी देता है कि लक्ष्य चाहे जितना भी दूर हो, कठिन क्यों ना हो, उसे हिम्मत और एकता की मदद से हासिल किया जा सकता है, और इसका नजारा चारों ओर इस दौरान देखने को मिलता है। मुंबई में तो इस त्योहार को मनाने का तरीका एकदम अलग और रोमांचक है। यहाँ ये त्योहार संस्कृति को साहस से जोड़ता है। आमतौर पर मानव पिरामिड 6 या 7 मंजिलों तक बनती है, लेकिन कई टोलियां ऐसी हैं जो 9 से 10 मंजिलों की मीनारें बनाने की कोशिश करती हैं। इस जोखिम भरे खेल के लिए कई दिनों पहले से ही अभ्यास शुरू हो जाता है। दिन भर रोटी रोजगार में व्यस्त रहने के बाद रात के वक्त युवा खाली मैदानों में मानव पिरामिड बनाने का अभ्यास करते हैं। मानव पिरामिड बनाते वक्त नियम होता है कि भारी कदकाठी के लोग नीचे की ओर रहें, जबकि हल्के वजन के लोग पिरामिड के ऊपरी मंजिलों पर। पिरामिड के सबसे ऊपर आमतौर पर टोली का सबसे छोटा सदस्य होता है जो मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ता है। त्योहार के दौरान पारंपरिक भजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी विशेष धूम रहती है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण की उन बाल लीलाओं को जीवंत करना है जब वे अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन चुराते थे। दुनिया में दही हांडी एक ऐसा खेल है जो श्री कृष्ण के जमाने से चला आ रहा है और इसको उसी श्रद्धा के साथ खेला जा रहा है।

0: दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट होगा जो हमारे श्री कृष्ण जी के जमाने से चलता आ रहा है। ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जो इतना पुराना चलता आ रहा होगा और उसको हमने जिंदा रखा हुआ है और आज ही हमारे संस्कृति जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इसको और प्रमोट करने की जरूरत है।
1: कहा जाता है कि दही हांडी की परंपरा 1907 में मुंबई से शुरू हुई थी। नवी मुंबई के पास घनसोली गांव में ये परंपरा पिछले 110 वर्षों से चली आ रही है। यहां सबसे पहले 1907 में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। यहां के हनुमान मंदिर में जन्माष्टमी के एक सप्ताह पहले से ही भजन कीर्तन शुरू हो जाता है। दही हांडी के आयोजन के साथ ये उत्सव समाप्त होता है। यहाँ से ये दही हांडी की परंपरा ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, मीरा भयंदर, वसई विरार से लेकर पूरे महाराष्ट्र तक पहुंची और महाराष्ट्र के अलावा दूसरे कई राज्यों में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। वक्त के साथ साथ दही हांडी त्योहार में भी बदलाव आया है। इस त्योहार की चमक दमक बढ़ गई है और इसमें करोड़ों रुपए खर्च होने लगे हैं। त्योहार की लोकप्रियता को देखते हुए इसे भुनाने की खूब कोशिश होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां दही हांडी के कार्यक्रम को प्रायोजित करती हैं। मुंबई और ठाणे में राजनेताओं की ओर से प्रायोजित कई दही हांडियां लटकाई जाती हैं। यहां तक कि फिल्मी हस्तियों को भी आमंत्रित किया जाता है। लाखों रुपए तक के इनाम रखे जाते हैं। कई गोविंदाओं की टीमें इसके लिए पूरे साल तैयारी करती हैं। हालांकि हाल के सालों में सुरक्षा को लेकर काफी ध्यान दिया जाने लगा है। ऊंचाई सीमित रखी जाने लगी है। सुरक्षा के लिए गद्दे बिछाए जाते हैं और मेडिकल टीम तैनात रहती है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। इस पूरे आयोजन में संगीत, नृत्य और जोरदार जोश देखने को मिलता है। ढोल नगाड़ों की आवाज होती है और आसमान से फूलों की बारिश। कुल मिलाकर पूरा माहौल एकदम महोत्सव जैसा लगने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की धूम, गोविंदाओं की टोलियों में दिखा मटकी फोड़ने के लिए गजब का उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ गूंज रहा जय बजरंग बली का जय घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी उत्सव, श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी के पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम की बातचीत, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीरगार्जुन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशनल सहयोग होगा इससे मजबूत। श्रीनगर के डल झील में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। तूफानी हवा और तेज बारिश के बीच चलाया रेस्क्यू अभियान। मझधार में फंसी नाव पर सवार टूरिस्ट का किया रेस्क्यू।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात दही हांडी की। देखिए, देश भर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद अब अवसर है माखन चोर मुरारी की लीलाओं से जुड़े उत्सव का, यानी दही हांडी के उत्सव का। आज महाराष्ट्र समेत देश के तमाम इलाकों में दही हांडी उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की गली गली में इसके जो रंग है वो देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह गोविंदाओं की टोलियां माखन की मटकी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाकर अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। नागपुर में तो बीती रात इस उत्सव के रंग देखने को मिले। नागपुर का बड़कस चौक दही हांडी के रंग में रंगा हुआ नजर आया। डीजे और ढोल ताशों की गूंज और गोविंदा पथकों के जोश से पूरा इलाका उत्साह से भर गया। गोविंदा पथकों के इस जोश और जज्बे को बढ़ाने के लिए केंद्र मंत्री नितिन गडकरी भी बड़कस चौक पहुंचे। वहीं मुंबई में भी आज तमाम जगहों पर नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटीज इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं और गोविंदाओं का जोश बढ़ा रहे हैं। गोविंदाओं में जबरदस्त उत्साह है और सुबह से ही गोविंदा मटकी फोड़ने पहुंच रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस उत्सव की। मुंबई में आज तमाम जगहों पर नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटीज इस उत्सव में शामिल होकर गोविंदाओं का जोश बढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। गोविंदा, संजय दत्त, एकनाथ शिंदे, पीयूष गोयल, आदित्य ठाकरे से लेकर सुनील शेट्टी, क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख, सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के पूर्व सांसद और नेता नवनीत राणा भी गोविंदाओं का उत्साह बढ़ाने यहाँ पर पहुंचे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद आज रहने वाले हैं इस कार्यक्रम में और आपको वो दिखाने वाले हैं दही हांडी के उत्सव के रंग। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चाहे नेता हो, अभिनेता हो, तमाम बड़ी शख्सियत जो है वो दही हांडी उत्सव में शामिल हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप देख सकते हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मटकी फोड़ी और नशा मुक्ति का संदेश यहाँ पर दिया। और आप सुनील शेट्टी को भी देख सकते हैं, सुनील शेट्टी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत भी की और ये भी बताया कि वो बचपन से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहे हैं और अगर साथ में सब आगे बढ़ते हैं तो ऊंचाइयों को छूते हैं। ये प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जाता है, इस उत्सव की खास बात यही है। इसके साथ ही आपको बता दें, रणदीप हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें दिखाई है। संजय दत्त भी पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए, अब हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे के पास चलते हैं जो शाम से ही हमें तमाम रंग दिखा रहे हैं दही हांडी की। तो धर्मेंद्र, आपके चेहरे पे भी थकान नहीं है? वैसे मैं देख रही हूँ कि जब हम पहले मिले थे, मैंने बातचीत आपसे की थी, तब भी आपके चेहरे पर वही उत्साह नजर आ रहा था। अभी भी आप उतने उत्साहित नजर आ रहे हैं और आप झूठ मानेंगे, मेरा मन कर रहा है कि काश मैं अभी स्टूडियो में नहीं होती, मैं वहीं पर होती, क्योंकि कार्यक्रम तो कई जगहों पर होता है लेकिन देखिए मुंबई की तो बात ही अलग है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही सही कहा। जिस तरीके से वर्ल्ड कप क्रिकेट का होता है, हर किसी को इंतजार होता है अपनी टीम का, अपने खिलाड़ियों का, उसी तरीके से थाने में न केवल बल्कि मुंबई के हर उस महामंच पर जहां पर दही हांडी मनाई जा रही है, उन्हें अपनी टीम का इंतजार है और फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जय जवान ना भैया, क्या नाम है?
2: जय जवान, जय जवान।
1: देखिए, पिछली बार जय जवान ने मुंबई के कई ऐसे मंडलों में जाकर के अपने कारनामे दिखाए और दही हांडी की जो प्रतियोगिता है उसे जीता और लाखों रुपए का न केवल इनाम जीता बल्कि बहुत ज्यादा नाम भी कमाया है। और इस समय थाने में फिर से वही टीम हाजिर है और उसी को देखने के लिए यहाँ पे तमाम लोगों की भीड़ जुटी है। आपको बताया कि जय जवान नाम एक ऐसी टीम है जिसने पिछली बार मुंबई में 10 थर लगभग 3 जगहों पर लगाए, बहुत ज्यादा नाम कमाया, पैसा कमाया, सम्मान कमाया और आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल 3 टीमों का यहाँ पर कम से कम एक प्रतियोगिता होनी है, उसके बाद जय जवान अपना कमाल यहाँ पर कर दिखाएगा, जो लगभग 400 लोगों के साथ दल बना चुका है और यहाँ पे मौजूद है। और आपको बताया कि जोगेश्वरी, मुंबई का जोगेश्वरी इलाका है जहां से जय जवान नाम का ये नाम अचानक ही इस तरह से आगे उभर गया है कि हर कोई उसी को देखना चाह रहा है कि कैसे ये लोग अपना पिरामिड बनाएंगे, संतुलन बनाएंगे, एक दूसरे का भरोसा बनाएंगे, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ के 10 थर लगाएंगे। अभी तक लगभग 220 टीमें इस ग्राउंड में आकर के प्रैक्टिस कर चुकी हैं। 9 थर के ऊपर कोई भी नहीं गया है और अब हर किसी की नजरें सिर्फ और सिर्फ जय जवान पर है। और जय जवान जो है वो पिछली बार ही मैंने बताया 10 थर बना चुका है, इस बार उन्होंने ये चुनौती दी है, यहाँ पर बकायदा आकर के चुनौती दी है कि इस बार 11 थर लगाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि 9 थर तक बहुत सी टीमें आई हैं वो नहीं कर पाई हैं और 10 थर उन्होंने पहले ही पिछले साल ही 3 जगहों पर दिखा कर गए हैं और इस बार जो चुनौती है वो है 11 थर की। मतलब किस तरह की प्रैक्टिस होगी, कैसा वो करेंगे और किस तरीके से इस जो ऊंची दही हंडी लगाई गई है, इस हंडी को आखिर कैसे फोड़ेंगे, क्या इस बार भी पिछली की तरह विनर होंगे वो। थाने के इस जिस जगह पे मैं इस समय मौजूद हूँ और बहुत ज्यादा देखना ये दिलचस्प होगा, उसी चीज को देखने के लिए तमाम लोग इस समय यहाँ पर जुटे हुए हैं। और जैसा कि थाने इलाका है, मुंबई की तरफ भी लोग जाएंगे, जो भी टीमें यहाँ पर चुनौती के लिए तैयार होती हैं, जो प्रैक्टिस करती हैं, वो सिर्फ थाने के इस जगह पे ही नहीं बल्कि मुंबई के दूसरे भी बहुत सारे महामंच और मंडलों में पहुँचती हैं और अपने अपने प्रतियोगिता जो भी उपलब्धि उन्होंने हासिल करी है, जो भी उन्होंने करा है, वो चीजें दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप पे लोगों का निशाना होता है कि भाई भारत जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, कौन जीतेगा, तो इस बार क्या जय जवान की टीम 11 थर लगाएगी, चुनौती बहुत बड़ी है जो साफ तौर से उन्होंने न केवल थाने के इस महामंच को दी है बल्कि मुंबई के तमाम उन महामंचों को दी है जो अपने आप में बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध प्रचलित पंडाल और मंडल माने जाते हैं और इस तरीके की बड़ी बड़ी दही हंडियों का आयोजन करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ही मैं एक बहुत बड़ी पिरामिड इस समय है और इन्हें थाने के राजा के नाम से मशहूर है, थाने का राजा, थाने के राजे की ये ग्रुप है। ओ थाने का राजा, बिल्कुल थाने के राजा का ये ग्रुप था और पिछले साल दूसरे नंबर पर जय जवान के बाद में थाने के इस मंच पर थाने का राजा ही जीतकर गया था, 5 लाख रुपए की इनाम राशि जीतकर ये लोग गए थे, लेकिन इस बार जीत नहीं पाए हैं। और उन्होंने हालांकि प्रयास बहुत ज्यादा किया है, 300 लोगों की टीमें थी और 9 थर तक गए थे, अभी भी वो शानदार बच्चा जो इस बार चयन में आया हुआ है और रोहित शेट्टी नाम है इस बच्चे का, जो अभी भी बकायदा लटका हुआ, देखिए, बट जरा भी डर नहीं, जरा भी डर नहीं है इस बच्चे, अरे नाच रहा है तो, ओ बाएं हाथ से दाएं हाथ से जितना भी हो सके, अरे 4 साल का बच्चा आखिर और क्या ही कर पाएगा, आप देखिए किस तरीके से, कितना प्रयास, कितना मेहनती, कितना हिम्मती है ये, और जिस तरीके से ये तस्वीर दिखा रहा है यही तो प्रयास है, इसी के तो बोलते दही हंडी। और मुझे लगता है आखिर क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पर हमारी दही हंडी जा करके एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी और बड़े बड़े वर्चस्व हासिल करेगी। लेकिन जो रियलिटी है इस समय में जहाँ मौजूद हूँ, ये जो तमाम लोग हैं ये देखने के लिए कि आखिर जय जवान इस बार क्या कारनामा दिखाता है। जी
0: तस्वीरें दिखाते रहे क्योंकि शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं और जैसे मैंने कहा था ना कि रात हो गई है और रोमांच जो है इस खेल का और ज्यादा बढ़ गया है, और ज्यादा मजा आ रहा है और मुझे लगता है जीएनटी के दर्शकों को भी मजा आ रहा होगा। तो मुझे लगता है बातचीत से ज्यादा अगर आप हमें तस्वीरें दिखाएं कि क्या शानदार तस्वीरें सामने आ रही है और क्या बेहतरीन संतुलन आप बता रहे हैं कि 9 लेवल का मानव श्रृंखला बनाया है और अभी भी विजेता तय नहीं हुआ है, यानी अभी प्रतियोगिता जारी है।
2: अरे असत सन अस्तर है असत।

0: पार एक साल बाद बीएनडी में शामिल होने वाले जो भी गोविंदा पथक है उन्हें इंतजार होगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल आपसे बात करते हैं तो आप ये देखिए, अच्छा थोड़ा सा मैं वीडियो जल्दी सिखाऊंगा, ये जो टी शर्ट जय जवान जय जवान का टी शर्ट पहन रखा, आप इन्हें चीयर्स करने के लिए,
1: सॉरी
0: आप जय जवान को चीयर्स करने के लिए पहुंचे,
1: जय जवान को चीयर्स करने के लिए।
0: साल बताइए जय जवान ने क्या कुछ किया था?
1: जय जवान ने तीन बार लगाए थे, हर संस्कृति में लगाया था, मनसे के इसमें लगाया था और भी दादर में लगाया था।
0: कहाँ रहते हैं?
1: मैं यहाँ पे ठाणे में रहता हूँ।
0: लेकिन ये तो जोगेश्वरी की टीम,
1: आप बचपन से फैन हो जय जवान,
0: बचपन से जय जवान के बने। आप भी थोड़ा इस तरफ देखिए, कैमरा वहाँ है, बताइए थोड़ा सा, आपने भी जय जवान की टीम
2: नहीं
0: तो ये बताइए, इस बार जय जवान वापस से चुनौती दिया उन्होंने, 11 थर बनाएंगे भाई, आपको लगता है करेंगे?
2: 11 का तो अभी ट्राई नहीं कर रहे, वो 10 का ही कर रहे, क्योंकि 11 थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, पर प्रैक्टिस उनके चालू है और अभी उनकी बारी है 10 थर लगाने वाले।
0: इससे पहले आपने किसी को 11 थर लगाते हुए देखा उस तरफ? देखिए
2: हाँ, अभी तक किसी ने नहीं लगाया 11 थर,
0: विश्वास है?
2: हाँ विश्वास।
0: लेकिन यहाँ तो, अरे लेकिन हम लोग तो अभी ताने के राजा में, भैया मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, थाने के राजा में मौजूद है, थाने के राजा जो है 9 थर में गिर गए,
1: वो 9 लगाए पर अगले साल वो 10 लगाएंगे थाने का राजा, और अभी इस साल जय जवान 10 लगाएगा।
0: थाने की राजा इस बार नहीं कर पाए कमाल,
2: अभी थाने में खोपट का राजा है, वो 10 थर लगाने वाले।
0: अच्छा अभी आने वाले?
2: हाँ अभी आने वाले,
0: टीम में टॉप, मतलब टॉप 5 में वो भी। क्या बोला आपने, क्या नाम?
2: खोपट सा राजा,
0: खोपट का राजा थाने मेरे। देख रहे अभी भी यहाँ पर मौजूद जितने भी दर्शक हैं उन सभी को इंतजार है बाकी के टॉप 5 में शामिल होने वाले टीमों का। जैसा कि उन्होंने बताया थाने के राजा जिन्होंने भी चुनौती दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पराक्रम हो गए हैं और उनका जो साहसी खेल था उसमें वो नाकामयाब हो पाए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ मौजूद जितने भी दर्शक हैं जो दही हंडी को बहुत प्यार करते हैं उन्होंने इंतजार,
3: बिल्कुल धर्मेंद्र दही हांडी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और थाने का राजा कौन बनेगा इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए धर्मेंद्र। मुंबई के मगधाने दही हंडी मंडल में लोगों और गोविंदाओं का जोश देखते ही बन रहा है। यहां पर अभी तक 450 गोविंदा पथक आ चुके हैं और अब तक 40 लाख रुपए इनामी राशि के रुपए उसको उसके रूप में बांटा जा चुका है। यहां पर कुल 85 लाख रुपए के इनाम जो है वो बांटे जाने हैं। दही हांडी पथक यहां पर 9 मानव पिरामिड बना चुके हैं, जबकि दही हांडी 10 मानव पिरामिड की ऊंचाई पर बनाई गई है। इस वक्त यहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा है और गोविंदा पथक दही हांडी को सलामी देकर आगे बढ़ रहे हैं।
4: दही हांडी महोत्सव मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इस वक्त आप कह सकते हैं जिस तरह से शाम होती है तो क्या माहौल होता है ये दिखाने के लिए माँ का ठाणे मुंबई में हम लोग आए हुए हैं। आप देखेंगे अभी रैपर की एंट्री हुई है युवाओं को आकर्षित करने के लिए इस त्योहार में। आप कह सकते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, रैपर्स हो, इन सभी को बुलाया जाता है। हजारों लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, दही हंडी का महोत्सव है। इस मागाठाने दही हंडी में जो राज सुरवे तारामाती चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रकाश सुरवे जो एमएलए शिवसेना के मागाठाने से, उनके बेटे ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप कहेंगे कि ये दही हंडी जो लगाई गई है 10 स्तर जो है मानव पिरामिड की ऊंची की ये दही हंडी लगाई गई है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री संजय दत्त जैसे सेलिब्रिटीज, कई लोग आ चुके हैं, सुबह से हजारों लोगों की गर्दी अभी भी यहां पर दिख रही है। उसी के साथ युवाओं को आकर्षित करने के लिए जो रैपर्स आए हैं उससे जो उत्साह है वो और भी बड़ा हुआ है। सभी युवाओं ने अपने मोबाइल फोन आप देख सकते हैं बाहर निकाल लिए हैं, तो उत्सव के साथ एक तरह से जो आप कह सकते हैं सेलिब्रेट किया जाता है, जिस तरह से सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, एक बड़ा आकर्षण लोगों के लिए होता है। यहाँ के दही हंडी की अगर आप बात करें तो 85 लाख रुपीस टोटली यहाँ पर जो लोग गोविंदा बनाएंगे उनको देने वाले हैं। 40 लाख रुपए की रकम अभी तक दी जा चुकी है। 450 दही हंडी जो पतक है वो आकर यहाँ पर जा चुके हैं और हजारों की तादाद में जो क्राउड है वो जैसे दिन ढलता है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो पश्चिम उपनगर में आप कहें मुंबई के, तो मागाठाने की ये जो दही हंडी है।

ये एक तरह से सबसे बड़ी सबसे विशाल दही हंडी मानी जाती है और उसकी वजह इस वक्त आप देख सकते हैं। मुंबई में राजू रेवंकर के साथ मुस्तफा शेख।

तो चलिए अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। दिल्ली एनसीआर में जन्माष्टमी के दिन से जिस बारिश ने भिगोने को ठाना था वो आज भी जारी है। देखिए, बारिश जहां राहत का पैगाम लेकर आई, वहीं प्रदूषण में भी कमी दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला कल से थम जाएगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी।

0: सुबह जब दिल्ली NCR के निवासियों की नींद खुली तो बारिश ने उनका स्वागत किया। जन्माष्टमी के दिन से शुरू हुई बारिश का सिलसिला फिलहाल बदस्तूर जारी रहा। मूसलाधार बारिश ने एक तरफ मौसम को सुहावना बना दिया तो दूसरी ओर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रिय और स्थानीय दबाव के कारण ये हालात बने हैं। हालांकि कल से दिल्ली NCR के इलाके के मौसम में सुधार देखा जाएगा और बारिश में कमी दर्ज की जाएगी।
1: कल इसमें कमी पाई जाएगी लेकिन कल भी वेरी लाइट रेनफॉल NCR दिल्ली में रहेगा, उसके बाद ऑलमोस्ट क्लियर स्काई होने का अनुमान है।
0: हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस ही एक्टिव हो रहा है और लो प्रेशर बेल्ट का साथ मिलने की वजह से जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है।
1: डिस्टरबेंस भी है, उसका भी ये लो प्रेशर से इंट्रैक्शन हो रहा है, इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में हमारा अनुमान है कि सबसे पहले ईस्ट राजस्थान और वेस्ट MP के लिए वेरी हैवी रेनफॉल मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल आने वाले 24 घंटों में हो सकती है और कल भी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल जहाँ पे होने का अनुमान है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी स्पेसिफिकली ईस्ट उत्तर प्रदेश में जैसे सिस्टम रिकर्व करेगा आने वाले 3 से 4 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी 1-2 दिन हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है।
0: बाकी हिस्सों की बात की जाए दक्षिण भारत में मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश तेज हो सकती है जबकि बिहार में भी बारिश की संभावना बन रही है।
1: इंडिया में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी मेन 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट वीक होती रहेगी और इसके अलावा बिहार में भी आने वाले कुछ दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है।
0: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 10 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश जारी रहने की संभावना है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 सितंबर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश का दौर बना रह सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। रिपोर्ट कुरनीस टुडे।
2: तो चलिए आगे बढ़ते बात एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। हनुमान अंश की बात करें तो हनुमान अंश साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म बन चुकी है। देखिए मात्र 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने मुनाफे के मामले में धुरंधर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। आमतौर पर फिल्म के रिलीज के बढ़ते दिनों के साथ कलेक्शन घट जाता है, इस तरीके का ट्रेंड देखा जाता है लेकिन हनुमान अंश के साथ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं फिल्म हर दिन के साथ अलग रिकॉर्ड ही बनाती जा रही है।
0: जैसे जैसे हनुमान अंश सिनेमा घरों में एक महीना पूरा करने के करीब पहुंच रही है फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 29वें दिन न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कमाई के मामले में भी नीम करोली बाबा की फिल्म पर कृपा बरसी। ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी लेकिन अब फिल्म की रफ्तार से भारत के ही नहीं दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर असर दिखाई देने लगा है। मिर्जापुर द मूवी की दस्तक 29वें दिन हनुमान अंश को तस से मस नहीं कर पाई है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। जिस फिल्म के बारे में कुछ समय पहले तक कोई बात नहीं हो रही थी अब वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और अपने कलेक्शन से हर दिन चौंका रही है। मामूली से बजट में बनी हनुमान अंश 80 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही और इसने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 1.80 करोड़ और दूसरे हफ्ते में सिर्फ 40 लाख रुपए कमाए थे। हालांकि तीसरे हफ्ते में फिल्म की किस्मत बदली और पॉजिटिव वर्ड माउथ के चलते दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और धीरे धीरे शो हाउसफुल होने लगे और फिल्म की कमाई में भी जबरदस्त उछाल आया और इसने तीसरे हफ्ते में 10.40 करोड़ कमाए। बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार चौथे हफ्ते में और बढ़ी और इसने 61 करोड़ कमाए। फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन अब 97.77 करोड़ है जबकि भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 82.88 करोड़ रुपए हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि 5 सितंबर और 6 सितंबर को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला जाएगा, क्योंकि अब फिल्म के ज्यादा शोज भी सिनेमाघरों में दिखाए जा रहे हैं। हनुमान अंश नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बेस कहानी है, जिसमें महान संत के बचपन से लेकर बाबा बनने तक के सफर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निर्देशन ने फिल्म में उतारा है। फिल्म को जहां विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है, तो वहीं शोभिनो सत्या मूवी में नीम करोली बाबा बने हैं। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा फायदा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:29 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 7:52 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं शनि देव के चमत्कारी मंत्रों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति शनि को कैसे प्रसन्न करेगा। देखिए, शनि देव को प्रसन्न करने की 3 विधियां हैं। अपने आचरण से यानी व्यवहार से, रत्न धारण करने से और मंत्र का जप करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। आचरण में आहार शुद्धि, व्यवहार, विचार और दान आते हैं। रत्न में जलीय रत्न या वायु तत्व के रत्न धारण करने से शनि की कृपा मिलती है। शनि देव के लिए मंत्र जप करने का तरीका सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जिससे शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए शनि देव के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग शनि की समस्याएं जीवन में आती हैं और समस्या के हिसाब से शनि देव के अलग अलग मंत्र का प्रयोग होता है। अगर आपका आचरण शुद्ध हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और इसके साथ आप मंत्रों का जप करें तो जीवन में अद्भुत परिणाम मिलेंगे। शनि संबंधी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, करियर की समस्या दूर होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, हर स्थिति में शनि देव के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं, तो आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब मंत्र जप करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है? अगर कुंडली में शनि के कारण दुर्घटनाओं के योग हों या प्राण संकट के योग हों तो शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। जब शनि के कारण कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा हो, कदम कदम पर संघर्ष बढ़ रहा हो, तब शनि देव के मंत्र का जप करना चाहिए। आपके तमाम प्रयास करने के बावजूद आपको आपका अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा, जो आपका है वो प्राप्त नहीं हो रहा, तो शनि देव का मंत्र जपना चाहिए। अगर शनि की साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है तब भी शनि का मंत्र पढ़ना चाहिए, ताकि ढैया और साढ़े साती का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता चला जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, कारोबार में आपको लाभ होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, शनि देव को विशेष स्थितियों में आप प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन के संघर्ष से कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मंत्र जप करेंगे। मंत्र जप की विधि क्या है? देखिए, ऐसा कभी मत समझिए कि केवल पुरुष शनि देव का मंत्र पढ़ सकते हैं, महिलाएं नहीं पढ़ सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि देव के मंत्रों का जप कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। शनि देव के मंत्रों का जप बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके करें, या पूर्व की तरफ चेहरा करके भी शनि देव के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि देव के मंत्र जपने का सही समय संध्या काल को होगा, सूर्यास्त के बाद अगर आप शनि देव के मंत्र का जप करें तो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, या अगर तांत्रिक मंत्र है, विशेष पूजा है, विशेष अनुष्ठान है, तो आप मध्य रात्रि में भी शनि देव के मंत्र का जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन, रक्त चंदन की माला से शनि देव के मंत्र का जप किया जा सकता है। अपने घर में भूल कर भी शनि देव का चित्र मत लगाइए, बेहतर होगा मानसिक रूप से शनि देव को याद करके ही मंत्र का जप करिएगा। और शनि देव का मंत्र जपने जा रहे हैं तो मंत्र जप करने के पहले अपने गुरु या भगवान शिव को अवश्य याद कर लीजिएगा, तब मंत्र का जप करिएगा, मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होगा। कोई भी पारिवारिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति काले वस्त्र धारण करके शनि के मंत्र का जप न करे, ऐसा अत्यंत विशेष स्थितियों में किया जाता है, सामान्य स्थिति में ऐसा न करें। बेहतर होगा कि सफेद वस्त्र या आसमानी नीला वस्त्र पहनकर शनि के मंत्र का जप किया जाए। धनु राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की समस्या में आपके सुधार होगा, धन आसानी से मिल पाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, वाद विवाद हो सकते हैं, परिवार की समस्या से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं शनि देव के अलग अलग मंत्र कौन से हैं और उनका प्रयोग किन स्थितियों में किया जाएगा। पहला है शनि देव का वैदिक मंत्र, ओम शं शनैश्चराय नमः। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जप रोज शाम को कर सकता है 108 बार। ऐसा करने से शनि कभी भी नाराज नहीं होते और उनकी बुरी दृष्टि जीवन पर नहीं पड़ती। दूसरा है शनिदेव का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। अगर शनि की महादशा है, अंतर दशा है, नकारात्मक है, तब इस मंत्र का जप रोज शाम को 108 बार करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से शनि की दशाएं लाभकारी हो जाती हैं। अब शनि देव का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। साढ़े साती और ढैया के समय जब आपका कष्ट बढ़ रहा हो, जब आपकी पीड़ा बढ़ रही हो, तब इस मंत्र का जप करना विशेष कल्याणकारी होता है। शनि अगर पीड़ा दे रहे हैं तो इस मंत्र का जप रोज शाम को करें। अगर लगातार 108 दिन तक करें आपको बहुत लाभ होगा। अगर शनि की मारक दशा हो तो शनि देव के लिए कम से कम 51,000 मंत्र का जप करवाइए और वो मंत्र वैदिक मंत्र होगा ओम शन्नो देविर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तु नः। 51,000 इस मंत्र का जप अगर आप करवाएं, शनि की मारक स्थिति से आप बच जाएंगे। शनि देव की ऐसी मूर्ति का दर्शन या पूजन ना करें जिस मूर्ति में उनकी आंखें हों, अन्यथा शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपको इसकी वजह से समस्या हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर से चीजें गायब होने लगती हैं, कभी कपड़ा गायब हो गया, कभी पैसा गायब हो गया, कभी बर्तन गायब हो गए और समझ ही नहीं आता कि चीजें कैसे गायब हो रही हैं। क्या करना चाहिए? घर के पूजा स्थान पर एक छोटे से काले कपड़े में 1 रुपए 2 रुपए के 2-3 सिक्के डालकर बांध करके पूजा स्थान पर इसको रख दीजिए और 1 महीने बाद सिक्कों को दान कर दीजिएगा, दूसरे सिक्के बांध कर रख दीजिएगा। पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जला के प्रार्थना करिए और अगर दोनों समय पूजा नहीं कर पाते तो कम से कम दोनों समय पूजा स्थान पर बैठकर 2-2 मिनट ही सही, 5-5 मिनट ही सही प्रार्थना या उपासना करें तो घर की तरंगें शुभ होंगी और घर से चीजों का गायब होना रुक जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चीन के पहाड़ी इलाकों में स्कूल जाना कभी बच्चों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता था। कहीं खड़ी चट्टाने, कहीं फिसलन भरे रास्ते और कहीं घंटे की मुश्किल चढ़ाई, लेकिन अब इसी सफर को आसान बना दिया है एक अनोखी स्काई स्कूल बस ने। यूनान प्रांत की गहरी घाटी में बने ये विशाल एलिवेटर बच्चों को मिनटों में पहाड़ की चोटी तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कैसे एक लिफ्ट ने सिर्फ बच्चों का सफर नहीं बदला बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी है।
2: ये कोई आम लिफ्ट नहीं बल्कि पहाड़ के सीने को चीरती स्काई स्कूल बस है। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में निझुए नदी की गहरी घाटी से पहाड़ की चोटी तक जाने वाली ये दो एलिवेटर बच्चों के लिए स्कूल का रास्ता आसान कर रही हैं। जहां पहले स्कूल पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, अब यही सफर कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है।
3: It turns what used to take hours into a journey of less than a minute, and it saves us so much energy so we can focus and calm down to study.
2: 268 और 288 मीटर ऊंचे ये एलिवेटर घाटी में बसे निझुए गांव को पहाड़ की चोटी पर बने ग्वांगशाई प्राइमरी स्कूल से जोड़ते हैं। 500 मीटर से ज्यादा का ऊंचा अंतर जिसे पार करने के लिए बच्चों को कभी खड़ी चट्टानों और संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, कीचड़, खाई और फिसलन हर कदम जोखिम भरा था।
4: The old trail was really hard to walk. There was mud and moss, so it was very slippery. Now, with the elevator, we save about 3 hours on the journey.
2: लेकिन कहानी सिर्फ स्कूल तक पहुंचने की नहीं है। 2022 में घाटी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया गया। एलिवेटर और केबल कार ने गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ा तो पर्यटन से कमाई के नए मौके भी खुले। 36 साल के चेन ग्वांगपिंग शहर से लौटे और अब यहां होम स्टे चला रहे हैं।
5: Back then, we mainly grew a little ginger, and at most, we could make 5,000 to 6,000 yuan a year. Now, we can earn at least 300,000 to 400,000 yuan in gross income a year. Life has really changed dramatically.
2: इन लिफ्ट ने बच्चों के लिए रास्ता छोटा किया, तो पर्यटन ने गांव की कमाई बढ़ाने का रास्ता खोल दिया। स्थानीय प्रशासन अब खाली पड़े घरों और संसाधनों को गेस्ट हाउस में बदलने पर जोर दे रहे हैं।
6: We want to make the best possible use of idle resources and vacant houses, turning villagers' homes into goose houses and these untapped resources into a major source of income for local residents.
2: निझुआ गांव में पहाड़ वही हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच रहने वालों की जिंदगी बदल रही है। जहां कभी स्कूल तक पहुंचना एक मुश्किल चढ़ाई थी, आज वही रास्ता स्काई स्कूल बस से मिनटों का सफर है। और यही बदलता सफर बता रहा है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रास्ते नहीं बनाता, लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते भी खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
1: मुंबई थाड़े सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की धूम, गोविंदाओं की टोलियों में दिखा मटके फोड़ने के लिए गजब का उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ गूंज रहा जय बजरंग बली का जय घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी उत्सव, श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी के पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम की बातचीत, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जुन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशनल सहयोग होगा इससे मजबूत। श्रीनगर के डल झील में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, तूफानी हवा और तेज बारिश के बीच चलाए रेस्क्यू अभियान, मझधार में फंसी नाव पर सवार टूरिस्ट का किया रेस्क्यू।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: पूर्वी लद्दाख हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाला बॉर्डर का इलाका, घने जंगल में घात लगाए दुश्मन हो या फिर बंकर में छिपे हूँ आतंक के प्यादे, फौलादी टैंक हो या फिर स्टील से भी मजबूत बंकर, हर किसी का परखचा उड़ना तय है। भारतीय सेना के पास वो किलिंग वेपन आने वाला है जो चीन और पाकिस्तान के टैंकों के लिए काल साबित होगा। भारतीय सेना अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एक एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं और इसके तहत जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में होगा, यानी कि अमेरिकी कंपनी और साथ ही साथ भारत की डिफेंस कंपनी टाटा दोनों मिलकर जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे और बहुत ही जल्द ये भारतीय सेना को मिल जाएगी।
1: भारत में जेवलिन मिसाइल का प्रोडक्शन रणनीतिक लिहाज से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इससे मेक इन इंडिया मिशन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत तथा अमेरिका की सरकार के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत अब निकट भविष्य में ही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। खास बात है कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल जो है वो एक इमेज इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से काम करती है और दुश्मन के टैंक को 4 किलोमीटर की दूरी से निस्तनाबूद कर देती है। जब इस जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगा और हमारी इन्फेंट्री की फॉरवर्ड डिप्लॉयड बटालियंस को इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी तो युद्ध के मैदान में उनकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी।
1: आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़े हथियार ही काफी नहीं होते, जरूरत के हिसाब से ऐसे हथियारों की भी जरूरत होती है जिन्हें सैनिक अपने हाथ में भी लेकर चल सके, जो तेजी से तैनात हो सके और दुश्मन के भारी भरकम टैंक को आसानी से निशाना बना सके। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए अमेरिकी हथियार की एंट्री होने जा रही है। एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल जिसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर एंड फॉरगेट।
0: दरअसल भारतीय सेना अमेरिका से शुरू से ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन को खरीदने की इच्छुक थी। 2010 में भारत ने इसकी इच्छा जताई थी, लेकिन अब जाकर यानी कि 28 अगस्त को इस पर फाइनल डील साइन हुई है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
1: इमरजेंसी खरीद प्रक्रिया के तहत हुए सौदे में 60 जेवलिन मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। इनकी कुल कीमत 292 करोड़ रूपए हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एक मिसाइल खरीदने में भारत को 16 साल क्यों लग गए? वो क्या वजह थी कि जेवलिन की जगह इजराइल की स्पाइक मिसाइल को चुन लिया गया और फिर इतने साल बाद भारत जेवलिन की ओर वापस क्यों लौटा? इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जेवलिन आखिर क्या है और भारतीय सेना के लिए इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई।
0: साल था 2010 जब भारतीय सेना ने अमेरिका से जेवलिन मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई। दोनों देशों के बीच में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आखिर में ये बातचीत विफल रही और विफल इसलिए रही क्योंकि अमेरिका भारत को मिसाइल तो देना चाह रहा था लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो राजी नहीं था, जिस पर भारत ने हामी नहीं भरी।
1: भारत चाहता था कि अमेरिका से सिर्फ जेवलिन मिसाइल की खरीद न करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले और आगे भारत में इसका उत्पादन हो सके। अमेरिका जेवलिन की महत्वपूर्ण तकनीक, खासकर इसके IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक साझा करने को तैयार नहीं था। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक को आधुनिक गाइडेड मिसाइल की आंख और दिमाग कहा जाता है। सबसे पहले आईआर सीकर थर्मल पिक्चर तैयार करता है। आईआर सीकर में डिजिटल कैमरे की तरह एक खास फोकल प्लेन एरे सेंसर लगा होता है। ये सेंसर सिर्फ गर्मी के किसी एक बिंदु को नहीं पकड़ता, बल्कि सामने मौजूद पूरे दृश्य की एक साथ थर्मल इमेज बनाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। मिसाइल के अंदर मौजूद हाई स्पीड प्रोसेसर इस इंफ्रारेड वीडियो को प्रोसेस करते हैं। एल्गोरिदम की मदद से मिसाइल ये पहचान लेती है कि सामने दिख रही गर्मी किसी टैंक की है या फिर किसी गाड़ी की या फिर सिर्फ धूप से गर्म हुई किसी चट्टान की। अगला स्टेप टारगेट के कमजोर हिस्से की पहचान करना होता है। टारगेट लॉक होने के बाद आईआर सीकर तकनीक दुश्मन के वाहन या फिर विमान के सबसे कमजोर हिस्से जैसे कि टैंक के ऊपर का हिस्सा या लड़ाकू विमान का कॉकपिट को खुद खोजती है और मिसाइल को सीधे उसी पॉइंट पर जाकर टकराने का निर्देश देती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक से कैसे बेहतर है ये भी जानना जरूरी है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल सिर्फ गर्मी के सबसे तेज बिंदु की तरफ भागती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल टारगेट के पूरे आकार को पहचान कर उसको लॉक करती है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल दुश्मन की ओर से फेंके गए फ्लेयर से आसानी से भटक जाती थी, लेकिन आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस मिसाइल असली टैंक विमान और नकली फ्लेयर्स के बीच का अंतर समझ सकती है और इसीलिए इसे चकमा देना लगभग असंभव है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल टैंक विमान के एग्जॉस्ट यानी कि धुआं निकालने वाली जगह पर ही हमला कर पाती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस मिसाइल ऑल एस्पेक्ट क्षमता से लैस है, यानी दुश्मन किसी भी दिशा में खड़ा हो ये उसकी बॉडी हीट को पकड़ लेती है।
2: आमतौर पर ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वह इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं, यानी दुश्मन के टैंक के इंजन से जो गर्माहट निकलती है लॉन्च के बाद जो मिसाइल का सीकर हेड है वो इंजन दुश्मन के इंजन की गर्माहट पर लॉक ऑन करता है। लेकिन आजकल इसके काउंटर मेजर्स बन चुके हैं जिसमें दुश्मन आर्टिफिशियल फ्लेयर्स फायर करता है या आर्टिफिशियल हाई टेम्परेचर ग्रेनेड्स फायर करता है जिससे कि छोटे छोटे पटाखे जैसे आग जलने लग जाते हैं। तो जो एंटी टैंक मिसाइल हीट सीकिंग हमने लॉन्च किया है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और इन नकली हीट सोर्सेज की तरफ चल पड़ता है।
1: जेवलिन की खरीद प्रक्रिया के लिए कड़ी अमेरिकी शर्तें और इजराइल स्पाइक से ज्यादा लागत की वजह से शुरुआती जेवलिन खरीद प्रक्रिया अटक गई।
0: दरअसल अमेरिका के साथ हथियार खरीदने पर अमेरिका ने यूज एंड मॉनिटरिंग की शर्त रखी थी, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये था कि अगर भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है तो अमेरिकी अधिकारी कभी भी आकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं था और ये एक बड़ी वजह रही कि दोनों के बीच ये डील तब साइन नहीं हो पाई।
1: जब जेवलिन मिसाइल की खरीद को लेकर बात चल रही थी तब जेवलिन की प्रति यूनिट लागत इजराइल की स्पाइक मिसाइल की तुलना में बहुत ज्यादा थी। भारतीय सेना को अपनी 380 से ज्यादा इन्फेंट्री

0: भारत में ही हम डीआरडीओ की मदद से नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम काफ़ी हद तक डेवलप हो भी चुका है। इसके प्रोटोटाइप को ऑलरेडी चांदीपुर टेस्ट रेंज में और पोकरण रेंज में ट्रायल कर लिया गया है, लेकिन इसकी फाइनल प्रोडक्शन लाइन असेंबली लाइन बनाने में अभी 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए इतने सालों से भारत ने और कोई दूसरा इम्पोर्टेड यानी विदेशी एंटी टैंक मिसाइल नहीं खरीदा, लेकिन अब जब नाग को इंडक्ट होने में 2-3 साल और लगेंगे, तो एज एन एंट्रिम मेजर टेम्परेरी व्यवस्था के तहत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत में ही प्रोडक्शन किया जाएगा।
1: भारत के पास 8 तरह की एंटी गाइडेड मिसाइल हैं, जिसमें एक नया नाम जेवलिन जुड़ने वाला है, जो इंडियन इन्फेंट्री की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा। वक्त बदला और अमेरिका और भारत के रिश्ते साल दर साल और बेहतर होते चले गए, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका ने भी भारत के लिए अपने रुख को थोड़ा सा नर्म किया। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके भारत में ही प्रोडक्शन पर भी हामी भर दी। जेवलिन सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई देशों की सेनाएं करती हैं। इसे बख्तरबंद वाहनों और मजबूत किलेबंदी वाली जगहों समेत कई तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। अब जेवलिन कैसे काम करती है, इसकी ताकत और खासियत क्या है, और क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, और ये कैसे काम करती है, ये आपको बताते हैं। पहला फेज, टारगेट ढूंढना और लॉक करना। सैनिक अपने कमांड लॉन्च यूनिट में लगे थर्मल डिपेंडेंट कैमरे की मदद से दुश्मन के टैंक को ढूंढता है और उस पर निशाना लॉक करता है। दूसरा फेज, सॉफ्ट लॉन्चिंग। ट्रिगर दबाते ही मिसाइल का पहला छोटा मोटर उसे ट्यूब से बाहर धकेलता है। जब मिसाइल सैनिक से सुरक्षित दूरी पर पहुंचती है, तब इसका मुख्य रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है। तीसरा फेज, इंफ्रारेड गाइडिंग। मिसाइल के आगे लगा सीकर टैंक से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करता है और मिसाइल खुद अपना रास्ता तय करती है। चौथा फेज, टारगेट पर अटैक। मिसाइल 2 तरह से टारगेट पर अटैक करती है, एक है टॉप अटैक मोड और दूसरा है डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक मोड में मिसाइल सीधे जाने के बजाय हवा में 150 मीटर ऊपर उठती है और फिर सीधे नीचे आकर टैंक की छत पर हमला करती है। डायरेक्ट अटैक मोड का इस्तेमाल बंकर, इमारत या कम ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाने को लेकर होता है, जिसमें मिसाइल सीधे सामने जाकर टकराती है।
0: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल में एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी हमारा जो इन्फेंट्री का ट्रूपर है उसको दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाना है और मिसाइल को फायर कर देना है। उसके बाद ये मिसाइल तुरंत ऊपर की तरफ चली जाती है और दुश्मन के टैंक को टॉप अटैक मोड में हमला करती है। अगर सामने दुश्मन का बंकर है, उसके ऊपर भी लॉन्च करने के बाद जेवलिन मिसाइल जो है सीधा दुश्मन के बंकर की तरफ अग्रसर होती है।
1: आधुनिक टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है, जो किसी भी मिसाइल के टकराते ही खुद ब्लास्ट होकर मिसाइल के असर को बेअसर करता है। इससे निपटने के लिए जेवलिन में टैंडम वॉरहेड लगा है, यानी 2 विस्फोट। पहला विस्फोट टैंक के बाहरी सुरक्षात्मक कवच को नष्ट करता है और ठीक उसके पीछे वाला दूसरा मुख्य विस्फोटक टैंक के अंदर छेद करके उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वैसे रेंज की बात की जाए तो जेवलिन 2.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के बख्तरबंद वाहन बंकर, यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। यानी सामने कोई भी हो, जेवलिन मिसाइल के आगे सब फेल।
0: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की एक और खास बात है कि इसके वॉरहेड में 2 वॉरहेड होते हैं, एक सामने और एक थोड़ा सा पीछे। जब यह मिसाइल दुश्मन के टैंक से टकराती है तो पहले सामने वाला वॉरहेड फटता है, जिससे कि दुश्मन के टैंक पे जो भी बख्तरबंद या कवच लगा है उसको नष्ट किया जाता है और एक छेद बन जाता है। उस छेद से जो दूसरा वॉरहेड है वो अंदर चला।

0: जाता है और सेकेंड वॉरहेड जो है टैंक के अंदर जाके फटता है, यानी सेकेंड वॉरहेड से ही टैंक, दुश्मन के टैंक के अंदर जो क्रू है, ड्राइवर, गनर, कमांडर, लोडर, उनकी मौत होती है। तो इससे द किल प्रोबेबिलिटी जो है, यानी टैंक पर ना सिर्फ हमला करना वरन यह सुनिश्चित करना कि वह टैंक और उसका क्रू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्राय प्राय शत प्रतिशत बढ़ जाती है।
1: अब सवाल ये भी है कि भारत को जेवलिन की जरूरत क्यों है, तो आइए अब आपको समझाते हैं। भारत की सीमाएं बेहद विविध और चुनौतीपूर्ण है। कहीं ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, कहीं संकरे रास्ते, तो कहीं ऐसे इलाके हैं जहां भारी सैन्य वाहनों को तेजी से तैनात करना आसान नहीं है। ऐसे में सैनिकों के पास ऐसे हथियार होना जरूरी है जिसे आसानी से आगे पोस्ट तक ले जाया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि जेवलिन जैसी मिसाइल भारत की एंटी आर्मर क्षमता को मजबूत कर सकती है। राम क्षेत्र में जब सीमा पर सैनिक तैनात होता है तो वहां सबसे अहम भूमिका होती है हथियारों की, खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाके। वहां सैनिकों को ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ती है जो हल्के भी हों और सटीक निशाना भी लगा सके। ऐसे में इस तरह के हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। मौजूदा समय में भारत अपनी MPATGM यानी स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी विकसित कर रहा है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, टॉप अटैक मोड और टैंडम वॉरहेड जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल करीब 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों को सटीक निशाना बना सकती है। MPATGM की सबसे बड़ी ताकत है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक, जिसमें सीधे तौर पर मतलब यह है कि गोला दागो और उसके बाद भूल जाओ, और ये सबसे बड़ी तकनीक इसको और ज्यादा ताकतवर बनाती है। एक बार गोला दाग दिया उसके बाद ये खुद ब खुद टारगेट को निशाना बनाएगा और उसे ध्वस्त करके ही दम ले। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियों की मारक क्षमता बढ़ेगी और विदेशी एंटी टैंक हथियारों पर निर्भरता कम होगी। हालांकि जब तक स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की पूरी तरह से परिपक्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक जेवलिन का भारत में बनना और सेना में शामिल होना एक बेहतरीन स्टॉप गैप व्यवस्था प्रदान करेगा।
2: जमीनी जंग का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद हथियार है टैंक, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके साथ चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां और टोड राइफल्स, यानी इसे और ज्यादा ताकत देती हैं। और टैंक जब रण क्षेत्र में निकलता है तो ना तो इसको रेतीली जमीन रोक पाती है ना ही ऊंचाई वाले पहाड़।
1: टैंक को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल, इसे टैंकों का काल कहा जाता है। लेकिन एक वक्त था जब ATGM की जगह RCL यानी रिकॉइल लेस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था।
2: टैंक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना 106mm की RCL गन, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि फायर होते ही इसकी आग पीछे की तरफ से निकलती थी, जिससे दुश्मन दूर से ही इसे पहचान लेता था। एक और खामी जो इसमें थी वो ये थी कि आप इसमें से केवल 1, 2 या 3 बार फायर कर सकते हैं। बावजूद इसके इसने अपने पराक्रम का परिचय दिया।
1: 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग जाए। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुके रहे जब तक कि पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आ गए। अब्दुल हमीद एक जीप में RCL गन के साथ तैनात थे।
2: असल उत्तर की लड़ाई धूल भरी जमीन पर लड़ी गई। जहां चारों तरफ केवल धुएं का गुब्बार था, धूल थी और ऊपर से गोलीबारी का धुआं। ऐसे में चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे। अब्दुल हमीद ने एक बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को करीब आने दिया और 180 मीटर की दूरी पर उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों के परखचे उड़ा दिए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत से अपने ड्राइवर को पोजीशन बदलने के लिए कहा। गन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने दो टैंकों को तबाह कर दिया था, जबकि चार टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वहीं छोड़कर भाग निकली थी। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने चार ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले एक घंटे में पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हमीद ने जैसे ही देखा कि 6 पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी आरसीएल गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा भी मिला। यहां से उन्होंने सबसे पहले आगे की टैंक उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर दो और टैंक उड़ा दिए। अब्दुल हमीद ने गजब का साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले ही तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी।
3: टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं और वो उनका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के दौरान जो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके टैंक जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे, तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है, टैंकों के विरुद्ध और बस्तरबंद गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नाग मार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है मार्क 2 की, तो ये बैटल फील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है।
2: मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें अलग अलग वर्जन की कई मिसाइलें हैं। कुछ टैंक से फायर करने में सक्षम है तो कुछ हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती है। यही नहीं, कंधे पर रखकर भी सेना के जवान से फायर कर सकते हैं। मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक नाम है स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दरअसल इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि कई बार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दुश्मन फायदे की पोजीशन पर होता है। मान लीजिए कि दुश्मन किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा है, तो ऐसे में मोर्टार से हमला करना जोखिम भरा हो सकता है और यहाँ पर सैनिकों का सबसे भरोसेमंद हथियार होता है ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। स्पाइक NLOS भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत को इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
4: स्पाइक जो है वो नॉन लाइन ऑफ साइट एक मिसाइल है जो 2020 में लॉकहीड मार्टिन और रफाल ने मिलकर ये वेपन सिस्टम बनाया। ये एक मैन इन दी लूप वाला वेपन सिस्टम है और इसको तीनों वर्शन में यानी एयर से, लैंड से और मैरीटाइम वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खूबी ये है कि बिकॉज ये मैन इन दी लूप वाला सिस्टम है, तो इसको किसी तरह से भी गाइड करके, और गाइडिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिस्टम हो लेजर का, चाहे वो टीवी कैमरास का हो जो फिट होते हैं वारहेड के नोज के अंदर, या वो कोई वायर गाइडेड हो, किसी तरह के भी सिस्टम से इसको गाइड करके वहां तक दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाना और उसको मार गिराना, ये इसकी खूबी है। और अगर मिशन किसी तरीके से अबार्ट करना पड़े तो ये अबार्ट भी कर सकते हैं। इसका रेंज तकरीबन 32 किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ी इसकी एक ताकत है।
5: हवा से दागी गई NLOS मिसाइल न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत ने इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी है। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने LAC पर करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू विमानों की तैनाती करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का ऑर्डर दिया।
2: खबरों के मुताबिक भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का इच्छुक था। साल 2011 में भारत के पास दो विकल्प थे, एक अमेरिका की फाल्कन और दूसरा था इसराइल की NLOS। भारत ने इसराइल की NLOS को चुना। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मूड में नहीं था, लेकिन भारत को एक ऐसे मुल्क से डील करनी थी जो उसे हथियार के साथ साथ तकनीक का ट्रांसफर भी देता, ताकि भारत में उसका प्रोडक्शन हो पाए। इसीलिए भारत ने NLOS को चुना।
5: फिलहाल सरकार ने सीमित संख्या में NLOS मिसाइलें ऑर्डर की हैं, बाद में इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बड़ी संख्या में हासिल किया जाएगा।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
13: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दो तरह की हैं। एक तो छोटी मिसाइलें जिन्हें एक व्यक्ति आसानी से उठा कर ले जा सकता है और कंधे से ही लॉन्च कर सकता है। दूसरी होती है बड़ी मिसाइलें जिन्हें लॉन्च करने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत होती है। इन्हें हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। दुनिया ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत देखी, जहां यूक्रेन एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका से मिले जेवलिन मिसाइलों का खूब इस्तेमाल हुआ। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्पाइक को जेवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल माना जाता है। स्पाइक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स ने दुनिया भर में कई युद्धों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। स्पाइक मिसाइल ने 1982 और साल 2006 के लेबनान युद्ध में अपनी ताकत दिखाई। साल 2001 और 2021 के अफगानिस्तान वॉर में इसने अपनी जबरदस्त जंगी क्षमता का परिचय दिया। वहीं इराक युद्ध में स्पाइक बेजोड़ साबित हुई। साल 2014 में इसराइल गाजा संघर्ष और साल 2020 में नार्गो कारबाख संघर्ष में भी स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल ने अहम भूमिका निभाई। स्पाइक की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे एंटी टैंक मिसाइल में होती है। भारत के पास पहले से ही स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जमीन से फायर करने वाला वर्जन मौजूद है। भारतीय सेना इस समय स्पाइक LR मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। स्पाइक LR पोर्टेबल है। दो जवानों की टीम के साथ इसे तैनात किया जा सकता है। एक जवान लॉन्चर लेकर चलता है, दूसरा मिसाइल। स्पाइक मिसाइल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं। इसे फायर करने के दो मोड हैं। पहला है फायर एंड फॉरगेट, मतलब मिसाइल फायर करने के बाद टारगेट को भूल जाइए। दूसरा है फायर एंड विजर्व, इसमें मिसाइल के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से विजुअल लॉन्चर तक पहुंचता है। सैनिक देख पाता है कि मिसाइल किस टारगेट की ओर बढ़ रही है, वो टारगेट पर कहां लगेगी। जरूरत पड़ने पर मिसाइल की हवा में रहते हुए सैनिक उसकी दिशा भी बदल सकता है। इस खूबी के चलते उस टारगेट को भी खत्म किया जा सकता है जो सीधे ना दिख रहा हो।

0: स्पाइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे कंधे पर ट्राइपॉड से भी लॉन्च किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसे किसी भी टैंक पर फिट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी ताकत इसकी ये है कि इसे ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत ही जल्द इंस्टॉल किया जा सकता है। हाल ही में अर्जुन टैंक पर हुए इसके सफल परीक्षण ने इस बात का सबूत भी दिया है।
1: स्पाइक मिसाइल अपने टारगेट पर अचूक प्रहार करती है। ये इतनी घातक है कि टारगेट को बचने का मौका तक नहीं मिलता। स्पाइक मिसाइल न सिर्फ दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकर को तबाह करने में सक्षम है, बल्कि ये दुश्मन की टैंकों के परखचे उड़ाने की ताकत भी रखती है।

0: یہ میزائل کی جو اسپائک کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ انفراسٹرکچر کو استعمال کر کے اس کی جو نائٹ ویزیبلٹی ہے اور اس کا جو رینج ہے وہ بہت لیتھل ہے, بہت ڈیواسٹیٹنگ ہے, اور یہ اپنا ٹارگیٹ خود بے خود لوکیٹ کر لیتا ہے. تو آپ مان کے چلو کہ اس کو پارشلی آپ ایف این ایف کیٹیگری میں ڈال دیتے ہو, فائر اینڈ فرگیٹ, فائر کرو بھول جاؤ, اپنا ٹارگیٹ ڈھونڈ کے نیویگیٹ کر کے وہاں پہنچ کے اس کو دھست کر دے گا.
1: اسپائی کے علاوہ بھارت کے پاس سودیشی ناگ اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل بھی ہے. تیسری پیڑھی کی اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کو کسی بھی موسم میں داغا جا سکتا ہے. انٹیگریٹڈ گائیڈڈ مسائل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تھرڈ جنریشن کی ناگ مسائل کو تیار کیا گیا. ناگ پانچ طرح کی ویریئنٹس میں آتی ہے. ناگ مسائل کے الگ الگ ویریئنٹس کی رینج 500 میٹر سے لے کر 20 کلومیٹر تک ہے, جو 828 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی میکسیمم سپیڈ سے حملہ کرنے میں سکشم ہے. ناگ ایسی مسائل ہے جسے زمین یا ہوا کہیں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے. اس کا گائیڈنس سسٹم فائر اینڈ فرگیٹ ہے, جس کا مطلب ہے ایک بار میں ناگ کو فائر کر دیا اور اس کے بعد یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ کے ہی دم لے گی.
2: مسائل مین کے نام سے مشہور پورو راشٹرپتی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے 90 کے دشک میں ناگ مسائل کو آکار دینا شروع کیا. ڈی آر ڈی او نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا. 90 کے دشک کی شروعات میں ٹیسٹ بھی ہوئے, لیکن آئی آئی آر آدھارت گائیڈنس سسٹم میں دقت کے چلتے ڈیولپمنٹ پھنس گیا. 1997 اور پھر 2000 میں ناگ مسائل نے ٹیسٹ میں قابلیت ثابت کر دی. پھر اگلے کچھ سالوں کے بھیتر اسے اور زیادہ ریفائن کیا گیا.
1: ناگ مسائل کے لیے خاص مسائل کیریئر این ایم آئی کا تیار کیا گیا ہے, جسے سارت نام دیا گیا ہے. یہ ایک ٹینک ڈسٹروئر ہے جس میں 12 مسائلیں رکھی جا سکتی ہیں. ناگ مسائل کے 5 الگ الگ ٹائپ پر کام چل رہا ہے. ناگ مسائل کا ایک لینڈ ورژن ہے, دوسرا ماس ماؤنٹن سسٹم, باقی 3 خاص ضرورتوں کے حساب سے بنائے جا رہے ہیں. تیسری پیڑھی کی ایم پی 80 جی ایم یعنی مین پورٹیبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کا ٹرائل 2005 میں شروع ہوا. یہ دکھنے میں ناگ مسائل کی لینڈ ورژن جیسی ہے, لیکن بہت ہلکی ہے, جو قریب 14 کلوگرام ہے. ناگ کے ایم پی 80 جی ایم ورژن کی رینج قریب 2.5 کلومیٹر ہے. یہ ٹینک کے اوپر سے حملہ کرنے میں سکشم ہے, جسے ٹاپ اٹیک کہا جاتا ہے. دراصل ٹینکوں میں چاروں طرف ریئیکٹو آرمر کی پلیٹ لگی ہوتی ہے, جو مسائل حملے کے دوران پھٹ کر اس کے پربھاؤ کو کم کر دیتی ہے. اسی لیے اوپر کی اور ٹینک پر حملہ اسے بہت نقصان پہنچاتا ہے. اسے داغنے کے بعد اس کے لکشے کو بدلا بھی جا سکتا ہے.
3: جو پاور ٹو ویٹ ریشو ہے اس کو زیادہ بڑھانے کے لیے آپ نے ویٹ کم کرنا ہے, ٹینک کی ایجیلیٹی کو بڑھانے کے لیے, تاکہ ٹینک فائر کر کے ایک دم وہاں سے ہٹ سکے. تو اس لیے ٹینک کی ویٹ کو کم کرنے کے لیے ٹرٹ کے اوپر آرمر جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے. تو اگر کوئی اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کسی طریقے سے اوپر سے آ کے ٹرٹ کے اوپر حملہ کرے گی تو وہ نقصان ٹینک کو زیادہ ہوگا, اس کے بشرطے کہ حل کے اوپر یا فرنٹ میں وہ اٹیک کرے اور اس کو نقصان کم ہوگا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل میں کیپیبلٹی ہو کہ وہ اوپر سے فائر کر کے, یعنی کسی ایسے پلیٹ فارم سے, ایئر سے, ہوائی جہاز سے, کسی ہیلی کاپٹر سے, وہاں سے فائر کر سکے اور ٹینک کے اوپر کے ٹرٹ کے حصے کو نقصان پہنچائے.
1: ناگ اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کو پہاڑ پر لے جانا ہو یا پھر ریگستان میں, اسے کہیں پر بھی آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے, کہیں پر بھی فٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کے لیے کسی نشچت جگہ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ضرورت کے حساب سے اس کا استعمال ہوگا. ایم پی 80 جی ایم میں اور بھی کئی ہائی ٹیک تکنیکوں کا استعمال کیا گیا ہے. ایم پی 80 جی ایم امیج انفراریڈ رڈار سے لیس ہے, جو رات کے اندھیرے میں دشمن کو ڈھونڈ لیتا ہے. ایم پی 80 جی ایم میں انٹیگریٹ ایوینوکس بھی لگا ہے. اس مسائل کی ادھکتم مارک کشمتا 3 کلومیٹر ہے. قریب 1.25 میٹر لمبائی والی इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड फिट होता है, जिससे ये टैंकों के बेहद मजबूत कवच को पिघला सकती है। थर्मल सेंसर की वजह से ये टैंक से निकलती गर्मी की ओर भागती है, जिससे बचना टैंक के लिए आसान नहीं है।
3: किसी भी टारगेट के इमेजेस को या उसकी इंफ्रारेड को या उसकी हीट सेंसिंग जो है, उसकी जो भी हीट निकलती है उसको किसी तरह से सिग्नेचर्स को ट्रैक किया जाए और उसको ट्रैक करते करते टारगेट को तबाह किया जाए। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंदर टीवी कैमरास या लेजर गाइडेंस ऐसी पैदा की जाती है, ऐसी डिजाइन की जाती है कि वो टारगेट को ढूंढ के वहां तक जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी होम करेगा, उसकी जो थर्मल इमेजेस हैं, थर्मल इमेजेस मतलब जो उसमें से सिग्नेचर निकलते हैं, और उसको अवॉइड करने के लिए दुश्मन क्या करते हैं या टैंक वाले जो करते हैं उसके पीछे फ्लेयर जो है, आर्टिफिशियल फ्लेयर या ऐसी चीज कर जाते हैं ताकि सिग्नेचर जो है गलत मिले और मिसाइल जो है भटक जाए।
1: स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। एयरफोर्स वेरिएंट का नाम है ध्रुवास, जिसे हेलिना नाम से भी जाना जाता है। ध्रुवास को ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है।
2: डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत के बाद ध्रुवास मिसाइल तैयार की है। इसने तकरीबन अपने सारे टेस्ट पास भी कर लिए हैं और बहुत ही जल्द इसे भारतीय सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स में कमीशन भी कर दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर मौसम में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकती है।
1: दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर चलने वाली इस मिसाइल से दुश्मन टैंक बच नहीं पाएंगे। यही वजह है कि ध्रुवास की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी टैंक हथियारों में होती है। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगा हुआ है, जिससे यह अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। ध्रुवास मिसाइल की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। ये 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है और इसमें 8 किलो विस्फोटक लगा होता है। भारत के पास सैंट यानी स्टैंडर्ड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल में होती है। सैंट ध्रुवास का अपग्रेडेड वेरिएंट है। 15 से 20 किलोमीटर रेंज वाली सैंट में एक्टिव रडार सीकर लगा है ताकि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दूर रहे। ये मिसाइल इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से टारगेट का पता लगाती है और भागते टारगेट को भी तबाह कर सकती है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मार्च 2023 में अपनी थर्ड जनरेशन की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया। अमोघा 3 बेहद अत्याधुनिक और सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर है। इसमें जो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है वो 650 मिलीमीटर बियॉन्ड एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर के भी चीतड़े उड़ा सकता है। अमोघा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन की तरफ इंफ्रारेड इमेजिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक की मदद से आगे बढ़ती है। हालांकि इसकी स्पीड का खुलासा इसे बनाने वाली कंपनी ने नहीं किया है। अमोघा 3 मिसाइल पर 8 फिन्स यानी छोटे छोटे पंख लगे हैं ताकि उड़ान के समय इसे नियंत्रित किया जा सके।
2: भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर और मॉडर्न हथियारों से लैस करने के लिए लगातार इस पर काम चल रहा है। पांचवी पीढ़ी के कई हथियारों को भारतीय सेना के साथ अटैच करने की बात भी हो रही है और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि चीन और पाकिस्तान की गुस्ताखियों को जवाब देने के लिए भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने नए नए हथियारों को बना भी रहा है। इसी के तहत भारत के पास कॉन्कस एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, जो दुश्मन के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से लैस बख्तरबंद वाहनों को सेकंड्स में तबाह कर सकती है।
1: महज 19 सेकंड में 4 किलोमीटर दूर टारगेट को खाक में मिलाने की ताकत है कॉन्कस एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में। कॉन्कस एम मिसाइल सेकेंड जनरेशन की मैकेनाइज इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर से लैस बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने के लिए काफी है। चीन की सेना हो या फिर पाकिस्तान में पनपते आतंक के मोहरे, ये दुश्मन के लिए अल्टीमेटम है कि अब वक्त है, संभल जाओ वरना खाक में मिला दिए जाओगे। कांग्रेस एम मिसाइल को बीएमपी 2 बख्तरबंद गाड़ी से या फिर सतह से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 208 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 4 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खाक में मिला सकती है। बीएमपी 2 बख्तरबंद गाड़ी में 6 सैनिक सवार हो सकते हैं जो टैंक के ग्राउंड क्लियरेंस के बाद अपना मोर्चा संभालते हैं। बीएमपी से सपोर्ट फायर होता है और फिर सैनिक अपने हाईटेक वेपन के साथ दुश्मनों को निशाना बना सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ियां यानी बीएमपी न केवल दुश्मन पर मिसाइलों, मोर्टार, रॉकेट्स और मशीन गन से जबरदस्त हमला कर सकती हैं, बल्कि इसके अंदर बैठकर सैनिक मैदाने जंग में हर गोलीबारी से सुरक्षित रहकर आगे बढ़ सकता है। जरा सोचिए, अगर बीएमपी 2 पर कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तैनाती कर दी जाती है तो ये दुश्मन के खेमे में कितनी बड़ी तबाही मचाएगा।
0: ये कॉन्कर एम जो है वायर गाइडेड मिसाइल है, बीएमपी 2 से फायर किया जा सकता है या ग्राउंड से भी फायर किया जा सकता है, और ये वायर गाइडेड जैसा मैंने कहा इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल है, मोर देन 80% की एक्यूरेसी है। और आप जैसे जैसे हम एटीजीएम की बात करते हैं तरह तरह का है, कोई मैन पोर्टेबल है, कोई वायर गाइडेड है, कोई सेल्फ गाइडेड है, तो ये वायर गाइडेड कैटेगरी में आता है। और इसका इसकी जो क्षमता है ये हमने इस्तेमाल किया है।
1: भारतीय सेना बड़ी तादाद में रूसी मूल के बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल करती है। बीएमपी का इस्तेमाल भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की ओर से रेगिस्तान, मैदान और ऊंचाई वाले इलाकों में किया जा सकता है। सरहद पार दुश्मन अगर बंकर में छिपकर गुस्ताखी करने की फिराक में हो तो कांग्रेस एम उसे खाक में मिलाने की कुव्वत रखती है, लिहाजा अब आतंक के मोहरों के लिए जान बचाना मुश्किल होगा। बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को नाइट विजन डिवाइस से लैस किया गया है ताकि रात में भी दुश्मन से मुकाबला किया जा सके। यानी बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को हर वो ताकत सौंपी गई है जो रणभूमि में जीत के लिए गारंटी मानी जाती है। भारतीय सेना के पास 34,000 Milan 2T मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। इसे फ्रांस और भारत ने मिलकर बनाया है। इसे भी टैंक ट्राइपॉड कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। इसके 5 वेरिएंट्स हैं: मिलान 1, मिलान 2, मिलान 2T, मिलान 3 और मिलान ER। मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में सिंगल या टैम्ड हीट वॉरहेड लगाए जा सकते हैं और इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक है।
2: रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती है तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम, मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव, श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी की पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

0: हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। अतुलित नीब करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6,587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज ए मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता, निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

0: आप शायद यकीन ना करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी हनुमान चालीसा आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: में। जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है तो
1: क्या
2: करते हैं, ये करते हैं तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था, तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सॉल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनन फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो वैसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धि जीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल कहते हैं, गोपाल तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के तीसरे हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
3: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौली बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया। यहां तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है।

0: वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया। हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर कोई मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से। महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गांव पहुंचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया। अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: बैठ गए
1: स्टेशन पे। थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसकी वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब

0: मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करौली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे। पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करौली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीब करौली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करौली बाबा का देहावसान हो चुका था। फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करौली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
1: बंदे में है दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम, मटके फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी उत्सव, श्री कृष्ण के जयकारों के साथ भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी की पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, सात यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम की बातचीत, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गर्जन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशनल सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी उत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, गोविंदाओं ने बढ़ चढ़ के लिया इसमें हिस्सा। मुंबई में गोविंदा रे गोपाला के जयकारों से गूंजी माया नगरी, दादर में महिला गोविंदा पथक ने 50 फीट ऊंची दही हांडी 5 मिनट में फोड़ी। मुंबई अखाड़े में इस बार दही हांडी प्रतियोगिता में भारी भरकम इनाम घोषित किए गए। गोविंदा पथक को 51,81,00,000 रुपए तक का मिला इनाम। गोविंदाओं की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर आसमान छूते मटकी फोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ती हुई नजर आई। लोगों ने अपनी पसंदीदा टोली का जोश बढ़ाया। मुंबई के मागा थाने में दही हांडी पथकों ने 9 मानव पिरामिड तक बनाया, जो कि दही हांडी 10 मानव पिरामिड की ऊंचाई पर बनाई गई। थाने में दही हांडी का जोश चरम पर, 200 से ज्यादा गोविंदा टोलियां पहुंची, ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाकर हांडी फोड़ने की जोरदार तैयारी। थाने की दही हांडी सिर्फ गोविंदाओं ही नहीं, सितारों के लिए भी काफी ज्यादा खास है। गोविंदा, सुनील शेट्टी और संजय दत्त ने लूटी महफिल। दही हांडी अब सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं, महिला गोविंदा टीमें भी बढ़ चढ़कर ले रही हैं इसमें हिस्सा। साथ ही सुरक्षा के लिए हेलमेट, हार्नेस और बीमा जैसे इंतजामों पर जोर। थाने में स्वामी प्रतिष्ठान की दही हांडी पर इस बार 71,00,000 रुपए के नाम। पंच पखाड़ी और हीरा नंदानी में गोविंदा पथक दिखा रहे अपना दमखम। थाने में दही हांडी की परंपरा कई दशकों पुरानी। 2008 में थाने के वरकत नगर में देश का पहला 9-स्तरीय मानव पिरामिड भी बना था। शिरडी साई मंदिर में जन्माष्टमी का भव्य उत्सव मनाया गया। चांदी की पालने में श्री कृष्ण की प्रतिमा रखी गई। श्री कृष्ण जन्म के बाद मंदिर में जोरदार संकीर्तन और हरिकथा हुई। हजारों श्रद्धालुओं ने कान्हा के जयकारों से पूरा मंदिर गूंजा। साई मंदिर में फूलों से सजी दही हांडी फोड़ी गई। श्रद्धालुओं ने कृष्ण के जयकारों के बीच जमकर उत्सव का लुत्फ उठाया। साईं बाबा की समाधि पर भी श्री कृष्ण की प्रतिमा रखी गई। दोपहर की आरती के दौरान भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। जन्माष्टमी पर साईं मंदिर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजा। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और उत्सव का माहौल नजर आया। गोकुल में नंदोत्सव की धूम। नंद के घर आनंद भयो के जयकारों से गलियां गूंज उठी। नंद भवन से बालकृष्ण और बलराम की शोभा यात्रा निकाली गई। गलियों में भक्तों ने फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। नंदोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोकुल पहुंचे। बैंड बाजों और भजनों के बीच पूरा गोकुल कृष्णमय नजर आया। बालकृष्ण का डोला गोकुल की गलियों से होता हुआ नंद चौक पहुंचा। यहां भजन कीर्तन और जयकारों के बीच उत्सव का रंग और चढ़ गया। गोकुल में नंदोत्सव के दौरान श्रद्धालु पे छींचे और उपहार लुटाए गए। मिठाई और खिलौने पाने के लिए भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आया। जन्माष्टमी पर सोमनाथ महादेव का हुआ लौकिक कृष्ण दर्शन। श्रृंगार शिवलिंग पर भगवान कृष्ण की सौम्य मुद्रा की खास प्रतिकृति सजाई गई। जन्माष्टमी पर सोमनाथ महादेव को करीब 2 करोड़ रुपए के स्वर्ण मुकुट से सजाया गया। लखी परिवार ने मुकुट हाल ही में भगवान के चरणों में अर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण की बाल लीलाओं की सुंदर झांकियां सजाई गई। वासुदेव की यमुना यात्रा से लेकर झूले में बैठे बालकृष्ण तक के दर्शन हुए। सोमनाथ में गायों के बीच बांसुरी बजाते गोपाल कृष्ण की झांकी ने भक्तों का मन मोह लिया। जन्माष्टमी पर मंदिर परिसर भक्ति और आध्यात्मिक रंग में डूबा हुआ नजर आया। सोमनाथ में जन्माष्टमी पर शिव और कृष्ण की भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भक्तों ने हरिहर एकत्र के दर्शन किए और खुद को धन्य महसूस किया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी का भव्य महोत्सव ठाकुर जी को पीताम्बरी में सजाया गया। कान्हा के जन्मोत्सव के बाद सुबह भव्य मंगला आरती का आयोजन हुआ। भारी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। बद्रीनाथ मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर की गई विशेष साज सज्जा। कृष्ण डोल उत्सव का हुआ आयोजन। आज दिन भर भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना, दर्शनों के लिए भक्तों की लगी लंबी कतारें। मेरठ में पुलिस लाइन्स में जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भजनों पर झूमे पुलिसकर्मी। बच्चों ने पेश किए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। गणेश आगमन में अब सिर्फ 9 दिन बाकी। मूर्तिकार दिन रात बप्पा की मूर्तियों को दे रहे हैं अंतिम रूप। मठ पिंपल गांव में मूर्तियों पर रंग और फिनिशिंग का काम लगातार तेज। अब अगली पीढ़ी संभाल रही है 3 पीढ़ियों से चली आ रही परिवार का ये कारोबार। इस बार राधा कृष्ण भोलेनाथ और मयूरासन जैसे नए डिजाइन तैयार किए गए। इसमें भोलेनाथ पैटर्न की मूर्तियों और भक्तों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है नए डिमांड की मूर्तियां। जालना में छोटे से लेकर 13.5 फीट तक की गणेश मूर्तियां बनाई गई हैं। मूर्तियों की कीमत करीब 4,000 से शुरू होकर 50,000 रुपए तक की है। दाम बढ़ने के बावजूद बप्पा की मूर्तियों को जबरदस्त मिल रहा है रिस्पांस। अब तक करीब 95% मूर्तियां बुक हो चुकी हैं। आगर मालवा में गणेश चतुर्थी की तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यकर गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। गणेश प्रतिमाओं की सफाई और टचिंग के बाद उन्हें रंग किया जा रहा है। मुकुटहार और कपड़ों को भी आकर्षक रंगों से सजाया जा रहा है। इस बार शेषनाग गणेश और डमरू गणेश की मांग सबसे ज्यादा है। भगवान शिव के साथ गणेश की प्रतिमाएं भी लोगों को काफी पसंद आ रही। आगरवालवा में 2 इंच से लेकर 10-12 फीट तक की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इनके सप्लाई आसपास के जिलों के साथ राजस्थान तक हो रहे हैं। गणेश प्रतिमाओं में दिख रही अलग अलग झलक, कहीं गणेश जी रथ पे सवार है तो कहीं शेर के साथ नजर आ रहे हैं। गया में पितृपक्ष मेले की तैयारियां हो गई है शुरू। 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक लाखों श्रद्धालु यहां पर पिंड दान करने पहुंचेंगे। गया की दीवारों पर अब धर्म और इतिहास की तस्वीरें नजर आएंगी। प्रशासन पेंट द सिटी अभियान से शहर को खास अंदाज में सजा रहा है। देवघाट और विष्णुपद मंदिर इलाके में मिथिला पेंटिंग बनाई जा रही है। इन तस्वीरों में पिंड दान से जुड़ी धार्मिक कहानियां भी दिखाई जा रही हैं। देवघाट की दीवार पर माता सीता के पिंडदान की तस्वीर बनाई गई है। पेंटिंग में अक्षयवट को साक्षी बनाकर सीता की कथा दिखाई गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल की काफी तारीफ की है। इन खूबसूरत तस्वीरों से श्रद्धालु को गया में खास धार्मिक माहौल मिलेगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से उन्होंने सम्मानित किया। पुरुष और 22 महिला शिक्षकों को मिला सम्मान। 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए उत्कृष्ट शिक्षक। शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय सम्मान मिला। विज्ञान भवन में जुटे देश भर के शिक्षक। शिक्षकों की मेहनत और समर्पण को सम्मान। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को किया संबोधित। पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की 138वीं जयंती। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी ने जारी किया बधाई संदेश। पढ़ाई को आधुनिक स्वरूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाले समस्त गुरुजनों और शिक्षकों को मुबारकबाद दी। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। प्रदेश के बेसिक और सेकेंडरी शिक्षा विभागों के 81 बेहतरीन शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। पटरा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। गोला रोड स्थित ज्ञान निकेतन स्कूल में शिक्षक दिवस कार्यक्रम में लिया उन्होंने हिस्सा। इस मौके पर उन्होंने स्कूल परिसर में स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा का किया अनावरण। सभी शिक्षकों को दी बधाई। मुरादाबाद में टीचर्स डे का अनोखा सेलिब्रेशन। स्टूडेंट्स ने बनाई महान दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की 40 फीट की शानदार रंगोली। देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी। गया में आयोजित पासिंग आउट परेड में देखा जवानों का जोश। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल की दूसरी पासिंग आउट परेड। 35 महिला अफसर भी शामिल। पासिंग आउट परेड में वियतनाम पीपुल्स आर्मी के अधिकारी हुए शामिल। समारोह के दौरान सिंफनी बैंड ने देशभक्ति की धुनों और सैन्य मार्च की शानदार प्रस्तुति दी। ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऑफिसर कैडेट्स को दिए गए मेडल। परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर ने किया उन्हें सम्मानित। अफसर कैडेट्स ने पेश किया शक्ति, साहस और युद्ध कौशल का शानदार नजारा। दर्शकों में दिखा रोमांच। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंजाकोट सरकारी उच्च विद्यालय जला रहा शिक्षा की ज्योत। सीमावर्ती छात्रों के लिए आशा की नई किरण। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी छात्र ले रहे हिस्सा। खास बात यह है कि यहां बच्चियों की तादाद है ज्यादा। चंडीगढ़ में गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने एंटी ड्रग कैंपेन में लिया हिस्सा। युवाओं से की नशा मुक्त होने की अपील। सुखना लेक के पास आयोजित किया गया ये वॉकाथॉन। हजारों युवाओं ने निकाली यात्रा। राज्यपाल ने कहा गुरुओं की भूमि के लोग हर बुराई से लड़ना जानते हैं। मौके पे कॉमनवेल्थ गोल्ड विजेता खिलाड़ी यश किरत भी थी मौजूद। फिल्म कजिन ईशा का मोशन पोस्टर हुआ आउट। म्यूजिकल रोमांटिक लव स्टोरी में पहली बार दर्शकों के सामने होगी विक्रांत रॉय और सुरभि तालोदिया की जोड़ी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म द विवियान का पहला गाना हुआ रिलीज। रोमांटिक ट्रैक को तनिष बागची ने कंपोज किया है। बॉलीवुड में होगी नई जोड़ी की एंट्री। निर्देशक इंद्रजीत लंकेश की फिल्म में जय हिंद जय सिंध में गौरव ढींगरा और अकाशा वत्स फिल्म में लीड पेयर के तौर पर नजर आएंगे। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर के रिलीज डेट का ऐलान हो गया। 21 जनवरी 2027 में आएगी रणबीर आलिया और विक्की कौशल की फिल्म। जन्माष्टमी पर फिल्म हनुमान अंश की बंपर कमाई। 29वें दिन कमाए 10 करोड़ रुपए करीब 98 करोड़ रुपए पहुंचा फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन। चीन मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची सात्विक चिराग की जोड़ी। डेनमार्क की जोड़ी को हराया। लगातार चौथी बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है ये भारतीय जोड़ी। एशियाई खेलों से पहले ये जीत काफी अहम। भारत जापान रिश्तों के 75 साल पूरे होने पर सुजुकी कप, 22 सितंबर को दोनों टीमों में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी जैसे नाम भी शामिल हैं। दलीप ट्रॉफी फाइनल में 100वां फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे क्रिकेटर मोहम्मद शमी, मुकाबले से पहले बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन करेगा उन्हें सम्मानित। हांगकांग में दुकान का दुकानदार अब इंसान नहीं रोबोट है, रोबोट ग्राहकों से बात करता है, उन्हें सामान देता है, डांस भी करता है। हांगकांग में पहली बार रोबोट ने संभाली किराने की दुकान, 24 घंटे खुलने वाली इस दुकान में स्नैक्स और ड्रिंक्स मिलते हैं। दुकान में पहुंचा 5 फुट 8 इंच का ह्यूमनॉइड रोबोट, ये मैंडरिन, कैंटोनीज और अंग्रेजी में बात कर सकता है। रोबोट दुकानदार को देखने के लिए लोगों में उमड़ रही है भीड़, हालांकि ग्राहक बोले रोबोट को जवाब देने में अभी थोड़ा वक्त लगता है। चीन के बाद अब हांगकांग में भी रोबोट की एंट्री हो गई है, कंपनी करीब 50 शहरों में 200 ऐसे दुकानें पहले ही चला रही है। हुबेई में बने यांगजी ब्रिज का 5 रातों तक चला लोड टेस्ट सफल रहा, पुल के चलते ट्रैफिक के लिए खुलने की उम्मीद है। 40-40 टन वजन वाले 180 ट्रकों को पुल के दोनों डेक पर खड़ा कर दिया गया, यानी पुल पर कुल 7,200 टन का दबाव डाला गया। टेस्ट में पुल पर डाला गया कुल वजन 18 पूरी तरह भरे बोइंग 747 विमानों के बराबर था। इस टेस्ट में पुल की मजबूती जांची गई। यांगजी ब्रिज का मुख्य स्पैन 1,860 मीटर है, जो नदी के ऊपर बिना बीच के सहारे बना है। इसे दुनिया का पहला 4 मेन केबल सस्पेंशन ब्रिज बताया गया है। इस पुल में 2 अलग अलग डेक बनाए गए हैं, ऊपर एक्सप्रेसवे चलेगा जबकि नीचे शहरी एक्सप्रेसवे से शहर का ट्रैफिक गुजरेगा। चीन में बनाई गई बुजुर्गों को गिरने से होने वाली चोटों से बचाने के लिए एंटी फॉल एयर बैग जैकेट बीजिंग में केयर एंड रिहैबिलिटेशन एक्सपो चाइना 2026 में प्रदर्शित। इस जैकेट में शरीर की गतिविधियों और मुद्राओं को ट्रैक करने के लिए लगे हैं 2 सेंसर, जो 0.15 सेकंड में एयर बैग खोल देता है, जिससे गिरने पर कुशन जैसा बचाव मिलता है। ब्राजील में ओजी ऑसबोर्न प्रिंस ऑफ डार्कनेस भूलभुलैया लॉन्च यूनिवर्सल स्टूडियोज के हैलोवीन हॉरर नाइट्स अनुभव का हिस्सा है ये भूलभुलैया। भूलभुलैया के अलावा यहां पे टेरर ट्रॉम राइड और स्टंट शो द पर्स डेंजरस वाटर्स भी आकर्षण का केंद्र है, 1 नवंबर तक चले गई भूलभुलैया। वेनेजुएला में लोगों ने पिज्जा बनाने के हुनर का किया प्रदर्शन, जीतने वाले को वर्ल्ड पिज्जा चैंपियनशिप 2027 में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाएगा। इतनी चोंगकिंग के एनिमल पार्क में 4 शेर के बच्चे और 1 बाघ का बच्चा स्कूल पहुंचे, सबने घास पर खेला, दौड़े और फिर दूध मांस की दावत उड़ाई। स्कूल के पहले दिन शावकों ने खूब मस्ती की, पार्क का मकसद इन्हें स्वस्थ रखना और इनके अंदर के जंगली गुणों को मजबूत करना है। लॉन पर शेर और बाघ के शावक एक दूसरे के पीछे भागते हुए नजर आए, कभी दौड़े कभी लौटे और धूप में आराम भी किया। खेल खत्म होते ही बच्चों के लिए ताजा दूध और मांस उन्हें परोसा गया, भूखे नन्हे शेर बाघों ने तुरंत खाना खाना शुरू कर दिया। पार्क में बच्चों को खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इससे वो बड़े होकर अपनी प्राकृतिक शिकार वाली आदतें नहीं भूलेंगे। अमेरिका की ऑस्टिन में टेस्ला ने बिना स्टेयरिंग और पेडल वाली साइबर कैब चलाना शुरू किया है, अभी इसे शहर के कुछ इलाकों में ही चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसी ने टेस्ला की नई साइबर कैब पर नजर रखनी शुरू कर दी है, एजेंसी देख रही है कि कार सुरक्षा नियमों पर खरी उतरती है या नहीं। एलन मस्क साइबर कैब को टेस्ला के भविष्य की बड़ी गाड़ी मानते हैं, उनका लक्ष्य ऐसी कारों को बड़ा नेटवर्क बनाना है जो बिना ड्राइवर के चल सके। टेस्ला ने जून साल 2025 में ऑस्टिन से रोबो टैक्सी सेवा की शुरुआत की थी और अब ये सेवा टेक्सास और फ्लोरिडा के कुछ और शहरों तक पहुंच गई है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों को दुनिया भर में कड़ी टक्कर मिल रही है, खासकर चीन की कंपनियों से, ऐसे में कंपनी को बिना ड्राइवर वाली कारों से भविष्य की बड़ी उम्मीद है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
9: तो चलिए आगे बढ़ते बात एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। हनुमान अंश की बात करें तो हनुमान अंश साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म बन चुकी है। देखिए मात्र 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने मुनाफे के मामले में धुरंधर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। आमतौर पर फिल्म के रिलीज के बढ़ते दिनों के साथ कलेक्शन घट जाता है, इस तरीके का ट्रेंड देखा जाता है, लेकिन हनुमान अंश के साथ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, फिल्म हर दिन के साथ अलग रिकॉर्ड ही बनाती जा रही है।
11: जैसे जैसे हनुमान अंश सिनेमा घरों में एक महीना पूरा करने के करीब पहुंच रही है, फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 29वें दिन न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कमाई के मामले में भी नीम करोली बाबा की फिल्म पर कृपा बरसी। ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन अब फिल्म की रफ्तार से भारत के ही नहीं दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर असर दिखाई देने लगा है। मिर्जापुर द मूवी की दस्तक 29वें दिन हनुमान अंश को तस से मस नहीं कर पाई है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। जिस फिल्म के बारे में कुछ समय पहले तक कोई बात नहीं हो रही थी, अब वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और अपने कलेक्शन से हर दिन चौंका रही है। मामले से बजट में बनी हनुमान अंश 80 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही और इसने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 1.80 करोड़ और दूसरे हफ्ते में सिर्फ 40 लाख रुपए कमाए थे। हालांकि तीसरे हफ्ते में फिल्म की किस्मत बदली और पॉजिटिव वर्ड माउथ के चलते दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और धीरे धीरे शो हाउसफुल होने लगे और फिल्म की कमाई में भी जबरदस्त उछाल आया और इसने तीसरे हफ्ते में 10.40 करोड़ कमाए। बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार चौथे हफ्ते में और बढ़ी और इसने 61 करोड़ कमाए। फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन अब 97.77 करोड़ है, जबकि भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 82.88 करोड़ रुपए हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि 5 सितंबर और 6 सितंबर को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला जाएगा, क्योंकि अब फिल्म के ज्यादा शोज भी सिनेमाघरों में दिखाए जा रहे हैं। हनुमान अंश नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बेस कहानी है, जिसमें महान संत के बचपन से लेकर बाबा बनने तक के सफर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निर्देशन ने फिल्म में उतारा है। फिल्म को जहां विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है, तो वहीं शोभिनो सत्या मूवी में नीम करोली बाबा बने हैं। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा फायदा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: न स्टेयरिंग व्हील, न पेडल और न ड्राइवर, फिर भी सड़क पर दौड़ती कार। दरअसल टेक्सास के ऑस्टिन में टेस्ला ने अपने उस साइबर कैब की राइड शुरू कर दी है, जिसे कंपनी ड्राइवरलेस भविष्य की सबसे बड़ी छलांग बता रही है। दो लोगों के बैठने की जगह वाली ये कार सिर्फ देखने में ही अनोखी नहीं, बल्कि इसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत भी नहीं है।
12: कार नहीं, टेस्ला के मुताबिक ये ड्राइवरलेस भविष्य की झलक है। गोल्डन रंग की ये दो सीटर साइबर कैब ऑस्टिन की सड़कों पर उतर चुकी है। और सबसे खास बात, इस कार में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, पैडल नहीं है और ड्राइवर भी नहीं है। दरवाजा खुलता है, यात्री बैठता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर कार बिना किसी ड्राइवर के आगे बढ़ जाती है। कैमरा कार के अंदर जाता है, जहां सामने ड्राइवर की जगह नहीं बल्कि सिर्फ दो यात्रियों के लिए जगह है। यानी टेस्ला की सोच साफ है, कार को चलाने के लिए इंसान नहीं टेक्नोलॉजी चाहिए। और इस तकनीक का इस्तेमाल अलग अलग यात्रियों ने किया। दिव्यांग यात्री भी साइबर कैब में बैठा। यानी टेस्ला जिस भविष्य की तस्वीर दिखा रही है, उसमें सफर सिर्फ ड्राइविंग से आजादी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी मोबिलिटी का नया रास्ता हो सकता है जो खुद गाड़ी नहीं चला सकते। ऑस्टिन की सड़कों पर जैसे जैसे साइबर कैब दौड़ी, लोगों की निगाहें भी इस पर टिक गईं। कोई सड़क किनारे खड़ा होकर इसे देख रहा है तो कोई इसकी राइड का इंतजार कर रहा है। भविष्य की कार अब सिर्फ शोकेस में नहीं, सड़क पर है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब टेस्ला ने ऑस्टिन में ड्राइवरलेस राइड का प्रयोग किया है। कंपनी पहले से ऑटोनॉमस मॉडल वाई के साथ सीमित रोबो टैक्सी सर्विस चला रही है। कुछ गाड़ियों में इंसानी सेफ्टी मॉनिटर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन साइबर कैब टेस्ला की उससे भी बड़ी महत्वाकांक्षा है। कंपनी चाहती है कि आने वाले वक्त में यही बिना स्टीयरिंग और पेडल वाली साइबर कैब एक बड़े ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी नेटवर्क की पहचान बने। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी चमकदार है, सवाल भी उतने ही बड़े हैं। अमेरिका की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन साइबर कैब को लेकर जांच कर रही है, क्योंकि सड़क पर बिना ड्राइवर के चलने वाली कार सिर्फ इनोवेशन नहीं, सेफ्टी की भी सबसे बड़ी परीक्षा है। टेस्ला के लिए ये सिर्फ एक नई कार की लॉन्चिंग नहीं, ये उसके भविष्य की परीक्षा है, क्योंकि कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस चाइना समेत दुनिया भर की कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। और ऐसे में ड्राइवरलेस कारों का सपना टेस्ला की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। कल तक कार चलाने के लिए ड्राइवर जरूरी था, आज टेस्ला कह रही है कल कार को ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी। ऑस्टिन की सड़क पर दौड़ती ये साइबर कैब दरअसल सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक ऐसे भविष्य का ट्रायल है जहां इंसान कार नहीं चलाएगा, कार इंसान को चलाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये भविष्य सुरक्षित भी है? क्योंकि ऑस्टिन की सड़कें अब इस सवाल का जवाब देने वाली टेस्ट लैब बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम, मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव, श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी की पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात, केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास शो में हम पंडित जी से जानेंगे कि शनि के ऐसे कौन से मंत्र हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं और इन मंत्रों को जाप करने का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं गुड लक मंत्र के बारे में।

0: दर्शन या पूजन न करें जिस मूर्ति में उनकी आंखें हों, अन्यथा शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपको इसकी वजह से समस्या हो सकती है।
1: और चलिए अब सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे 6 सितंबर 2026 यानी रविवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 6 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:29 तक, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 7:52 तक, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि शनि को प्रसन्न करने के उपाय क्या कुछ होते हैं।
0: जी, हम आज बात कर रहे हैं शनि देव के चमत्कारी मंत्रों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति शनि को कैसे प्रसन्न करेगा। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने की 3 विधियां हैं, अपने आचरण से यानी व्यवहार से, रत्न धारण करने से और मंत्र का जप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आचरण में आहार शुद्धि, व्यवहार, विचार और दान आते हैं। रत्न में जलीय रत्न या वायु तत्व के रत्न धारण करने से शनि की कृपा मिलती है। शनिदेव के लिए मंत्र जप करने का तरीका सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जिससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए शनिदेव के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग शनि की समस्याएं जीवन में आती हैं और समस्या के हिसाब से शनिदेव के अलग अलग मंत्र का प्रयोग होता है। अगर आपका आचरण शुद्ध हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और इसके साथ आप मंत्रों का जप करें तो जीवन में अद्भुत परिणाम मिलेंगे। शनि संबंधी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले पंडित जी से जान लेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, करियर की समस्या दूर होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि शनि के लिए मंत्र जाप करना सबसे ज्यादा अच्छा कब होता है।
0: देखिए, हर स्थिति में शनि देव के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। तो आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब मंत्र जप करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है? अगर कुंडली में शनि के कारण दुर्घटनाओं के योग हों या प्राण संकट के योग हों तो शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। जब शनि के कारण कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा हो, कदम कदम पर संघर्ष बढ़ रहा हो, तब शनि देव के मंत्र का जप करना चाहिए। आपके तमाम प्रयास करने के बावजूद आप को आपका अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा, जो आपका है वो प्राप्त नहीं हो रहा, तो शनि देव का मंत्र जपना चाहिए। अगर शनि की 7.5 चल रही है या 2.5 चल रही है तब भी शनि का मंत्र पढ़ना चाहिए, ताकि 2.5 और 7.5 का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े।
1: और चलिए अब जान लेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी,

0: कविता वाधवानी जी ने हमें लिखा है, रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 8 नवंबर 2002, 10:48 रात को, रायपुर छत्तीसगढ़। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र के करियर की स्थिति कैसी रहेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा। और कुछ समय पहले इन्होंने एक उपाय सुना था, एक कटोरी में लौंग रखी हुई है, तो अब उसका क्या करना चाहिए। कविता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और धनु राशि की, महादशा सूर्य की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए, सामान्य करियर इनका अभी भी शुरू हो सकता है नवंबर दिसंबर के महीने में, लेकिन बहुत अच्छा करियर, मनचाही सफलता मई 2027 के बाद मिलेगी। 2027 के अंत तक इनको बड़ी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। एक इनको मूंगा बनवा के पहना दीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करवाएं और इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बेहतर होगा। जो लौंग कटोरी में रखी थी, एक महीना बीत जाने के बाद उस लौंग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और दोबारा अपनी मनोकामना के लिए अगले एक महीने तक लौंग कटोरी में डालकर रख सकती हैं।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका होगा?
0: जी, अगला प्रश्न प्रेम सागर जी ने हमें दिल्ली से लिखा है, अपनी पुत्री के लिए जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 27 दिसंबर 1995, 11:18 सवेरे, नई दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी को मातृत्व सुख कब मिलेगा, मेरी बेटी

0: सत्तर दशा बृहस्पति की चल रही है। आपकी बेटी के कंसीव होने का समय फिलहाल दिखाई दे रहा है और ये समय जून 2027 तक चलेगा। आपकी बेटी की कुंडली में थोड़ी हार्मोन्स की समस्या दिखाई दे रही है जिसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। आपकी बेटी को 2027 में संतान की प्राप्ति होगी। 2027 में इनको संतान का सुख मिल पाएगा। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करवाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ेंगी, ओम क्लीं कृष्णाय नमः।
1: तो शनि के मंत्र के बारे में हमने जान लिया, पंडित जी से ये जान लेंगे कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप की विधि क्या होती है, कैसे मंत्र जाप करना चाहिए।
0: देखिए शनि

करते हैं तो उसके लिए आप मंत्र जप करेंगे। मंत्र जप की विधि क्या है? देखिए, ऐसा कभी मत समझिए कि केवल पुरुष शनि देव का मंत्र पढ़ सकते हैं, महिलाएं नहीं पढ़ सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि देव के मंत्रों का जप कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। शनि देव के मंत्रों का जप बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके करें या पूर्व की तरफ चेहरा करके भी शनि देव के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि देव के मंत्र जपने का सही समय संध्या काल को होगा, सूर्यास्त के बाद। अगर आप शनि देव के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। या अगर तांत्रिक मंत्र है, विशेष पूजा है, विशेष अनुष्ठान है, तो आप मध्य रात्रि में भी शनि देव के मंत्र का जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन, रक्त चंदन की माला से शनि देव के मंत्र का जप किया जा सकता है। अपने घर में भूल कर भी शनि देव का चित्र मत लगाइए, बेहतर होगा मानसिक रूप से शनि देव को याद करके ही मंत्र का जप करिएगा। और शनि देव का मंत्र जपने जा रहे हैं तो मंत्र जप करने के पहले अपने गुरु या भगवान शिव को अवश्य याद कर लीजिएगा, तब मंत्र का जप करिएगा, मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होगा। कोई भी पारिवारिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति काले वस्त्र धारण करके शनि के मंत्र का जप न करे, ऐसा अत्यंत विशेष स्थितियों में किया जाता है, सामान्य स्थिति में ऐसा ना करें। बेहतर होगा कि सफेद वस्त्र या आसमानी नीला

0: वस्त्र पहनकर शनि के मंत्र का जप किया जाए।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
0: तुला राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, कारोबार में आपको लाभ होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आप पंडित जी से जान लेंगे कि शनिदेव के अलग अलग मंत्र कौन से होते हैं और उनका प्रयोग किन स्थितियों में किया जाना चाहिए।
0: अब आपको बताते हैं शनिदेव के अलग अलग मंत्र कौन से हैं और उनका प्रयोग किन स्थितियों में किया जाएगा। पहला है शनिदेव का वैदिक मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जप रोज शाम को कर सकता है 108 बार। ऐसा करने से शनि कभी भी नाराज नहीं होते और उनकी बुरी दृष्टि जीवन पर नहीं पड़ती। दूसरा है शनिदेव का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। अगर शनि की महादशा है, अंतर दशा है, नकारात्मक है, तब इस मंत्र का जप रोज शाम को 108 बार करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से शनि की दशाएं लाभकारी हो जाती हैं। अब शनि देव का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षः शिवप्रियः। सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शह शिवप्रियः मंदचारः प्रसन्नात्मा पीडाम हरतु मे शनि। मंदचारः प्रसन्नात्मा पीडाम हरतु मे शनि। साढ़े साती और ढैया के समय जब आपका कष्ट बढ़ रहा हो, जब आपकी पीड़ा बढ़ रही हो, तब इस मंत्र का जप करना विशेष कल्याणकारी होता है। शनि अगर पीड़ा दे रहे हैं तो इस मंत्र का जप रोज शाम को करें। अगर लगातार 108 दिन तक करें आपको बहुत लाभ होगा। अगर शनि की मारक दशा हो तो शनि देव के लिए कम से कम 51,000 मंत्र का जप करवाइए और वो मंत्र वैदिक मंत्र होगा, ओम शन्नो देविर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तु नः। 51,000 इस मंत्र का जप अगर आप करवाएं, शनि की मारक स्थिति से आप बच जाएंगे।
1: और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में।
0: मकर राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की समस्या में आपके सुधार होगा। धन आसानी से मिल पाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ

0: बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, वाद विवाद हो सकते हैं, परिवार की समस्या से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब बढ़ते हैं आपके तीसरे सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पे आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आप तीसरा प्रश्न आज किसका लेने वाले हैं?
0: जी, अगला प्रश्न राहुल नामदेव ने हमें लिखा है, सिवनी मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 9 अप्रैल 1991 का जन्म है, 2 बजे मध्य रात्रि में सिवनी मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कैसा होगा, मेरी इच्छा से होगा या नहीं होगा, विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राहुल, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और कन्या राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। साल 2027 के आरंभ में आपके विवाह के योग बनते हैं और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी बालिका के साथ। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जब भी विवाह का निर्णय लिया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। अगर आप ये उपाय करें तो आपकी कामना पूरी होगी।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर। पंडित जी, आज चौथा प्रश्न किसका रहेगा?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न आलोक राज ने हमें लिखा है, बिहार से लिखते हैं। 23 अगस्त 1991 का जन्म है, 5:05 शाम को छपरा बिहार। ये कह रहे हैं कि मैंने BCA किया है, अब आगे मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मैं कोडिंग नहीं कर पा रहा हूं, कोडिंग मेरे लिए कठिन है, तो मैं क्या करूं। आलोक, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और मकर राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, कोडिंग इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं इस वजह से दिक्कत आ रही है। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाएं या सरल कोडिंग करना सीख लें, तो इन क्षेत्रों में अच्छा करियर बना सकते हैं। और आपके करियर का बहुत अच्छा समय अगस्त 2027 के बाद शुरू हो रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन लोगों की ओर जिनका जन्मदिन 6 सितंबर को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे। आप पंडित जी से आपके लिए जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 6 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में इस साल में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, हालांकि धन की स्थिति ठीक रहेगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है? देखिए, माता पिता के संस्कार संतान के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। माता पिता के कर्म भी संतान को शुभ या अशुभ रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे माता पिता का धन और उनकी प्रॉपर्टी मिलती है, वैसे ही उनके कर्म भी मिलते हैं। इसीलिए जो माता पिता अपनी संतान का कल्याण चाहते हैं, उन्हें अपने कर्म ठीक रखने चाहिए।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से ये जान लेने का कि 6 सितंबर 2026 का यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 6 सितंबर 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए, प्रार्थना करिए, घर में सुख शांति आएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में और पंडित जी से अब जानने का वक्त हो चला है आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस धातु का, किस मेटल का प्रयोग करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है कर्क। आपको चांदी अवश्य धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से आप मानसिक और भावनात्मक रूप से ठीक रहेंगे।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं पंडित जी से आज के महा उपाय के बारे में।
0: जी, बहुत बार ऐसा होता है कि घर से चीजें गायब होने लगती हैं, कभी कपड़ा गायब हो गया, कभी पैसा गायब हो गया, कभी बर्तन गायब हो गए और समझ ही नहीं आता कि चीजें कैसे गायब हो रही हैं। क्या करना चाहिए? घर के पूजा स्थान पर एक छोटे से काले कपड़े में 1 रुपए 2 रुपए के 2-3 सिक्के डालकर बांध करके पूजा स्थान पर इसको रख दीजिए और 1 महीने बाद सिक्कों को दान कर दीजिएगा, दूसरे सिक्के बांधकर रख दीजिएगा। पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जला के प्रार्थना करिए और अगर दोनों समय पूजा नहीं कर पाते तो कम से कम दोनों समय पूजा स्थान पर बैठकर 2-2 मिनट ही सही, 5-5 मिनट ही सही प्रार्थना या उपासना करें तो घर की तरंगें शुभ होंगी और घर से चीजों का गायब होना रुक जाएगा।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: तो चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। दिल्ली NCR में जन्माष्टमी के दिन से जिस बारिश ने भिगोने को ठाना था वो आज भी जारी है। देखिए, बारिश जहां राहत का पैगाम लेकर आई, वहीं प्रदूषण में भी कमी दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली NCR में बारिश का सिलसिला कल से थम जाएगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी।
3: सुबह जब दिल्ली NCR के निवासियों की नींद खुली तो बारिश ने उनका स्वागत किया। जन्माष्टमी के दिन से शुरू हुई बारिश का सिलसिला फिलहाल बदस्तूर जारी रहा। मूसलाधार बारिश ने एक तरफ मौसम को सुहावना बना दिया तो दूसरी ओर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रिय और स्थानीय दबाव के कारण ये हालात बने हैं। हालांकि कल से दिल्ली NCR के इलाके के मौसम में सुधार देखा जाएगा और बारिश में कमी दर्ज की जाएगी।
4: कल इसमें कमी पाई जाएगी, लेकिन कल भी वेरी लाइट रेनफॉल NCR दिल्ली में रहेगा, उसके बाद ऑलमोस्ट क्लियर स्काई होने का अनुमान है।
3: हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी एक्टिव हो रहा है और लो प्रेशर बेल्ट का साथ मिलने की वजह से, जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है।
4: डिस्टरबेंस भी है, उसका भी ये लो प्रेशर से इंट्रैक्शन हो रहा है, इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में हमारा अनुमान है कि सबसे पहले ईस्ट राजस्थान और वेस्ट MP के लिए वेरी हैवी रेनफॉल, मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल आने वाले 24 घंटों में हो सकती है। और कल भी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल जहाँ पे होने का अनुमान है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी, स्पेसिफिकली ईस्ट उत्तर प्रदेश में जैसे सिस्टम रिकर्व करेगा, आने वाले 3 से 4 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी 1-2 दिन हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है।
3: बाकी हिस्सों की बात की जाए, दक्षिण भारत में मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश तेज हो सकती है, जबकि बिहार में भी बारिश की संभावना बन रही है।
4: इंडिया में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी मेन 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट वीक होती रहेगी, और इसके अलावा बिहार में भी आने वाले कुछ दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है।
3: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 10 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 सितंबर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश का दौर बना रह सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। हनुमान अंश की बात करें तो हनुमान अंश साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म बन चुकी है। देखिए, मात्र 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने मुनाफे के मामले में धुरंधर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। आमतौर पर फिल्म के रिलीज के बढ़ते दिनों के साथ कलेक्शन घट जाता है, इस तरीके का ट्रेंड देखा जाता है, लेकिन हनुमान अंश के साथ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिल्म हर दिन के साथ अलग रिकॉर्ड ही बनाती जा रही है।
3: जैसे जैसे हनुमान अंश सिनेमा घरों में एक महीना पूरा करने के करीब पहुंच रही है, फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 29वें दिन न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की कमाई के मामले में भी नीम करोली बाबा की फिल्म पर कृपा बरसी। ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन अब फिल्म की रफ्तार से भारत के ही नहीं दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर असर दिखाई देने लगा है। मिर्जापुर द मूवी की दस्तक 29वें दिन हनुमान अंश को टस से मस नहीं कर पाई है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। जिस फिल्म के बारे में कुछ समय पहले तक कोई बात नहीं हो रही थी, अब वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और अपने कलेक्शन से हर दिन चौंका रही है। मामले से बजट में बनी हनुमान अंश 80 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही और इसने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 1.80 करोड़ और दूसरे हफ्ते में सिर्फ 40 लाख रुपए कमाए थे। हालांकि तीसरे हफ्ते में फिल्म की किस्मत बदली और पॉजिटिव वर्ड माउथ के चलते दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और धीरे धीरे शो हाउसफुल होने लगे और फिल्म की कमाई में भी जबरदस्त उछाल आया और इसने तीसरे हफ्ते में 10.40 करोड़ कमाए। बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार चौथे हफ्ते में और बढ़ी और इसने 61 करोड़ कमाए। फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन अब 97.77 करोड़ है, जबकि भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 82.88 करोड़ रुपए हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि 5 सितंबर और 6 सितंबर को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला जाएगा, क्योंकि अब फिल्म के ज्यादा शोज भी सिनेमाघरों में दिखाए जा रहे हैं। हनुमान अंश नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बेस कहानी है, जिसमें महान संत के बचपन से लेकर बाबा बनने तक के सफर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निर्देशन ने फिल्म में उतारा है। फिल्म को जहां विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है, तो वहीं शोभिन और सत्या मूवी में नीम करोली बाबा बने हैं। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा फायदा मिला है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
2: न स्टेयरिंग व्हील, न पेडल और न ड्राइवर, फिर भी सड़क पर दौड़ती कार। दरअसल टेक्सास के ऑस्टिन में टेस्ला ने अपने उस साइबर कैब की राइड शुरू कर दी है, जिसे कंपनी ड्राइवरलेस भविष्य की सबसे बड़ी छलांग बता रही है। दो लोगों के बैठने की जगह वाली ये कार सिर्फ देखने में ही अनोखी नहीं, बल्कि इसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत भी नहीं है।
5: कार नहीं, टेस्ला के मुताबिक ये ड्राइवरलेस भविष्य की झलक है। गोल्डन रंग की ये दो सीटर साइबर कैब ऑस्टिन की सड़कों पर उतर चुकी है और सबसे खास बात, इस कार में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, पैडल नहीं है और ड्राइवर भी नहीं है। दरवाजा खुलता है, यात्री बैठता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर कार बिना किसी ड्राइवर के आगे बढ़ जाती है। कैमरा कार के अंदर जाता है, जहां सामने ड्राइवर की जगह नहीं बल्कि सिर्फ दो यात्रियों के लिए जगह है। यानी टेस्ला की सोच साफ है, कार को चलाने के लिए इंसान नहीं टेक्नोलॉजी चाहिए और इस तकनीक का इस्तेमाल अलग अलग यात्रियों ने किया। दिव्यांग यात्री भी साइबर कैब में बैठा, यानी टेस्ला जिस भविष्य की तस्वीर दिखा रही है, उसमें सफर सिर्फ ड्राइविंग से आजादी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी मोबिलिटी का नया रास्ता हो सकता है जो खुद गाड़ी नहीं चला सकते। ऑस्टिन की सड़कों पर जैसे जैसे साइबर कैब दौड़ी, लोगों की निगाहें भी इस पर टिक गईं। कोई सड़क किनारे खड़ा होकर इसे देख रहा है तो कोई इसकी राइड का इंतजार कर रहा है। भविष्य की कार अब सिर्फ शोकेस में नहीं सड़क पर है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब टेस्ला ने ऑस्टिन में ड्राइवरलेस राइड का प्रयोग किया है। कंपनी पहले से ऑटोनॉमस मॉडल वाई के साथ सीमित रोबो टैक्सी सर्विस चला रही है। कुछ गाड़ियों में इंसानी सेफ्टी मॉनिटर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन साइबर कैब टेस्ला की उससे भी बड़ी महत्वाकांक्षा है। कंपनी चाहती है कि आने वाले वक्त में यही बिना स्टीयरिंग और पेडल वाली साइबर कैब एक बड़े ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी नेटवर्क की पहचान बने। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी चमकदार है, सवाल भी उतने ही बड़े हैं। अमेरिका की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन साइबर कैब को लेकर जांच कर रही है, क्योंकि सड़क पर बिना ड्राइवर के चलने वाली कार सिर्फ इनोवेशन नहीं सेफ्टी की भी सबसे बड़ी परीक्षा है। टेस्ला के लिए ये सिर्फ एक नई कार की लॉन्चिंग नहीं, ये उसके भविष्य की परीक्षा है, क्योंकि कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस चाइना समेत दुनिया भर की कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है और ऐसे में ड्राइवरलेस कारों का सपना टेस्ला की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। कल तक कार चलाने के लिए ड्राइवर जरूरी था, आज टेस्ला कह रही है कल कार को ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी। ऑस्टिन की सड़क पर दौड़ती ये साइबर कैब दरअसल सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक ऐसे भविष्य का ट्रायल है जहां इंसान कार नहीं चलाएगा, कार इंसान को चलाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये भविष्य सुरक्षित भी है? क्योंकि ऑस्टिन की सड़कें अब इस सवाल का जवाब देने वाली टेस्ट लैब बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे, नीचे सदियों पुराना शहर और सूर्योदय के साथ शुरू हुआ एक ऐसा नजारा जिसने पूरे हार्डेक का क्रालोवो का आसमान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया है। चेक रिपब्लिक के इस मिडविल शहर में एक साथ दर्जनों हॉट एयर बलून्स ने उड़ान भरी तो आसमान का मानो रंग ही बदल गया। मौका था बलून स्काई फिएस्टा का, जहां इस बार चार देशों के 51 गुब्बारे पहुंचे हैं। देखिए कैसे आग की छोटी सी लपट ने इन विशाल गुब्बारों को दी आसमान छूने की ताकत।
5: छोटी सी आग और देखते ही देखते कपड़े का ये विशाल गुब्बारा हवा से भरकर आसमान छूने के लिए तैयार। सुबह की ठंडी हवा, सूरज की पहली किरण और जमीन से ऊपर उठते रंगों का एक पूरा कारवां। नीचे खड़ी भीड़ की निगाहें आसमान पर और फिर एक एक कर बलून ने जमीन छोड़नी शुरू की। हार्डेक क्रालोवे के ऐतिहासिक शहर के ऊपर दर्जनों रंगीन गुब्बारे ऐसे तैरने लगे मानो आसमान ने खुद रंगों का त्योहार मना लिया हो। ऊपर से नजारा और भी शानदार, एक हॉट एयर बलून से दूसरे हॉट एयर बलून तक हर तरफ सिर्फ रंग ही रंग। लेकिन इस खूबसूरत उड़ान के पीछे सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि सालों पुरानी बलूनिंग की परंपरा भी है।
6: Tady na této akci jsem už podruhý, on je to taky druhý ročník a mám to rád tady v Hradci, protože naše společnost tady požádala před 20 lety balonový nebe první a já jsem rád, že přišli pokračovatelé, kteří v tom pokračují a vlastně to název balonové nebe je stejné, jako jsme měli my tenkrát před těma 20 lety. A mně se tady v Hradci líbí, Hrad je nádherné město a je tady spoustu úžasných pilotů a balonářů, s kterýma se rád potkávám.
5: कुछ देर पहले तक यही बलून जमीन पर बिखरे हुए थे। लोग इन्हें फैलाते हैं, हवा भरते हैं, बर्नर आग उगलता है और फिर ये विशाल गुब्बारे धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगते हैं। इस साल चारों देशों से आए 51 बलून इस इंटरनेशनल फिएस्टा का हिस्सा हैं। फेस्टिवल का ये 8वां साल है और इस बार इसकी वापसी हुई है पुराने नाम के साथ बलून स्काई, जिसकी इस इलाके में बलूनिंग की कहानी करीब 2 दशक पुरानी है।
7: Letu balonové fiesty 8. ročníku ve východních Čechách. Podruhé startujeme z Hradce Králové pod novým názvem Balonové nebe. Dneska startuje 51 balónů ze 4 zemí. Jedná se o mezinárodní fiestu, největší v České republice v tomto roce. A startujeme z Hradce Králové, čekáme, že poletíme čistě na východ, budeme přistávat se západem slunce někde v oblasti Třebechovic pod Hronem.
5: Hava ke sath udte ye balloon shahar se dur nikalte jate hain. Niche medieval hardek Kralovo aur upar khula aasman. Har balloon apni alag disha mein lekin manzil ek, aasman. और जब बलून जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर पहुंचता है तो सूर्योदय का नजारा कुछ ऐसा होता है जो जमीन पर खड़े होकर शायद कभी महसूस नहीं किया जा सकता। नीचे पूरा शहर, ऊपर सूरज और बीच में खामोशी में तैरता एक बलून। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, उस एहसास का नाम है जब इंसान कुछ देर के लिए जमीन की दुनिया पीछे छोड़ देता है। न कोई ट्रैफिक, न कोई शोर, बस हवा, आसमान और रंगों से भरे ये विशाल हॉट एयर बलून। हार्डेक क्रालोवे में आज आसमान सिर्फ नीला नहीं था, वो रंगीन था, रोमांचक था और पूरी तरह ऊपर और ऊपर आसमान की ओर था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चीन के पहाड़ी इलाकों में स्कूल जाना कभी बच्चों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता था। कहीं खड़ी चट्टाने, कहीं फिसलन भरे रास्ते और कई घंटे की मुश्किल चढ़ाई, लेकिन अब इसी सफर को आसान बना दिया है एक अनोखी स्काई स्कूल बस ने। यूनान प्रांत की गहरी घाटी में बने ये विशाल एलिवेटर बच्चों को मिनटों में पहाड़ की चोटी तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कैसे एक लिफ्ट ने सिर्फ बच्चों का सफर नहीं बदला बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी है।
8: ये कोई आम लिफ्ट नहीं बल्कि पहाड़ के सीने को चीरती स्काई स्कूल बस है। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में निझुए नदी की गहरी घाटी से पहाड़ की चोटी तक जाने वाली ये दो एलिवेटर बच्चों के लिए स्कूल का रास्ता आसान कर रही हैं। जहां पहले स्कूल पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, अब यही सफर कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है।
9: It turns what used to take hours into a journey of less than a minute, and it saves us so much energy so we can focus and calm down to study.
8: 268 और 288 मीटर ऊंचे ये एलिवेटर घाटी में बसे निझुए गांव को पहाड़ की चोटी पर बने ग्वांगशाई प्राइमरी स्कूल से जोड़ते हैं। 500 मीटर से ज्यादा का ऊंचा अंतर जिसे पार करने के लिए बच्चों को कभी खड़ी चट्टानों और संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, कीचड़, खाई और फिसलन, हर कदम जोखिम भरा था।
10: The old trail was really hard to walk. There was mud and moss, so it was very slippery. Now, with the elevator, we save about 3 hours on the journey.
8: लेकिन कहानी सिर्फ स्कूल तक पहुंचने की नहीं है। 2022 में घाटी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया गया। एलिवेटर और केबल कार ने गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ा तो पर्यटन से कमाई के नए मौके भी खुले। 36 साल के चेन ग्वांगपिंग शहर से लौटे और अब यहां होम स्टे चला रहे हैं।
11: Back then, we mainly grew a little ginger, and at most, we could make 5,000 to 6,000 yuan a year. Now, we can earn at least 300,000 to 400,000 yuan in gross income a year. Life has really changed dramatically.
8: इन लिफ्ट ने बच्चों के लिए रास्ता छोटा किया, तो पर्यटन ने गांव की कमाई बढ़ाने का रास्ता खोल दिया। स्थानीय प्रशासन अब खाली पड़े घरों और संसाधनों को गेस्ट हाउस में बदलने पर जोर दे रहे हैं।
12: We want to make the best possible use of idle resources and vacant houses, turning villagers' homes into goose houses and these untapped resources into a major source of income for local residents.
8: निझुआ गांव में पहाड़ वही हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच रहने वालों की जिंदगी बदल रही है। जहां कभी स्कूल तक पहुंचना एक मुश्किल चढ़ाई थी, आज वही रास्ता स्काई स्कूल बस से मिनटों का सफर है। और यही बदलता सफर बता रहा है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रास्ते नहीं बनाता, लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते भी खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम, मटके फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव, श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी की पालनी में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात, केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पूर्वी लद्दाख हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाला बॉर्डर का इलाका, घने जंगल में घात लगाए दुश्मन हो या फिर बंकर में छिपे हूँ आतंक के प्यादे, फौलादी टैंक हो या फिर स्टील से भी मजबूत बंकर, हर किसी का परखचा उड़ना तय है। भारतीय सेना के पास वो किलिंग वेपन आने वाला है जो चीन और पाकिस्तान के टैंकों के लिए काल साबित होगा। भारतीय सेना अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एक एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं और इसके तहत जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में होगा, यानी कि अमेरिकी कंपनी और साथ ही साथ भारत की डिफेंस कंपनी टाटा दोनों मिलकर जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे और बहुत ही जल्द ये भारतीय सेना को मिल जाएगी।
1: भारत में जेवलिन मिसाइल का प्रोडक्शन रणनीतिक लिहाज से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इससे मेक इन इंडिया मिशन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत तथा अमेरिका की सरकार के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू साइन किया गया है जिसके तहत अब निकट भविष्य में ही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। खास बात है कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल जो है वो एक इमेज इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से काम करती है और दुश्मन के टैंक को 4 किलोमीटर की दूरी से निस्तनाबूद कर देती है। जब इस जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगा और हमारी इन्फेंट्री की फॉरवर्ड डिप्लॉयड बटालियंस को इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी तो युद्ध के मैदान में उनकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी।
0: आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़े हथियार ही काफी नहीं होते, जरूरत के हिसाब से ऐसे हथियारों की भी जरूरत होती है जिन्हें सैनिक अपने हाथ में भी लेकर चल सके, जो तेजी से तैनात हो सके और दुश्मन के भारी भरकम टैंक को आसानी से निशाना बना सके। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए अमेरिकी हथियार की एंट्री होने जा रही है। एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल जिसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर एंड फॉरगेट।
1: दरअसल भारतीय सेना अमेरिका से शुरू से ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन को खरीदने की इच्छुक थी। 2010 में भारत ने इसकी इच्छा जताई थी लेकिन अब जाकर यानी कि 28 अगस्त को इस पर फाइनल डील साइन हुई है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
0: इमरजेंसी खरीद प्रक्रिया के तहत हुए सौदे में 60 जेवलिन मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। इनकी कुल कीमत 292 करोड़ रूपए हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एक मिसाइल खरीदने में भारत को 16 साल क्यों लग गए? वो क्या वजह थी कि जेवलिन की जगह इजराइल की स्पाइक मिसाइल को चुन लिया गया और फिर इतने साल बाद भारत जेवलिन की ओर वापस क्यों लौटा? इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जेवलिन आखिर क्या है और भारतीय सेना के लिए इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई।
1: साल था 2010 जब भारतीय सेना ने अमेरिका से जेवलिन मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई। दोनों देशों के बीच में कई दौर की बातचीत हुई लेकिन आखिर में ये बातचीत विफल रही और विफल इसलिए रही क्योंकि अमेरिका भारत को मिसाइल तो देना चाह रहा था लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो राजी नहीं था, जिस पर भारत ने हामी नहीं भरी।
0: भारत चाहता था कि अमेरिका से सिर्फ जेवलिन मिसाइल की खरीद न करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले और आगे भारत में इसका उत्पादन हो सके। अमेरिका जेवलिन की महत्वपूर्ण तकनीक, खासकर इसके IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक साझा करने को तैयार नहीं था। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक को आधुनिक गाइडेड मिसाइल की आंख और दिमाग कहा जाता है।
3: सबसे पहले आईआर सीकर थर्मल पिक्चर तैयार करता है। आईआर सीकर में डिजिटल कैमरे की तरह एक खास फोकल प्लेन एरे सेंसर लगा होता है। ये सेंसर सिर्फ गर्मी के किसी एक बिंदु को नहीं पकड़ता, बल्कि सामने मौजूद पूरे दृश्य की एक साथ थर्मल इमेज बनाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। मिसाइल के अंदर मौजूद हाई स्पीड प्रोसेसर इस इंफ्रारेड वीडियो को प्रोसेस करते हैं। एल्गोरिदम की मदद से मिसाइल ये पहचान लेती है कि सामने दिख रही गर्मी किसी टैंक की है या फिर किसी गाड़ी की या फिर सिर्फ धूप से गर्म हुई किसी चट्टान की। अगला स्टेप टारगेट के कमजोर हिस्से की पहचान करना होता है। टारगेट लॉक होने के बाद आईआर सीकर तकनीक दुश्मन के वाहन या फिर विमान के सबसे कमजोर हिस्से जैसे कि टैंक के ऊपर का हिस्सा या लड़ाकू विमान का कॉकपिट को खुद खोजती है और मिसाइल को सीधे उसी पॉइंट पर जाकर टकराने का निर्देश देती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक से कैसे बेहतर है ये भी जानना जरूरी है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल सिर्फ गर्मी के सबसे तेज बिंदु की तरफ भागती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल टारगेट के पूरे आकार को पहचान कर उसको लॉक करती है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल दुश्मन की ओर से फेंके गए फ्लेयर से आसानी से भटक जाती थी, लेकिन आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस मिसाइल असली टैंक विमान और नकली फ्लेयर्स के बीच का अंतर समझ सकती है और इसीलिए इसे चकमा देना लगभग असंभव है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल टैंक विमान के एग्जॉस्ट यानी कि धुआं निकालने वाली जगह पर ही हमला कर पाती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस मिसाइल ऑल एस्पेक्ट क्षमता से लैस है, यानी दुश्मन किसी भी दिशा में खड़ा हो ये उसकी बॉडी हीट को पकड़ लेती है।
2: आमतौर पर ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वह इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं, यानी दुश्मन के टैंक के इंजन से जो गर्माहट निकलती है लॉन्च के बाद जो मिसाइल का सीकर हेड है वो इंजन दुश्मन के इंजन की गर्माहट पर लॉक ऑन करता है। लेकिन आजकल इसके काउंटर मेजर्स बन चुके हैं जिसमें दुश्मन आर्टिफिशियल फ्लेयर्स फायर करता है या आर्टिफिशियल हाई टेम्परेचर ग्रेनेड्स फायर करता है जिससे कि छोटे छोटे पटाखे जैसे आग जलने लग जाते हैं। तो जो एंटी टैंक मिसाइल हीट सीकिंग हमने लॉन्च किया है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और इन नकली हीट सोर्सेस की तरफ चल पड़ता है।
3: जेवलिन की खरीद प्रक्रिया के लिए कड़ी अमेरिकी शर्तें और इजराइल स्पाइक से ज्यादा लागत की वजह से शुरुआती जेवलिन खरीद प्रक्रिया अटक गई।
0: दरअसल अमेरिका के साथ हथियार खरीदने पर अमेरिका ने यूज एंड मॉनिटरिंग की शर्त रखी थी, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये था कि अगर भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है तो अमेरिकी अधिकारी कभी भी आकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं था और ये एक बड़ी वजह रही कि दोनों के बीच ये डील तब साइन नहीं हो पाई।
3: जब जेवलिन मिसाइल की खरीद को लेकर बात चल रही थी तब जेवलिन की प्रति यूनिट लागत इजराइल की स्पाइक मिसाइल की तुलना में बहुत ज्यादा थी। भारतीय सेना को अपनी 380 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियनों के लिए हजारों की संख्या में एंटी टैंक मिसाइलों की जरूरत थी, इसीलिए आर्थिक रूप से भी स्पाइक एक बेहतर विकल्प साबित हो रही थी।
2: भारत की जो फौज है वह काफ़ी समय से एक आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल की मांग कर रही थी। भारत में ही हम DRDO की मदद से नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम काफ़ी हद तक डेवलप हो भी चुका है। इसके प्रोटोटाइप को ऑलरेडी चांदीपुर टेस्ट रेंज में और पोकरण रेंज में ट्रायल कर लिया गया है, लेकिन इसकी फाइनल प्रोडक्शन लाइन असेंबली लाइन बनाने में अभी 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए इतने सालों से भारत ने और कोई दूसरा इंपोर्टेड यानी विदेशी एंटी टैंक मिसाइल नहीं खरीदा, लेकिन अब जब नाग को इंडक्ट होने में 2-3 साल और लगेंगे तो एज एन एंट्रिम मेजर टेम्परेरी व्यवस्था के तहत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत में ही प्रोडक्शन किया जाएगा।
3: भारत के पास 8 तरह की एंटी गाइडेड मिसाइल हैं, जिसमें एक नया नाम जेवलिन जुड़ने वाला है, जो इंडियन इन्फेंट्री की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा।
1: वक्त बदला और अमेरिका और भारत के रिश्ते साल दर साल और बेहतर होते चले गए, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका ने भी भारत के लिए अपने रुख को थोड़ा सा नर्म किया। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके भारत में ही प्रोडक्शन पर भी हामी भर दी।
3: जेवलिन सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई देशों की सेनाएं करती हैं। इसे बख्तरबंद वाहनों और मजबूत किलेबंदी वाली जगहों समेत कई तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। अब जेवलिन कैसे काम करती है, इसकी ताकत और खासियत क्या है, और क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, और ये कैसे काम करती है, ये आपको बताते हैं। पहला फेज, टारगेट ढूंढना और लॉक करना। सैनिक अपने कमांड लॉन्च यूनिट में लगे थर्मल डिपेंडेंट कैमरे की मदद से दुश्मन के टैंक को ढूंढता है और उस पर निशाना लॉक करता है। दूसरा फेज, सॉफ्ट लॉन्चिंग। ट्रिगर दबाते ही मिसाइल का पहला छोटा मोटर उसे ट्यूब से बाहर धकेलता है। जब मिसाइल सैनिक से सुरक्षित दूरी पर पहुंचती है, तब इसका मुख्य रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है। तीसरा फेज, इंफ्रारेड गाइडिंग। मिसाइल के आगे लगा सीकर टैंक से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करता है और मिसाइल खुद अपना रास्ता तय करती है। चौथा फेज, टारगेट पर अटैक। मिसाइल दो तरह से टारगेट पर अटैक करती है, एक है टॉप अटैक मोड और दूसरा है डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक मोड में मिसाइल सीधे जाने के बजाय हवा में 150 मीटर ऊपर उठती है और फिर सीधे नीचे आकर टैंक की छत पर हमला करती है। डायरेक्ट अटैक मोड का इस्तेमाल बंकर, इमारत या कम ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाने को लेकर होता है, जिसमें मिसाइल सीधे सामने जाकर टकराती है।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल में एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी हमारा जो इन्फेंट्री का ट्रूपर है उसको दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाना है और मिसाइल को फायर कर देना है। उसके बाद ये मिसाइल तुरंत ऊपर की तरफ चली जाती है और दुश्मन के टैंक को टॉप अटैक मोड में हमला करती है। अगर सामने दुश्मन का बंकर है, उसके ऊपर भी लॉन्च करने के बाद जेवलिन मिसाइल जो है सीधा दुश्मन के बंकर की तरफ अग्रसर होती है।
3: आधुनिक टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है, जो किसी भी मिसाइल के टकराते ही खुद ब्लास्ट होकर मिसाइल के असर को बेअसर करता है। इससे निपटने के लिए जेवलिन में टैंडम वॉरहेड लगा है, यानी दो विस्फोट। पहला विस्फोट टैंक के बाहरी सुरक्षात्मक कवच को नष्ट करता है और ठीक उसके पीछे वाला दूसरा मुख्य विस्फोटक टैंक के अंदर छेद करके उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वैसे रेंज की बात की जाए तो जेवलिन 2.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के बख्तरबंद वाहन बंकर, यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। यानी सामने कोई भी हो, जेवलिन मिसाइल के आगे सब फेल।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की एक और खास बात है कि इसके वॉरहेड में दो वॉरहेड होते हैं, एक सामने और एक थोड़ा सा पीछे। जब यह मिसाइल दुश्मन के टैंक से टकराती है तो पहले सामने वाला वॉरहेड फटता है, जिससे कि दुश्मन के टैंक पे जो भी बख्तरबंद या कवच लगा है उसको नष्ट किया जाता है और एक छेद बन जाता है। उस छेद से जो दूसरा वॉरहेड है वो अंदर चला जाता है और सेकेंड वॉरहेड जो है टैंक के अंदर जाके फटता है। यानी सेकेंड वॉरहेड से ही टैंक, दुश्मन के टैंक के अंदर जो क्रू है, ड्राइवर, गनर, कमांडर, लोडर, उनकी मौत होती है। तो इससे द किल प्रोबेबिलिटी जो है, यानी टैंक पर ना सिर्फ हमला करना वरन यह सुनिश्चित करना कि वह टैंक और उसका क्रू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्राय प्राय 100% बढ़ जाती है।
3: अब सवाल ये भी है कि भारत को

0: ऐसे में सैनिकों के पास ऐसे हथियार होना जरूरी है जिसे आसानी से आगे पोस्ट तक ले जाया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि जेवलिन जैसी मिसाइल भारत की एंटी आर्मर क्षमता को मजबूत कर सकती है।
1: रण क्षेत्र में जब सीमा पर सैनिक तैनात होता है तो वहां सबसे अहम भूमिका होती है हथियारों की, खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाके। वहां सैनिकों को ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ती है जो हल्के भी हों और सटीक निशाना भी लगा सके। ऐसे में इस तरह के हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है।
0: मौजूदा समय में भारत अपनी MP-ATGM यानी स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी विकसित कर रहा है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, टॉप अटैक मोड और टैंडम वॉरहेड जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल करीब 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों को सटीक निशाना बना सकती है।
1: MP-ATGM की सबसे बड़ी ताकत है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक, जिसमें सीधे तौर पर मतलब ये है कि गोला दागो और उसके बाद भूल जाओ। और ये सबसे बड़ी तकनीक इसको और ज्यादा ताकतवर बनाती है। एक बार गोला दाग दिया उसके बाद ये खुद ब खुद टारगेट को निशाना बनाएगा और उसे ध्वस्त करके ही दम लेगा।
0: रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियों की मारक क्षमता बढ़ेगी और विदेशी एंटी टैंक हथियारों पर निर्भरता कम होगी। हालांकि जब तक स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की पूरी तरह से परिपक्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक जेवलिन का भारत में बनना और सेना में शामिल होना एक बेहतरीन स्टॉप गैप व्यवस्था प्रदान करेगा।
1: जमीनी जंग का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद हथियार है टैंक, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके साथ चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां और टोट राइफल्स, यानी इसे और ज्यादा ताकत देती हैं। और टैंक जब रण क्षेत्र में निकलता है तो ना तो इसको रेतीली जमीन रोक पाती है ना ही ऊंचाई वाले पहाड़।
0: टैंक को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल। इसे टैंकों का काल कहा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब ATGM की जगह RCL यानी रिकॉइल लेस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था।
1: टैंक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना 106mm की RCL गन, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि फायर होते ही इसकी आग पीछे की तरफ से निकलती थी, जिससे दुश्मन दूर से ही इसे पहचान लेता था। एक और खामी जो इसमें थी वो ये थी कि आप इसमें से केवल 1, 2 या 3 बार फायर कर सकते हैं। बावजूद इसके इसने अपने पराक्रम का परिचय दिया।
0: 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग जाए। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुके रहे जब तक कि पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आ गए। अब्दुल हमीद एक जीप में RCL गन के साथ तैनात थे।
1: असल उत्तर की लड़ाई धूल भरी जमीन पर लड़ी गई, जहां चारों तरफ केवल धुएं का गुब्बार था, धूल थी और ऊपर से गोलीबारी का धुआं। ऐसे में चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे। अब्दुल हमीद ने एक बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को करीब आने दिया और 180 मीटर की दूरी पर उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों के परखचे उड़ा दिए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत से अपने ड्राइवर को पोजीशन बदलने के लिए कहा।
0: गन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने 2 टैंकों को तबाह कर दिया था, जबकि 4 टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वही छोड़कर भाग निकली थी। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने 4 ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले 1 घंटे में पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हमीद ने जैसे ही देखा कि

0: छह पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी आरसीएल गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा भी मिला। यहां से उन्होंने सबसे पहले आगे की टैंक उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर दो और टैंक उड़ा दिए। अब्दुल हमीद ने गजब का साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले ही तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी।
1: टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं और वो उनका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के दौरान जो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके टैंक जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे, तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, टैंकों के विरुद्ध और बस्तरबंद गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नागमार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है मार्क 2 की, तो ये बैटल फील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है।
0: मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें अलग अलग वर्जन की कई मिसाइलें हैं। कुछ टैंक से फायर करने में सक्षम है तो कुछ हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती है। यही नहीं, कंधे पर रखकर भी सेना के जवान से फायर कर सकते हैं। मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक नाम है स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दरअसल इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि कई बार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दुश्मन फायदे की पोजीशन पर होता है। मान लीजिए कि दुश्मन किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा है, तो ऐसे में मोर्टार से हमला करना जोखिम भरा हो सकता है और यहाँ पर सैनिकों का सबसे भरोसेमंद हथियार होता है ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। स्पाइक NLOS भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत को इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
2: स्पाइक जो है वो नॉन लाइन ऑफ साइट एक मिसाइल है जो 2020 में लॉकहीड मार्टिन और रफाल ने मिलकर ये वेपन सिस्टम बनाया। ये एक मैन इन द लूप वाला वेपन सिस्टम है और इसको तीनों वर्शन में यानी एयर से, लैंड से और मैरीटाइम वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खूबी ये है कि बिकॉज ये मैन इन द लूप वाला सिस्टम है तो इसको किसी तरह से भी गाइड करके, और गाइडिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिस्टम हो लेजर का, चाहे वो टीवी कैमरास का हो जो फिट होते हैं वारहेड के नोज के अंदर, या वो कोई वायर गाइडेड हो, किसी तरह के भी सिस्टम से इसको गाइड करके वहां तक दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाना और उसको मार गिराना, ये इसकी खूबी है। और अगर मिशन किसी तरीके से अबॉर्ट करना पड़े तो ये अबॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका रेंज तकरीबन 32 किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ी इसकी एक ताकत है।
0: हवा से दागी गई NLOS मिसाइल न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत ने इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी है। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने LAC पर करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू विमानों की तैनाती करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का ऑर्डर दिया। खबरों के मुताबिक भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का इच्छुक था। साल 2011 में भारत के पास दो विकल्प थे, एक अमेरिका की फाल्कन और दूसरा था इसराइल की NLOS। भारत ने इसराइल की NLOS को चुना। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मूड में नहीं था, लेकिन भारत को एक ऐसे मुल्क से डील करनी थी जो उसे हथियार के साथ साथ तकनीक का ट्रांसफर भी देता, ताकि भारत में उसका प्रोडक्शन हो पाए। इसीलिए भारत ने NLOS को चुना। फिलहाल सरकार ने सीमित संख्या में NLOS मिसाइलें ऑर्डर की हैं, बाद में इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बड़ी संख्या में हासिल किया जाएगा। रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह। ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी। एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साई मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव। श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी। चांदी के पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर। साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास। आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना। आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी।

0: उन्हीं युगातीत दिव्यात्माओं में शामिल हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता था।

0: आप शायद यकीन ना करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा, एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: जब
1: में।
2: तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या करते
2: ये करते हैं, तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनंद फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है देख लो वैसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धिजीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते हैं, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के 3rd हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
3: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौली बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया, यहां तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से। महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया। अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है,
2: टिकट
1: नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: बैठ गए
1: स्टेशन पे। थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसकी वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करौली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे, पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करौली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीब करौली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करौली बाबा का देहावसान हो चुका था, फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करौली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
3: बंदे में है दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: तो चलिए आगे बढ़ते बात एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। हनुमान अंश की बात करें तो हनुमान अंश साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म बन चुकी है। देखिए मात्र 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने मुनाफे के मामले में धुरंधर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। आमतौर पर फिल्म के रिलीज के बढ़ते दिनों के साथ कलेक्शन घट जाता है, इस तरीके का ट्रेंड देखा जाता है, लेकिन हनुमान अंश के साथ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, फिल्म हर दिन के साथ अलग रिकॉर्ड ही बनाती जा रही है।
3: जैसे जैसे हनुमान अंश सिनेमा घरों में एक महीना पूरा करने के करीब पहुंच रही है, फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 29वें दिन न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कमाई के मामले में भी नीम करोली बाबा की फिल्म पर कृपा बरसी। ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन अब फिल्म की रफ्तार से भारत के ही नहीं दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर असर दिखाई देने लगा है। मिर्जापुर द मूवी की दस्तक 29वें दिन हनुमान अंश को तस से मस नहीं कर पाई है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। जिस फिल्म के बारे में कुछ समय पहले तक कोई बात नहीं हो रही थी, अब वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और अपने कलेक्शन से हर दिन चौंका रही है। मामले से बजट में बनी हनुमान अंश 80 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही और इसने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 1.80 करोड़ और दूसरे हफ्ते में सिर्फ 40 लाख रुपए कमाए थे। हालांकि तीसरे हफ्ते में फिल्म की किस्मत बदली और पॉजिटिव वर्ड माउथ के चलते दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और धीरे धीरे शो हाउसफुल होने लगे और फिल्म की कमाई में भी जबरदस्त उछाल आया और इसने तीसरे हफ्ते में 10.40 करोड़ कमाए। बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार चौथे हफ्ते में और बढ़ी और इसने 61 करोड़ कमाए। फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन अब 97.77 करोड़ है, जबकि भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 82.88 करोड़ रुपए हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि 5 सितंबर और 6 सितंबर को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला जाएगा, क्योंकि अब फिल्म के ज्यादा शोज भी सिनेमाघरों में दिखाए जा रहे हैं। हनुमान अंश नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बेस कहानी है, जिसमें महान संत के बचपन से लेकर बाबा बनने तक के सफर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निर्देशन ने फिल्म में उतारा है। फिल्म को जहां विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है, तो वहीं शोभिन और सत्या मूवी में नीम करोली बाबा बने हैं। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा फायदा मिला है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह। ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी। एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव। श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी के पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना। आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: पूर्वी लद्दाख हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाला बॉर्डर का इलाका, घने जंगल में घात लगाए दुश्मन हो या फिर बंकर में छिपे हूँ आतंक के प्यादे, फौलादी टैंक हो या फिर स्टील से भी मजबूत बंकर, हर किसी का परखचा उड़ना तय है। भारतीय सेना के पास वो किलिंग वेपन आने वाला है जो चीन और पाकिस्तान के टैंकों के लिए काल साबित होगा। भारतीय सेना अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एक एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं और इसके तहत जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में होगा, यानी कि अमेरिकी कंपनी और साथ ही साथ भारत की डिफेंस कंपनी टाटा दोनों मिलकर जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे और बहुत ही जल्द ये भारतीय सेना को मिल जाएगी।
1: भारत में जेवलिन मिसाइल का प्रोडक्शन रणनीतिक लिहाज से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इससे मेक इन इंडिया मिशन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत तथा अमेरिका की सरकार के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत अब निकट भविष्य में ही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। खास बात है कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल जो है वो एक इमेज इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से काम करती है और दुश्मन के टैंक को 4 किलोमीटर की दूरी से निस्तनाबूद कर देती है। जब इस जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगा और हमारी इन्फेंट्री की फॉरवर्ड डिप्लॉयड बटालियंस को इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी तो युद्ध के मैदान में उनकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी।
1: आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़े हथियार ही काफी नहीं होते, जरूरत के हिसाब से ऐसे हथियारों की भी जरूरत होती है जिन्हें सैनिक अपने हाथ में भी लेकर चल सके, जो तेजी से तैनात हो सके और दुश्मन के भारी भरकम टैंक को आसानी से निशाना बना सके। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए अमेरिकी हथियार की एंट्री होने जा रही है। एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल जिसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर एंड फॉरगेट।
0: दरअसल भारतीय सेना अमेरिका से शुरू से ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन को खरीदने की इच्छुक थी। 2010 में भारत ने इसकी इच्छा जताई थी, लेकिन अब जाकर यानी कि 28 अगस्त को इस पर फाइनल डील साइन हुई है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
1: इमरजेंसी खरीद प्रक्रिया के तहत हुए सौदे में 60 जेवलिन मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। इनकी कुल कीमत 292 करोड़ रूपए हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एक मिसाइल खरीदने में भारत को 16 साल क्यों लग गए? वो क्या वजह थी कि जेवलिन की जगह इजराइल की स्पाइक मिसाइल को चुन लिया गया और फिर इतने साल बाद भारत जेवलिन की ओर वापस क्यों लौटा? इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जेवलिन आखिर क्या है और भारतीय सेना के लिए इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई।
0: साल था 2010 जब भारतीय सेना ने अमेरिका से जेवलिन मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई। दोनों देशों के बीच में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आखिर में ये बातचीत विफल रही और विफल इसलिए रही क्योंकि अमेरिका भारत को मिसाइल तो देना चाह रहा था लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो राजी नहीं था, जिस पर भारत ने हामी नहीं भरी।
1: भारत चाहता था कि अमेरिका से सिर्फ जेवलिन मिसाइल की खरीद न करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले और आगे भारत में इसका उत्पादन हो सके। अमेरिका जेवलिन की महत्वपूर्ण तकनीक, खासकर इसके IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक साझा करने को तैयार नहीं था। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक को आधुनिक गाइडेड मिसाइल की आंख और दिमाग कहा जाता है। सबसे पहले आईआर सीकर थर्मल पिक्चर तैयार करता है। आईआर सीकर में डिजिटल कैमरे की तरह एक खास फोकल प्लेन एरे सेंसर लगा होता है। ये सेंसर सिर्फ गर्मी के किसी एक बिंदु को नहीं पकड़ता, बल्कि सामने मौजूद पूरे दृश्य की एक साथ थर्मल इमेज बनाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। मिसाइल के अंदर मौजूद हाई स्पीड प्रोसेसर इस इंफ्रारेड वीडियो को प्रोसेस करते हैं। एल्गोरिदम की मदद से मिसाइल ये पहचान लेती है कि सामने दिख रही गर्मी किसी टैंक की है या फिर किसी गाड़ी की या फिर सिर्फ धूप से गर्म हुई किसी चट्टान की। अगला स्टेप टारगेट के कमजोर हिस्से की पहचान करना होता है। टारगेट लॉक होने के बाद आईआर सीकर तकनीक दुश्मन के वाहन या फिर विमान के सबसे कमजोर हिस्से जैसे कि टैंक के ऊपर का हिस्सा या लड़ाकू विमान का कॉकपिट को खुद खोजती है और मिसाइल को सीधे उसी पॉइंट पर जाकर टकराने का निर्देश देती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक से कैसे बेहतर है ये भी जानना जरूरी है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल सिर्फ गर्मी के सबसे तेज बिंदु की तरफ भागती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल टारगेट के पूरे आकार को पहचान कर उसको लॉक करती है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल दुश्मन की ओर से फेंके गए फ्लेयर से आसानी से भटक जाती थी, लेकिन आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस मिसाइल असली टैंक विमान और नकली फ्लेयर्स के बीच का अंतर समझ सकती है और इसीलिए इसे चकमा देना लगभग असंभव है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल टैंक विमान के एग्जॉस्ट यानी कि धुआं निकालने वाली जगह पर ही हमला कर पाती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस मिसाइल ऑल एस्पेक्ट क्षमता से लैस है, यानी दुश्मन किसी भी दिशा में खड़ा हो ये उसकी बॉडी हीट को पकड़ लेती है।
2: आमतौर पर ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वह इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं, यानी दुश्मन के टैंक के इंजन से जो गर्माहट निकलती है लॉन्च के बाद जो मिसाइल का सीकर हेड है वो इंजन दुश्मन के इंजन की गर्माहट पर लॉक ऑन करता है। लेकिन आजकल इसके काउंटर मेजर्स बन चुके हैं जिसमें दुश्मन आर्टिफिशियल फ्लेयर्स फायर करता है या आर्टिफिशियल हाई टेम्परेचर ग्रेनेड्स फायर करता है जिससे कि छोटे छोटे पटाखे जैसे आग जलने लग जाते हैं। तो जो एंटी टैंक मिसाइल हीट सीकिंग हमने लॉन्च किया है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और इन नकली हीट सोर्सेज की तरफ चल पड़ता है।
1: जेवलिन की खरीद प्रक्रिया के लिए कड़ी अमेरिकी शर्तें और इजराइल स्पाइक से ज्यादा लागत की वजह से शुरुआती जेवलिन खरीद प्रक्रिया अटक गई।
0: दरअसल अमेरिका के साथ हथियार खरीदने पर अमेरिका ने यूज एंड मॉनिटरिंग की शर्त रखी थी, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये था कि अगर भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है तो अमेरिकी अधिकारी कभी भी आकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं था और ये एक बड़ी वजह रही कि दोनों के बीच ये डील तब साइन नहीं हो पाई।
1: जब जेवलिन मिसाइल की खरीद को लेकर बात चल रही थी तब जेवलिन की प्रति यूनिट लागत इजराइल की स्पाइक मिसाइल की तुलना में बहुत ज्यादा थी। भारतीय सेना को अपनी 380 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियनों के लिए हजारों की संख्या में एंटी टैंक मिसाइलों की जरूरत थी, इसीलिए आर्थिक रूप से भी स्पाइक एक बेहतर विकल्प साबित हो रही थी।
2: भारत की जो फौज है वह काफ़ी समय से एक आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल की मांग कर रही थी। भारत में ही हम DRDO की मदद से नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम काफ़ी हद तक डेवलप हो भी चुका है। इसके प्रोटोटाइप को ऑलरेडी चांदीपुर टेस्ट रेंज में और पोकरण रेंज में ट्रायल कर लिया गया है, लेकिन इसकी फाइनल प्रोडक्शन लाइन असेंबली लाइन बनाने में अभी 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए इतने सालों से भारत ने और कोई दूसरा इंपोर्टेड यानी विदेशी एंटी टैंक मिसाइल नहीं खरीदा, लेकिन अब जब नाग को इंडक्ट होने में 2-3 साल और लगेंगे तो एज एन एंट्रिम मेजर टेम्परेरी व्यवस्था के तहत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत में ही प्रोडक्शन किया जाएगा।
1: भारत के पास 8 तरह की एंटी गाइडेड मिसाइल हैं, जिसमें एक नया नाम जेवलिन जुड़ने वाला है, जो इंडियन इन्फेंट्री की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा।
0: वक्त बदला और अमेरिका और भारत के रिश्ते साल दर साल और बेहतर होते चले गए, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका ने भी भारत के लिए अपने रुख को थोड़ा सा नर्म किया। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके भारत में ही प्रोडक्शन पर भी हामी भर दी।
1: जेवलिन सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई देशों की सेनाएं करती हैं। इसे बख्तरबंद वाहनों और मजबूत किलेबंदी वाली जगहों समेत कई तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। अब जेवलिन कैसे काम करती है, इसकी ताकत और खासियत क्या है, और क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, और ये कैसे काम करती है, ये आपको बताते हैं। पहला फेज, टारगेट ढूंढना और लॉक करना। सैनिक अपने कमांड लॉन्च यूनिट में लगे थर्मल डिपेंडेंट कैमरे की मदद से दुश्मन के टैंक को ढूंढता है और उस पर निशाना लॉक करता है। दूसरा फेज, सॉफ्ट लॉन्चिंग। ट्रिगर दबाते ही मिसाइल का पहला छोटा मोटर उसे ट्यूब से बाहर धकेलता है। जब मिसाइल सैनिक से सुरक्षित दूरी पर पहुंचती है, तब इसका मुख्य रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है। तीसरा फेज, इंफ्रारेड गाइडिंग। मिसाइल के आगे लगा सीकर टैंक से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करता है और मिसाइल खुद अपना रास्ता तय करती है। चौथा फेज, टारगेट पर अटैक। मिसाइल दो तरह से टारगेट पर अटैक करती है, एक है टॉप अटैक मोड और दूसरा है डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक मोड में मिसाइल सीधे जाने के बजाय हवा में 150 मीटर ऊपर उठती है और फिर सीधे नीचे आकर टैंक की छत पर हमला करती है। डायरेक्ट अटैक मोड का इस्तेमाल बंकर, इमारत या कम ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाने को लेकर होता है, जिसमें मिसाइल सीधे सामने जाकर टकराती है।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल में एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी हमारा जो इन्फेंट्री का ट्रूपर है उसको दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाना है और मिसाइल को फायर कर देना है। उसके बाद ये मिसाइल तुरंत ऊपर की तरफ चली जाती है और दुश्मन के टैंक को टॉप अटैक मोड में हमला करती है। अगर सामने दुश्मन का बंकर है, उसके ऊपर भी लॉन्च करने के बाद जेवलिन मिसाइल जो है सीधा दुश्मन के बंकर की तरफ अग्रसर होती है।
1: आधुनिक टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है, जो किसी भी मिसाइल के टकराते ही खुद ब्लास्ट होकर मिसाइल के असर को बेअसर करता है। इससे निपटने के लिए जेवलिन में टैंडम वॉरहेड लगा है, यानी दो विस्फोट। पहला विस्फोट टैंक के बाहरी सुरक्षात्मक कवच को नष्ट करता है और ठीक उसके पीछे वाला दूसरा मुख्य विस्फोटक टैंक के अंदर छेद करके उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वैसे रेंज की बात की जाए तो जेवलिन 2.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के बख्तरबंद वाहन बंकर, यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। यानी सामने कोई भी हो, जेवलिन मिसाइल के आगे सब फेल।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की एक और खास बात है कि इसके वॉरहेड में दो वॉरहेड होते हैं, एक सामने और एक थोड़ा सा पीछे। जब यह मिसाइल दुश्मन के टैंक से टकराती है तो पहले सामने वाला वॉरहेड फटता है, जिससे कि दुश्मन के टैंक पे जो भी बख्तरबंद या कवच लगा है उसको नष्ट किया जाता है और एक छेद बन जाता है। उस छेद से जो दूसरा वॉरहेड है वो अंदर चला जाता है और सेकेंड वॉरहेड जो है टैंक के अंदर जाके फटता है। यानी सेकेंड वॉरहेड से ही टैंक, दुश्मन के टैंक के अंदर जो क्रू है, ड्राइवर, गनर, कमांडर, लोडर, उनकी मौत होती है। तो इससे द किल प्रोबेबिलिटी जो है, यानी टैंक पर ना सिर्फ हमला करना वरन यह सुनिश्चित करना कि वह टैंक और उसका क्रू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्राय प्राय 100% बढ़ जाती है।
1: अब सवाल ये भी है कि भारत को जेवलिन की जरूरत क्यों है, तो आइए अब आपको समझाते हैं। भारत की सीमाएं बेहद विविध और चुनौतीपूर्ण है। कहीं ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, कहीं संकरे रास्ते, तो कहीं ऐसे इलाके हैं जहां भारी सैन्य वाहनों को तेजी से तैनात करना आसान नहीं है। ऐसे में सैनिकों के पास ऐसे हथियार होना जरूरी है जिसे आसानी से आगे पोस्ट तक ले जाया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि जेवलिन जैसी मिसाइल भारत की एंटी आर्मर क्षमता को मजबूत कर सकती है।
0: रण क्षेत्र में जब सीमा पर सैनिक तैनात होता है तो वहां सबसे अहम भूमिका होती है हथियारों की।

0: की जरूरत पड़ती है जो हल्के भी हों और सटीक निशाना भी लगा सके। ऐसे में इस तरह के हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है।
1: मौजूदा समय में भारत अपनी MPATGM यानी स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी विकसित कर रहा है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, टॉप अटैक मोड और टैंडम वॉरहेड जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल करीब 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों को सटीक निशाना बना सकती है।
0: MPATGM की सबसे बड़ी ताकत है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक, जिसमें सीधे तौर पर मतलब ये है कि गोला दागो और उसके बाद भूल जाओ। और ये सबसे बड़ी तकनीक इसको और ज्यादा ताकतवर बनाती है। एक बार गोला दाग दिया, उसके बाद ये खुद ब खुद टारगेट को निशाना बनाएगा और उसे ध्वस्त करके ही दम ले।
1: रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियों की मारक क्षमता बढ़ेगी और विदेशी एंटी टैंक हथियारों पर निर्भरता कम होगी। हालांकि जब तक स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की पूरी तरह से परिपक्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक जेवलिन का भारत में बनना और सेना में शामिल होना एक बेहतरीन स्टॉपगैप व्यवस्था प्रदान करेगा।
0: जमीनी जंग का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद हथियार है टैंक, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके साथ चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां और टोट राइफल्स, यानी इसे और ज्यादा ताकत देती हैं। और टैंक जब रण क्षेत्र में निकलता है तो ना तो इसको रेतीली जमीन रोक पाती है, न ही ऊंचाई वाले पहाड़।
1: टैंक को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल। इसे टैंकों का काल कहा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब ATGM की जगह RCL यानी रिकॉइल लेस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था।
0: टैंक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना 106mm की RCL गन, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि फायर होते ही इसकी आग पीछे की तरफ से निकलती थी, जिससे दुश्मन दूर से ही इसे पहचान लेता था। एक और खामी जो इसमें थी वो ये थी कि आप इसमें से केवल 1, 2 या 3 बार फायर कर सकते हैं। बावजूद इसके इसने अपने पराक्रम का परिचय दिया।
1: 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए, ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग जाए। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुके रहे जब तक कि पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आ गए। अब्दुल हमीद एक जीप में RCL गन के साथ तैनात थे।
0: असल उत्तर की लड़ाई धूल भरी जमीन पर लड़ी गई, जहां चारों तरफ केवल धुएं का गुब्बार था, धूल थी और ऊपर से गोलीबारी का धुआं। ऐसे में चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे। अब्दुल हमीद ने एक बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को करीब आने दिया और 180 मीटर की दूरी पर उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों के परखचे उड़ा दिए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत से अपने ड्राइवर को पोजीशन बदलने के लिए कहा।
1: दिन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने 2 टैंकों को तबाह कर दिया था, जबकि 4 टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वहीं छोड़कर भाग निकली थी। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने 4 ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले 1 घंटे में पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हमीद ने जैसे ही देखा कि 6 पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी RCL गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा भी मिला। यहाँ से उन्होंने सबसे पहले आगे के टैंक को उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर 2 और टैंक उड़ा दिए। अब्दुल हमीद ने गजब का साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले ही तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण

0: असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी।
1: टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं और वो उनका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के दौरान जो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके टैंक जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे, तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है टैंकों के विरुद्ध और बस्तरबंद गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नागमार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है मार्क 2 की, तो ये बैटलफील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है।
0: मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें अलग अलग वर्जन की कई मिसाइलें हैं। कुछ टैंक से फायर करने में सक्षम है तो कुछ हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती हैं। यही नहीं, कंधे पर रखकर भी सेना के जवान से फायर कर सकते हैं। मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक नाम है स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट।
2: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दरअसल इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि कई बार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दुश्मन फायदे की पोजीशन पर होता है। मान लीजिए कि दुश्मन किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा है, तो ऐसे में मोर्टार से हमला करना जोखिम भरा हो सकता है। और यहाँ पर सैनिकों का सबसे भरोसेमंद हथियार होता है ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
0: स्पाइक NLOS भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत को इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
3: स्पाइक जो है वो नॉन लाइन ऑफ साइट एक मिसाइल है जो 2020 में लॉकहीड मार्टिन और रफाल ने मिलकर ये वेपन सिस्टम बनाया। ये एक मैन इन द लूप वाला वेपन सिस्टम है और इसको तीनों वर्शन में यानी एयर से, लैंड से और मैरीटाइम वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खूबी ये है कि बिकॉज ये मैन इन द लूप वाला सिस्टम है तो इसको किसी तरह से भी गाइड करके, और गाइडिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिस्टम हो लेजर का, चाहे वो टीवी कैमरास का हो जो फिट होते हैं वारहेड के नोज के अंदर, या वो कोई वायर गाइडेड हो, किसी तरह के भी सिस्टम से इसको गाइड करके वहां तक दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाना और उसको मार गिराना, ये इसकी खूबी है। और अगर मिशन किसी तरीके से अबॉर्ट करना पड़े तो ये अबॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका रेंज तकरीबन 32 किलोमीटर है जो कि बहुत बड़ी इसकी एक ताकत है।
0: हवा से दागी गई NLOS मिसाइल न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत ने इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी है। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने LAC पर करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू विमानों की तैनाती करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का ऑर्डर दिया।
2: खबरों के मुताबिक भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का इच्छुक था। साल 2011 में भारत के पास दो विकल्प थे, एक अमेरिका की फाल्कन और दूसरा था इजराइल की NLOS। भारत ने इसराइल की NLOS को चुना। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मूड में नहीं था, लेकिन भारत को एक ऐसे मुल्क से डील करनी थी जो उसे हथियार के साथ साथ तकनीक का ट्रांसफर भी देता, ताकि भारत में उसका प्रोडक्शन हो पाए। इसीलिए भारत ने NLOS को चुना।
0: फिलहाल सरकार ने सीमित संख्या में NLOS मिसाइलें ऑर्डर की हैं, बाद में इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बड़ी संख्या में हासिल किया जाएगा।
2: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम, मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव, श्रीकृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी की पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी।

0: उन्हीं युगाती दिव्यात्माओं में शामिल हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज ए मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहां तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

0: आप शायद यकीन न करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा, एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या कर सकते,
2: ये करते हैं तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था, तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनंद फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो वैसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धि जीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, हल्का दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते हैं, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के तीसरे हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
3: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौली बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया। यहां तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर कोई मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से, महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: स्टेशन पे बैठ गए।
1: स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसकी वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीप करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीप करोली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे। पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था, साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए। इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीप करोली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीप करोली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीप करोली बाबा का देहावसान हो चुका था। फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहां आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीप करोली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
3: वंदे मेह दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। हनुमान अंश की बात करें तो हनुमान अंश साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म बन चुकी है। देखिए मात्र 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने मुनाफे के मामले में धुरंधर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। आमतौर पर फिल्म के रिलीज के बढ़ते दिनों के साथ कलेक्शन घट जाता है, इस तरीके का ट्रेंड देखा जाता है, लेकिन हनुमान अंश के साथ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिल्म हर दिन के साथ अलग रिकॉर्ड ही बनाती जा रही है।
3: जैसे जैसे हनुमान अंश सिनेमा घरों में एक महीना पूरा करने के करीब पहुंच रही है, फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 29वें दिन न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कमाई के मामले में भी नीम करोली बाबा की फिल्म पर कृपा बरसी। ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन अब फिल्म की रफ्तार से भारत के ही नहीं दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर असर दिखाई देने लगा है। मिर्जापुर द मूवी के दस्तक 29वें दिन हनुमान अंश को टस से मस नहीं कर पाई है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। जिस फिल्म के बारे में कुछ समय पहले तक कोई बात नहीं हो रही थी, अब वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और अपने कलेक्शन से हर दिन चौंका रही है। मामूली से बजट में बनी हनुमान अंश 80 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही और इसने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 1.80 करोड़ और दूसरे हफ्ते में सिर्फ 40 लाख रुपए कमाए थे। हालांकि तीसरे हफ्ते में फिल्म की किस्मत बदली और पॉजिटिव वर्ड माउथ के चलते दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और धीरे धीरे शो हाउसफुल होने लगे और फिल्म की कमाई में भी जबरदस्त उछाल आया और इसने तीसरे हफ्ते में 10.40 करोड़ कमाए। बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार चौथे हफ्ते में और बढ़ी और इसने 61 करोड़ कमाए। फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन अब 97.77 करोड़ है, जबकि भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 82.88 करोड़ रुपए हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि 5 सितंबर और 6 सितंबर को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला जाएगा, क्योंकि अब फिल्म के ज्यादा शोज भी सिनेमाघरों में दिखाए जा रहे हैं। हनुमान अंश नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बेस कहानी है, जिसमें महान संत के बचपन से लेकर बाबा बनने तक के सफर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निर्देशन ने फिल्म में उतारा है। फिल्म को जहां विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है, तो वहीं शोभिन और सत्या मूवी में नीम करोली बाबा बने हैं। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा फायदा मिला है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह। ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी। एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव। श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी। चांदी की पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पूर्वी लद्दाख हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाला बॉर्डर का इलाका, घने जंगल में घात लगाए दुश्मन हो या फिर बंकर में छिपे हो आतंक के प्यादे, फौलादी टैंक हो या फिर स्टील से भी मजबूत बंकर, हर किसी का परखचा उड़ना तय है। भारतीय सेना के पास वो किलिंग वेपन आने वाला है जो चीन और पाकिस्तान के टैंकों के लिए काल साबित होगा।
1: भारतीय सेना अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही है दोनों मुल्कों के बीच, इसको लेकर एक एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं और इसके तहत जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में होगा, यानी कि अमेरिकी कंपनी और साथ ही साथ भारत की डिफेंस कंपनी टाटा दोनों मिलकर जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे और बहुत ही जल्द ये भारतीय सेना को मिल जाएगी।
0: भारत में जेवलिन मिसाइल का प्रोडक्शन रणनीतिक लिहाज से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इससे मेक इन इंडिया मिशन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत तथा अमेरिका की सरकार के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू साइन किया गया है जिसके तहत अब निकट भविष्य में ही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। खास बात है कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल जो है वो एक इमेज इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से काम करती है और दुश्मन के टैंक को 4 किलोमीटर की दूरी से निस्तनाबूद कर देती है। जब इस जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगा और हमारी इन्फेंट्री की फॉरवर्ड डिप्लॉयड बटालियंस को इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी तो युद्ध के मैदान में उनकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी।
0: आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़े हथियार ही काफी नहीं होते, जरूरत के हिसाब से ऐसे हथियारों की भी जरूरत होती है जिन्हें सैनिक अपने हाथ में भी लेकर चल सके, जो तेजी से तैनात हो सके और दुश्मन के भारी भरकम टैंक को आसानी से निशाना बना सके। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए अमेरिकी हथियार की एंट्री होने जा रही है। एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल जिसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर एंड फॉरगेट।
1: दरअसल भारतीय सेना अमेरिका से शुरू से ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन को खरीदने की इच्छुक थी। 2010 में भारत ने इसकी इच्छा जताई थी लेकिन अब जाकर यानी कि 28 अगस्त को इस पर फाइनल डील साइन हुई है दोनों मुल्कों के बीच, इसको लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
0: इमरजेंसी खरीद प्रक्रिया के तहत हुए सौदे में 60 जेवलिन मिसाइल सिस्टम्स खरीदे जाएंगे। इनकी कुल कीमत 292 करोड़ रुपए हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एक मिसाइल खरीदने में भारत को 16 साल क्यों लग गए? वो क्या वजह थी कि जेवलिन की जगह इजराइल की स्पाइक मिसाइल को चुन लिया गया और फिर इतने साल बाद भारत जेवलिन की ओर वापस क्यों लौटा? इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जेवलिन आखिर क्या है और भारतीय सेना के लिए इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई।
1: साल था 2010 जब भारतीय सेना ने अमेरिका से जेवलिन मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई। दोनों देशों के बीच में कई दौर की बातचीत हुई लेकिन आखिर में ये बातचीत विफल रही और विफल इसलिए रही क्योंकि अमेरिका भारत को मिसाइल तो देना चाह रहा था लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो राजी नहीं था, जिस पर भारत ने हामी नहीं भरी।
0: भारत चाहता था कि अमेरिका से सिर्फ जेवलिन मिसाइल की खरीद न करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले और आगे भारत में इसका उत्पादन हो सके। अमेरिका जेवलिन की महत्वपूर्ण तकनीक, खासकर इसके IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक साझा करने को तैयार नहीं था। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक को आधुनिक गाइडेड मिसाइल की आंख और दिमाग कहा जाता है। सबसे पहले आईआर सीकर थर्मल पिक्चर तैयार करता है। आईआर सीकर में डिजिटल कैमरे की तरह एक खास फोकल प्लेन एरे सेंसर लगा होता है। ये सेंसर सिर्फ गर्मी के किसी एक बिंदु को नहीं पकड़ता, बल्कि सामने मौजूद पूरे दृश्य की एक साथ थर्मल इमेज बनाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। मिसाइल के अंदर मौजूद हाई स्पीड प्रोसेसर इस इंफ्रारेड वीडियो को प्रोसेस करते हैं। एल्गोरिदम की मदद से मिसाइल ये पहचान लेती है कि सामने दिख रही गर्मी किसी टैंक की है या फिर किसी गाड़ी की या फिर सिर्फ धूप से गर्म हुई किसी चट्टान की। अगला स्टेप टारगेट के कमजोर हिस्से की पहचान करना होता है। टारगेट लॉक होने के बाद आईआर सीकर तकनीक दुश्मन के वाहन या फिर विमान के सबसे कमजोर हिस्से जैसे कि टैंक के ऊपर का हिस्सा या लड़ाकू विमान का कॉकपिट को खुद खोजती है और मिसाइल को सीधे उसी पॉइंट पर जाकर टकराने का निर्देश देती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक से कैसे बेहतर है ये भी जानना जरूरी है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल सिर्फ गर्मी के सबसे तेज बिंदु की तरफ भागती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल टारगेट के पूरे आकार को पहचान कर उसको लॉक करती है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल दुश्मन की ओर से फेंके गए फ्लेयर से आसानी से भटक जाती थी, लेकिन आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस मिसाइल असली टैंक विमान और नकली फ्लेयर्स के बीच का अंतर समझ सकती है और इसीलिए इसे चकमा देना लगभग असंभव है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल टैंक विमान के एग्जॉस्ट यानी कि धुआं निकालने वाली जगह पर ही हमला कर पाती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस मिसाइल ऑल एस्पेक्ट क्षमता से लैस है, यानी दुश्मन किसी भी दिशा में खड़ा हो ये उसकी बॉडी हीट को पकड़ लेती है।
2: आमतौर पर ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वह इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं, यानी दुश्मन के टैंक के इंजन से जो गर्माहट निकलती है लॉन्च के बाद जो मिसाइल का सीकर हेड है वो इंजन दुश्मन के इंजन की गर्माहट पर लॉक ऑन करता है। लेकिन आजकल इसके काउंटर मेजर्स बन चुके हैं जिसमें दुश्मन आर्टिफिशियल फ्लेयर्स फायर करता है या आर्टिफिशियल हाई टेम्परेचर ग्रेनेड्स फायर करता है जिससे कि छोटे छोटे पटाखे जैसे आग जलने लग जाते हैं। तो जो एंटी टैंक मिसाइल हीट सीकिंग हमने लॉन्च किया है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और इन नकली हीट सोर्सेस की तरफ चल पड़ता है।
0: जेवलिन के खरीद प्रक्रिया के लिए कड़ी अमेरिकी शर्तें और इजराइल स्पाइक से ज्यादा लागत की वजह से शुरुआती जेवलिन खरीद प्रक्रिया अटक गई।
1: दरअसल अमेरिका के साथ हथियार खरीदने पर अमेरिका ने यूज एंड मॉनिटरिंग की शर्त रखी थी, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये था कि अगर भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है तो अमेरिकी अधिकारी कभी भी आकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं था और ये एक बड़ी वजह रही कि दोनों के बीच ये डील तब साइन नहीं हो पाई।
0: जब जेवलिन मिसाइल की खरीद को लेकर बात चल रही थी तब जेवलिन की प्रति यूनिट लागत इजराइल की स्पाइक मिसाइल की तुलना में बहुत ज्यादा थी। भारतीय सेना को अपनी 380 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियनों के लिए हजारों की संख्या में एंटी टैंक मिसाइलों की जरूरत थी, इसीलिए आर्थिक रूप से भी स्पाइक एक बेहतर विकल्प साबित हो रही थी।
2: भारत की जो फौज है वह काफ़ी समय से एक आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल की मांग कर रही थी। भारत में ही हम DRDO की मदद से नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम काफ़ी हद तक डेवलप हो भी चुका है। इसके प्रोटोटाइप को ऑलरेडी चांदीपुर टेस्ट रेंज में और पोकरण रेंज में ट्रायल कर लिया गया है, लेकिन इसकी फाइनल प्रोडक्शन लाइन असेंबली लाइन बनाने में अभी 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए इतने सालों से भारत ने और कोई दूसरा इंपोर्टेड यानी विदेशी एंटी टैंक मिसाइल नहीं खरीदा, लेकिन अब जब नाग को इंडक्ट होने में 2-3 साल और लगेंगे तो एज एन एंट्रिम मेजर टेम्परेरी व्यवस्था के तहत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत में ही प्रोडक्शन किया जाएगा।
0: भारत के पास 8 तरह की एंटी गाइडेड मिसाइल हैं, जिसमें एक नया नाम जेवलिन जुड़ने वाला है, जो इंडियन इन्फेंट्री की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा।
1: वक्त बदला और अमेरिका और भारत के रिश्ते साल दर साल और बेहतर होते चले गए, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका ने भी भारत के लिए अपने रुख को थोड़ा सा नर्म किया। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके भारत में ही प्रोडक्शन पर भी हामी भर दी।
0: जेवलिन सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई देशों की सेनाएं करती हैं। इसे बख्तरबंद वाहनों और मजबूत किलेबंदी वाली जगहों समेत कई तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। अब जेवलिन कैसे काम करती है, इसकी ताकत और खासियत क्या है, और क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, और ये कैसे काम करती है, ये आपको बताते हैं। पहला फेज, टारगेट ढूंढना और लॉक करना। सैनिक अपने कमांड लॉन्च यूनिट में लगे थर्मल डिपेंडेंट कैमरे की मदद से दुश्मन के टैंक को ढूंढता है और उस पर निशाना लॉक करता है। दूसरा फेज, सॉफ्ट लॉन्चिंग। ट्रिगर दबाते ही मिसाइल का पहला छोटा मोटर उसे ट्यूब से बाहर धकेलता है। जब मिसाइल सैनिक से सुरक्षित दूरी पर पहुंचती है, तब इसका मुख्य रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है। तीसरा फेज, इंफ्रारेड गाइडिंग। मिसाइल के आगे लगा सीकर टैंक से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करता है और मिसाइल खुद अपना रास्ता तय करती है। चौथा फेज, टारगेट पर अटैक। मिसाइल दो तरह से टारगेट पर अटैक करती है, एक है टॉप अटैक मोड और दूसरा है डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक मोड में मिसाइल सीधे जाने के बजाय हवा में 150 मीटर ऊपर उड़ती है और फिर सीधे नीचे आकर टैंक की छत पर हमला करती है। डायरेक्ट अटैक मोड का इस्तेमाल बंकर, इमारत या कम ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाने को लेकर होता है, जिसमें मिसाइल सीधे सामने जाकर टकराती है।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल में एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी हमारा जो इन्फेंट्री का ट्रूपर है उसको दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाना है और मिसाइल को फायर कर देना है। उसके बाद ये मिसाइल तुरंत ऊपर की तरफ चली जाती है और दुश्मन के टैंक को टॉप अटैक मोड में हमला करती है। अगर सामने दुश्मन का बंकर है, उसके ऊपर भी लॉन्च करने के बाद जेवलिन मिसाइल जो है सीधा दुश्मन के बंकर की तरफ अग्रसर होती है।
0: आधुनिक टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है, जो किसी भी मिसाइल के टकराते ही खुद ब्लास्ट होकर मिसाइल के असर को बेअसर करता है। इससे निपटने के लिए जेवलिन में टैंडम वॉरहेड लगा है, यानी दो विस्फोट। पहला विस्फोट टैंक के बाहरी सुरक्षात्मक कवच को नष्ट करता है और ठीक उसके पीछे वाला दूसरा मुख्य विस्फोटक टैंक के अंदर छेद करके उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वैसे रेंज की बात की जाए तो जेवलिन 2.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के बख्तरबंद वाहन बंकर, यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। यानी सामने कोई भी हो, जेवलिन मिसाइल के आगे सब फेल।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की एक और खास बात है कि इसके वॉरहेड में दो वॉरहेड होते हैं, एक सामने और एक थोड़ा सा पीछे। जब यह मिसाइल दुश्मन के टैंक से टकराती है तो पहले सामने वाला वॉरहेड फटता है, जिससे कि दुश्मन के टैंक पे जो भी बख्तरबंद या कवच लगा है उसको नष्ट किया जाता है और एक छेद बन जाता है। उस छेद से जो दूसरा वॉरहेड है वो अंदर चला जाता है और सेकेंड वॉरहेड जो है टैंक के अंदर जाके फटता है। यानी सेकेंड वॉरहेड से ही टैंक, दुश्मन के टैंक के अंदर जो क्रू है, ड्राइवर, गनर, कमांडर, लोडर, उनकी मौत होती है। तो इससे द किल प्रोबेबिलिटी जो है, यानी टैंक पर ना सिर्फ हमला करना वरन यह सुनिश्चित करना कि वह टैंक और उसका क्रू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्राय प्राय शत प्रतिशत बढ़ जाती है।
0: अब सवाल ये भी है कि भारत को जेवलिन की जरूरत क्यों है, तो आइए अब आपको समझाते हैं। भारत की सीमाएं बेहद विविध और चुनौतीपूर्ण हैं। कहीं ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, कहीं संकरे रास्ते, तो कहीं ऐसे इलाके हैं जहां भारी सैन्य वाहनों को तेजी से तैनात करना आसान नहीं है। ऐसे में सैनिकों के पास ऐसे हथियार होना जरूरी है जिससे आसानी से आगे पोस्ट तक ले जाया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि जेवलिन जैसी मिसाइल भारत की एंटी आर्मर क्षमता को मजबूत कर सकती है।
1: राम क्षेत्र में जब सीमा पर सैनिक तैनात होता है तो वहां सबसे अहम भूमिका होती है हथियारों की, खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाके। वहां सैनिकों को ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ती है जो हल्के भी हों और सटीक निशाना भी लगा सके। ऐसे में इस तरह के हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है।
0: मौजूदा समय में भारत अपनी MPATGM यानी स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी विकसित कर रहा है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, टॉप अटैक मोड और टैंडम वॉरहेड जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल करीब 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों को सटीक निशाना बना सकती है।

0: आती है। एक बार गोला दाग दिया, उसके बाद ये खुद ब खुद टारगेट को निशाना बनाएगा और उसे ध्वस्त करके ही दम लेगा।
1: रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियों की मारक क्षमता बढ़ेगी और विदेशी एंटी टैंक हथियारों पर निर्भरता कम होगी। हालांकि जब तक स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की पूरी तरह से परिपक्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक जेवलिन का भारत में बनना और सेना में शामिल होना एक बेहतरीन स्टॉप गैप व्यवस्था प्रदान करेगा।
0: जमीनी जंग का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद हथियार है टैंक, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके साथ चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां और टोट राइफल्स, यानी इसे और ज्यादा ताकत देती हैं। और टैंक जब रण क्षेत्र में निकलता है तो ना तो इसको रेतीली जमीन रोक पाती है, न ही ऊंचाई वाले पहाड़।
1: टैंक को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल। इसे टैंकों का काल कहा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब ATGM की जगह RCL यानी रिकॉइल लेस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था।
0: टैंक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना 106mm की RCL गन, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि फायर होते ही इसकी आग पीछे की तरफ से निकलती थी, जिससे दुश्मन दूर से ही इसे पहचान लेता था। एक और खामी जो इसमें थी वो ये थी कि आप इसमें से केवल एक दो या तीन बार फायर कर सकते हैं। बावजूद इसके इसने अपने पराक्रम का परिचय दिया।
1: 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए, ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग जाए। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुके रहे जब तक कि पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आ गए। अब्दुल हमीद एक जीप में RCL गन के साथ तैनात थे।
0: असल उत्तर की लड़ाई धूल भरी जमीन पर लड़ी गई, जहां चारों तरफ केवल धुएं का गुब्बार था, धूल थी और ऊपर से गोलीबारी का धुआं। ऐसे में चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे। अब्दुल हमीद ने एक बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को करीब आने दिया और 180 मीटर की दूरी पर उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों के परखचे उड़ा दिए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत से अपने ड्राइवर को पोजीशन बदलने के लिए कहा।
1: दिन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने 2 टैंकों को तबाह कर दिया था, जबकि 4 टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वहीं छोड़कर भाग निकली थी। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने 4 ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले 1 घंटे में पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हमीद ने जैसे ही देखा कि 6 पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी RCL गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा भी मिला। यहाँ से उन्होंने सबसे पहले आगे की टैंक उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर 2 और टैंक उड़ा दिए। अब्दुल हमीद ने गजब का साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले ही तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी।
2: टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं और वो उनका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के दौरान जो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके टैंक जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे, तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो

0: बहुत ज्यादा है, टैंकों के विरुद्ध और वस्त्रबंध गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नागमार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है मार्क 2 की। तो ये बैटलफील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है।
1: मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें अलग अलग वर्जन की कई मिसाइलें हैं। कुछ टैंक से फायर करने में सक्षम है तो कुछ हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती हैं। यही नहीं, कंधे पर रखकर भी सेना के जवान से फायर कर सकते हैं। मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक नाम है स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दरअसल इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि कई बार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दुश्मन फायदे की पोजीशन पर होता है। मान लीजिए कि दुश्मन किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा है, तो ऐसे में मोर्टार से हमला करना जोखिम भरा हो सकता है। और यहाँ पर सैनिकों का सबसे भरोसेमंद हथियार होता है ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। स्पाइक NLOS भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत को इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
2: स्पाइक जो है वो नॉन लाइन ऑफ साइट एक मिसाइल है जो 2020 में लॉकहीड मार्टिन और रफाल ने मिलकर ये वेपन सिस्टम बनाया। ये एक मैन इन द लूप वाला वेपन सिस्टम है और इसको तीनों वर्शन में यानी एयर से, लैंड से और मैरीटाइम वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खूबी ये है कि बिकॉज ये मैन इन द लूप वाला सिस्टम है तो इसको किसी तरह से भी गाइड करके, और गाइडिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिस्टम हो लेजर का, चाहे वो टीवी कैमरास का हो जो फिट होते हैं वारहेड के नोज के अंदर, या वो कोई वायर गाइडेड हो, किसी तरह के भी सिस्टम से इसको गाइड करके वहां तक दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाना और उसको मार गिराना, ये इसकी खूबी है। और अगर मिशन किसी तरीके से अबॉर्ट करना पड़े तो ये अबॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका रेंज तकरीबन 32 किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ी इसकी एक ताकत है।
1: हवा से दागी गई NLOS मिसाइल न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत ने इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी है। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने LAC पर करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू विमानों की तैनाती करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का ऑर्डर दिया। खबरों के मुताबिक भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का इच्छुक था। साल 2011 में भारत के पास दो विकल्प थे, एक अमेरिका की फाल्कन और दूसरा था इसराइल की NLOS। भारत ने इसराइल की NLOS को चुना। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मूड में नहीं था, लेकिन भारत को एक ऐसे मुल्क से डील करनी थी जो उसे हथियार के साथ साथ तकनीक का ट्रांसफर भी देता, ताकि भारत में उसका प्रोडक्शन हो पाए। इसीलिए भारत ने NLOS को चुना। फिलहाल सरकार ने सीमित संख्या में NLOS मिसाइलें ऑर्डर की हैं, बाद में इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बड़ी संख्या में हासिल किया जाएगा। रण क्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे।
4: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम। मटके फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह। ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी। एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव। श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी। चांदी की पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर। साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास। आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना। आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशनल सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

0: हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी। उन्हीं युगातीत दिव्य आत्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता, निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

0: आप शायद यकीन ना करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: में। जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या करते
2: ये करते हैं, तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनन फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो ऐसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धिजीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल कहते हैं, गोपाल तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के 3rd हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
3: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौली बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया। यहां तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थीं। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से, महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है,
2: टिकट नहीं है।
1: तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए, स्टेशन पर थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं महानिदेशक वगैरह जिसके वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करोली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे, पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करोली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीब करोली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करोली बाबा का देहावसान हो चुका था, फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहाँ आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करोली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गई। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
3: बंदे में है दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: चलिए आगे बढ़ते बात एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। हनुमान अंश की बात करें तो हनुमान अंश साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म बन चुकी है। देखिए मात्र 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने मुनाफे के मामले में धुरंधर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। आमतौर पर फिल्म के रिलीज के बढ़ते दिनों के साथ कलेक्शन घट जाता है, इस तरीके का ट्रेंड देखा जाता है, लेकिन हनुमान अंश के साथ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिल्म हर दिन के साथ अलग रिकॉर्ड ही बनाती जा रही है।
7: जैसे जैसे हनुमान अंश सिनेमा घरों में एक महीना पूरा करने के करीब पहुंच रही है, फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 29वें दिन न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कमाई के मामले में भी मीन करोली बाबा की फिल्म पर कृपा बरसी। ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन अब फिल्म की रफ्तार से भारत के ही नहीं दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर असर दिखाई देने लगा है। मिर्जापुर द मूवी की दस्तक 29वें दिन हनुमान अंश को तस से मस नहीं कर पाई है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। जिस फिल्म के बारे में कुछ समय पहले तक कोई बात नहीं हो रही थी, अब वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और अपने कलेक्शन से हर दिन चौंका रही है। मामले से बजट में बनी हनुमान अंश 80 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही और इसने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 1.80 करोड़ और दूसरे हफ्ते में सिर्फ 40 लाख रुपए कमाए थे। हालांकि तीसरे हफ्ते में फिल्म की किस्मत बदली और पॉजिटिव वर्ड माउथ के चलते दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और धीरे धीरे शो हाउसफुल होने लगे और फिल्म की कमाई में भी जबरदस्त उछाल आया और इसने तीसरे हफ्ते में 10.40 करोड़ कमाए। बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार चौथे हफ्ते में और बढ़ी और इसने 61 करोड़ कमाए। फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन अब 97.77 करोड़ है, जबकि भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 82.88 करोड़ रुपए हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि 5 सितंबर और 6 सितंबर को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला जाएगा, क्योंकि अब फिल्म के ज्यादा शोज भी सिनेमाघरों में दिखाए जा रहे हैं। हनुमान अंश नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बेस कहानी है, जिसमें महान संत के बचपन से लेकर बाबा बनने तक के सफर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निर्देशन ने फिल्म में उतारा है। फिल्म को जहां विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है, तो वहीं शोभिनो सत्या मूवी में नीम करोली बाबा बने हैं। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा फायदा मिला है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह। ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी। एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव। श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी। चांदी के पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर। साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास। आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना। आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पूर्वी लद्दाख हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाला बॉर्डर का इलाका, घने जंगल में घात लगाए दुश्मन हो या फिर बंकर में छिपे हूँ आतंक के प्यादे, फौलादी टैंक हो या फिर स्टील से भी मजबूत बंकर, हर किसी का परखचा उड़ना तय है। भारतीय सेना के पास वो किलिंग वेपन आने वाला है जो चीन और पाकिस्तान के टैंकों के लिए काल साबित होगा। भारतीय सेना अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एक एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं और इसके तहत जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में होगा, यानी कि अमेरिकी कंपनी और साथ ही साथ भारत की डिफेंस कंपनी टाटा दोनों मिलकर जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे और बहुत ही जल्द ये भारतीय सेना को मिल जाएगी।
1: भारत में जेवलिन मिसाइल का प्रोडक्शन रणनीतिक लिहाज से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इससे मेक इन इंडिया मिशन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत तथा अमेरिका की सरकार के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत अब निकट भविष्य में ही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। खास बात है कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल जो है वो एक इमेज इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से काम करती है और दुश्मन के टैंक को 4 किलोमीटर की दूरी से निस्तनाबूद कर देती है। जब इस जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगा और हमारी इन्फेंट्री की फॉरवर्ड डिप्लॉयड बटालियंस को इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी, तो युद्ध के मैदान में उनकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी।
1: आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़े हथियार ही काफी नहीं होते, जरूरत के हिसाब से ऐसे हथियारों की भी जरूरत होती है जिन्हें सैनिक अपने हाथ में भी लेकर चल सके, जो तेजी से तैनात हो सके और दुश्मन के भारी भरकम टैंक को आसानी से निशाना बना सके। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए अमेरिकी हथियार की एंट्री होने जा रही है। एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल जिसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर एंड फॉरगेट।
0: दरअसल भारतीय सेना अमेरिका से शुरू से ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन को खरीदने की इच्छुक थी। 2010 में भारत ने इसकी इच्छा जताई थी, लेकिन अब जाकर यानी कि 28 अगस्त को इस पर फाइनल डील साइन हुई है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
1: इमरजेंसी खरीद प्रक्रिया के तहत हुए सौदे में 60 जेवलिन मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। इनकी कुल कीमत 292 करोड़ रूपए हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एक मिसाइल खरीदने में भारत को 16 साल क्यों लग गए? वो क्या वजह थी कि जेवलिन की जगह इजराइल की स्पाइक मिसाइल को चुन लिया गया और फिर इतने साल बाद भारत जेवलिन की ओर वापस क्यों लौटा? इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जेवलिन आखिर क्या है और भारतीय सेना के लिए इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई।
0: साल था 2010 जब भारतीय सेना ने अमेरिका से जेवलिन मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई। दोनों देशों के बीच में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आखिर में ये बातचीत विफल रही और विफल इसलिए रही क्योंकि अमेरिका भारत को मिसाइल तो देना चाह रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो राजी नहीं था, जिस पर भारत ने हामी नहीं भरी।
1: भारत चाहता था कि अमेरिका से सिर्फ जेवलिन मिसाइल की खरीद न करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले और आगे भारत में इसका उत्पादन हो सके। अमेरिका जेवलिन की महत्वपूर्ण तकनीक, खासकर इसके IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक साझा करने को तैयार नहीं था। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक को आधुनिक गाइडेड मिसाइल की आंख और दिमाग कहा जाता है। सबसे पहले आईआर सीकर थर्मल पिक्चर तैयार करता है। आईआर सीकर में डिजिटल कैमरे की तरह एक खास फोकल प्लेन एरे सेंसर लगा होता है। ये सेंसर सिर्फ गर्मी के किसी एक बिंदु को नहीं पकड़ता, बल्कि सामने मौजूद पूरे दृश्य की एक साथ थर्मल इमेज बनाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। मिसाइल के अंदर मौजूद हाई स्पीड प्रोसेसर इस इंफ्रारेड वीडियो को प्रोसेस करते हैं। एल्गोरिदम की मदद से मिसाइल ये पहचान लेती है कि सामने दिख रही गर्मी किसी टैंक की है या फिर किसी गाड़ी की या फिर सिर्फ धूप से गर्म हुई किसी चट्टान की। अगला स्टेप टारगेट के कमजोर हिस्से की पहचान करना होता है। टारगेट लॉक होने के बाद आईआर सीकर तकनीक दुश्मन के वाहन या फिर विमान के सबसे कमजोर हिस्से जैसे कि टैंक के ऊपर का हिस्सा या लड़ाकू विमान का कॉकपिट को खुद खोजती है और मिसाइल को सीधे उसी पॉइंट पर जाकर टकराने का निर्देश देती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक से कैसे बेहतर है ये भी जानना जरूरी है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल सिर्फ गर्मी के सबसे तेज बिंदु की तरफ भागती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल टारगेट के पूरे आकार को पहचान कर उसको लॉक करती है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल दुश्मन की ओर से फेंके गए फ्लेयर से आसानी से भटक जाती थी, लेकिन आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस मिसाइल असली टैंक विमान और नकली फ्लेयर्स के बीच का अंतर समझ सकती है और इसीलिए इसे चकमा देना लगभग असंभव है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल टैंक विमान के एग्जॉस्ट यानी कि धुआं निकालने वाली जगह पर ही हमला कर पाती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस मिसाइल ऑल एस्पेक्ट क्षमता से लैस है, यानी दुश्मन किसी भी दिशा में खड़ा हो ये उसकी बॉडी हीट को पकड़ लेती है।
2: आमतौर पर ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वह इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं, यानी दुश्मन के टैंक के इंजन से जो गर्माहट निकलती है लॉन्च के बाद जो मिसाइल का सीकर हेड है वो इंजन दुश्मन के इंजन की गर्माहट पर लॉक ऑन करता है। लेकिन आजकल इसके काउंटर मेजर्स बन चुके हैं जिसमें दुश्मन आर्टिफिशियल फ्लेयर्स फायर करता है या आर्टिफिशियल हाई टेम्परेचर ग्रेनेड्स फायर करता है जिससे कि छोटे छोटे पटाखे जैसे आग जलने लग जाते हैं। तो जो एंटी टैंक मिसाइल हीट सीकिंग हमने लॉन्च किया है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और इन नकली हीट सोर्सेज की तरफ चल पड़ता है।
1: जेवलिन की खरीद प्रक्रिया के लिए कड़ी अमेरिकी शर्तें और इजराइल स्पाइक से ज्यादा लागत की वजह से शुरुआती जेवलिन खरीद प्रक्रिया अटक गई।
0: दरअसल अमेरिका के साथ हथियार खरीदने पर अमेरिका ने यूज एंड मॉनिटरिंग की शर्त रखी थी, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये था कि अगर भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है तो अमेरिकी अधिकारी कभी भी आकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं था और ये एक बड़ी वजह रही कि दोनों के बीच ये डील तब साइन नहीं हो पाई।
1: जब जेवलिन मिसाइल की खरीद को लेकर बात चल रही थी तब जेवलिन की प्रति यूनिट लागत इजराइल की स्पाइक मिसाइल की तुलना में बहुत ज्यादा थी। भारतीय सेना को अपनी 380 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियनों के लिए हजारों की संख्या में एंटी टैंक मिसाइलों की जरूरत थी, इसीलिए आर्थिक रूप से भी स्पाइक एक बेहतर विकल्प साबित हो रही थी।
2: भारत की जो फौज है वह काफ़ी समय से एक आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल की मांग कर रही थी। भारत में ही हम DRDO की मदद से नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम काफ़ी हद तक डेवलप हो भी चुका है। इसके प्रोटोटाइप को ऑलरेडी चांदीपुर टेस्ट रेंज में और पोकरण रेंज में ट्रायल कर लिया गया है, लेकिन इसकी फाइनल प्रोडक्शन लाइन असेंबली लाइन बनाने में अभी 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए इतने सालों से भारत ने और कोई दूसरा इंपोर्टेड यानी विदेशी एंटी टैंक मिसाइल नहीं खरीदा, लेकिन अब जब नाग को इंडक्ट होने में 2-3 साल और लगेंगे तो एज एन एंट्रिम मेजर टेम्परेरी व्यवस्था के तहत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत में ही प्रोडक्शन किया जाएगा।
1: भारत के पास 8 तरह की एंटी गाइडेड मिसाइल हैं, जिसमें एक नया नाम जेवलिन जुड़ने वाला है, जो इंडियन इन्फेंट्री की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा।
0: वक्त बदला और अमेरिका और भारत के रिश्ते साल दर साल और बेहतर होते चले गए, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका ने भी भारत के लिए अपने रुख को थोड़ा सा नर्म किया। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके भारत में ही प्रोडक्शन पर भी हामी भर दी।
1: जेवलिन सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई देशों की सेनाएं करती हैं। इसे बख्तरबंद वाहनों और मजबूत किलेबंदी वाली जगहों समेत कई तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। अब जेवलिन कैसे काम करती है, इसकी ताकत और खासियत क्या है, और क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, और ये कैसे काम करती है, ये आपको बताते हैं। पहला फेज, टारगेट ढूंढना और लॉक करना। सैनिक अपने कमांड लॉन्च यूनिट में लगे थर्मल डिपेंडेंट कैमरे की मदद से दुश्मन के टैंक को ढूंढता है और उस पर निशाना लॉक करता है। दूसरा फेज, सॉफ्ट लॉन्चिंग। ट्रिगर दबाते ही मिसाइल का पहला छोटा मोटर उसे ट्यूब से बाहर धकेलता है। जब मिसाइल सैनिक से सुरक्षित दूरी पर पहुंचती है, तब इसका मुख्य रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है। तीसरा फेज, इंफ्रारेड गाइडिंग। मिसाइल के आगे लगा सीकर टैंक से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करता है और मिसाइल खुद अपना रास्ता तय करती है। चौथा फेज, टारगेट पर अटैक। मिसाइल दो तरह से टारगेट पर अटैक करती है, एक है टॉप अटैक मोड और दूसरा है डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक मोड में मिसाइल सीधे जाने के बजाय हवा में 150 मीटर ऊपर उठती है और फिर सीधे नीचे आकर टैंक की छत पर हमला करती है। डायरेक्ट अटैक मोड का इस्तेमाल बंकर, इमारत या कम ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाने को लेकर होता है, जिसमें मिसाइल सीधे सामने जाकर टकराती है।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल में एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी हमारा जो इन्फेंट्री का ट्रूपर है उसको दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाना है और मिसाइल को फायर कर देना है। उसके बाद ये मिसाइल तुरंत ऊपर की तरफ चली जाती है और दुश्मन के टैंक को टॉप अटैक मोड में हमला करती है। अगर सामने दुश्मन का बंकर है, उसके ऊपर भी लॉन्च करने के बाद जेवलिन मिसाइल जो है सीधा दुश्मन के बंकर की तरफ अग्रसर होती है।
1: आधुनिक टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है, जो किसी भी मिसाइल के टकराते ही खुद ब्लास्ट होकर मिसाइल के असर को बेअसर करता है। इससे निपटने के लिए जेवलिन में टैंडम वॉरहेड लगा है, यानी दो विस्फोट। पहला विस्फोट टैंक के बाहरी सुरक्षात्मक कवच को नष्ट करता है और ठीक उसके पीछे वाला दूसरा मुख्य विस्फोटक टैंक के अंदर छेद करके उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वैसे रेंज की बात की जाए तो जेवलिन 2.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के बख्तरबंद वाहन बंकर, यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। यानी सामने कोई भी हो, जेवलिन मिसाइल के आगे सब फेल।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की एक और खास बात है कि इसके वॉरहेड में दो वॉरहेड होते हैं, एक सामने और एक थोड़ा सा पीछे। जब यह मिसाइल दुश्मन के टैंक से टकराती है तो पहले सामने वाला वॉरहेड फटता है, जिससे कि दुश्मन के टैंक पे जो भी बख्तरबंद या कवच लगा है उसको नष्ट किया जाता है और एक छेद बन जाता है। उस छेद से जो दूसरा वॉरहेड है वो अंदर चला जाता है और सेकेंड वॉरहेड जो है टैंक के अंदर जाके फटता है। यानी सेकेंड वॉरहेड से ही टैंक, दुश्मन के टैंक के अंदर जो क्रू है, ड्राइवर, गनर, कमांडर, लोडर, उनकी मौत होती है। तो इससे द किल प्रोबेबिलिटी जो है, यानी टैंक पर ना सिर्फ हमला करना वरन यह सुनिश्चित करना कि वह टैंक और उसका क्रू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्राय प्राय 100% बढ़ जाती है।
1: अब सवाल ये भी है कि भारत को जेवलिन की जरूरत क्यों है, तो आइए अब आपको समझाते हैं। भारत की सीमाएं बेहद विविध और चुनौतीपूर्ण हैं। कहीं ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, कहीं संकरे रास्ते, तो कहीं ऐसे इलाके हैं जहां भारी सैन्य वाहनों को तेजी से तैनात करना आसान नहीं है। ऐसे में सैनिकों के पास ऐसे हथियार होना जरूरी है जिसे आसानी से आगे पोस्ट तक ले जाया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि जेवलिन जैसी मिसाइल भारत की एंटी आर्मर क्षमता को मजबूत कर सकती है।
0: रण क्षेत्र में जब सीमा पर सैनिक तैनात होता है तो वहां सबसे अहम भूमिका होती है हथियारों की, खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाके। वहां सैनिकों को ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ती है जो हल्के भी हों और सटीक निशाना भी लगा सके। ऐसे में इस तरह के हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है।
1: मौजूदा समय में भारत अपनी MPATGM यानी स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी विकसित कर रहा है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, टॉप अटैक मोड और टैंडम वॉरहेड जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल करीब 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों को सटीक निशाना बना सकती है।
0: MPATGM की सबसे बड़ी ताकत है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक, जिसमें सीधे तौर पर मतलब यह है कि गोला दागो और उसके बाद भूल जाओ। और ये सबसे बड़ी तकनीक इसको और ज्यादा ताकतवर बनाती है। एक बार गोला दाग दिया उसके बाद ये खुद ब खुद टारगेट को निशाना बनाएगा और उसे ध्वस्त करके ही दम लेगा।
1: रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियों की मारक क्षमता बढ़ेगी और विदेशी एंटी टैंक हथियारों पर निर्भरता कम होगी। हालांकि जब तक स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की पूरी तरह से परिपक्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक जेवलिन का भारत में बनना और सेना में शामिल होना एक बेहतरीन स्टॉप गैप व्यवस्था प्रदान करेगा।

0: रोक पाती है न ही ऊंचाई वाले पहाड़।
1: टैंक को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल। इसे टैंकों का काल कहा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब ATGM की जगह RCL यानी रिकॉइल लेस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था।
0: टैंक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना 106mm की RCL गन, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि फायर होते ही इसकी आग पीछे की तरफ से निकलती थी, जिससे दुश्मन दूर से ही इसे पहचान लेता था। एक और खामी जो इसमें थी वो ये थी कि आप इसमें से केवल एक दो या तीन बार फायर कर सकते हैं। बावजूद इसके इसने अपने पराक्रम का परिचय दिया।
1: 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटर्न टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए, ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग जाए। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुके रहे जब तक कि पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आ गए। अब्दुल हमीद एक जीप में RCL गन के साथ तैनात थे।
0: असल उत्तर की लड़ाई धूल भरी जमीन पर लड़ी गई, जहां चारों तरफ केवल धुएं का गुब्बार था, धूल थी और ऊपर से गोलीबारी का धुआं। ऐसे में चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे। अब्दुल हमीद ने एक बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को करीब आने दिया और 180 मीटर की दूरी पर उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों के परखचे उड़ा दिए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत से अपने ड्राइवर को पोजीशन बदलने के लिए कहा।
1: गन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने 2 टैंकों को तबाह कर दिया था, जबकि 4 टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वहीं छोड़कर भाग निकली थी। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने 4 ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले 1 घंटे में पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हमीद ने जैसे ही देखा कि 6 पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी RCL गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा भी मिला। यहाँ से उन्होंने सबसे पहले आगे की टैंक उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर 2 और टैंक उड़ा दिए। अब्दुल हमीद ने गजब का साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले ही तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी।
2: टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं और वो उनका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के दौरान जो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके टैंक जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे, तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है टैंकों के विरुद्ध और बस्तरबंद गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नागमार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है Mark 2 की, तो ये बैटलफील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है।
1: मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें अलग अलग वर्जन की कई मिसाइलें हैं। कुछ टैंक से फायर करने में सक्षम है तो कुछ हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती है। यही नहीं, कंधे पर रखकर भी सेना के जवान से फायर कर सकते हैं। मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक

0: है स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट।
1: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दरअसल इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि कई बार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दुश्मन फायदे की पोजीशन पर होता है। मान लीजिए कि दुश्मन किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा है तो ऐसे में मोर्टार से हमला करना जोखिम भरा हो सकता है और यहाँ पर सैनिकों का सबसे भरोसेमंद हथियार होता है ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
0: स्पाइक NLOS भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत को इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
2: स्पाइक जो है वो नॉन लाइन ऑफ साइट एक मिसाइल है जो 2020 में लॉकहीड मार्टिन और रफाल ने मिलकर ये वेपन सिस्टम बनाया। ये एक मैन इन दी लूप वाला वेपन सिस्टम है और इसको तीनों वर्षन में यानी एयर से, लैंड से और मैरीटाइम वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खूबी ये है कि बिकॉज ये मैन इन दी लूप वाला सिस्टम है तो इसको किसी तरह से भी गाइड करके, और गाइडिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिस्टम हो लेजर का, चाहे वो टीवी कैमरास का हो जो फिट होते हैं वारहेड के नोज के अंदर, या वो कोई वायर गाइडेड हो, किसी तरह के भी सिस्टम से इसको गाइड करके वहां तक दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाना और उसको मार गिराना, ये इसकी खूबी है। और अगर मिशन किसी तरीके से अबॉर्ट करना पड़े तो ये अबॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका रेंज तकरीबन 32 किलोमीटर है जो कि बहुत बड़ी इसकी एक ताकत है।
0: हवा से दागी गई NLOS मिसाइल न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत ने इसराइल से स्पाइक NLOS मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी है। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने LAC पर करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू विमानों की तैनाती करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का ऑर्डर दिया।
1: खबरों के मुताबिक भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का इच्छुक था। साल 2011 में भारत के पास दो विकल्प थे, एक अमेरिका की फाल्कन और दूसरा था इसराइल की NLOS। भारत ने इसराइल की NLOS को चुना। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मूड में नहीं था, लेकिन भारत को एक ऐसे मुल्क से डील करनी थी जो उसे हथियार के साथ साथ तकनीक का ट्रांसफर भी देता ताकि भारत में उसका प्रोडक्शन हो पाए, इसीलिए भारत ने NLOS को चुना।
0: फिलहाल सरकार ने सीमित संख्या में NLOS मिसाइलें ऑर्डर की हैं, बाद में इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बड़ी संख्या में हासिल किया जाएगा।
1: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर।
5: क्या शनिदेव का मंत्र महिलाएं नहीं जप सकती? क्या शनिदेव का मंत्र किसी खास दिशा की तरफ जपना चाहिए? शनिदेव का मंत्र किस माला से जपना चाहिए? कौन से हैं शनिदेव के चमत्कारी मंत्र और क्या है मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है।
0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम। मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह। ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी। एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साईं मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव। श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी। चांदी की पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर। साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास। आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना। आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी।

0: उन्हीं युगातीत दिव्यात्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। नीब करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहां तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ

0: आप शायद यकीन न करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा, एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: में। जब तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या कर सकते,
2: ये करते हैं तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था, तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनंद फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है, देख लो वैसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धिजीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, हल्का सा, हल्का दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल गोपाल कहते हैं, गोपाल गोपाल, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के 3rd हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
3: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौली बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया। यहां तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थी। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से, महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: स्टेशन पे बैठ गए,
1: स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
3: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं महानिदेशक वगैरह जिसके वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीप करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीप करोली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे। पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था, साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए। इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीप करोली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीप करोली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीप करोली बाबा का देहावसान हो चुका था, फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहाँ आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीप करोली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गईं। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
4: वंदे मेहदम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: तो चलिए आगे बढ़ते बात एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। हनुमान अंश की बात करें तो हनुमान अंश साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्म बन चुकी है। देखिए, मात्र 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने मुनाफे के मामले में धुरंधर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। आमतौर पर फिल्म के रिलीज के बढ़ते दिनों के साथ कलेक्शन घट जाता है, इस तरीके का ट्रेंड देखा जाता है, लेकिन हनुमान अंश के साथ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिल्म हर दिन के साथ अलग रिकॉर्ड ही बनाती जा रही है।
3: जैसे जैसे हनुमान अंश सिनेमा घरों में एक महीना पूरा करने के करीब पहुंच रही है, फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 29वें दिन न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की कमाई के मामले में भी नीम करोली बाबा की फिल्म पर कृपा बरसी। ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन अब फिल्म की रफ्तार से भारत के ही नहीं दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर असर दिखाई देने लगा है। मिर्जापुर द मूवी की दस्तक 29वें दिन हनुमान अंश को टस से मस नहीं कर पाई है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। जिस फिल्म के बारे में कुछ समय पहले तक कोई बात नहीं हो रही थी, अब वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और अपने कलेक्शन से हर दिन चौंका रही है। मामले से बजट में बनी हनुमान अंश 80 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही और इसने पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 1.80 करोड़ और दूसरे हफ्ते में सिर्फ 40 लाख रुपए कमाए थे। हालांकि तीसरे हफ्ते में फिल्म की किस्मत बदली और पॉजिटिव वर्ड माउथ के चलते दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और धीरे धीरे शो हाउसफुल होने लगे और फिल्म की कमाई में भी जबरदस्त उछाल आया और इसने तीसरे हफ्ते में 10.40 करोड़ कमाए। बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार चौथे हफ्ते में और बढ़ी और इसने 61 करोड़ कमाए। फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन अब 97.77 करोड़ है, जबकि भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 82.88 करोड़ रुपए हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि 5 सितंबर और 6 सितंबर को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला जाएगा, क्योंकि अब फिल्म के ज्यादा शोज भी सिनेमाघरों में दिखाए जा रहे हैं। हनुमान अंश नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बेस कहानी है, जिसमें महान संत के बचपन से लेकर बाबा बनने तक के सफर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निर्देशन ने फिल्म में उतारा है। फिल्म को जहां विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है, तो वहीं शोभिन और सत्या मूवी में नीम करोली बाबा बने हैं। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा फायदा मिला है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम। मटके फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह। ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी। एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। श्री शिरडी के साई मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव। श्री कृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी। चांदी के पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर। साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास। आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना। आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशन सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पूर्वी लद्दाख हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड वाला बॉर्डर का इलाका, घने जंगल में घात लगाए दुश्मन हो या फिर बंकर में छिपे हूँ आतंक के प्यादे, फौलादी टैंक हो या फिर स्टील से भी मजबूत बंकर, हर किसी का परखचा उड़ना तय है। भारतीय सेना के पास वो किलिंग वेपन आने वाला है जो चीन और पाकिस्तान के टैंकों के लिए काल साबित होगा। भारतीय सेना अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एक एमओयू पर साइन भी हो चुके हैं और इसके तहत जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में होगा, यानी कि अमेरिकी कंपनी और साथ ही साथ भारत की डिफेंस कंपनी टाटा दोनों मिलकर जेवलिन का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे और बहुत ही जल्द ये भारतीय सेना को मिल जाएगी।
1: भारत में जेवलिन मिसाइल का प्रोडक्शन रणनीतिक लिहाज से भारत की सैन्य ताकत को मजबूती देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इससे मेक इन इंडिया मिशन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत तथा अमेरिका की सरकार के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत अब निकट भविष्य में ही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। खास बात है कि जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल जो है वो एक इमेज इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से काम करती है और दुश्मन के टैंक को 4 किलोमीटर की दूरी से निस्तनाबूद कर देती है। जब इस जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगा और हमारी इन्फेंट्री की फॉरवर्ड डिप्लॉयड बटालियंस को इसकी सप्लाई चालू हो जाएगी, तो युद्ध के मैदान में उनकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी।
1: आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़े हथियार ही काफी नहीं होते, जरूरत के हिसाब से ऐसे हथियारों की भी जरूरत होती है जिन्हें सैनिक अपने हाथ में भी लेकर चल सके, जो तेजी से तैनात हो सके और दुश्मन के भारी भरकम टैंक को आसानी से निशाना बना सके। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए अमेरिकी हथियार की एंट्री होने जा रही है। एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल जिसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर एंड फॉरगेट।
0: दरअसल भारतीय सेना अमेरिका से शुरू से ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन को खरीदने की इच्छुक थी। 2010 में भारत ने इसकी इच्छा जताई थी, लेकिन अब जाकर यानी कि 28 अगस्त को इस पर फाइनल डील साइन हुई है। दोनों मुल्कों के बीच इसको लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।
1: इमरजेंसी खरीद प्रक्रिया के तहत हुए सौदे में 60 जेवलिन मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। इनकी कुल कीमत 292 करोड़ रूपए हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एक मिसाइल खरीदने में भारत को 16 साल क्यों लग गए? वो क्या वजह थी कि जेवलिन की जगह इजराइल की स्पाइक मिसाइल को चुन लिया गया और फिर इतने साल बाद भारत जेवलिन की ओर वापस क्यों लौटा? इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि जेवलिन आखिर क्या है और भारतीय सेना के लिए इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई।
0: साल था 2010 जब भारतीय सेना ने अमेरिका से जेवलिन मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई। दोनों देशों के बीच में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आखिर में ये बातचीत विफल रही और विफल इसलिए रही क्योंकि अमेरिका भारत को मिसाइल तो देना चाह रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो राजी नहीं था, जिस पर भारत ने हामी नहीं भरी।
1: भारत चाहता था कि अमेरिका से सिर्फ जेवलिन मिसाइल की खरीद न करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले और आगे भारत में इसका उत्पादन हो सके। अमेरिका जेवलिन की महत्वपूर्ण तकनीक, खासकर इसके IIR यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक साझा करने को तैयार नहीं था। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक को आधुनिक गाइडेड मिसाइल की आंख और दिमाग कहा जाता है। सबसे पहले आईआर सीकर थर्मल पिक्चर तैयार करता है। आईआर सीकर में डिजिटल कैमरे की तरह एक खास फोकल प्लेन एरे सेंसर लगा होता है। ये सेंसर सिर्फ गर्मी के किसी एक बिंदु को नहीं पकड़ता, बल्कि सामने मौजूद पूरे दृश्य की एक साथ थर्मल इमेज बनाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। मिसाइल के अंदर मौजूद हाई स्पीड प्रोसेसर इस इंफ्रारेड वीडियो को प्रोसेस करते हैं। एल्गोरिदम की मदद से मिसाइल ये पहचान लेती है कि सामने दिख रही गर्मी किसी टैंक की है या फिर किसी गाड़ी की या फिर सिर्फ धूप से गर्म हुई किसी चट्टान की। अगला स्टेप टारगेट के कमजोर हिस्से की पहचान करना होता है। टारगेट लॉक होने के बाद आईआर सीकर तकनीक दुश्मन के वाहन या फिर विमान के सबसे कमजोर हिस्से जैसे कि टैंक के ऊपर का हिस्सा या लड़ाकू विमान का कॉकपिट को खुद खोजती है और मिसाइल को सीधे उसी पॉइंट पर जाकर टकराने का निर्देश देती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक से कैसे बेहतर है ये भी जानना जरूरी है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल सिर्फ गर्मी के सबसे तेज बिंदु की तरफ भागती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल टारगेट के पूरे आकार को पहचान कर उसको लॉक करती है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल दुश्मन की ओर से फेंके गए फ्लेयर से आसानी से भटक जाती थी, लेकिन आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड से लैस मिसाइल असली टैंक विमान और नकली फ्लेयर्स के बीच का अंतर समझ सकती है और इसीलिए इसे चकमा देना लगभग असंभव है। पुरानी हीट सिंकिंग तकनीक वाली मिसाइल टैंक विमान के एग्जॉस्ट यानी कि धुआं निकालने वाली जगह पर ही हमला कर पाती थी, वहीं आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस मिसाइल ऑल एस्पेक्ट क्षमता से लैस है, यानी दुश्मन किसी भी दिशा में खड़ा हो ये उसकी बॉडी हीट को पकड़ लेती है।
2: आमतौर पर ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वह इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं, यानी दुश्मन के टैंक के इंजन से जो गर्माहट निकलती है लॉन्च के बाद जो मिसाइल का सीकर हेड है वो इंजन दुश्मन के इंजन की गर्माहट पर लॉक ऑन करता है। लेकिन आजकल इसके काउंटर मेजर्स बन चुके हैं जिसमें दुश्मन आर्टिफिशियल फ्लेयर्स फायर करता है या आर्टिफिशियल हाई टेम्परेचर ग्रेनेड्स फायर करता है जिससे कि छोटे छोटे पटाखे जैसे आग जलने लग जाते हैं। तो जो एंटी टैंक मिसाइल हीट सीकिंग हमने लॉन्च किया है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और इन नकली हीट सोर्सेज की तरफ चल पड़ता है।
1: जेवलिन की खरीद प्रक्रिया के लिए कड़ी अमेरिकी शर्तें और इजराइल स्पाइक से ज्यादा लागत की वजह से शुरुआती जेवलिन खरीद प्रक्रिया अटक गई।
0: दरअसल अमेरिका के साथ हथियार खरीदने पर अमेरिका ने यूज एंड मॉनिटरिंग की शर्त रखी थी, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये था कि अगर भारत अमेरिका से हथियार खरीदता है तो अमेरिकी अधिकारी कभी भी आकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं था और ये एक बड़ी वजह रही कि दोनों के बीच ये डील तब साइन नहीं हो पाई।
1: जब जेवलिन मिसाइल की खरीद को लेकर बात चल रही थी तब जेवलिन की प्रति यूनिट लागत इजराइल की स्पाइक मिसाइल की तुलना में बहुत ज्यादा थी। भारतीय सेना को अपनी 380 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियनों के लिए हजारों की संख्या में एंटी टैंक मिसाइलों की जरूरत थी, इसीलिए आर्थिक रूप से भी स्पाइक एक बेहतर विकल्प साबित हो रही थी।
2: भारत की जो फौज है वह काफ़ी समय से एक आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल की मांग कर रही थी। भारत में ही हम DRDO की मदद से नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम काफ़ी हद तक डेवलप हो भी चुका है। इसके प्रोटोटाइप को ऑलरेडी चांदीपुर टेस्ट रेंज में और पोकरण रेंज में ट्रायल कर लिया गया है, लेकिन इसकी फाइनल प्रोडक्शन लाइन असेंबली लाइन बनाने में अभी 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए इतने सालों से भारत ने और कोई दूसरा इंपोर्टेड यानी विदेशी एंटी टैंक मिसाइल नहीं खरीदा, लेकिन अब जब नाग को इंडक्ट होने में 2-3 साल और लगेंगे तो एज एन एंट्रिम मेजर टेम्परेरी व्यवस्था के तहत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत में ही प्रोडक्शन किया जाएगा।
1: भारत के पास 8 तरह की एंटी गाइडेड मिसाइल हैं, जिसमें एक नया नाम जेवलिन जुड़ने वाला है, जो इंडियन इन्फेंट्री की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा।
0: वक्त बदला और अमेरिका और भारत के रिश्ते साल दर साल और बेहतर होते चले गए, जिसका नतीजा ये है कि अमेरिका ने भी भारत के लिए अपने रुख को थोड़ा सा नर्म किया। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसके भारत में ही प्रोडक्शन पर भी हामी भर दी।
1: जेवलिन सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई देशों की सेनाएं करती हैं। इसे बख्तरबंद वाहनों और मजबूत किलेबंदी वाली जगहों समेत कई तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। अब जेवलिन कैसे काम करती है, इसकी ताकत और खासियत क्या है, और क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, और ये कैसे काम करती है, ये आपको बताते हैं। पहला फेज, टारगेट ढूंढना और लॉक करना। सैनिक अपने कमांड लॉन्च यूनिट में लगे थर्मल डिपेंडेंट कैमरे की मदद से दुश्मन के टैंक को ढूंढता है और उस पर निशाना लॉक करता है। दूसरा फेज, सॉफ्ट लॉन्चिंग। ट्रिगर दबाते ही मिसाइल का पहला छोटा मोटर उसे ट्यूब से बाहर धकेलता है। जब मिसाइल सैनिक से सुरक्षित दूरी पर पहुंचती है, तब इसका मुख्य रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है। तीसरा फेज, इंफ्रारेड गाइडिंग। मिसाइल के आगे लगा सीकर टैंक से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक करता है और मिसाइल खुद अपना रास्ता तय करती है। चौथा फेज, टारगेट पर अटैक। मिसाइल दो तरह से टारगेट पर अटैक करती है, एक है टॉप अटैक मोड और दूसरा है डायरेक्ट अटैक मोड। टॉप अटैक मोड में मिसाइल सीधे जाने के बजाय हवा में 150 मीटर ऊपर उठती है और फिर सीधे नीचे आकर टैंक की छत पर हमला करती है। डायरेक्ट अटैक मोड का इस्तेमाल बंकर, इमारत या कम ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाने को लेकर होता है, जिसमें मिसाइल सीधे सामने जाकर टकराती है।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल में एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी हमारा जो इन्फेंट्री का ट्रूपर है उसको दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाना है और मिसाइल को फायर कर देना है। उसके बाद ये मिसाइल तुरंत ऊपर की तरफ चली जाती है और दुश्मन के टैंक को टॉप अटैक मोड में हमला करती है। अगर सामने दुश्मन का बंकर है, उसके ऊपर भी लॉन्च करने के बाद जेवलिन मिसाइल जो है सीधा दुश्मन के बंकर की तरफ अग्रसर होती है।
1: आधुनिक टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा होता है, जो किसी भी मिसाइल के टकराते ही खुद ब्लास्ट होकर मिसाइल के असर को बेअसर करता है। इससे निपटने के लिए जेवलिन में टैंडम वॉरहेड लगा है, यानी दो विस्फोट। पहला विस्फोट टैंक के बाहरी सुरक्षात्मक कवच को नष्ट करता है और ठीक उसके पीछे वाला दूसरा मुख्य विस्फोटक टैंक के अंदर छेद करके उसे पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वैसे रेंज की बात की जाए तो जेवलिन 2.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के बख्तरबंद वाहन बंकर, यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। यानी सामने कोई भी हो, जेवलिन मिसाइल के आगे सब फेल।
2: जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की एक और खास बात है कि इसके वॉरहेड में दो वॉरहेड होते हैं, एक सामने और एक थोड़ा सा पीछे। जब यह मिसाइल दुश्मन के टैंक से टकराती है तो पहले सामने वाला वॉरहेड फटता है, जिससे कि दुश्मन के टैंक पे जो भी बख्तरबंद या कवच लगा है उसको नष्ट किया जाता है और एक छेद बन जाता है। उस छेद से जो दूसरा वॉरहेड है वो अंदर चला जाता है और सेकेंड वॉरहेड जो है टैंक के अंदर जाके फटता है। यानी सेकेंड वॉरहेड से ही टैंक, दुश्मन के टैंक के अंदर जो क्रू है, ड्राइवर, गनर, कमांडर, लोडर, उनकी मौत होती है। तो इससे द किल प्रोबेबिलिटी जो है, यानी टैंक पर ना सिर्फ हमला करना वरन यह सुनिश्चित करना कि वह टैंक और उसका क्रू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्राय प्राय 100% बढ़ जाती है।
1: अब सवाल ये भी है कि भारत को जेवलिन की जरूरत क्यों है, तो आइए अब आपको समझाते हैं। भारत की सीमाएं बेहद विविध और चुनौतीपूर्ण है। कहीं ऊंचाई वाले पहाड़ हैं, कहीं संकरे रास्ते तो कहीं ऐसे इलाके हैं जहां भारी सैन्य वाहनों को तेजी से तैनात करना आसान नहीं है। ऐसे में सैनिकों के पास ऐसे हथियार होना जरूरी है जिससे आसानी से आगे पोस्ट तक ले जाया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि जेवलिन जैसी मिसाइल भारत की एंटी आर्मर क्षमता को मजबूत कर सकती है।
0: रण क्षेत्र में जब सीमा पर सैनिक तैनात होता है तो वहां सबसे अहम भूमिका होती है हथियारों की, खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाके। वहां सैनिकों को ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ती है जो हल्के भी हों और सटीक निशाना भी लगा सके। ऐसे में इस तरह के हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है।
1: मौजूदा समय में भारत अपनी MP-ATGM यानी स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी विकसित कर रहा है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, टॉप अटैक मोड और टैंडम वॉरहेड जैसी आधुनिक क्षमताओं से लैस है। ये मिसाइल करीब 4 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों को सटीक निशाना बना सकती है।
0: MP-ATGM की सबसे बड़ी ताकत है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक, जिसमें सीधे तौर पर मतलब यह है कि गोला दागो और उसके बाद भूल जाओ। और ये सबसे बड़ी तकनीक इसको और ज्यादा ताकतवर बनाती है। एक बार गोला दाग दिया, उसके बाद ये खुद ब खुद टारगेट को निशाना बनाएगा और उसे ध्वस्त करके ही दम लेगा।
1: रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे भारतीय सेना की पैदल टुकड़ियों की मारक क्षमता बढ़ेगी और विदेशी एंटी टैंक हथियारों पर निर्भरता कम होगी। हालांकि जब तक स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की पूरी तरह से परिपक्व और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक जेवलिन का भारत में बनना और सेना में शामिल होना एक बेहतरीन स्टॉप गैप व्यवस्था प्रदान करेगा।
0: जमीनी जंग का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद हथियार है टैंक, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके साथ चलने वाली बख्तरबंद गाड़ियां और टोट राइफल्स, यानी इसे और ज्यादा ताकत देती हैं। और टैंक जब रण क्षेत्र में निकलता है तो ना तो इसको रेतीली जमीन रोक पाती है, ना ही ऊंचाई वाले पहाड़।
1: टैंक को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियारों में से एक है एंटी टैंक मिसाइल। इसे टैंकों का काल कहा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब ATGM की जगह RCL यानी रिकॉइल लेस बंदूक

0: कि फायर होते ही इसकी आग पीछे की तरफ से निकलती थी, जिससे दुश्मन दूर से ही इसे पहचान लेता था। एक और खामी जो इसमें थी वो ये थी कि आप इसमें से केवल एक, दो या तीन बार फायर कर सकते हैं। बावजूद इसके इसने अपने पराक्रम का परिचय दिया। 1965 की जंग के दौरान 7 सितंबर तक खेमकरण में पाकिस्तानी एडवांस को रोकने के लिए आर्मी ने असल उत्तर में डिफेंसिव पोजीशन जमा ली थी। पाकिस्तान के 100 पैटन टैंकों ने पहला धावा बोला। असल उत्तर में भारतीय फौज डिफेंसिव पोजीशन पर तैनात थी। आसपास गन्ने और कपास के खेत थे और इनके बीच से रास्ता होकर गुजरता था। पाकिस्तानी टैंक बटालियन को एहसास था कि गन्ने के खेतों से हो रहे हमलों से बच के वो नहीं निकल सकते, लिहाजा उन्होंने बीच की धुरी वाली रोड पर एक सीध में टैंक उतार दिए, ताकि जब उन पर दूर से निशाना लगे तो उन्हें भारतीय फौज की पोजीशन का पता लग जाए। लेकिन उस दिन हुआ इसके ठीक उल्टा। 4 ग्रेनेडियर तब तक रुके रहे जब तक कि पाकिस्तानी टैंक एकदम नजदीक नहीं आ गए। अब्दुल हमीद एक जीप में RCL गन के साथ तैनात थे। असल उत्तर की लड़ाई धूल भरी जमीन पर लड़ी गई, जहां चारों तरफ केवल धुएं का गुब्बार था, धूल थी और ऊपर से गोलीबारी का धुआं। ऐसे में चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे। अब्दुल हमीद ने एक बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया। उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को करीब आने दिया और 180 मीटर की दूरी पर उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों के परखचे उड़ा दिए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत से अपने ड्राइवर को पोजीशन बदलने के लिए कहा।
1: दिन के खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने 2 टैंकों को तबाह कर दिया था, जबकि 4 टैंक ऐसे थे जिन्हें पाकिस्तानी फौज वहीं छोड़कर भाग निकली थी। 10 सितंबर सुबह 8 बजे पाकिस्तानी टैंकों ने 4 ग्रेनेडियर की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तानी टैंकों के सामने भारत के हथियार कमजोर पड़ रहे थे। अगले 1 घंटे में पाकिस्तानी टैंक काफी आगे तक बढ़ गए। हमीद ने जैसे ही देखा कि 6 पाकिस्तानी टैंक उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तुरंत जीप में चढ़े और उन्होंने दाएं फ्लैंक से अपनी RCL गन से टैंकों पर निशाना लगाया। कपास के खेतों में छुपने का उन्हें खूब फायदा भी मिला। यहाँ से उन्होंने सबसे पहले आगे की टैंक उड़ाया और उसके बाद पीछे से निशाना लगाकर 2 और टैंक उड़ा दिए। अब्दुल हमीद ने गजब का साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को अकेले ही तबाह कर डाला। अब्दुल हमीद को असाधारण वीरता दिखाने के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज हालात बदल गए हैं। अब थल सेना दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाने के लिए वायुसेना का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसे खुद खाक में मिला देगी।
2: टैंक और तोपे जो हैं वो दुश्मन के पास भी हैं और वो उनका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के दौरान जो दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके टैंक जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे, तो उसको आप एंटी टैंक मिसाइल से ही मार सकते हैं। इसलिए एंटी टैंक मिसाइल की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है, टैंकों के विरुद्ध और बस्तरबंद गाड़ियों के विरुद्ध। और जिस प्रकार से भारत के पास अब नागमार्क 1 और 2 हैं, ये एक पुख्ता एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी रेंज भी 7 से 10 किलोमीटर है मार्क 2 की, तो ये बैटल फील्ड के अंदर एक प्रकार से गेम चेंजर है। दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए आपको मिसाइल का होना बहुत जरूरी है।
1: मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें अलग अलग वर्जन की कई मिसाइलें हैं। कुछ टैंक से फायर करने में सक्षम है तो कुछ हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती है। यही नहीं, कंधे पर रखकर भी सेना के जवान से फायर कर सकते हैं। मौजूदा दौर में भारत के पास अलग अलग ताकत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें एक नाम है स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट।
0: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दरअसल इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि कई बार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दुश्मन फायदे की पोजीशन पर होता है। मान लीजिए कि दुश्मन किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठा है, तो ऐसे में मोर्टार से हमला करना जोखिम भरा हो सकता है और यहाँ पर सैनिकों का सबसे भरोसेमंद हथियार होता है ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।

0: स्पाइक एनएलओएस भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत को इसराइल से स्पाइक एनएलओएस मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक एनएलओएस 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है।
1: स्पाइक जो है वो नॉन लाइन ऑफ साइट एक मिसाइल है जो 2020 में लॉकहीड मार्टिन और रफाल ने मिलकर ये वेपन सिस्टम बनाया। ये एक मैन इन दी लूप वाला वेपन सिस्टम है और इसको तीनों वर्षन में यानी एयर से, लैंड से और मैरीटाइम वहां से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खूबी ये है कि बिकॉज ये मैन इन दी लूप वाला सिस्टम है तो इसको किसी तरह से भी गाइड करके, और गाइडिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिस्टम हो लेजर का, चाहे वो टीवी कैमरास का हो जो फिट होते हैं वारहेड के नोज के अंदर, या वो कोई वायर गाइडेड हो, किसी तरह के भी सिस्टम से इसको गाइड करके वहां तक दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाना और उसको मार गिराना, ये इसकी खूबी है। और अगर मिशन किसी तरीके से अबॉर्ट करना पड़े तो ये अबॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका रेंज तकरीबन 32 किलोमीटर है जो कि बहुत बड़ी इसकी एक ताकत है।
0: हवा से दागी गई एनएलओएस मिसाइल न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत ने इसराइल से स्पाइक एनएलओएस मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी है। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने एलएसी पर करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू विमानों की तैनाती करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का ऑर्डर दिया।
2: खबरों के मुताबिक भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का इच्छुक था। साल 2011 में भारत के पास दो विकल्प थे, एक अमेरिका की फाल्कन और दूसरा था इसराइल की एनएलओएस। भारत ने इसराइल की एनएलओएस को चुना। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मूड में नहीं था, लेकिन भारत को एक ऐसे मुल्क से डील करनी थी जो उसे हथियार के साथ साथ तकनीक का ट्रांसफर भी देता ताकि भारत में उसका प्रोडक्शन हो पाए, इसीलिए भारत ने एनएलओएस को चुना।
0: फिलहाल सरकार ने सीमित संख्या में एनएलओएस मिसाइलें ऑर्डर की हैं, बाद में इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बड़ी संख्या में हासिल किया जाएगा।
2: रणक्षेत्र में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
5: मुंबई थाने सहित महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की रही धूम, मटके फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों में दिखा गजब का उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा जय बजरंग बली का उद्घोष। दही हांडी उत्सव में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, बरली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी मटकी, एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख के अलावा क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया जोश। शिरडी के साई मंदिर में भी धूमधाम से मनाया गया दही हांडी का उत्सव, श्रीकृष्ण के जयकारों से भक्तों ने फोड़ी फूलों से भरी मटकी, चांदी के पालने में कान्हा को झुलाते नजर आए श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, साथ यात्रा कर रहे बच्चों से पीएम ने की बातचीत, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भी की शिरकत। जोधपुर में शुरू हुआ वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास, आसमान में दमखम दिखाएगी भारत और जापान की वायुसेना, आपसी तालमेल के साथ ऑपरेशनल सहयोग होगा मजबूत। इंदौर मेट्रो को 17 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर की मिली सौगात, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, 16 स्टेशन से यातायात व्यवस्था होगी मजबूत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। इस बार जिस बंदे का अद्भुत अलौकिक सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो अपने नश्वर शरीर का त्याग तो 53 साल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में, सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आज भी हमारे बीच विद्यमान है। एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनकी पारलौकिक ख्याति हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी बहुत ज्यादा है।

उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस बार की दिव्य अलौकिक शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा हैं। उनके अनुयायी और भक्त श्रद्धा से महाराज जी कहते हैं। नीम करौली बाबा के विराट और कलातीत व्यक्तित्व का प्रभाव कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके शरीर त्याग के बाद जब उनकी दिव्यतम जीवनी पर फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म के साथ भी चमत्कार होने लगता है। 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के बजट से तैयार हुई टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पर ललकारने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के निर्माता निर्देशक लंबे समय से उनके भक्त रहे हैं और फिल्म मेकिंग के दौरान सेट का माहौल पूरी तरह से सात्विक रखा गया। फिल्म मेकिंग के दौरान भी कई चमत्कार महसूस किए गए।

0: हिंदुस्तान की पावन भूमि अनादिकाल से ही भगवत प्राप्त महात्माओं महापुरुषों की लीला स्थली रही है। हर काल में हर युग में इस धराधाम पर ऐसे सिद्ध महापुरुषों का अवतरण होता रहा है जिनका बाह्य जीवन तो अति सामान्य रहा लेकिन आंतरिक मनोभूमि इतनी ऊंची रही कि दूसरे देशों की नामचीन हस्तियां भी उनकी पारलौकिक दिव्यता के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी। उन्हीं युगातीत दिव्य आत्माओं में शामिल हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूपी के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें दुनिया आज नीब करौरी बाबा के नाम से जानती और पूजती है। करौरी बाबा के जीवन काल से जुड़ी अनेक दिव्य घटनाओं के किस्से दुनिया भर में सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके लीला संवरण या कहें देह त्याग के 53 साल बाद जब उनके जीवन पर हनुमान अंश के नाम से फिल्म बनी तो उस फिल्म के साथ भी कई चमत्कार होने लगे। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे कि 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को पहले दिन सिर्फ 350 से 368 शोज मिले थे और पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने मात्र 10 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन 25वें दिन हनुमान अंश को 6587 शोज मिल गए और 25वें दिन इसने 12 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया। कमाल देखिए कि रिलीज के 3 हफ्ते बाद तक सिने प्रेमियों के बीच अमूमन गुमनाम रही इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी वीरेंद्र सहवाग जैसी नामचीन हस्तियां करने लगी हैं।
1: मैंने अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी। महाराज जी को एक फिल्म द्वारा बता पाना तो संभव नहीं है। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत अच्छी लिखी है और मुझे लगता है कि ये फिल्म महाराज जी को दिया गया एक बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है। एक दृश्य ने मुझे खास तौर पर छुआ। महाराज जी के गले में सांप है और एक भक्त कहता है, आप तो शिव हैं बिल्कुल भोले, और महाराज जी कहते हैं, भोले तो तुम हो, आंखें वही देखती हैं जो मन में होता है।
0: हनुमान अंश फिल्म का निर्माण अपने आप में एक दिव्य आध्यात्मिक घटना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और निर्माता मनोज कुमार नीब करौरी बाबा की जीवनी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। कहते हैं कि मनोज कुमार अपनी इच्छा के साथ नीब करौरी बाबा के दरबार में हाजिर भी हुए थे, लेकिन बाबा ने मनोज कुमार को अपनी जीवनी की जगह साईं बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की सलाह दी। बाबा की सलाह को शिरोधार्य करते हुए मनोज कुमार ने साईं बाबा पर शिरडी के साईं बाबा नाम से फिल्म बनाई जो 4 मार्च 1977 को रिलीज हुई। 70 के दशक में मनोज कुमार की जो ख्वाहिश अधूरी रह गई उसे नीब करौरी बाबा के देहावसान के 53 साल बाद पूरा किया निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और निर्माता नम्रता सिंह ने। आपको बता दें कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी पिछले 20 साल से नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी रहे हैं, जबकि निर्माता नम्रता सिंह पिछले 14 साल से लगातार अपना परम आराध्य मानकर उन्हें पूजती रही हैं। विशाल चतुर्वेदी नीब करौरी बाबा के अनुयायी कैसे बने इसके पीछे भी एक अद्भुत अलौकिक कहानी है। साल 2006 में विशाल मेडिकल लाइन से जुड़े थे और हल्द्वानी में पोस्टेड थे। एक दिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर नीब करौरी बाबा को लेकर आपकी आस्था नहीं है तो हो जाएगी और है तो और बढ़ जाएगी।
2: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: साफ है कि हनुमान अंश के निर्माता से लेकर निर्देशक तक नीब करौरी बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा की कशिश को काफी पहले से महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने बाबा की जीवन लीला पर जब फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये दृढ़ निश्चय किया कि इस फिल्म की मेकिंग साधना और उपासना के तौर पर की जाएगी। फिल्म के सेट पर ना तो किसी के लिए मांस मदिरा के सेवन की अनुमति होगी और ना ही किसी तरह के अशोभनीय आचरण की गुंजाइश होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद निर्माता, निर्देशक और कलाकार से लेकर सारे क्रू मेंबर्स तक हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान जब कोई पेज फंस जाता था तो शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

0: आप शायद यकीन न करें, लेकिन दावा यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होते ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था।
1: हम लोग जब सेट पे पहुंचते थे सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था 10 बजे तक कैमरा ही नहीं रोल हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर कहते थे कि ऐसा करो हनुमान चालीसा करते हैं,
2: तो हमारे गणपति रोल बोलते हैं।
1: हाँ, गणपति रोल
2: बोलते हैं। गणपति रोल क्या, फिर पूरी सारी आरतियां करी, फिर हनुमान चालीसा एक्सटेंडेड हनुमान चालीसा होती है।
1: हाँ, आराम से मस्ती
2: जब
1: में।
2: तक हनुमान चालीसा खत्म हुई तब तक, क्योंकि अब जब सब कुछ फंसा ही पड़ा है
1: तो क्या करते
2: ये करते हैं, तब तक जब तक हमारा फिनिश होता था तब तक वो कुछ ना कुछ वहां से
1: सोल्यूशन आ जाता था।
0: हनुमान अंश की मेकिंग शुरू होने से फाइनल पैकअप तक पूरे क्रू मेंबर्स ने कई दैवीय चमत्कारों का अनुभव किया। ये क्या अपने आप में कम बड़ा चमत्कार है कि फिल्म में नीब करौरी बाबा के सबसे अहम किरदार को जिस कलाकार ने निभाया है, शूटिंग शुरू होने के 2 दिन बाद तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। जी हाँ, नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य हनुमान अंश फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर 2 थे, लेकिन शूटिंग के दूसरे दिन मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी। पर अचानक ही विशाल चतुर्वेदी को शोभिनो सत्य में नीब करौरी बाबा का अक्स दिखने लगा और उन्होंने आनंद फानन में उनका ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट किया और इस चुनौतीपूर्ण किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी।
1: मैं खुद भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, रातों रात आपको असिस्टेंट डायरेक्टर से एक फिल्म का हीरो बना दिया जाए, तो मैं मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। तो जहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग आपके लिए कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है कि फिर तो समर्पण करना है कि अब तो भाई बाबा जी आपने किया है देख लो वैसा।
0: चमत्कारों पर भरोसा करना आसान नहीं होता, खासतौर पर तर्क बुद्धिजीवियों के लिए, पर हनुमान अंश की पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के दौरान ये मानने लगी थी कि कोई तो शक्ति है जो सब कुछ गवर्न कर रही है। सोचिए, इस फिल्म का बजट बहुत कम था, टेक्निकल शॉट्स के लिए तो पैसा था ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसा हो गया कि जो शॉट तकनीक के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, उसके लिए अपने आप कुदरती माहौल तैयार हो गया। फिल्म की कहानी में कई बार स्क्रीन पर बंदरों को दिखाने की जरूरत थी, ट्रेंड बंदरों का इंतजाम कॉस्टली अफेयर था, लेकिन जब शूटिंग की बारी आई तो अचानक ही सेट पर बंदर पहुंच गए और शूटिंग पूरी होने के बाद शराफत से वापस लौट गए। फिल्म का सबसे संवेदनशील और मार्मिक दृश्य ट्रेन वाला है। शोभिनो सत्य बताते हैं कि इस शॉट के दौरान उन्होंने सायास कुछ भी नहीं किया, कहानी के मुताबिक जो कुछ भी करना था वो अनायास ही हो गया।
1: एक सर का एक पर्सपेक्टिव था कि बाबा जी के चेहरे पे ना थोड़ी देर के लिए आपको हल्का सा गुस्सा दिखा होगा, दिखा था ना, वो इसलिए नहीं था कि उनको उतारा गया, वो इसलिए था कि उनके जो भक्त हैं गोपाल, वो गोपाल कहते हैं, तो उनको उस बात का बुरा लगा कि मेरे बच्चे को उतार दिया गया नीचे, तो वो थोड़े गिरा दिया गया, धक्का दे दिया गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके लिए हल्का सा एक चेहरे पे वो आया। तो जब वो कर रहे थे, वो आया और जैसे ही स्माइल हुई, तो वो सीन उस वक्त पे मैंने कैसे किया नहीं पता है, जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो एहसास यही होता है कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ थे, वो करवा रहे थे जो करवा रहे थे।
0: सत्य को तर्क की कसौटी पर कसा जाना लाजमी है, लेकिन परम सत्य तर्क से परे होता है, परम सत्य अनुभूति गम में होता है। अगर आपके मन में कोई दिव्य अलौकिक अनुभूति होती है तो आप इसे तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते। हनुमान अंश के स्टार कास्ट से लेकर क्रू मेंबर्स तक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने स्तर पर कई दिव्य अनुभूतियां की। उनके लिए नीब करौरी बाबा हर कदम पर हर दयार में उनके साथ थे। सत्य यही है कि रिलीज के 3rd हफ्ते के बाद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत चमत्कार दिखा रही है। पर्दे पर ही सही, आम जन का मन तो नीब करौरी बाबा के चमत्कारिक जीवन से अभिभूत महसूस कर रहा है। काबिले गौर है कि हनुमान अंश की शूटिंग चित्रकूट की उस पावन भूमि पर हुई जहां मान्यता है कि द्वापर काल में यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था।
3: इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीम करौली बाबा एक अवतारी पुरुष थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा की सबसे प्रमाणिक जीवनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने मिरेकल ऑफ लव के नाम से लिखी है। रिचर्ड अल्पर्ट की बाबा से मुलाकात हुई थी और उनकी सिद्धियां देखकर साइकोलॉजी के इस प्रोफेसर का सारा मनोविज्ञान बदल गया, यहां तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रोबोट्स जैसी विश्व विख्यात हस्तियों के मस्तिष्क पर बाबा की लीलाओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई।

0: नेब करौरी बाबा की जीवन लीला दिव्य साधु महात्माओं से लेकर दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को भी हैरत में डाल देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट में बाबा की प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं है। उनकी जीवनी के बारे में अलग अलग स्रोतों में जो कुछ मिलता है उसमें एक रूपता नहीं है। जन्म, विवाह, गृह त्याग, देशाटन, वैराग्य वगैरह को लेकर उपलब्ध सामग्रियों में अलग अलग दावे हैं, पर इन सब के बीच उनके अलौकिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोगों, खास तौर से अमेरिकियों को गहरे प्रभावित किया है। वैसे नीब करौरी बाबा के जन्म स्थान, कुल परिवार और महाप्रयाण को लेकर कोई विवाद या मतभिन्नता नहीं है। हालांकि जन्म तिथि और साल को लेकर कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म साल 1900 के आसपास यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर वालों ने इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा दिया, हालांकि कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम होने का दावा किया गया है। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम कुछ जगहों पर कौशल्या देवी शर्मा बताया गया है। परिजनों का दावा है कि नीब करौरी बाबा बचपन से ही विलक्षण थे और उन्हें जन्मजात सिद्धियां हासिल थीं। कहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि परोपकार और जन कल्याण के लिए करते थे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो या कोई गरीब गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो वो सीधे बाबा के पास पहुंच जाता था।
1: वहीं पर जैसे अब गांव के कुछ गरीब लोग थे बेचारे के, कुछ नहीं मजदूर मजदूर टाइप के थे, कुछ वैसे थे, तो उनकी बेटी की शादी है तो महाराज जी आए और ले तू ये ले जा, मतलब पैसा जिससे मतलब जैसी सादा होती थी कह ले तू ये ले जा, तू अपनी बेटी की शादी करना, कोई तू अपना इलाज कराना, तो ये महाराज जी करते रहते थे। महाराज जी ने हाँ महाराज जी ने कभी पैसे कभी किसी से मांगे नहीं, ना कभी किसी से, महाराज जी पैसा बस अपने आप आया, उन्होंने बस बांटते रहे, निरंतर सेवा करते रहे बस सभी की।
0: नीब करौरी बाबा के परिजनों का दावा है कि परोपकार की भावना से भरे रहने के बावजूद संसार में उनका मन रमता नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। बाबा के परिजनों का दावा है कि 7 साल की अल्पायु में ही वो माँ पिता को बताए बगैर घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। बाद में पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए तो 11 की उम्र में दोबारा सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। हालांकि इस बार भी परिजन इन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए। बालक की बैरागी प्रवृत्ति को भांप कर पिता ने 11 की उम्र में ही इनकी शादी राम बेटी देवी नाम की कन्या से कर दी, इस उम्मीद में कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ने के बाद विरागी मन सांसारिकता की ओर उन्मुख हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक बंधन भी बाबा के वैरागी मन को प्रभावित नहीं कर सका। श्री कैची हनुमान मंदिर एंड आश्रम की ओर से प्रकाशित द डिवाइन रियलिटी श्री बाबा नीब करौली जी महाराज किताब के पेज नंबर 15 और 16 पर राइटर रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, बाबा ने 11 वर्ष की नादान आयु में ही घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। गुजरात में वे एक वैष्णव संत के आश्रम में रहे जहां उन्हें लक्ष्मण दास नाम दिया गया और सन्यासी के वस्त्र पहनाए गए। बाबा गुजरात में कई वर्ष रहे। गुजरात प्रवास के दौरान कुछ समय उन्होंने बाबनिया में स्थित रामाबाई के आश्रम में भी धुनी रमाई। रामाबाई आश्रम में अपने प्रवास के दौरान वे आध्यात्मिक साधनाएं करते थे और कभी कभी झील में डूब कर भी साधना करते थे, जिसकी वजह से इन्हें तिलैया बाबा के नाम से भी जाना गया। इसी किताब के टेंपल एंड आश्रम वाले अध्याय में बाबा के गुजरात से उत्तर भारत वापस लौटने का भी जिक्र मिलता है। टेंपल एंड आश्रम शीर्षक वाले अध्याय में लेखक रवि प्रकाश पांडे ने लिखा है, साल 1916 में गुजरात छोड़कर बाबा उत्तर भारत आ गए। इसी समय वे फरुखाबाद जिले के नीब करौरी गाँव पहुँचे। नीब करौरी गांव में बाबा सिर्फ विश्राम के लिए आए थे, लेकिन गांव वाले उनके व्यवहार और व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उनसे यहीं रुकने का अनुरोध करने लगे। बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी साधना के लिए एक भूमिगत गुफा बनवा दी। नीब करौरी गांव में बाबा के करीब 18 वर्ष तक रहने का जिक्र मिलता है। बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली दिव्य अलौकिक घटना इसी कालखंड की बताई जाती है।
1: एक बार ऐसे ही बताते हैं कि महाराज जी एक यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे ऐसे ही, तो टीटी अचानक आए, उन्होंने टिकट चेक करना चालू कर दिया अब बाबा महाराज के पास तो टिकट ही नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि टिकट दिखाइए। बाबा ने कहा टिकट तो नहीं है, टिकट नहीं है। तो उन्होंने फिर ट्रेन रुकवा के जैसे जिस दिन पर नहीं थी उनको उतार दिया, बाबा को भी उतार दिया। बाबा आराम से ध्यान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए,
2: स्टेशन पे बैठ गए।
1: स्टेशन पे थोड़ा आगे जाके बताते हैं एक वहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ बैठ गए थे शांति से। तो महाराज जब तक बैठे रहे तब तक ट्रेन वहाँ से हिली नहीं, चली ही नहीं बिल्कुल।
2: अच्छा।
1: कई लोग आए बताते हैं, महानिदेशक वगैरह जिसके वो इंजीनियर वगैरह भी कुछ आए वहाँ पर, सब ने इंजन भी चेक किया, सब काम किया, सब ओके था, पर गाड़ी चलने का नाम नहीं था।
0: अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने अपनी किताब मिराकल ऑफ लव स्टोरीज अबाउट नीब करोली बाबा में भी इस अलौकिक घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है। कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने इंजन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली, यहाँ तक कि एक दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तब बाबा की महिमा को जानने वाले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारियों से बोला कि उस युवा साधु को वापस ट्रेन में बैठने के लिए मनाया जाए। बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट खुद नीब करोली बाबा के अलौकिक व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपना नाम रामदास कर लिया था। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए अल्पर्ट साइकेडेलिक ड्रग पर गहन शोध कर रहे थे। साइकेडेलिक एक ऐसा ड्रग है जिसके सेवन के बाद इंसान की चेतना बदल जाती है और उसे जीवन के माया मोह कष्ट क्लेश से क्षणिक मुक्ति मिल जाती है। प्रोफेसर अल्पर्ट खुद साइकेडेलिक ड्रग का सेवन करते थे और हार्वर्ड में अपने छात्रों को भी इसकी डोज देते थे, पर एक सवाल था जो उनके मन को कुरेदता था। साइकेडेलिक ड्रग के सेवन के बाद चेतना का जो क्षणिक विस्तार होता है, मन की वही अवस्था स्थायी तौर पर कैसे पाई जाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते साल 1967 में वो भारत आ गए। 1971 में छपी अपनी आत्मकथा बी हियर नाउ में नीब करोली बाबा से पहली मुलाकात के बारे में रिचर्ड अल्पर्ट ने जो लिखा है उसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। भारत आने के बाद पहाड़ों की ओर जाते समय मैं एक रात एक स्थान पर रुका। रात में शौच के लिए मैं बाहर निकला और खुले आसमान में तारों को देखते हुए अचानक मुझे अपनी महरूम माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगी। मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। अगले दिन मैं महाराज जी से मिला और उन्होंने रात वाली घटना मुझे बता दी। उन्होंने कहा कि कल रात तुम तारों को देख रहे थे, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, पिछले साल उनका निधन हुआ है, उनका स्प्लीन बहुत बढ़ गया था। महाराज जी के मुंह से ये सुनने के बाद रिचर्ड अल्पर्ट का माथा घूम गया। उनके मन में यही सवाल आया कि जिस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया उसे इस व्यक्ति ने कैसे जान लिया। नीब करोली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बेशुमार कहानियां हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अवसाद का शिकार होने के बाद मानसिक शांति की खोज में 19 वर्ष की आयु में इंडिया आए थे। हालांकि साल 1974 में उनके भारत आने से पहले ही 11 सितंबर 1973 को नीब करोली बाबा का देहावसान हो चुका था, फिर भी स्टीव जॉब्स 7 महीने के भारत प्रवास के दौरान 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कैंची धाम में रहे और इस दौरान उन्होंने बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति की गहरी अनुभूति हुई। स्टीव जॉब्स की सलाह पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी साल 2008 में भारत आए और 2 दिन 2 रात कैंची धाम में रहे। यहाँ आने से पहले जकरबर्ग काफी परेशान चल रहे थे, लेकिन लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह ऑस्कर विनर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी नीब करोली बाबा से गहरे प्रभावित हैं। बाबा की सिर्फ तस्वीर देखकर जूलिया रॉबर्ट के मन में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा पैदा हुई कि वो उनकी भक्त हो गई। जूलिया ने ये बात एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुद ही कही है।
3: बंदे में है दम में आज आपने एक ऐसी विभूति की जीवन लीला का दर्शन किया जो आज शरीर में तो नहीं है लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।